0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। अभी आप सुन रहे थे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम स्वरंजनी, जिसमें आप संदूर पर राग ललित सुन रहे थे। कलाकार थीं अनुष्का मजूमदार। आइए सुनते हैं, सुबह के 6 बजने को है, आइए सुनते हैं समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी ने टेलीफोन पर बातचीत की। कतर के रास लफान औद्योगिक क्षेत्र में हुई दुर्घटना में भारतीय नागरिकों की मृत्यु पर अमीर ने संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री मोदी ने घायलों को चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के लिए कतर का आभार व्यक्त किया। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया की स्थिति पर भी चर्चा की और क्षेत्र में शांति तथा स्थिरता के प्रयासों का समर्थन किया। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के हालात पर पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की टिप्पणियों की कड़ी आलोचना की है। भारत ने कहा है कि ये टिप्पणियां पाकिस्तान की नाकामियों को छिपाने और मानवाधिकारों के उल्लंघन

0: ध्यान भटकाने की कोशिश है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने संवाददाताओं से कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में विरोध प्रदर्शन इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान वहां के लोगों का दशकों से आर्थिक शोषण, बुनियादी अधिकारों का हनन और प्रशासनिक दमन कर रहा है। उन्होंने बताया कि पाकिस्तानी प्रशासन ने निहत्ते नागरिकों के साथ बर्बर व्यवहार किया है। जरूरी सामान और दवाओं की आपूर्ति रोक दी गई है और इंटरनेट बंद है। खाड़ी क्षेत्र में जारी टकराव पर श्री जायसवाल ने बताया कि भारतीय ध्वज वाले 10 जहाज अब भी फारस की खाड़ी में हैं। उन्होंने कहा कि 17 जून को अमेरिका और ईरान के बीच सहमति पत्र पर हस्ताक्षर होने के बाद 11 जहाज होर्मुज जलडमरू मध्य से भारत पहुंचे। उन्होंने उम्मीद जताई कि भारतीय ध्वज वाले बाकी जहाज भी जल्द ही होर्मुज जलडमरू मध्य को पार कर सकेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सरकार अलनीनो के कारण मानसून के संभावित दुष्प्रभाव से निपटने में किसानों की मदद के लिए अग्रिम तैयारियां कर रही हैं। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री चौहान ने ये बात कही।
1: अलनीनो के कारण कमजोर मानसून रहने की जो संभावित स्थितियां हैं और जिसका प्रभाव अब दिखने भी लगा है, क्योंकि मानसून अभी काफी लेट चल रहा है, इसलिए ओवरऑल अभी तक 43% बरसात कम हुई है और आगे भी जो मौसम का अनुमान है कमजोर रहने की संभावना है। और इसका मतलब ये है कि हमारी खरीफ की फसल उस पर इसका असर पड़ सकता है, और इसलिए बिना किसी देरी के हम काफी दिनों से इन परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयारियां कर रहे थे। 315 जिले ऐसे होंगे जहां वर्षा कम रहने की संभावना।
0: लखनऊ में हाल ही में हुई आग की घटना के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य भर में कोचिंग संस्थानों का सर्वे और अग्नि सुरक्षा ऑडिट शुरू किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं कि सभी कोचिंग संस्थानों का सर्वे और अग्नि सुरक्षा ऑडिट जल्द से जल्द कराया जाए। उत्तर प्रदेश सरकार आज बेंगलुरु में उत्तर प्रदेश ग्लोबल ग्रोथ डायलॉग 2026 के तहत निवेशक रोड शो का आयोजन करेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। रोड शो में देश के प्रमुख उद्योगपति और निवेशक भाग लेंगे। कार्यक्रम में बुनियादी ढांचे, आईटी, ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर और विदेशी निवेश से जुड़े विषयों पर चर्चा होगी। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि जब तक ईरान समर्थित गुट आतंकी गतिविधियों में लिप्त है और हमले जारी रखे हुए हैं, तब तक पश्चिम एशिया में शांति और स्थिरता बहाल नहीं हो सकती। अबू धाबी में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि लेबनान में संघर्ष विराम को लेकर चर्चा ईरान के साथ चल रही वार्ता से अलग है। श्री रूबियो ने कहा कि उन्होंने अमरीका के उपराष्ट्रपति जेरी वेंस और लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ ओन से बात की है और अमरीकी अधिकारी लेबनान में पहल कर रहे हैं। श्री रूबियो ने कहा कि कोई भी कूटनीतिक सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि क्षेत्रीय सुरक्षा और ईरान समर्थित गुटों की गतिविधियों के मुद्दे पर कितनी प्रगति हो पाती है। पश्चिम एशिया में शांति बहाली को लेकर ईरान और अमरीका के बीच स्विट्जरलैंड में हाल ही में वार्ता हुई है। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तेज हवा चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिनों तक असम, मेघालय, आंतरिक कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। वहीं विभाग ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, केरलम, माहे, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र, पंजाब और उत्तराखंड में भी तेज हवा के साथ आज बारिश की संभावना जताई है। फीफा विश्व कप में पुर्तगाल ने बड़ी जीत हासिल की है। अमेरिका के ह्यूस्टन में खेले गए ग्रुप के मुकाबले में पुर्तगाल ने उज्बेकिस्तान को 5-0 से हरा दिया। स्टार खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 2 गोल दागकर टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई। उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashwani, the news read by Shagun Chopra. National security advisors and senior security officials from the BRICS nations called for stronger cooperation to address a widening range of global security challenges, including terrorism, cyber threats, during a high-level meeting hosted by India in the national capital. The 16th BRICS National Security Advisors meeting, held under India's chairship of the grouping, led by India's NSA Ajit Doval, brought together top security representatives from member countries to discuss both traditional and emerging threats confronting the international community. According to India's Ministry of External Affairs, the discussions focused on evolving security risks that increasingly transcend national borders.

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर। श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी में समय हुआ है सुबह की 6:10 और पूरे 15 सेकेंड। और आइए अब सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

0: श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।
0: श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम चिंतन, जिसके अंतर्गत आज आप सुनेंगे भगवती चरण वर्मा के विचार।
4: अपनी एक आत्मकथा कहीं न जाए का कहिए में भगवती चरण वर्मा ने लिखा है, मनुष्य की दो प्रमुख प्रक्रियाएं हैं, पाना और खोना। इस पाने और खोने को समर्थ व्यक्ति लेन और देन का नाम देते हैं, लेकिन अपनी विवशताओं और असमर्थताओं से घिरा मैंने इसे हमेशा पाने और खोने के रूप में ही जाना है। इस लेने और देने का सकारात्मक रूप अभिमान है, उस लेने और देने का नकारात्मक रूप कुंठा है। लेकिन पाने और खोने का न कोई सकारात्मक रूप है और न नकारात्मक रूप। मैं अभिमान और कुंठा दोनों से दूर रहा हूँ। इसका प्रथम सुस्पष्ट अनुभव उन्हें मई सन 1942 में हुआ। दरअसल वो इस दौरान अपनी पत्नी उमा को साथ लेकर राजनाथ गांव से लौट रहे थे। इलाहाबाद में उन्हें कानपुर के लिए गाड़ी बदलनी थी। लंबे सफर की थकान तो थी ही, सेकंड क्लास के जनाना वेटिंग रूम में पत्नी का सामान रखवा कर पत्नी से आराम कर लेने को कहा, खुद अकेले वेटिंग रूम के बाहर बैठे रहे।

0: उधर भोली पत्नी उमा ने अपना ट्रंक खोलकर कपड़े निकाले और बिना ताला लगाए बाथरूम चली गई। बाथरूम से लौटकर उन्होंने ट्रंक में ताला लगाया और शाम की गाड़ी से दोनों कानपुर के लिए रवाना हो गए। दूसरे या तीसरे दिन पता चला कि ट्रंक से उनके सारे गहने गायब हैं। करीब 150 तोले के गहने थे। पुलिस में रिपोर्ट लिखवा दी, लेकिन जो गया फिर मिलने के लिए नहीं गया था। लिहाजा भगवती बाबू ने स्वीकार कर लिया कि पाने के साथ साथ खोना भी उनके जीवन का अनिवार्य भाग है। इसलिए वो मानने लगे कि उनके जीवन में कभी किसी तरह की योजना जैसे रही ही नहीं। काल और नियति के हिलकोरों में बहते जाना ही जैसे उनके जीवन का क्रम रहा। अच्छी बात ये थी कि उनमें अपराजित आशावादिता बनी रही। वो घोर संकट को हंसते हंसते बर्दाश्त कर लेते थे और फिर एक नए उत्साह के साथ संघर्षरत हो जाते थे। उनका विचार था कि उनका जीवन नियतिवाद के दर्शन से अनुशासित था। इसका कारण संभवतः उनके बचपन की घटनाएं भी रही। एक घटना यूं रही, उनके पिता ने कच्चा मकान रहने के लिए किराए पर लिया था। जब भगवती बाबू महज 2 महीने के थे, एक दिन माँ ने उन्हें कोठरी के फर्श पर लिटा दिया और खुद रसोई में काम करने चली गई। खाना बनाकर जब वो लौटी तो ये देखकर हैरान रह गई कि बेटा सो रहा है और एक नागराज उस पर फन फैलाए बैठे हैं। उनके वहाँ पहुँचते ही नागराज ने बच्चे को माँ के संरक्षण में छोड़कर विदा ले ली। अब देखिए बचपन की इस घटना को बड़े होकर वो किस तरह देखते हैं। कोई सांप रेंगता हुआ मेरे पास से निकल गया होगा और माता राम ने इस घटना पर रंग चढ़ा दिया होगा। भगवती बाबू ने आत्मकथ्य के एक अध्याय में एक अनोखा प्रयोग किया है। यहाँ वो एक पौराणिक आख्यान को अपनी शैली में सामने रखते हुए अपने समय की एक बड़ी समस्या पर चिंतन करते हैं। कलियुग महोदय तेजी के साथ द्वापर युग को धकेलते हुए बढ़े जा रहे थे। द्वापर के अंतिम सम्राट राजा परीक्षित ने ये तय कर लिया कि कलियुग को आने ही न दिया जाए। बड़े जबरदस्त राजा महाराजा हुआ करते थे, तो उन्होंने कलियुग को खदेड़ा। अब आगे आगे कलियुग भाग रहा था अपनी जान बचाने के लिए और पीछे पीछे राजा परीक्षित कि हम तुम्हारी जान लेकर ही छोड़ेंगे। अंत में राजा परीक्षित ने कलियुग महोदय को दबोच लिया। बहुत रोया, गिड़गिड़ाया, बोला हमें तो आना ही है, विधि का विधान कुछ ऐसा ही है और आकर हमें अंत तक रहना भी है। तो राजन हमें ऐसा स्थान बता दीजिए जहां हम चैन से रहें, आपसे बिना संघर्ष किए हुए। बड़ी बुद्धि लड़ाई राजा परीक्षित ने और बुद्धि काम दे गई। बोले तुम स्वर्ण में रहो, एव वस्तु कहकर कलियुग महोदय स्वर्ण में प्रविष्ट हो गए। भगवती बाबू के अनुसार ये आख्यान इस संदर्भ में है कि कलियुग स्वर्ण में यानी कि सोने चांदी में जमकर बैठा हुआ है। इसीलिए कलियुग ने वित्त को इतनी महत्ता प्रदान की है।
1: श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम चिंतन। आइए अब सुनते हैं रामचरितमानस बालकांड भाग 96।

राजा जनक के धनुष यज्ञ में श्री राम के हाथों शिवजी का कठोर धनुष भंग हो चुका है। सारे ब्रह्मांड में जय जयकार की ध्वनि गूंज रही है। धीर बुद्धि वाले भाट, मागध और सूत लोग श्री राम की कीर्ति का गान कर रहे हैं। झांझ, मृदंग, शंख, शहनाई आदि मंगलवाद्यों का संगीत ढोल और नगाड़ों की ताल पर चारों ओर व्याप्त है। राजा जनक की चिंता दूर हो

चुकी है। सखियों समेत रानी अत्यंत हर्षित हैं। दृश्य कुछ ऐसा मानो सूखते धान के खेत को पानी मिल गया है, किंतु धनुष टूट जाने के फलस्वरूप प्रतिस्पर्धा में भाग लेने आए राजे महाराजे इस प्रकार श्रीहीन हो गए हैं जैसे सूर्य के उदय होते ही दीपक की शोभा समाप्त हो जाती है। उधर जनक नंदिनी सीता रूपी चातकी को मानो स्वाति नक्षत्र का वर्षा जल मिल गया है। कुल पुरोहित शतानंद जी की आज्ञा पाकर हाथों में जयमाल लिए सखियों के मंगलाचार गायन के साथ सीता बाल हंसनी की चाल से श्री राम का वरण करने चली। तन में संकोच है किंतु मन में है परम उत्साह। उन्होंने दोनों हाथों से जयमाल उठाई किंतु प्रेम विवश होने से वो पहनाई नहीं जाती। हाथों की शोभा ऐसी मानो डंडियों सहित दो कमल चंद्रमा को संकोच रूपी भय के साथ जयमाल पहनाने को उत्सुक हूं।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों और वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों की दिल्ली बैठक में आतंकवाद, साइबर खतरों और वैश्विक सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए सहयोग बढ़ाने पर बल दिया गया है। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 16वीं बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने की। बैठक में सदस्य देशों ने उभरती सुरक्षा चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। विदेश मंत्रालय के अनुसार ऐसे सुरक्षा खतरों पर खासतौर से चर्चा हुई जो अब वैश्विक रूप ले चुके हैं। प्रतिनिधियों ने ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन और आतंकवादी संगठनों द्वारा नई तकनीक के दुरुपयोग पर चर्चा की। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल और रूस के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार सर्गेई शोइगु के बीच नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक के क्रम में द्विपक्षीय वार्ता हुई है। वार्ता में दोनों पक्षों ने विभिन्न क्षेत्रों में आपसी सहयोग को मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। श्री डोभाल ने सुरक्षा से जुड़े नए खतरों और चुनौतियों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता पर जोर दिया।
1: हमें सुरक्षा से जुड़े नए खतरों और चुनौतियों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता है।

0: गैर पारंपरिक खतरे राष्ट्रीय सीमाओं से आगे निकल चुके हैं और पारंपरिक जवाबी कार्रवाई से निपटने के लिए उन्होंने अपने बचाव के तरीके भी विकसित कर लिए हैं। नई और क्रांतिकारी तकनीकें, आतंकवाद के छिपे हुए रूप और तेजी से डिजिटल होती दुनिया में साइबर खतरे, ये सभी हमारे लिए एक बड़ा खतरा है।
1: भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के हालात पर पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की टिप्पणियों की कड़ी आलोचना की है। भारत ने कहा है कि ये टिप्पणियां पाकिस्तान की नाकामियों को छिपाने और मानवाधिकारों के उल्लंघन से ध्यान भटकाने की कोशिश है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने संवाददाताओं से कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में विरोध प्रदर्शन इसलिए हो रहे हैं कि पाकिस्तान वहां के लोगों का दशकों से आर्थिक शोषण, बुनियादी अधिकारों का हनन और प्रशासनिक दमन कर रहा है। खाड़ी क्षेत्र में जारी टकराव पर श्री जायसवाल ने बताया कि भारतीय ध्वज वाले 10 जहाज अब भी फारस की खाड़ी में हैं। उन्होंने कहा कि 17 जून को अमरीका और ईरान के बीच सहमति पत्र पर हस्ताक्षर होने के बाद 11 जहाज होर्मुज जलडमरू मध्य से भारत पहुंचे हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि भारतीय ध्वज वाले बाकी जहाज भी जल्द ही होर्मुज जलडमरू मध्य को पार कर सकेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी के साथ टेलीफोन पर बात की। कतर के अमीर ने रविवार को रास लाफान शहर में हुए हादसे में भारतीय नागरिकों की मृत्यु पर दुख जताया और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री मोदी ने पीड़ित परिवारों के प्रति सहानुभूति व्यक्त करने के लिए धन्यवाद किया और घायलों को तुरंत चिकित्सकीय मदद पहुंचाने के लिए श्री थानी की सराहना की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने, विकास की गति को तेज करने और समावेशी विकास के लिए सभी पक्षों से और अधिक सहयोग आवश्यक है। उन्होंने ये बात कल नई दिल्ली में ग्लोबल कन्वर्जेंस फॉर ग्रोथ सम्मेलन को ऑनलाइन संबोधन में कही। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि मौजूदा दुनिया में समृद्धि और चुनौतियां तो साझा हैं, लेकिन संघर्षों और अनिश्चितता का असर विकासशील और पिछड़े देशों पर अधिक पड़ता है। उन्होंने कहा कि चुनौतियों से निपटने के लिए साझा वैश्विक कार्रवाई जरूरी है। सरकार ने कहा है कि एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित है और इसकी निरंतर निगरानी की जा रही है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि सोशल मीडिया पर इस बारे में चल रही खबरें भ्रामक और निराधार हैं। सरकार ने कहा है कि E20 पेट्रोल की शुरुआत के बाद से एथेनॉल मिश्रण के कारण इंजन की खराबी या वाहन में तकनीकी खराबी की कोई भी व्यापक शिकायत सामने नहीं आई है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में पुर्तगाल ने उज़्बेकिस्तान को 5-0 से हरा दिया है। अमरीका के ह्यूस्टन में हुए मुकाबले में क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 2 गोल दागे और इसके साथ ही रोनाल्डो 6 विश्व कप टूर्नामेंट में गोल करने वाले पहले खिलाड़ी हो गए हैं। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अनुजा कुमार। National security advisors and senior security officials from the BRIC nations called for stronger cooperation to address a widening range of global security challenges, including terrorism, cyber threats, during a high-level meeting hosted by India in the national capital. The 16th BRICS National Security Advisors meeting, held under India's chairship of the grouping led by India's NSA, Ajit Doval, brought together top security representatives from member countries to discuss both traditional and emerging threats confronting the international community. According to India's Ministry of External Affairs, the discussions focused on evolving security risks that increasingly transcend national borders. Prime Minister Narendra Modi received a telephone call from the Emir of Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani. He expressed condolences over the loss of lives of Indian nationals in the accident at Ras Laffan Industrial City in Qatar on Sunday and conveyed his wishes for the speedy recovery of those injured. Mr. Modi thanked the Qatari leader for his words of sympathy for the affected families and appreciated the prompt medical assistance extended to the injured. The two leaders also reaffirmed their commitment to ensuring the well-being

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज, डीआरएम 810 किलो हर्ट्ज पर। श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी में समय हुआ है सुबह की 7:10 और पूरी 15 सेकंड। आइए आप सुनते हैं कार्यक्रम संगीत का, जिसके अंतर्गत आज आप सुनेंगे शीतल चौहान द्वारा गाए भजन। सहयोगी कलाकार रहेंगे सरोद पर दानिश असलम, मासरी वादन विनय प्रसन्ना का, हारमोनियम पर नफीस खान और तबले पर संगत दी है पशुपतिनाथ मिश्रा ने।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम संगीतिका, जिसके अंतर्गत आपने सुना शीतल चौहान द्वारा गाए भजन। साथी कलाकार थे सरोद पर दानिश असलम, बांसुरी वादन था विनय प्रसन्ना का, हारमोनियम पर नफीस खान और तबले पर साथ दे रहे थे पशुपति नाथ मिश्रा। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, अब प्रस्तुत है कार्यक्रम गीतों भरी गुड मॉर्निंग।

जी हाँ दोस्तों, गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है और आपको बुला रही हूँ मैं, आपकी दोस्त आरती गौड़, इस सफर में जिसका नाम है गीतों भरी गुड मॉर्निंग। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपकी दोस्त आरती गौड़, आप सुन रहे हैं इंद्रप्रस्थ चैनल पर कार्यक्रम गीतों भरी गुड मॉर्निंग। दोस्तों, छुक छुक की आवाज़, लोहे की पटरियों की खनक, खिड़की से बाहर भागते हुए पेड़ पौधे, याद आया कुछ? आज हम बात कर रहे हैं ट्रेन की, जी हाँ, जिसमें आपने न जाने कितनी बार सफर किया होगा, जितनी बार उस गाड़ी ने आपको बुलाया होगा, कितनी बार आपके लिए सीटी बजाई होगी, भागते दौड़ते हुए आपने उसे पकड़ा होगा और उस ट्रेन के साथ बहुत सारी यादें भी आपने बनाई होंगी। तो बस आज उसके बारे में ही आपसे कुछ बातें करेंगे, लेकिन फिलहाल सुनेंगे इस खूबसूरत से गीत को।

दोस्तों, गाड़ी की बात हो, ट्रेन की बात हो और इस गीत की बात ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता भाई। छैया छैया किया था हमारे शाहरुख खान साहब ने खुद ट्रेन के ऊपर, साथ में थी मलाइका अरोड़ा। ये शानदार नजारा तो आप सबको याद आ गया होगा, लेकिन अब आपको याद दिलाते हैं कि ये जो ट्रेन है जिसमें सफर करके हम बड़े खुश होते हैं, अपनी जगह पर पहुंचते हैं जहां हमें जाना होता है, और आजकल तो ट्रेनें भी आधुनिक हो रखी हैं और बहुत जल्दी जल्दी हमको कहीं ना कहीं पहुंचा देती हैं जहां हमको पहुंचना होता है। पर ये सफर शुरू कैसे हुआ था भाई? ट्रेन ने भी तो कभी शुरुआत की होगी ना, कभी तो आई होगी वो हम सब के भारत में, और कभी तो आई होगी हम सब की जिंदगी में। तो चलिए आपको इतिहास के पन्नों के बीच ले चलते हैं और बताते हैं कि बात है 16 अप्रैल सन 1853 की। दोपहर के बज रहे थे 3:35। बोरी बंदर, जो मुंबई आज कहलाता है, उस वक्त कहा जाता था बॉम्बे, वहां से ठाणे जो स्टेशन था वहां से उसके बीच में देश की पहली पैसेंजर ट्रेन दौड़ी थी। वो सफर सिर्फ 34 किलोमीटर का था, जिसमें अगर डिब्बों की बात की जाए तो 14 डिब्बे थे और यात्रियों की बात की जाए तो 400 यात्री सवार थे। लेकिन जब उस भाप के इंजन ने सीटी मारी तो उस वक्त के हालात ऐसे थे कि जब लोगों ने ये सब देखा, जिनके लिए ये एकदम नया नजारा था, उनमें से काफी लोग घबरा गए, काफी लोग सोचने पर मजबूर हो गए। कुछ ने तो इसे लोहे का राक्षस तक कह दिया कि ये देखो धुआं उड़ रहा है और किस तरीके से भाग रही है। पहला जो सफर था वो 57 मिनट में पूरा हुआ था, बोरी बंदर से ठाणे तक का। और उस वक्त ये जो सफर था ये पहली बार पैसेंजर्स के लिए था, क्योंकि उसके पहले जो चलते थे उसमें माल ढुलाई का काम जो होता था वो किया जाता था, लेकिन पैसेंजर्स के लिए ये ट्रेन चलाई गई थी। और ये ट्रेन चलाई तो अंग्रेजों ने थी अपने मकसद को पूरा करने के लिए, क्योंकि वो तो चाहते थे कि पूरे देश पर उस तरीके से कब्जा कर लिया जाए और सब तरफ हमारा ही बोलबाला हो। कुछ हद तक वो कामयाब भी हुए, लेकिन बाद में यही ट्रेन बनी सहारा हम सब भारतीयों का, और आजादी के जो सफर है ना उसमें भी योगदान बहुत बड़ा था इसका। तो आगे भी हम इसके बारे में बात करते रहेंगे, लेकिन बीच बीच में छैया छैया भी तो जरूरी है ना।

तो दोस्तों मजा आ रहा है ना मेरे साथ इस ट्रेन के सफर को करके? कुछ यादें ताजा हो रही हैं आपकी तो जरूर बताइएगा। लेकिन फिलहाल मैं आपको बताती हूँ कि ट्रेन से जुड़ी बहुत सारी जो आइकॉनिक मोमेंट्स हैं वो हमारे सिनेमा को भी मिले हैं। वैसे जब ट्रेन चली थी तो उसमें धुआं बहुत निकला करता था जिससे प्रदूषण बहुत होता था, और जाहिर सी बात है उस समय के लिए वो बहुत बड़ी बात थी। लेकिन आगे चलकर भाप के जो इंजन थे उनका उस वक्त बहुत रौब था, लेकिन आगे चलकर जो कोयले की महक और छुक छुक करती जो आवाज थी उसने रफ्तार को कम किया, क्योंकि आगे आ गई थी इलेक्ट्रॉनिक। यस, समय बदला। 1925 में देश को मिली पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन। इसके बाद तो जैसे भारतीय रेल अपनी ही अलग दुनिया में सवार हो गई। देश के कोने कोने को आपस में जोड़ने वाली इस रेल ने न जाने कितने परिवारों को मिलवाया, कितनी नौकरियों की शुरुआत की, और देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ भी ये बन गई। तो रेल का जो सफर है ना वो सिर्फ एक सफर नहीं है, बल्कि इस सफर के अंदर बहुत सारी यादें हैं, जिसमें से कुछ हमारी हैं, कुछ आपकी हैं, और कुछ खुद

दोस्तों, ये जो गीत आप सुन रहे हैं ये है फिल्म आराधना से। किशोर कुमार ने इसे अपनी आवाज से सजाया है, लेकिन इस फिल्म की एक खास बात और भी है। ये जो फिल्म है इसमें राजेश खन्ना जो जीप में मजे से पीछा कर रही हैं हमारी प्यारी प्यारी शर्मिला टैगोर जी का, एक्चुअली में शूट के टाइम में वो वहाँ पे थी ही नहीं, क्योंकि ये शूटिंग साथ में होनी थी लेकिन वो कहीं और पर बिजी थी, क्योंकि उस टाइम में कई शेड्यूल में काम किया करते थे जो कलाकार। तो ये जो ट्रेन के सीन थे जिसमें शर्मिला जी बैठी हैं और वो शर्मा रही हैं और बहुत ही प्यार से बार बार नजरें चुरा चुरा के राजेश खन्ना जी को देख रही हैं, वो सीन बाद में शूट करके एक साथ जुड़े गए थे। और देखिए, ट्रेन का और रास्ते का जो सफर है उन्हें इस तरीके से मिलाया गया कि जैसे ये सफर अपने आप में एक रंगीन सफर बन गया, और इस सफर पे हम तब से लेकर आज तक चलते जा रहे हैं।

तो दोस्तों, आप जुड़े हैं आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल पे और मैं हूँ आपकी दोस्त आरती गौर। कार्यक्रम है गीतों भरी गुड मॉर्निंग, जिसमें आज हम निकले हैं ट्रेन के सफर पे। बहुत सारे खूबसूरत से गीत मैं आपके लिए ट्रेन से जुड़े हुए लेकर आई और उसके साथ ही आपको ये भी बताना चाहूंगी कि जरूर आपकी भी कोई ना कोई ट्रेन से जुड़ी याद इसके साथ चल रही होगी। चाय की चुस्कियां लेते हुए आप भी उन यादों में जरूर खो गए होंगे और आप बताना बिल्कुल मत भूलिएगा कि आपको कैसा लगा ट्रेन का ये सफर। फिलहाल बढ़ते हैं आगे इस गीत की तरफ।

जी हाँ, पल दो पल का साथ हमारा, पल दो पल के यार आने हैं। ट्रेन भी कुछ ऐसा ही कहती है कि जब उसमें आप बैठते हैं तो अनजाने अजनबियों से आप मिलते हैं। बहुत सारे लोग गलत भी होते हैं जो आपके लिए सही नहीं होते, लेकिन बहुत से लोगों से दोस्ताना कुछ इस तरह जुड़ जाता है कि सफर खत्म हो जाए लेकिन साथ खत्म नहीं होता। उनके साथ में रिश्ता जुड़ा रह जाता है, उनकी मीठी यादें अपने मन में बस के रह जाती हैं। ट्रेन भी तो हमें कुछ ऐसा सिखाती है कि आपके जीवन में हमेशा एक अलग पड़ाव आएगा, आप उस पर उतर जाएंगे लेकिन वो ट्रेन चलना नहीं छोड़ेगी। यानी कि वो आपको सिखाती है कि जिंदगी भी ऐसी ही है, जिंदगी का एक वक्त ऐसा आएगा जहां पर आपको उतरना होगा, लेकिन इससे जिंदगी रुकने वाली नहीं है, वो आगे बढ़ती रहेगी। फिलहाल स्टीम इंजन से शुरू हुआ ट्रेन का ये सफर आज वंदे भारत तक पहुंच चुका है। उससे भी आगे अभी बहुत करके जाना है, बहुत कुछ दिखाना है ट्रेन को, लेकिन ये मैं चाहूंगी कि ये पटरी पर यूं ही दौड़ती रहे और हमारी जिंदगी में इसी तरीके से खुशियां भरती रहे। फिलहाल आप सबसे विदा लेने का वक्त आ गया है, अपनी दोस्त आरती को इस सफर से दीजिए इजाजत, लेकिन आपका और मेरा साथ दोपहर

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीतों भरी गुड मॉर्निंग। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। आइए अब सुनते हैं समाचार प्रभात।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीष शर्मा। मुख्य समाचार। ब्रिक्स देशों ने आतंकवाद और साइबर खतरों समेत वैश्विक सुरक्षा की बढ़ती चुनौतियों से निपटने के लिए आपसी सहयोग को और मजबूत करने का आह्वान किया। कतर के अमीर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन पर रास लाफान गैस संयंत्र दुर्घटना में 12 भारतीयों की मृत्यु पर दुख व्यक्त किया। भारत ने पाक अधिकृत कश्मीर की स्थिति पर पाकिस्तान की टिप्पणी की कड़ी आलोचना की। कहा, पाकिस्तान मानवाधिकारों के हनन से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा है। भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते की समीक्षा के लिए नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक। और फीफा विश्व कप में पुर्तगाल ने उज्बेकिस्तान को 5-0 से हराया। इंग्लैंड और घाना के बीच मैच बगैर किसी गोल के बराबरी पर छूटा। और अब समाचार विस्तार से। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों और वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों की दिल्ली बैठक में आतंकवाद, साइबर खतरों और वैश्विक सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए सहयोग बढ़ाने पर बल दिया गया है। बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने की। बैठक में सदस्य देशों ने उभरती सुरक्षा चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। विदेश मंत्रालय के अनुसार ऐसे सुरक्षा खतरों पर खास तौर से चर्चा हुई जो अब वैश्विक रूप ले चुके हैं। प्रतिनिधियों ने ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन और आतंकवादी संगठनों द्वारा नई तकनीक के दुरुपयोग पर भी चर्चा की। बैठक में आतंकवाद रोधी तथा सूचना और संचार तकनीक के उपयोग में सुरक्षा संबंधी कार्य समूहों के कार्यों और उनके परिणामों की भी समीक्षा की गई। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों ने हर तरह

0: करके आतंकवाद के खिलाफ साझा कार्रवाई की प्रतिबद्धता दोहराई। बैठक के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और रूस के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार सर्गेई शोइगु के बीच नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक के क्रम में द्विपक्षीय वार्ता हुई है। इस वार्ता में दोनों पक्षों ने विभिन्न क्षेत्रों में आपसी सहयोग को मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। श्री डोभाल ने सुरक्षा से जुड़े नए खतरों और चुनौतियों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता पर बल दिया।
1: We need to be cognizant of the new security threats and challenges.
2: हमें सुरक्षा से जुड़े नए खतरों और चुनौतियों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता है। गैर पारंपरिक खतरे राष्ट्रीय सीमाओं से आगे निकल चुके हैं और पारंपरिक जवाबी कार्रवाई से निपटने के लिए उन्होंने अपने बचाव के तरीके भी विकसित कर लिए हैं। नई और क्रांतिकारी तकनीकें, आतंकवाद के छिपे हुए रूप और तेजी से डिजिटल होती दुनिया में साइबर खतरे, ये सभी हमारे लिए एक बड़ा खतरा है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी के साथ टेलीफोन पर बात की। कतर के अमीर ने रविवार को रास लाफान शहर में हुए हादसे में भारतीय नागरिकों की मृत्यु पर दुख जताया और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री मोदी ने पीड़ित परिवारों के प्रति सहानुभूति व्यक्त करने के लिए धन्यवाद दिया और घायलों को तुरंत चिकित्सकीय मदद पहुंचाने के लिए श्री थानी की सराहना की। प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम एशिया में शांति के प्रयासों में कतर की भूमिका की भी सराहना की। उन्होंने आशा व्यक्त की कि इलाके में शांति और स्थिरता बहाल होगी। इस बीच विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कतर में हादसे पर बताया कि दुर्घटना में मृतकों के शव वापस लाने के प्रयास जारी हैं।
3: रास लाफान परियोजना में जब वहां एक विस्फोट हुआ, उस विस्फोट में 12 भारतीय नागरिक मारे गए हैं। इसके अलावा कुल 66 लोग ऐसे हैं जो घायल हुए हैं, वो लोग सब लोग सुरक्षित हैं और हॉस्पिटल में उनकी मेडिकल ट्रीटमेंट हो रही है। ये 12 लोग के बारे में हम लोग कतर में वहां के सरकार के साथ और इनके परिवारजनों के साथ उनसे बातचीत हो रही है हमारी।
0: भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के हालात पर पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की टिप्पणियों की कड़ी आलोचना की है। भारत ने कहा है कि ये टिप्पणियां पाकिस्तान की नाकामियों को छिपाने और मानवाधिकारों के उल्लंघन से ध्यान भटकाने की कोशिश है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने संवाददाताओं से कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में विरोध प्रदर्शन इसलिए हो रहे हैं कि पाकिस्तान वहां के लोगों का दशकों से आर्थिक शोषण, बुनियादी अधिकारों का हनन और प्रशासनिक दमन कर रहा है। उन्होंने बताया कि पाकिस्तानी प्रशासन ने निहत्थे नागरिकों के साथ बर्बर व्यवहार किया, जरूरी सामान और दवाओं की आपूर्ति रोक दी गई है और इंटरनेट बंद है। श्री जायसवाल ने बांग्लादेश में देवी देवताओं की मूर्तियों के अपमान की खबरों पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी है।
3: हम लोगों ने देखा कि बांग्लादेश में से कुछ खबर आई कि वहां पर हिंदू भगवान के तस्वीरों के साथ अपवित्र हरकतें हुई, जिसके कारण वहां पर विरोध प्रदर्शन हुआ है। और हम लोग क्या ये उम्मीद है कि बांग्लादेश की सरकार जो वहां पर चरमपंथी लोग हैं उस पर अंकुश लगाएगी और जो वहां पर अल्पसंख्यक समुदाय के लोग रह रहे हैं उसकी सुरक्षा को गारंटी करेगी।
0: खाड़ी क्षेत्र में जारी टकराव पर श्री जायसवाल ने बताया कि भारतीय ध्वज वाले 10 जहाज अब भी फारस की खाड़ी में हैं। उन्होंने कहा कि 17 जून को अमरीका और ईरान के बीच सहमति पत्र पर हस्ताक्षर होने के बाद 11 जहाज होर्मुज जलडमरू मध्य से भारत पहुंचे हैं।
3: 11 जहाज जो भारत की तरफ आ रहे हैं, इसमें से 3 भारतीय जहाज हैं जो कि क्रूड ऑयल टैंकर्स हैं। इनमें 2,85,000 मेट्रिक टन क्रूड ऑयल है। इसके अलावा एक विदेशी पताका के साथ एक एलपीजी टैंकर जो भारत की तरफ आ रहा है और एक विदेशी पताका के साथ फर्टिलाइजर कार्गो के साथ वो आ रहे हैं। और जो अन्य 10 हमारे जहाज हैं वो भी हमारी उम्मीद है कि जल्द ही वो हॉर्मुज पार करके भारत की तरफ आ जाएंगे।
0: अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन होर्मुज जलडमरू मध्य में फंसे 11,000 से ज्यादा नागरिकों को निकालेगा। संगठन के महासचिव आर्सेनियो डोमिंग्वेज ने कहा कि इस अभियान में मदद के लिए जरूरी सुरक्षा की गारंटी ली गई है। इस अभियान में ईरान, ओमान और क्षेत्र के अन्य देशों और समुद्री उद्योग जगत का सहयोग लिया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र के जिनेवा कार्यालय में ईरान के राजदूत अली बहरीनी ने कहा कि होर्मुज जलडमरू मध्य व्यावसायिक जहाजों के लिए बिना किसी टोल के पूरी तरह खुला है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए

0: जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत और अमरीका ने प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते को आगे बढ़ाने के लिए उच्च स्तरीय वार्ता शुरू की है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में अमरीका के व्यापार प्रतिनिधि जैमिसन ग्रीर और भारत में अमरीका के राजदूत सर्जियो गोर से मुलाकात की। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: दोनों पक्ष 24 जुलाई से पहले एक अंतरिम व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इसी तारीख को व्यापारिक साझेदारों से होने वाले आयात पर अमेरिका का अस्थायी 10% टैरिफ समाप्त होने वाला है। 20 फरवरी को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने व्यापक टैरिफ को रद्द कर दिया था। इसके बाद अमेरिकी प्रशासन ने सभी देशों पर 24 फरवरी से 150 दिनों के लिए 10% का अस्थायी टैरिफ लगाया था। द्विपक्षीय व्यापार तनाव कम होने के बाद अमेरिका ने ज्यादातर भारतीय सामानों पर जवाबी टैरिफ को घटाकर 18% कर दिया और पहले से लगे 25% पेनल्टी टैरिफ को हटा दिया। भारत ने भी अमेरिका के कई औद्योगिक और कृषि उत्पादों पर टैरिफ कम करने या समाप्त करने का प्रस्ताव दिया था, जिनमें सूखे डिस्टिलर अनाज, पशुओं के चारे के लिए लाल ज्वार, ट्री नट्स, फल, सोयाबीन तेल, वाइन और स्पिरिट्स आदि शामिल हैं। रिशु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने, विकास की गति को तेज करने और समावेशी विकास के लिए सभी पक्षों से और अधिक सहयोग आवश्यक है। उन्होंने ये बात कल नई दिल्ली में ग्लोबल कन्वर्जेंस फॉर ग्रोथ सम्मेलन को ऑनलाइन संबोधन में कही। एक रिपोर्ट।
2: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि मौजूदा दुनिया में समृद्धि और चुनौतियां तो साझा हैं, लेकिन संघर्षों और अनिश्चितता का असर विकासशील और पिछड़े देशों पर अधिक पड़ता है। उन्होंने कहा कि इन चुनौतियों से निपटने के लिए साझा वैश्विक कार्रवाई जरूरी है। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि सभी देशों की घरेलू जरूरतें अलग अलग होती हैं और लगातार बने रहने वाले वैश्विक असंतुलन पर ध्यान दिया जाना चाहिए। वित्त मंत्री ने कहा कि भारत की विकास दर मुख्य रूप से घरेलू मांग के कारण है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ रही अर्थव्यवस्था है और मध्यम अवधि में इसके सकल घरेलू उत्पाद की विकास दर लगभग 7% रहने का अनुमान है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की अध्यक्षता में आयोजित इस सम्मेलन में विकसित और उभरती अर्थव्यवस्था वाले देशों ने हिस्सा लिया। इनमें भारत, ब्राजील, चीन, केन्या, दक्षिण कोरिया जैसे G7 देशों और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रतिनिधि शामिल थे। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सरकार अल नीनो के संभावित दुष्प्रभाव से निपटने के लिए खरीफ फसल के लिए एहतियाती तैयारियां कर रही है। श्री चौहान ने नई दिल्ली में कहा कि जुलाई में भी मॉनसून के कमजोर रहने की आशंका है।
3: ओवरऑल अभी तक 43% बरसात कम हुई है हमारी खरीफ की फसल, उस पर इसका असर पड़ सकता है। 315 जिले ऐसे होंगे जहां वर्षा कम रहने की संभावना है। इनमें से 111 जिले हमारी उच्च प्राथमिकता वाले जिले होंगे, क्योंकि इनमें सिंचाई 25% से कम है। मध्यम प्राथमिकता वाले, मतलब जहां 25-50% सिंचाई की व्यवस्थाएं हैं, ऐसे 76 जिले हैं। और 128 जिले निम्न प्राथमिकता वाले, इसलिए वहां सिंचाई के लिए डैम और बाकी चीजों की व्यवस्था है।
0: सरकार ने कहा है कि एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित है और इसकी निरंतर निगरानी की जा रही है। निगरानी में तेल कंपनियां, वाहन निर्माता, ईंधन परीक्षण एजेंसियां और अन्य पक्ष शामिल हैं। सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि सोशल मीडिया पर इस बारे में चल रही खबरें भ्रामक हैं, निराधार हैं। E20 पेट्रोल की शुरुआत के बाद से एथेनॉल मिश्रण के कारण इंजन की खराबी या वाहन में किसी तकनीकी खराबी की कोई व्यापक शिकायत सामने नहीं आई है। लखनऊ में कोचिंग सेंटर में आग लगने की घटना को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के कोचिंग संस्थानों के नियमन को मजबूत करने और अवैध कोचिंग सेंटर्स के विरुद्ध अभियान की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि पूरे राज्य में आग से बचाव के उपायों की जांच मिशन मोड में की जाएगी। फीफा फुटबॉल विश्व कप में ग्रुप के में पुर्तगाल ने उज्बेकिस्तान को 5-0 से हरा दिया है। पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 2 गोल दागे और इसके साथ ही रोनाल्डो 6 विश्व कप टूर्नामेंट में गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया।

0: ग्रुप एल के एक अन्य मैच में कनाडा के टोरंटो में क्रोएशिया और पनामा के बीच मैच चल रहा है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
1: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित हिंदी समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठों पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों से पद्म सम्मान ग्रहण करने वाली हस्तियों की तस्वीरें और होर्मुज को पार कर भारत की ओर आगे बढ़ रहे 11 ईंधन वाहक जहाजों की खबरें सबसे ऊपर छाई हैं। दैनिक भास्कर ने CUET परीक्षा परिणाम में सर्वाधिक अंक पाने वाली देवीना गहलोत का चित्र प्रकाशित करते हुए खबर को शीर्षक दिया है, 100% वाले 20% बढ़े, प्रीमियम संस्थानों में दाखिला कठिन होगा। नवभारत टाइम्स ने परीक्षा में सफल रहे कुछ छात्रों के चित्र के साथ इस समाचार को शीर्षक दिया है, दिल्ली विश्वविद्यालय के दाखिले में CUET के बाद भी 100% की रेस। देशबंधु ने मौसम के मिजाज को पहले पन्ने पर जगह दी है, खबर को शीर्षक दिया है, दिल्ली NCR में मौसम ने ली करवट और 12 दिन की देरी से मुंबई पहुंचा मानसून, जबकि दैनिक भास्कर का कहना है मानसून 3 दिन देरी से मुंबई पहुंचा। पत्र ने दिल्ली NCR में अभी हफ्ते भर और गर्मी और उमस बने रहने का अनुमान प्रकाशित किया है। जनसत्ता ने संकट के बीच शीर्षक से प्रकाशित संपादकीय में कहा है कि पश्चिम एशिया में हालात पूरी तरह सामान्य नहीं हो पाने की वजह से देश में बढ़ती महंगाई के बीच अब इसका असर औद्योगिक उत्पादन पर भी दिखने लगा है। पत्र की राय में मौजूदा संकट के लिए भले ही वैश्विक परिस्थितियां जिम्मेदार हो, लेकिन इसके समाधान के लिए कारगर कदम उठाने के बजाय इसका बोझ जनता पर डाल देने को उचित नहीं ठहराया जा सकता। वहीं राजस्थान पत्रिका ने कृषि क्षेत्र में भारत की उपलब्धि को प्रमुखता से प्रकाशित किया है, वैज्ञानिकों की 7 साल की मेहनत रंग लाई, सुपर फूड ग्रेन ओट्स में भारत बन रहा आत्मनिर्भर।
0: और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। ब्रिक्स देशों ने आतंकवाद और साइबर खतरों समेत वैश्विक सुरक्षा की बढ़ती चुनौतियों से निपटने के लिए आपसी सहयोग को और मजबूत करने का आह्वान किया। कतर के अमीर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन पर रास लाफान गैस संयंत्र दुर्घटना में 12 भारतीयों की मृत्यु पर दुख व्यक्त किया। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की स्थिति पर पाकिस्तान की टिप्पणी की कड़ी आलोचना की, कहा पाकिस्तान मानवाधिकारों के हनन से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा है। और फीफा विश्व कप में पुर्तगाल ने उज्बेकिस्तान को 5-0 से हराया। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अनुजा कुमार। द हेडलाइंस: BRICS nations call for stronger cooperation to address widening range of global security challenges, including terrorism and cyber threats. Prime Minister Narendra Modi gets condolence call from Qatar's Emir after 12 Indians killed in Ras Laffan gas plant blast. India strongly criticizes Pakistan's remarks over situation in POK, says Islamabad deflects attention away from its human rights abuses. India and United States open high-level trade talks in New Delhi to recalibrate proposed bilateral trade agreement. And in FIFA World Cup, Portugal thrash Uzbekistan 5-0, match between England and Ghana draw goalless. And now the news in detail. National security advisers and senior security officials from the BRICS nations called for stronger cooperation to address a widening range of global security challenges, including terrorism and cyber threats, during a high-level meeting hosted by India in the national capital. The 16th BRICS National Security Advisers meeting, held under India's chairship of the grouping led by India's NSA, Ajit Doval, brought together top security representatives from member countries to discuss both traditional and emerging threats confronting the international community. According to India's Ministry of External Affairs, the discussions focused on evolving security risks that increasingly transcend national borders. Delegates exchanged views on issues ranging from energy and food security to climate-related instability and the misuse of emerging technologies by terrorist organizations. Speaking at the meeting, National Security Advisor Ajit Doval stressed the need for collective

0: states the Tribune. An editorial in the Pioneer writes on how e-governance is transforming Grameen Bharat. With nearly 900 million people living in rural India, the effectiveness of our Panchayati Raj institutions will shape the trajectory of the nation's development, as it is the bedrock upon which a Viksit Bharat will be built. India and US rework trade deal amid tariff changes as fresh talks begin after Modi-Trump G7 meet, notes the Asian Age. The Statesman reports about a record surge in Vaishno Devi pilgrims as the number crosses the 50 lakh mark well before the year reaches its halfway point. International Maritime Organization announces plan to evacuate vessels stuck in Persian Gulf due to the war in West Asia, writes the Hindu. And finally, The Economic Times writes about Gujarat government focusing on Ranshala to educate children of salt pan workers by converting unusable buses into classrooms equipped with smart TVs and TV connectivity dedicated to educational channels. And with that, it's back to you, Anuja.
1: Thank you, Shagun. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. BRICS nations call for stronger cooperation to address widening range of global security challenges, including terrorism and cyber threats. Prime Minister Narendra Modi gets condolence call from Qatar's Emir after 12 Indians killed in Ras Laffan gas plant blast. India strongly criticizes Pakistan's remarks over situation in POK, says Islamabad deflects attention away from its human rights abuses. India and United States open high-level trade talks in New Delhi to recalibrate proposed bilateral trade agreement. And in FIFA World Cup, Portugal thrash Uzbekistan 5-0, match between England and Ghana draw goalless. For details of these stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and News on EIR app. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं असदुल्ला। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। ब्रिक्स मुल्कों ने दहशतगर्दी और साइबर खतरों समेत आलमी सलामती को दरपेश बढ़ते हुए बहुत से खतरात से निमटने के लिए मजबूत तर तआवुन के लिए कहा है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी को रास लफान गैस प्लांट धमाके में 12 भारतीयों की हलाकत पर कतर के अमीर की तरफ से ताजियती कॉल मौसूल हुई। भारत ने पाकिस्तान के जेर कब्जा कश्मीर के बारे में पाकिस्तान की रायजनी की सख्त मजम्मत की है। उसने कहा है कि पाकिस्तान इंसानी हकूक की पामालियों से तवज्जो हटाने के लिए ये सब कुछ कर रहा है। भारत और अमेरिका ने मुजवजा दो तरफा तजारती माहदे को ताज़ा शक्ल देने के लिए नई दिल्ली में आला सतह की तजारती बातचीत शुरू की। और फीफा आलमी कप में पुर्तगाल ने उज्बेकिस्तान को 5-0 से हराया। इंग्लैंड और घाना के दरमियान मैच बराबरी पर खत्म हुआ। अब खबरें तफसील से। ब्रिक्स मुल्कों के कौमी सलामती के मुशीरों और सीनियर सिक्योरिटी अफसरान ने दहशतगर्दी और साइबर खतरा समेत सलामती को दरपेश बहुत से आलमी चैलेंजों से निमटने के लिए मजबूत तर तआवुन के लिए कहा है। भारत की तरफ से ये आवाज कौमी राजधानी में मुनाकिदा एक आला सतह की मीटिंग में उठाई गई। भारत के कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल की क्यादत में इस ग्रुप की भारत की सदर नशीनी के तहत मुनाकिदा ब्रिक्स मुल्कों के कौमी सलामती के मुशीरों की 16वीं मीटिंग में रुकन मुल्कों के सलामती के सरकर्दा नुमाइंदे यकजा हुए, जिसका मकसद बैनुल अक्वामी बिरादरी को दरपेश रिवायती और उभरते हुए खतरात से निमटना था। भारत की वजारत खारजा के मुताबिक बातचीत में सलामती को दरपेश उभरते हुए उन खतरात पर तवज्जो मरकूज की गई जो कौमी सरहदों से बाहर भी लाहक होते जा रहे हैं। मंदुबीन ने तवानाई और सबके लिए खुराक की फराहमी से लेकर आबो हवा से मुतालिक अदम इस्तेहकाम और दहशतगर्द तंजीमों के हाथों उभरती हुई टेक्नोलॉजीज के बेजा इस्तेमाल तक के मामलात पर तबादले ख्याल किया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और कतर के अमीर शेख तमीम बिन हम्माद अस्सानी ने मुख्तलिफ शोबों में बाहमी तआवुन को मजीद मुस्तहकम बनाने के अपने अज़्म को दोहराया है और एक दूसरे के साथ करीबी राबता रखने से इत्तेफाक किया है। दोनों रहनुमाओं ने अपने शहरियों की खुशहाली और हिफाजत को यकीनी बनाने के अज़्म को भी दोहराया और एक दूसरे की यगानगत

0: और मदद के अपने अहद को ताजा किया। जनाब मोदी ने कल एक टेलीफोन बातचीत के दौरान कतर के अमीर से इतवार को कतर के रास लफान सनती शहर में एक हादसे के दौरान भारतीय बाशिंदों की हलाकत पर ताजियत का इजहार किया और जख्मियों की जल्द सेहतियाबी की दुआ की। जनाब मोदी ने मुतासिरा कुनबों के तई हमदर्दी जाहिर करने पर कतर के रहनुमा का शुक्रिया अदा किया और जख्मियों के जल्द इलाज के लिए फौरी मदद फराहम करने को सराहा। मगरबी एशिया की सूरत हाल पर बातचीत के दौरान वजीर आजम मोदी ने अमन के लिए जारी कोशिशों में कतर के तामीरी रोल की तारीफ की।
1: रास लफान परियोजना में जो वहां एक विस्फोट हुआ, उस विस्फोट में 12 भारतीय नागरिक मारे गए हैं। इसके अलावा कुल 66 लोग ऐसे हैं जो घायल हुए हैं, वो लोग सब लोग सुरक्षित हैं और हॉस्पिटल में उनकी मेडिकल ट्रीटमेंट हो रही है। ये 12 लोग के बारे में हम लोग कतर में वहां के सरकार के साथ और इनके परिवारजनों के साथ उनसे बातचीत हो रही है हमारी।
0: भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की सूरत हाल पर पाकिस्तान के वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की रायजनी की सख्ती से मजम्मत की है। उन्होंने कहा है कि यह रायजनी अपनी नाकामियों को छुपाने और इंसानी हुकूक की पामाली से तवज्जो हटाने की पड़ोसी मुल्क की नाकाम कोशिशें हैं। नई दिल्ली में नामानिगारों से बात करते हुए वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत इन फर्जी दावों को उतने ही वाजह तौर पर मुस्तरद करता है जिसके ये हकदार हैं। भारत और मुत्तहिदा अरब इमारात के दरमियान दिफा की शराकत दारी पर तर्जुमान ने कहा कि हालिया बरसों में इमारात के साथ भारत के ताल्लुकात में बड़ा इजाफा हुआ है जिसमें दिफा से मुताल्लिक शराकत दारी का एक अहम रोल है। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने मुस्तहकम मईशतों की तामीर करने, मुस्तकिल तरक्की की रफ्तार में तेजी लाने और सबकी शमूलियत वाली तरक्की को यकीनी बनाने के लिए कसीर मुल्की मजबूत तरतआवुन के लिए कहा है। कल नई दिल्ली में तरक्की से मुतालिक सरबराह कॉन्फ्रेंस के आलमी इज्तिमा से वर्चुअल वसीले से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि बाहम मरबूत इस दुनिया में खुशहाली और चैलेंजेस मुश्तरक हैं, लिहाजा तनाज़ात और गैर यकीनी के नताइज तरक्की पजीर मुल्कों और आलमी जुनूब पर गैर मुतनासिब तरीके से मुरतब होते हैं। मोहतरमा सीतारमन ने जोर देकर कहा कि इन चैलेंजों से निमटने के लिए मरबूत आलमी कार्रवाई लाजिम है। भारत की इक्तिसादी तरक्की का खास तौर पर जिक्र करते हुए वजीर खजाना ने कहा कि मुल्क की तरक्की बुनियादी तौर पर घरेलू मांग पर मबनी है जिसे आमतौर पर मार्केट की तय करदा शरह मुबादला की मदद हासिल है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेज रफ्तार तरक्की करती हुई बड़ी मईशतों में शामिल है जिसकी घरेलू मजमूई पैदावार की शरह तरक्की के बारे में पेशगोई की गई है कि ये औसत मुद्दत में तकरीबन 7% रहेगी जो काफी ज्यादा है। इस समिट में जिसकी सदारत फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रों ने की, आगे बढ़ती हुई और उभरती हुई मईशतों के रहनुमा यकजा हुए जिनमें भारत, ब्राजील, चीन, केनिया, जुनूबी कोरिया जैसे G7 ममालिक और बैनुल अक्वामी मालियाती फंड के रहनुमा शामिल हैं। नीति आयोग के नायब चेयरमैन डॉ अशोक कुमार लहरी ने कहा है कि आखिरी सेमाही में भारत की मजमूई तिजारत में 5.4% की शरह से तरक्की हुई है। उन्होंने नई दिल्ली में ट्रेड वॉच क्वार्टरली रिपोर्ट के ताजा एडिशन के इजरा के दौरान ये बात कही। डॉक्टर लहरी ने मजीद कहा कि आखिरी सेमाही में भारत की बरामदात 1.84 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गई और दरामदात में 6.5% का इजाफा हुआ है। भारत के अहम मादनियात से मुतालिक मिशन में खातिरखा तेजी आई है। कानों की वजारत ने उमूमी तौर पर अहम 56 और दिफाई एतबार से अहम धात ब्लॉकों और दरियाफ्त करने के लाइसेंस वाले 11 ब्लॉकों की कामयाब नीलामी की है। वजारत ने 10 अहम और दिफाई एतबार से अहम कान ब्लॉकों को 7वें मरहले की नीलामी के तहत कामयाबी के साथ नीलाम किया है। नीलाम किए गए इस तरह के ब्लॉकों की कुल तादाद 56 हो गई है जबकि अभी तक 88 ब्लॉकों की पेशकश की गई है। नीलामी की ये शरह 63% है। वजारत ने बताया कि ऐसा पहली बार है कि मरकज ने गुजरात, उत्तराखंड और तेलंगाना में अहम मादनियात के ब्लॉकों की नीलामी की है। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। भारत और अमेरिका ने एक मुजवजा दो तरफा तिजारती माहिदे को जदीद और कतई शक्ल देने के लिए आला सतह की तिजारती बातचीत शुरू की है। ये बातचीत अमेरिका की महसूल से मुतालिक पॉलिसी में तब्दीली की वजह से इस साल के शुरू में तय किए गए एक फ्रेमवर्क में रुकावट की वजह से की जा रही है। तिजारत और सनत के मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में अमेरिका के तिजारत

0: के नुमाइंदे जेमिसन ग्रीर और भारत में अमेरिका के सफीर सर्गियो गौर से मुलाकात की। एक रिपोर्ट।
1: दोनों मुल्कों का मकसद 24 जुलाई से पहले एक उबूरी तिजारती माहदे की तकमील करना है, जब तिजारती शराकत दारों से दरामद किए जाने वाले सामान पर अमेरिका के आर्जी 10% महसूल की मुद्दत खत्म हो जाएगी। 20 फरवरी को अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने इन बेहद महसूलात को खत्म करने का हुक्म दिया था। इसकी वजह से अमरीकी इंतजामिया को सभी मुल्कों पर तजारती कानून की 122वीं शिक के तहत 150 दिन के लिए 10% आर्जी महसूल लागू करना पड़ा था। यह सिलसिला 24 फरवरी को शुरू हुआ था जो 24 जुलाई को खत्म हो जाएगा। दोतरफा तजारती कशीदगी में कमी आ जाने के बाद अब अमरीका में ज्यादातर भारतीय अशिया पर दोतरफा तजारती महसूल में कमी करके इसे 18% कर दिया है और इससे पहले के 25% महसूल को खत्म कर दिया है। भारत ने भी बहुत सी अमरीकी सनती और जरई अशिया पर महसूलात में कमी करने या इन्हें हटाने की तजवीज पेश की है। न्यूज डेस्क की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असलम बेग।
0: इससे पहले जनाब गोयल ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वो भारत अमेरिका दो तरफा तिजारती माहदे पर नतीजा खेज बातचीत के बारे में पुरउम्मीद हैं। इस दौरान जनाब गोर ने भी सोशल मीडिया पर एक पैगाम भेजा है। उन्होंने कहा कि भारत और अमेरिका एक ऐसे दो तरफा मजबूत तिजारती माहदे को कतई शक्ल देने की जानिब फैसला कुन तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, जिससे दोनों मुल्कों के लिए नए इक्तिसादी मौके पैदा होंगे और खासतौर पर अमरीका भारत इक्तिसादी शराकतदारी में गहराई पैदा होगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि बकौल उसके एक तारीखी अमन माहदे के हिस्से के तौर पर ईरान इस बात पर रजामंद हो गया है कि वो कभी न्यूक्लियाई हथियार हासिल नहीं करेगा। इस माहदे के सबब अब नए हुरमुज में कशीदगी का खात्मा हो गया है। पेंसिल्वेनिया के शहर मेकनगी में मैन ट्रक्स मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री में जनाब ट्रंप ने कहा कि ईरान को न्यूक्लियाई हथियार हासिल करने से रोकना इस्लामी जमहूरिया की जानिब उसकी इंतजामिया की पॉलिसी का असल मकसद है। जनाब ट्रंप ने ये बात जोर देकर कही कि ईरान की फौजी सलाहियत में शदीद कमजोरी आ गई है। उन्होंने कहा कि ईरान की मईशत और दिफा के शोबे को भी जबरदस्त नुकसान पहुंचा है। अमरीका के वजीर खारजा मार्को रूबियो ने कहा है कि जब तक मगरबी एशिया खित्ते में ईरान की हिमायत याफ्ता ग्रुप हमले जारी रखेंगे और मिलिटेंट सरगर्मियों में मसरूफ रहेंगे, पायदार अमन इस्तेहकाम कायम नहीं हो सकता है। खलीज फारस के खित्ते के अपने दौरे के हिस्से के तौर पर अबू ज़हबी पहुंचने पर जनाब रूबियो ने जोर दिया कि लेबनान में जंगबंदी पर बातचीत ईरान के साथ जारी मुज़ाकरात से अलग है। उन्होंने मजीद कहा कि उन्होंने हाल ही में लेबनान के सदर जोसेफ ओन और अमरीका के नायब सदर जेडी वेन से बात की है और ये कि अमरीकी अहलकार इस वक्त लेबनान में मसरूफ अमल हैं। समंदर से मुतालिक बैन अल-अक़वामी तंजीम आईएमओ ने उन 11,000 से ज्यादा जहाजों को निकालने के मंसूबे का ऐलान किया है जो आबनाए हुरमुज में अब भी फंसे हुए हैं। आईएमओ के सेक्रेटरी जनरल अरसेनियो डोमिगेज ने एक बयान में कहा है कि उनकी तंजीम ने इन लोगों को निकालने की कार्रवाई में मदद के मकसद से हिफाजत के लिए दरकार जमानतों और महफूज जहाज रानी की तौसीख शुदा शराइत की यकीन दहानी कर ली है। तमिलनाडु की हुकूमत ने वेट्री तमजीगम विजन दस्तावेज को मंजूरी दी है। इस दस्तावेज की अहम पहल मैटरनल अंकल्स गोल्ड रिंग स्कीम है। इस स्कीम के तहत तमिलनाडु में मुस्तकिल तौर पर रिहाइश पजीर खानदानों के नवजायदा बच्चों को 1 ग्राम सोने की रिंग पेश की जाएगी, बशर्ते कि बच्चे की पैदाइश सरकारी अस्पताल में हुई हो। भारतीय मौसमियात महकमे IMD ने कहा है कि अगले 2 दिन के दौरान जुनूब मगरबी मानसून की पेशकदमी से महाराष्ट्र के, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में मौसम के साजगार रहने का इम्कान है। महकमे ने साहिली कर्नाटक, कोंकण और गोवा में अगले 3 दिन के दरमियान शदीद से इंतहाई शदीद बारिश की पेशगोई की है। फीफा आलमी कप 2026 में पुर्तगाल ने अमेरिका के शहर ह्यूस्टन में ग्रुप के मुकाबले में उज्बेकिस्तान को 5-0 से हरा दिया। 41 साल क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 2 गोल करके पुर्तगाल को उज्बेकिस्तान के खिलाफ 5-0 से जीत दिलाने में मदद की। रोनाल्डो ऐसे पहले खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने 6 अलग-अलग आलमी कप टूर्नामेंट में गोल किए हैं। उन्हें मैच का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया है। फॉक्सब्रोक के बोस्टन स्टेडियम में इंग्लैंड और घाना के दरमियान खेला गया ग्रुप एल में किसी गोल के बगैर बराबरी पर खत्म हुआ। ये थी खबरें और अब अखबारात के आईने के साथ हैं फहीम अहमद।
2: शुक्रिया असद। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी शह सुर्खी बनाया है। रोजनामा इनकलाब और प्रताप समेत आज के सभी अखबारों ने आईएस

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम स्वर गंगा, जिसके अंतर्गत आपने सुना बलजीत सिंह द्वारा तार शहनाई वादन, राग था अलहिया बिलावल, संगत कलाकार थे उस्ताद अख्तर हसन तबले पे। और श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम साइंस मैगजीन।

0: No borders, only possibilities. Stay tuned, stay curious, and stay inspired. This broadcast came to you from Indraprastha channel of Akashvani Delhi. अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम साइंस मैगजीन. ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है. मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर.
1: ये आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप है. लाइव रेडियो, लेटेस्ट न्यूज हेडलाइंस, न्यूज पॉडकास्ट्स, साथ में दूरदर्शन के लाइव चैनल्स भी. द बेस्ट ऑफ एंटरटेनमेंट, इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन अब आपके एक उंगली के इशारे पर. कहीं भी कभी भी रहे हरदम अपडेट. आज ही डाउनलोड करें आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप.

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। और अब समय हुआ है पंजाबी कार्यक्रम मिट्टी दी महक।

0: आइए अब सुनते हैं हिंदी अंग्रेजी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों और वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों की दिल्ली बैठक में आतंकवाद, साइबर खतरों और वैश्विक सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए सहयोग बढ़ाने पर बल दिया गया। बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने की। बैठक में सदस्य देशों ने उभरती सुरक्षा चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। विदेश मंत्रालय के अनुसार ऐसे सुरक्षा खतरों पर खास तौर से चर्चा हुई जो अब वैश्विक रूप ले चुके हैं। प्रतिनिधियों ने ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन और आतंकवादी संगठनों द्वारा नई तकनीक के दुरुपयोग पर चर्चा की। बैठक में आतंकवाद रोधी तथा सूचना और संचार तकनीक के उपयोग में सुरक्षा संबंधी कार्य समूहों के कार्यों और उसके परिणाम की समीक्षा की गई। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों ने हर तरह के आतंकवाद के खिलाफ साझा कार्रवाई की प्रतिबद्धता भी दोहराई। बैठक के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात की। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के हालात पर पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की टिप्पणियों की कड़ी आलोचना की है। भारत ने कहा है कि ये टिप्पणियां पाकिस्तान की नाकामियों को छिपाने और मानवाधिकारों के उल्लंघन से ध्यान भटकाने की कोशिश है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने संवाददाताओं से कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में विरोध प्रदर्शन इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान वहां के लोगों का दशकों से आर्थिक शोषण, बुनियादी अधिकारों का हनन और प्रशासनिक दमन कर रहा है। उन्होंने बताया कि पाकिस्तानी प्रशासन ने निहत्ते नागरिकों के साथ बर्बर व्यवहार किया है, जरूरी सामान और दवाओं की आपूर्ति रोक दी गई है और इंटरनेट भी बंद है। खाड़ी क्षेत्र में जारी टकराव पर श्री जायसवाल ने बताया कि भारतीय ध्वज वाले 10 जहाज अब भी फारस की खाड़ी में हैं। उन्होंने कहा कि 17 जून को अमेरिका और ईरान के बीच सहमति पत्र पर हस्ताक्षर होने के बाद 11 जहाज होर्मुज जलडमरू मध्य से भारत पहुंचे हैं।
2: 11 जहाज जो भारत की तरफ आ रहे हैं, इसमें से 3 भारतीय जहाज हैं जो कि क्रूड ऑयल टैंकर्स हैं। इनमें 2,85,000 मेट्रिक टन क्रूड ऑयल है। इसके अलावा एक विदेशी पताका के साथ एक एलपीजी टैंकर जो भारत की तरफ आ रहा है और एक विदेशी पताका के साथ फर्टिलाइजर कार्गो के साथ वो आ रहे हैं। और जो अन्य 10 हमारे जहाज हैं वो भी हमारी उम्मीद है कि जल्द ही वो हॉर्मुज पार करके भारत की तरफ आ जाएंगे।
1: अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन होर्मुज जल डमरू मध्य में फंसे 11,000 से ज्यादा नाविकों को निकालेगा। संगठन के महासचिव आर्सेनियो डोमिनिवेज ने कहा कि इस अभियान में मदद के लिए जरूरी सुरक्षा गारंटी ली गई है। इस अभियान में ईरान, ओमान और क्षेत्र के अन्य देशों और समुद्री उद्योग जगत का सहयोग लिया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र के जिनेवा कार्यालय में ईरान के राजदूत अली बहरीनी ने कहा कि होर्मुज जल डमरू मध्य व्यावसायिक जहाजों के लिए बिना किसी टोल के पूरी तरह खुला है। भारत और अमेरिका ने प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते को आगे बढ़ाने के लिए उच्च स्तरीय वार्ता शुरू की है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीर और भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर से मुलाकात की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने, विकास की गति को तेज करने और समावेशी विकास के लिए सभी पक्षों से और अधिक सहयोग आवश्यक है। उन्होंने ये बात कल नई दिल्ली में ग्लोबल कन्वर्जेंस फॉर ग्रोथ सम्मेलन को

0: The advance of southwest monsoon into parts of Maharashtra, Chhattisgarh and Madhya Pradesh during the next 2 days. It forecasts heavy to very heavy rainfall over coastal Karnataka, Konkan and Goa over the next 3 days. The United States Senate has passed a bill to pause President Donald Trump's military campaign against Iran and seek congressional approval before any further action is taken. Last night, the chamber voted 50-48 to pass the resolution, which had been approved in the House of Representatives earlier in the month. Last night's vote marked the first time a war powers resolution had successfully passed both chambers of Congress. Indian equity benchmarks traded in a narrow range this morning for a second consecutive session amid decline in crude oil prices. Sensex was trading at 76,349, up over 100 points in early deals, while Nifty was trading at 23,854, higher by 30 points in the early trade today. In the FIFA World Cup 2026, Portugal crushed Uzbekistan by 5-0 in the Group K at Houston in United States. The 41-year-old Cristiano Ronaldo scored 2 goals to help Portugal roll to a 5-0 win over Uzbekistan. Ronaldo became the first player to score in 6 different World Cup tournaments, with his goals adding another impressive accomplishment to his storied career. And that is the end of this news bulletin.
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। और अब समय हुआ है हमारे अगले कार्यक्रम आपकी पसंद। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, स्वीकार कीजिए इस कार्यक्रम की होस्ट और दोस्त आपकी रैना तंवर का खुशनुमा प्यार भरा नमस्कार। तो दोस्तों, आज मैं आपके साथ जुड़ चुकी हूं आप ही के पसंदीदा रेडियो लाइव कार्यक्रम में, जिसका नाम है आपकी पसंद। जी हां, आपकी फरमाइश पर यह कार्यक्रम है आधारित, और आप हमें अपने मैसेज यानी कि संदेश हमें भेज सकते हैं इस ईमेल आईडी पर। आईडी हम आपको बता दें, आईडी है हमारा ipradiodelhi@gmail.com, और इस पर हमें इंतजार रहेगा आपके संदेशों का। और मैं यानी कि रैना तंवर जुड़ चुकी है इस कार्यक्रम में आपके साथ। तो मेरे साथ जुड़ने के लिए आपको बस छोटा सा काम करना है, संदेश भेजना है, और आपको कार्यक्रम कैसा लग रहा है ये भी हमें बताना है, और कुछ बातें भी आपके साथ करनी है, और बहुत ही खूबसूरत नगमों के साथ। खैर, नगमों के साथ हम जरूर शुरू करेंगे, लेकिन इससे जुड़ने से आप एक बात बताइए। वैसे जिंदगी बहुत प्यारी है ना, खूबसूरत है ना, और उसे खूबसूरत कौन बनाता है? हम खुद, हमारा मन, हमारा दिल। अगर हमारा दिल खुश है तो हम आसपास की चीजें भी हमें अच्छी लगने लगती हैं। तो दिल अपना हमेशा खुश रखें, मुस्कुराते रहें, और कार्यक्रम हमारा सुनते रहें। और हम अक्सर अपनी जिंदगी में बहुत सी चीजें करते हैं, जैसे कि बहुत सारे काम करते हैं, लेकिन कई बार हमें लगता है कि हमने वो काम काश उस समय कर लिया होता तो आज मेरी जिंदगी शायद कुछ और होती। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, होता है, रिग्रेट होता है हमें भी कि यार काश मैंने उस समय वो बात मान ली होती, या माता पिता हमें जब हमें उस वक्त कहते थे कि बेटा ये कर लो, हम नहीं करते थे। हमें लगता था नहीं यार, हमें अभी नहीं करना है, हम क्यों, हमें ये संदेश दिया जा रहा है, क्यों हमें ये भाषण दिया जा रहा है। हमें भाषण लगता था उनका ज्ञान, लेकिन सच बताएं उस वक्त सभी को ऐसा ही लगता है, तो आप गलत नहीं हैं। लेकिन कभी कभी किसी की बात मान लेनी चाहिए, और ये अफसोस रहता है ना, मुझे भी रहता है। तो किस किस को आपको अफसोस होता है कि काश वो घड़ी वापस आ जाती और मैं वो समय दोबारा दोहरा लेती और मैं वो काम दोबारा कर लूं। अगर वो मौका आपको मिले तो ऐसा कौन सा मौका, ऐसा कौन सा वक्त है जिसे आप याद करते हैं और दोहराना चाहते हैं? अगर आपके पास ये मौका मिले तो कौन सा वो वक्त होगा, कौन सा वो चीज होगी जो आप करना चाहेंगे? मैसेज कीजिए, टाइप कीजिए फटाफट ipradiodelhi@gmail.com। रैना के साथ जुड़ चुके हो, रहना है तो कुछ तो कहना है। कार्यक्रम शुरू करने से पहले सुनते हैं ये संदेश।
2: सुनो सुनो सुनो गांव वालों, केवाईसी अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत केवाईसी अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल।

0: या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें, और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं। खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
1: आरबीआई कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: तो चलिए नगमे से शुरू करते हैं अपना ये कार्यक्रम।

बहुत सारे मैसेज हमें आ चुके हैं और बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे कार्यक्रम आप लोग सुन रहे हैं। आपकी फरमाइश पर बहुत सारे गीत हैं जो हम देख रहे हैं और बहुत सारे मैसेज आए कि उन्होंने लिखा है, जैसे सतीश अनेजा जी का मैसेज आया है हमारे पास, जिनकी भी बहुत सारी फरमाइशें हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और उसी तरीके से हमारे पास आया है अशोक कुंवर जी का मैसेज, अशोक श्याम, प्रमीला श्याम, चीनू, दीपक श्याम, अनुश्री श्याम, इन सभी का हमारे पास मैसेज आया। पुरुषोत्तम झा जी का हमारे पास मैसेज आया है और इसी तरीके से तुलसी मस्किन जी का वो हमें लिख रहे हैं, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत सुप्रभात हमारे तरफ से। ये साथ ही यही बहुत सारे फरमाइशों के साथ चंडीगढ़ से हमें राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशु रिहान खुराना, चैतन्य मस्किन मेघा और वीना मस्किन, तुलसी मस्किन शाहदरा से उन्होंने हमें मैसेज किया है और निट्टू मल्होत्रा जी ने मैसेज किया है, उन्हें अपनी फरमाइशें भी भेजी हैं। बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा, लक्ष्य मल्होत्रा, लाडो कोयल, पापा जी नानक चंद मल्होत्रा, शिवाजी कॉलोनी रोहतक से पीयूष सिक्का और कोयल सिक्का और डुगू भाविका सिक्का जी ने भी हमें मैसेज किया है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का और इसी तरीके से आप हमें मैसेज करते रहें। और हमने जो आपसे पूछा है, क्या पूछा है कि कोई ऐसा वक्त जो आप दोबारा दोहराना चाहें, आप वो ख्वाहिश पूरी करना चाहें, अगर आपको मौका मिले कि वो दिन वापस आप लौटाना चाहें और वो वक्त अगर आपके पास वापस आ जाए तो कौन सी चीज है जो आप करना चाहेंगे, तो और ऐसे कई चीजें होती हैं, ये सिर्फ वक्त की ही बात है। जैसे कि हम वक्त से ना अपने रिश्ते भी खराब कर पाते हैं, कई बार होता है हम ऐसी बातें बोल जाते हैं जो हम नहीं कहने चाहिए और फिर हमें अफसोस रहता है, तो हम वो वक्त भी वापस लेकर आना चाहेंगे कि हम उस वक्त को वापस ले आए और अपनी बातों को वापस ले लें और ऐसा कुछ कहें कि दूसरे के चेहरे पर मुस्कुराहट दे पाए, वो गम नहीं रहे, वो शिकवे ना रहें और एक ऐसी छाप हम दिल पर छोड़ जाएं जो हमेशा हमें वो याद करें। क्यों? तो इसी तरीके से हमें मैसेज करते रहिए, भेजते रहिए। टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह और अमनदीप जी ने भी हमें मैसेज किया है और इसी तरीके से हमारे पास आया है दादरी गेट भिवानी से कृष्ण मेहरा, कोमल मेहरा, किरण कपिल, कुणाल मेहरा जी का और पुरुषोत्तम झा जी का। अगले सॉन्ग की ओर हम बढ़ते हैं, ये भी हमारी फरमाइश हमारे पास आई है, तो जिन्होंने भी फरमाइश हमें भेजी उसका बहुत बहुत शुक्रिया। सुनते हैं आपका भेजा ये फरमाइशी गीत।

जी हाँ, जिन्होंने अभी अभी रेडियो ऑन किया है उन्हें हम बता दें कि आप सुन रहे हैं आपका अपना आकाशवाणी इंद्रप्रस्थ पर आपका पसंदीदा लाइव रेडियो कार्यक्रम जिसका नाम है आपकी फरमाइश आपकी पसंद पर आधारित। जी हाँ, और मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त और होस्ट रैना तंवर। तो अब हमने बहुत सारी बातें तो करनी है, उस बातों के साथ तार जोड़ने हैं म्यूजिक यानी कि संगीतों के साथ, लेकिन हमने आपसे का सवाल पूछा था वो क्या है, वो यही है कि कौन सा ऐसा वक्त है जो आप दोहराना चाहेंगे, अपनी गलतियों को सुधारना चाहेंगे, या वो वक्त जो आप चाहेंगे कि वो लौट कर आ जाए और आप जो करना चाहते थे नहीं कर पाए लेकिन वो करने का मौका अगर अभी आपको मिल जाए तो क्या होगा। तो कौन सा वो पल है, कौन सी वो चीज है जो आप करना चाहते थे नहीं कर पाए और करना चाहेंगे, तो जल्दी से मुझे मैसेज करके भेजिए ipradiodelhi@gmail.com। ये हम भी आपको बताएंगे, ये राज हम भी खोलेंगे आपके सामने, लेकिन पहले मैं चाहूंगी कि मेरे सुनने वाले श्रोता मुझसे साझा करें ताकि इस खेल का, इस कार्यक्रम का जो मजा है दो गुना हो जाए। क्यों? और हमारे पास मैसेज आया है ग्राम पंचोलिया जिला जालो

प्रदेश से सत्येंद्र कुमार चंसोलिया आदर्श सार्थक अलौकिक चंसोलिया जी का। और उसी के साथ हमारे पास आया है मैसेज नीटू मल्होत्रा जी का, और उन्होंने हमें मैसेज किया है, फरमाइशें भी भेजी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। और हरजिंदर सिंह भाटिया जी का, एंजल सोनू पप्पी भाटिया जी, इनका हमारे पास मैसेज आया बक्सर विहार से। शरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून और सुरीत रमेश साहू, और डुमराव वे बिहार से डॉक्टर डब्लू अंसारी, क्षमा कीजिएगा, डॉक्टर सोनम अदीबा और दानिश अंसारी। अगर हम कहीं आपका नाम गलत पढ़ दें तो हमें क्षमा हम चाहेंगे आपसे, और सही तरीके से आपका नाम लेना कोशिश करेंगे। और अगली हमारे जो आया है सुरफुद्दीन अंसारी जी का, फिर हमारे पास मैसेज और भी आए हैं, उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल, कमला रानी, भानु प्रकाश, गीतिका खोरवाल, इन्होंने हमें मैसेज किया है। और बुधराज खोरवाल जी का मैसेज आया है, और सेक्टर 66 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप जी का भी मैसेज आया है हमारे पास। शुभ चंद्र बजाज, साहिल और बिट्टा बजाज जी का भी मैसेज आया है। बुधराज कोहरवाल से ही उन्होंने हमें मैसेज किया है, और इसी तरीके

और हमारे पास जो मैसेज आया पटियाला पंजाब से, सोमदत्त, कैरव, ज्योति रानी, गुरमंत कौर, मनु, और फिर हमारे पास जो मैसेज आया है ब्रजेंद्र विश्वकर्मा जी का, और तारा देवी, सोनाली, सोनम, आशीष, इन्होंने हमें मैसेज किया है। और अगला जो है वो है, हमारे पास मैसेज आया है देव शंकर तामोरिया जी का, और अजय देव, तुषार, डॉली, बेबी पूजा, राधिका, प्रभा देवी और मास्टर अल कबीर, इन्होंने हमें छत्तीसगढ़ से मैसेज किया है। और बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस तरीके से मैसेज करने के लिए, और आपके जो फरमाइश के गीत हैं हम इसमें ज़रूर शामिल करेंगे। तो हमें इसी तरीके से हमें मैसेज करते रहिए और सुनिए अपने पसंदीदा गीत को।

और इसी तरीके से हमारे पास एक बहुत ही प्यारा सा मैसेज आया है, वो है पुरुषोत्तम झा जी का। उन्होंने लिखा है कि वो अपनी यूपीएससी की पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन अक्सर वो अपनी पढ़ाई के दौरान पढ़ते नहीं हैं, और उनको समझाने वाले उनके दोस्त भी हैं, उनकी गर्लफ्रेंड भी है, उनके घर के लोग भी हैं, सब समझाते हैं, लेकिन वो नहीं सुनते। और उनको लगता है कि उस वक्त वो कुछ ना कुछ अलग ही कुछ करने लग जाते हैं और हर बार इस वजह से फेल हो जाते हैं। तो उन्होंने इस साल ठाना है कि वो ऐसा नहीं करेंगे, और वो दिन कहते हैं ना कि वापस लाना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि वो अच्छे से पढ़ाई करें और आगे बढ़ें। तो बिल्कुल, आप बिल्कुल अच्छे से पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। और इसी तरीके से उन्होंने वाराणसी से भक्ति नगर कॉलोनी से हमें मैसेज किया है। और फिर हमारे पास सरफुद्दीन अंसारी जी का मैसेज आया है, और इसी तरीके से हमारे पास दीपेश वर्मा जी का मैसेज आया है, और उन्होंने पूनम वर्मा, ज्योति, शिवान शर्मा वर्मा, इन्होंने हमें मैसेज किया है। और संदीप मक्कर जी का हमारे पास मैसेज आया है। और उसी तरीके से हमारे पास आए हैं बिट्टू गंग नेजा जी का मैसेज, और उन्होंने सुरेश, पूनम, विशाल, दिलशानी और निमित आहूजा जलालाबाद वैसे उन्होंने हमें मैसेज किया है। क्या बात है, बहुत सारे मैसेज, और हमें जवाब भी चाहिए। भाई, आप कौन सी ऐसे वक्त को लौटाना चाहेंगे, या कौन सी ऐसी चीज़ है जो आप आपको पछतावा है और आप चाहते हैं कि उससे आप दूसरे का, कहते हैं ना कि मैं एक अच्छी बात काश मैं उसे कह देता, क्या कह देती, या काश मैंने वो ना किया होता, तो वो ऐसा कौन सा पल था। अगर आपके पास वो वक्त दोबारा आता है तो आप उसे कैसे सुधारेंगे, किस तरह से सुधारेंगे और क्या करना चाहेंगे ताकि वो वक्त का जो गिलानी है ना, जो खत्म नहीं हुई, वो खत्म हो जाए। तो यहाँ हमसे साझा कीजिए ताकि हमें भी पता चले।

जी हाँ, दिल विल प्यार व्यार, भाई हम सभी जानते हैं, दिल भी जानते हैं, प्यार भी जानते हैं। सबके जीवन में एक दिन तो ये जरूर आता है। और कहते हैं प्यार की कोई सीमा नहीं होती भाई, प्यार तो प्यार होता है, हर उम्र में प्यार होता है। और हमने बहुत सारी बातें तो करनी है, हमारे पास जो फरमाइश आई है वो भी हमें शामिल करनी है। और मैं हूँ आपके साथ रहना, और मेरे साथ है आपको अभी रहना, और कुछ तो कहना है। जी हाँ, हमने आपसे पूछा है कि आप बताइए कि आपकी कौन से

लम्हे जो आप दोहराना चाहेंगे, आप चाहेंगे कि वो लम्हा मेरे पास दोबारा आ जाए और मैं उसे सुधार लूं, मैं कुछ ऐसा करूं कि वो वक्त में जब मैं नहीं कर पाया या नहीं कर पाई, अब मैं कर लूं। तो वो अफसोस वाला जो चीज थी ना, हम उसे हटाना चाहते हैं, हम उस सपने को दोहराना चाहते हैं कि वो सपना काश मैं पूरा कर लेती या कर लेता। तो वो घड़ी वापस मान लो आपके पास आ जाए और आप करना चाहें तो क्या करना चाहेंगे? हमारे पास बहुत सारे मैसेज आ भी गए हैं और जिन्होंने हमें फरमाइश भेजी है उनका हम ये गाना जरूर शामिल करेंगे। बिट्टू गगनेजा जी ने जो हमें मैसेज किया है और विशाल दिशानी निमित आपकी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। और हमारे पास सोनू जी का मैसेज आया है, रवि राज गुलशन लक्की जालंधर सिटी पंजाब फिल्म, उनकी फरमाइश भी है तो हम उसे भी शामिल करेंगे। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम अपने श्रोताओं की फरमाइशों के गीतों को इस अपने कार्यक्रम में, जो कि स्पेशली आप ही के लिए बना है, तो शामिल करें। अगर हम नहीं कर पाए, अगर किसी वजह से, क्योंकि इतने हमारे पास फरमाइशें आती हैं कि हम, कोशिश तो हमारी पूरी रहती है लेकिन समय कम की वजह से हम नहीं कर पाते, लेकिन अगले कार्यक्रम में जरूर करेंगे, अगली बार जरूर लेंगे। तो निराश बिल्कुल मत होइएगा, जुड़े रहिएगा हमारे साथ आपके आकाशवाणी इंद्रप्रस्थ चैनल में। और ये है कार्यक्रम आपकी पसंद, आपकी फरमाइश। अगला जो हमारे पास मैसेज आया वो भारत भूषण अंजू श्रीवास्तव, दिव्यांशु गुभूषण और संस्कृति पौरुष जी का आया है, संदीप मक्कर जी का आया है और उसी के साथ हमारे पास पंकज शर्मा जी का मैसेज आया है। उन्होंने कहा है कि हमें नमस्कार भेजा है, बहुत बहुत नमस्कार आपको भी। और उन्होंने कहा है कि कोई भी गीत हमारी तरफ से आप चला दीजिएगा, जरूर बिल्कुल आप जो कहें। और मॉडल टाउन करनाल से सुधीर नूतन, किरण ठाकुर, संदीप गुगलानी, जगमोहन और प्रजापति किरण गुप्ता जी, उन सभी का हमारे पास संदेश आया है। रविन्द्र सिंह छाबड़ा जी का हमारे पास, टैगोर गार्डन नई दिल्ली से रविन्द्र छाबड़ा जी, इंद्रजीत कौर और स्वीटी, इन्होंने हमें मैसेज किया है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का और आपकी फरमाइशों को हम लेंगे, जरूर लेंगे सभी की। चरण दास जी का मैसेज आया हमारे पास, केशव दक्ष विवेक, गांव चौधरी बस, जिला हसार हरियाणा से हमारे पास मैसेज आया है। और फिर राधे श्याम देवांगन जी का हमारे पास मैसेज आया है और उन्होंने भी अपने फरमाइशें भेजी हैं। और भंवरपुर छत्तीसगढ़ से राधे श्याम देवांगन चंपा और राजू नेहा जगदीश देवांगन जी का मैसेज हमारे पास आया। और अगले गीत की ओर बढ़ते हैं और आपका संदेश भी लेते हैं, तो चलिए सुनते हैं ये प्यारा सा नगमा जो इन्होंने फरमाइशें की हैं आपकी ही फरमाइश पर, ये आधारित ये वाला गीत।

जीने की राह का ये जो खूबसूरत सा नगमा सुना आपने मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, कितना खूबसूरत मैसेज भी दिया इस गीत ने, है ना। पहले जो गीत हुआ करते थे ना, वो उनकी बात ही अलग है। उन्होंने वो दिल को छू जाते थे, वो आज तक भी याद रहते हैं। और ये बात सही है कि कुछ ऐसे वक्त होते हैं, जीवन जो है ना बहुत छोटा सा है और उसे खूबसूरत बनाना आप ही के हाथ में है। अगर आप अपने जीवन को खूबसूरत बनाएंगे तो आपको देखकर दूसरे लोग भी इंस्पायर होंगे, दूसरे लोग भी चाहेंगे कि वो भी अपना जीवन इसी तरह से जिए। मुश्किलें सभी के साथ हैं, मगर उस मुश्किलों को हटाकर अगर आप एक चीज़ खुशी की ढूंढ लें, जीने की राह वहीं से बन जाती है। क्यों दोस्तों? तो हमें मैसेज कीजिए, मैं हूं आपके साथ रैना धवर, कार्यक्रम आपकी फरमाइश आपकी पसंद का हम आपको लेकर यानी कि यहां जोड़ रहे हैं आपकी बातों के साथ, आपकी फरमाइश के साथ। अगला जो हमारे पास मैसेज आया है वो है संदीप मक्कर जी का, और वहीं पर संदेश आया है हमारे पास उत्तम कुमार भगत जी का, उन्होंने भी अपनी फरमाइश भेजी है। और श्वेता किसु अर्णव सत्यम आनंद, इन सभी का हमारे पास मैसेज आया है। और भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिप्पा, कपिल छिप्पा और ईशान पूजा परिहार का हमारे पास संदेश आया है। और फिर हमारे पास सीताराम कांगरा जी का, जो कि एकता कॉलोनी रोहतक से हमें भेज रहे हैं, सीताराम बबीता निखिल तन्वी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। इसी तरह से जुड़े रहिएगा। सुदर्शन मुखी जी, अनीता मुखी, सिमरन मुखी शांति नगर सोनीपत से हमें संदेश भेज रहे हैं और वो हमारे कार्यक्रम को सुन रहे हैं। हम तो अपने बचपन स्कूल समय में जाना चाहेंगे, क्योंकि बचपन हर गम से बेगाना होता है। बहुत खूबसूरत बात कही आपने। आपका वर्तमान और भविष्य बहुत मंगलमय हो, उन्होंने मुझे लिखा। बहुत बहुत शुक्रिया, आपका भी इसी तरीके से मंगलमय रहे। और चलिए मैं भी अपनी एक बात साझा आपसे करती हूँ। मेरा बचपन बहुत ही, सबका बचपन कुछ ना कुछ यादें होती है ना, तो मेरे बचपन की भी पुरानी एक ऐसी याद है। मुझे लगता है काश मैंने वो रोक लिया होता समय, काश मैंने उन्हें रोक दिया होता कि आप आज ना जाएं, तो आज वो मेरे साथ होते। जी हाँ, मेरे पिता वो बचपन में मुझे कहकर गए कि बेटा मैं जा रहा हूँ और क्या मैं जाऊँ, और उन्होंने मुझसे पूछा, लेकिन मैंने उन्हें टोका नहीं, रोका नहीं, और मैंने कहा कि आप अपना काम करके जल्दी लौट आइएगा। लेकिन दुख की बात है कि वो मेरे पास नहीं लौट कर आ पाए। खैर, ये तो हम की बातें हैं। अगर मेरा मतलब वक्त होता और मेरे पास ये होता कि काश वो वक्त वापस आ जाए और मैं दोहरा लूँ, तो मैं उन्हें रोक लेती और वो काश वो दिन वापस आए और मैं चाहूँगी कि मैं उन्हें रोक लूँ और वो आ जाएं और वो मेरे साथ हमेशा बने रहें। ये मेरी एक ख्वाहिश है जो हमेशा रहेगी, लेकिन वो कभी पूरी नहीं होगी, ये भी मुझे पता है। लेकिन आपकी ख्वाहिशें ऐसी हो जो कि पूरी हो, हम आशा करेंगे। और एक नगमा जो किसी ने फरमाइश की है वो हम लगा देते हैं। बहुत ही प्यारा सा आशा भोसले जी की आवाज का वो गीत सुनना चाहते हैं, तो हम ये सुना देते हैं। ये लीजिए आपकी फरमाइश का ये अगला नगमा।

जी हाँ, आप जुदा बिल्कुल नहीं होना है, लेकिन कभी कभी समय ऐसा हो जाता है कि हमें आपसे जुदा होना पड़ता है ना। और हमारे पास मैसेज आया है रविंद्र सिंह छाबरा जी का, जिन्होंने लिखा है, बचपन यदि वापस मिल जाए, काश बचपन फिर से लौट आए, ना कोई चिंता हो ना कोई जिम्मेदारी सताए, फिर वही मासूम हंसी, वही शरारतों का संसार, जहाँ छोटी छोटी खुशियों में बसता है सारा प्यार। क्या बात है। टैगोर गार्डन नई दिल्ली से रविंद्र सिंह छाबड़ा और इंद्रजीत कौर जी ने जो ये मैसेज हमें किया है, बहुत ही खूबसूरत उन्होंने बात लिखी है और ये बात सच में बहुत ही जानदार है। और प्रोग्राम ये अनिल जैन जी का हमारे पास मैसेज आया है, रमेश चौहान जी का भी हमारे पास मैसेज आया है, और इसी तरीके से हमें भेजा है रविंद्र सिंह छाबड़ा जी ने भी, और उन्होंने हमें किशन वान जिनी, नीलम स्वाति और किशु रेलवे कॉलोनी आनंद विहार से हमें मैसेज लिख रहे हैं, और कार्यक्रम लाजवाब चल रहा है, हम अपने बचपन के समय दोबारा याद कर रहे हैं, और जो कहते हैं ना, नटखट पानी और शरारतें और नदियां हम नहीं कर पाए थे, हम दोबारा करना चाहते हैं, और नाइस प्रेजेंटेशन किसी भी गीत में। अरे वाह, क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया किशन जी आपका। और हर कोई चाहता है ना बचपन वापस आ जाए। हाँ, हमारा संदेश, और उन्होंने लिखा है कि लेवा

छत्तीसगढ़ से गुलाब दास मानिक, राजा दास मानिक और रानी मानिक जी का मैसेज आया है। रमेश चौहान जी का कुड़ी सेक्टर 5 सूर्यनगरी जोधपुर राजस्थान से। रमेश चंद्र चौहान मोहिनी और कल्पित चौहान बेबी गर्वी और बेबी बॉय हिमांश। और अनिल जैन जी का, जैन साहब संयम जैन मुस्कान मास्टर जीव जीवियम।

0: उनका मैसेज आया हमारे मेरठ से, गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा और जसवी जस्सी सीता और गीता जी का भी मैसेज हमारे पास आ रहा है। चरणदास जी, केशव, प्रियांशी, पंकज चौधरी वास, राजू अग्रवाल का मैसेज आया है, रियासत हुसैन, नाजमा रियाज, रिफाकत, मोहम्मद रिहान, समरीन और माहिरा नूर, इनका हमारे पास संदेश आ रहा है। उत्तराखंड से जसपुर से हमारे पास इनका मैसेज आया है, और रमेश चौहान जी का भी मैसेज आया है, मोहनदास जी का मैसेज आया, किशनगढ़ बिहार से रविंद्र मोहनदास, आशा देवी हमारे पास संदेश भेज रहे हैं। और इसी तरीके से हमारे पास बहुत सारे, ढेर सारे मैसेज आ रहे हैं। रमेश्वर जी का, आपकी फरमाइश कार्यक्रम, बहुत कार्यक्रम उनको अच्छा लग रहा है, और हम आपका क्षमा चाहेंगे अगर हम आपका मैसेज लेट ले रहे हैं, तो हमने आपका, देखिए, ग्राम और पोस्ट मुंगीसापुर कानपुर से इन्होंने हमें मैसेज किया, रामेश्वर कठेरिया, उमाकांति कठेरिया, कमलेश कठेरिया, पुत्र बधु निशा कठेरिया, प्रज्ञा कठेरिया, प्रतिमा बाबू कठेरिया, समस्त कठेरिया परिवार हमारे की तरफ से हमारे पास संदेश आया है। मुरादाबाद से दुल्हापुर, उत्तर प्रदेश से सोनू, राजपाल काजल, मानवी, लक्ष्य, मोहिनी, बलवीर सिंह का हमारे पास मैसेज, रविंद्र मोहनदास जी का, और दिग्दर्शन गौर जी का, कर्ण रिया जया, दर्शन भाई और दिग्दर्शन गौर, मेरठ कैंट से कविता गौड़ का हमारे पास संदेश, रंजीत कारिगोइंकर का मैसेज हमारे पास आया है, और शिवराम नगर बसमत रोड परभणी महाराष्ट्र से रणजीत कारेगांवकर, कंचन, सृष्टि, समरजीत कारेगांवकर का मैसेज हमारे पास आया है। राधेश्याम देवांगन का इंदिरानगर भवरपुर से, राधेश्याम देवांगन, चंपा देवांगन और राजू नेहा जगदीश देवांगन का हमारे पास, मोहम्मद कमर जी का मैसेज आया है, उन्होंने हमें प्रोग्राम की, हमारी तारीफ की, बहुत बहुत शुक्रिया। और मंगल जनागल से मैसेज आया है हमारे, पत्रोड़ा से मैसेज किया, मंगल, रोशनी, अंकुर जनागल, इंदु, डॉक्टर सुनील जनागन, इन सभी ने हमें मैसेज किया है। रमेश चौहान जी का बहुत बहुत शुक्रिया, और इसी तरीके से हमें मैसेज भेजते रहिए और हमें अच्छा लगेगा। चलिए चलते चलते एक फरमाइश के गीत हम लगा देते हैं, क्योंकि अब समय की जो है ना, कहते हैं समय थोड़ा कम है, तो जल्दी से फटाफट आपका ये फरमाइशी गीत सुनते हैं। बातें लम्बे,
1: सबसे ऊपर, बीते लम्बे,
0: अच्छा।

तो चलते चलते रैना तवर को दीजिए इस कार्यक्रम से इजाजत, जिनके श्रोताओं के मैं नाम नहीं ले पाई समय की वजह से, मुझे माफ कर दीजिएगा, अगली बार जरूर लेंगे। सुनते रहिए आपका आकाशवाणी इंद्रप्रस्थ कार्यक्रम आपकी पसंद, और जुड़े रहिएगा हमसे, मुस्कुराते रहिएगा और हमेशा खुश रहिएगा। और एक काम हमेशा जीवन में करिएगा कि जो आपके चेहरे को दे मुस्कुराहट और दिल को दे सुकून और दूसरों के चेहरे पे भी दे मुस्कुराहट। तो बस चलते हैं, फिर मिलते हैं नए गीतों नई बातों के साथ। रैना तवर लेती है इस कार्यक्रम से इजाजत।

0: ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों और वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों की दिल्ली बैठक में आतंकवाद, साइबर खतरों और वैश्विक सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए सहयोग बढ़ाने पर बल दिया गया है। बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने की। बैठक में सदस्य देशों ने उभरती सुरक्षा चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। विदेश मंत्रालय के अनुसार ऐसे सुरक्षा खतरों पर खासतौर से चर्चा हुई जो वैश्विक रूप ले चुके हैं। प्रतिनिधियों ने ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन और आतंकवादी संगठनों द्वारा नई तकनीक के दुरुपयोग पर चर्चा की। बैठक में आतंकवाद रोधी तथा सूचना और संचार तकनीक के उपयोग में सुरक्षा संबंधी कार्य समूहों के कार्यों और उसके परिणाम की समीक्षा की गई। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों ने हर तरह के आतंकवाद के खिलाफ साझा कार्रवाई की प्रतिबद्धता भी दोहराई। बैठक के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के हालात पर पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की टिप्पणियों की कड़ी आलोचना की है। भारत ने कहा है कि टिप्पणियां पाकिस्तान के नाकामियों को छिपाने और मानवाधिकारों के उल्लंघन से ध्यान भटकाने की कोशिश है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने संवाददाताओं से कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में विरोध प्रदर्शन इसलिए हो रहे हैं कि पाकिस्तान वहां के लोगों का दशकों से आर्थिक शोषण, बुनियादी अधिकारों का हनन और प्रशासनिक दमन कर रहा है। उन्होंने बताया कि पाकिस्तानी प्रशासन ने निहत्थे नागरिकों के साथ बर्बर व्यवहार किया है, जरूरी सामान और दवाओं की आपूर्ति रोक दी गई है और इंटरनेट बंद है।
1: हम लोगों ने देखा कि बांग्लादेश में से कुछ खबर आई कि वहां पर हिंदू भगवान के तस्वीरों के साथ अपवित्र हरकतें हुई, जिसके कारण वहां पर विरोध प्रदर्शन हुआ है। और हम लोग क्या ये उम्मीद है कि बांग्लादेश की सरकार जो वहां पर चरमपंथी लोग हैं उस पर अंकुश लगाएगी और जो वहां पर अल्पसंख्यक समुदाय के लोग रह रहे हैं उसकी सुरक्षा को गारंटी करेगी।
0: खाड़ी क्षेत्र में जारी टकराव पर श्री जायसवाल ने बताया कि भारतीय ध्वज वाले 10 जहाज अब भी फारस की खाड़ी में हैं। उन्होंने कहा कि 17 जून को अमेरिका और ईरान के बीच सहमति पत्र पर हस्ताक्षर होने के बाद 11 जहाज होर्मुज जलडमरू मध्य से भारत पहुंचे हैं।
1: 11 जहाज जो भारत की तरफ आ रहे हैं, इसमें से 3 भारतीय जहाज हैं जो कि क्रूड ऑयल टैंकर्स हैं। इनमें 285,000 मेट्रिक टन क्रूड ऑयल है। इसके अलावा एक विदेशी पताका के साथ एक एलपीजी टैंकर जो भारत की तरफ आ रहा है और एक विदेशी पताका के साथ फर्टिलाइजर कार्गो के साथ वो आ रहे हैं। और जो अन्य 10 हमारे जहाज हैं वो भी हमारी उम्मीद है कि जल्द ही वो हॉर्मुज पार करके भारत की तरफ आ जाएंगे।
0: अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन होर्मुज जलडमरू मध्य से में फंसे 11,000 से ज्यादा नाविकों को वहां से निकालेगा। संगठन के महासचिव आर्सेनियो डोमिंग्वेज ने कहा कि इस अभियान में मदद के लिए जरूरी सुरक्षा गारंटी ली गई है। इस अभियान में ईरान, ओमान और क्षेत्र के अन्य देशों तथा समुद्री उद्योग जगत का सहयोग लिया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र के जिनेवा कार्यालय में ईरान के राजदूत अली बहरीनी ने कहा कि होर्मुज जलडमरू मध्य व्यावसायिक जहाजों के लिए बिना किसी टोल के पूरी तरह खुला है। भारत और अमेरिका ने प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते को आगे बढ़ाने के लिए उच्चस्तरीय वार्ता शुरू की है। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीर और भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर से मुलाकात की। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम के दूसरे चरण का क्रियान्वयन, चिप आधारित ई पासपोर्ट की शुरुआत, नए पासपोर्ट सुरक्षा केंद्रों और पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र की स्थापना तथा रिकॉर्ड स्तर पर पासपोर्ट जारी करने से यात्रा सुगम हो रही है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जयशंकर ने 14वें पासपोर्ट सेवा दिवस के अवसर पर भारत और विदेश में सभी पासपोर्ट प्राधिकरणों को शुभकामनाएं दी। फीफा फुटबॉल विश्व कप में ग्रुप के में पुर्तगाल ने उज्बेकिस्तान को 5-0 से हरा दिया है। पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 2 गोल किए। इसके साथ ही रोनाल्डो 6 विश्व कप टूर्नामेंट में गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। ग्रुप एल के एक अन्य मैच में कनाडा के टोरंटो में क्रोएशिया और पनामा के बीच मैच चल रहा है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Anuja Kumar. National

819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर। अब आप सुनेंगे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत पर आधारित कार्यक्रम सुर मंजरी, जिसके अंतर्गत आज आप आनंद लेंगे सुहेब खान जी द्वारा गाया राग शुद्ध सारंग।

0: अभी आप सुन रहे थे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत पर आधारित कार्यक्रम सुर मंजरी, जिसके अंतर्गत आज आपने सुना सुहेब खान जी द्वारा गाया राग शुद्ध सारंग।
1: ये आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप है। लाइव रेडियो, लेटेस्ट न्यूज हेडलाइंस, न्यूज पॉडकास्ट, साथ में दूरदर्शन के लाइव चैनल्स भी। द बेस्ट ऑफ एंटरटेनमेंट, इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन अब आपके एक उंगली के इशारे पर। कहीं भी कभी भी रहे हरदम अपडेट। आज ही डाउनलोड करें आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। और अब समय हुआ है हिंदी और अंग्रेजी में समाचारों का।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के कश्मीर मुद्दा उठाने पर कड़ी आपत्ति व्यक्त की है। पाकिस्तान पर संयुक्त राष्ट्र मंच का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाते हुए भारत ने कहा कि सह अध्यक्ष के रूप में निष्पक्ष रहने के बजाय पाकिस्तान ने पद का दुरुपयोग किया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने सह अध्यक्ष के तौर पर पाकिस्तान के आचरण की आलोचना की। पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि आसिम इफ्तिखार अहमद के टिप्पणियों के जवाब में पी हरीश ने जम्मू कश्मीर पर भारत के लंबे समय से चले आ रहे रुख को दोहराया। उन्होंने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर पूरी तरह से भारत का आंतरिक मामला है। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के हालात पर पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की टिप्पणियों की कड़ी आलोचना की है। भारत ने कहा है कि टिप्पणियां पाकिस्तान की नाकामियों को छिपाने और मानवाधिकारों के उल्लंघन से ध्यान भटकाने की कोशिश है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने संवाददाताओं से कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में विरोध प्रदर्शन इसलिए हो रहे हैं कि पाकिस्तान वहां के लोगों का दशकों से आर्थिक शोषण, बुनियादी अधिकारों का हनन और प्रशासनिक दमन कर रहा है। खाड़ी क्षेत्र में जारी टकराव पर श्री जायसवाल ने बताया कि भारतीय ध्वज वाले 10 जहाज अब भी फारस की खाड़ी में हैं। उन्होंने कहा कि 17 जून को अमेरिका और ईरान के बीच सहमति पत्र पर हस्ताक्षर होने के बाद 11 जहाज होर्मुज जलडमरू मध्य से भारत पहुंचे हैं।
2: 11 जहाज जो भारत की तरफ आ रहे हैं, इसमें से 3 भारतीय जहाज हैं जो कि क्रूड ऑयल टैंकर्स हैं। इनमें 2,85,000 मेट्रिक टन क्रूड ऑयल है। इसके अलावा एक विदेशी पताका के साथ एक एलपीजी टैंकर जो भारत की तरफ आ रहा है और एक विदेशी पताका के साथ फर्टिलाइजर कार्गो के साथ वो आ रहे हैं। और जो अन्य 10 हमारे जहाज हैं वो भी हमारी उम्मीद है कि जल्द ही वो हॉर्मुज पार करके भारत की तरफ आ जाएंगे।
1: अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन होर्मुज जलडमरू मध्य में फंसे 11,000 से ज्यादा नाविकों को वहां से निकालेगा। संगठन के महासचिव आर्सेनियो डोमिंग्वेस ने कहा कि इस अभियान में मदद के लिए जरूरी सुरक्षा गारंटी ली गई है। इस अभियान में ईरान, ओमान और क्षेत्र के अन्य देशों और समुद्री उद्योग जगत का सहयोग लिया जाएगा। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों और वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों की दिल्ली बैठक में आतंकवाद, साइबर खतरों और वैश्विक सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए सहयोग बढ़ाने पर बल दिया गया है। बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने की। बैठक में सदस्य देशों ने उभरती सुरक्षा चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। विदेश मंत्रालय के अनुसार ऐसे सुरक्षा खतरों पर खासतौर से चर्चा हुई जो अब वैश्विक रूप ले चुके हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों ने हर तरह के आतंकवाद के खिलाफ साझा कार्रवाई की प्रतिबद्धता भी दोहराई। ईरान के तेहरान में भारतीय दूतावास ने सुरक्षा स्थिति में सुधार को देखते हुए भारतीय नागरिकों के लिए एक नया परामर्श जारी किया है। दूतावास ने कहा कि बदलते घटनाक्रमों के बावजूद भारतीय नागरिकों को अगली सूचना तक सभी गैर जरूरी यात्राओं से बचना चाहिए। देश में रह रहे भारतीय नागरिकों और बहुत आवश्यक होने पर ईरान यात्रा करने वालों को अत्यधिक सावधानी और सतर्कता बरतने तथा स्थिति पर लगातार नजर रखने की सलाह दी गई है। ताजा जानकारी और आगामी परामर्श के लिए दूतावास की आधिकारिक वेबसाइट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगातार नजर रखने को कहा गया है। आज पासपोर्ट सेवा दिवस है। ये दिन 24 जून 1967 को पासपोर्ट अधिनियम के लागू होने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस अवसर पर विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम के दूसरे चरण का क्रियान्वयन, चिप आधारित ई पासपोर्ट की शुरुआत, नए पासपोर्ट सुरक्षा केंद्रों और पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र की स्थापना तथा रिकॉर्ड स्तर पर पासपोर्ट जारी करने से यात्रा सुगम हो रही है। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि सेवा, सुशासन और नागरिक सुविधा के संकल्प के साथ इंडिया पोस्ट द्वारा संचालित डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र के माध्यम से पासपोर्ट सेवाएं देश के सुदूर क्षेत्रों तक भी पहुंच रही हैं। फीफा फुटबॉल विश्व कप में ग्रुप के में पुर्तगाल ने उज्बेकिस्तान को 5-0 से हरा दिया है। पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 2 गोल दागे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी। द न्यूज रेड बाय अभिषेक मुखोपाध्याय। India strongly objected to Pakistan raising the Kashmir issue at the United Nations Forum, accusing Islamabad of politicizing the platform, also slammed it for misusing its position as co-chair instead of being unbiased, as behooves the position. The remarks were made by India's permanent representative to the UN in New York, P. Harish, in response to comments by Pakistan's permanent representative, Asim Iftikhar Ahmed. Responding to Pakistan's intervention, Mr. Harish criticized the conduct of the co-chair and reiterated India's long-standing position on Jammu and Kashmir. He added that Union Territory of Jammu and Kashmir is a matter strictly internal to India. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar today said that the rollout of Passport Seva Program 2.0, introduction of chip-enabled e-passports, opening of new Passport Seva Kendras and Post Office Passport Seva Kendras and record levels of passport issuance are enhancing ease of travel, expanding access to global opportunities and empowering citizens. In a social media post, the minister extended greetings to all passport authorities in India and abroad on the occasion of the 14th Passport Seva Divas. Dr. Jaishankar also reaffirmed the government's commitment to keep making passport services delivery faster, more transparent and accessible, guided by the vision of Surakshit Passport, Sugam Seva and Sashakt Nagrik. National security advisors and senior security officials from the BRICS nations called for stronger cooperation to address the widening range of global security challenges, including terrorism and cyber threats, during a high-level meeting hosted by India in the national capital. Speaking at the meeting, National Security Advisor Ajit Dobhal stressed the need for collective deliberation and cooperation among BRICS nations to address the emerging security risks and evolving forms of terrorism in an increasingly digitized world.
4: We need to be cognizant of the new security threats and challenges. Non-traditional threats have transcended national borders and have developed defeat systems against conventional responses. Innovative disruptive technologies, more camouflaged variants of terrorism, cyber threats in a world which is getting increasingly

0: London. श्रोताओं, शहर की रफ्तार चाहे जितनी भी तेज हो, दोपहर का ये एक घंटा थोड़ा ठहर जाने और सुकून से सांस लेने का नाम है। तो बस अपने रेडियो की सुई यही ठीक यहीं पर टिकाइए, बाकी का इंतजाम हम करे लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपकी अपनी श्रुति पुरी और आज इस कार्यक्रम में मेरी हम सफर है
1: रश्मि कुकरेती। और श्रुति जी, आपको और FM गोल्ड चैनल दिल्ली के सभी श्रोताओं और आकाशवाणी इंद्रप्रस्थ चैनल के सभी श्रोताओं को मेरा भी प्यार भरा नमस्कार। और ये है आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम घर आंगन FM गोल्ड 100.1 MHz पर। और अगर आप इस वक्त घर के किसी कोने में भाई चाय की प्याली थामे बैठे हैं, या ऑफिस की भागदौड़ के बीच में एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, या कर रहे हैं गाड़ी में सफर, या फिर बस यूं ही दिन भर की व्यस्तताओं से कुछ पल चुरा पाए हैं, तो आइए अगले 50 मिनट हम साथ बिताते हैं।
0: दोपहर के 12:10 से 1 बजे तक, यानी इस वक्त में सिर्फ आपका और हमारा साथ है। आप हमें सिर्फ FM गोल्ड पर ही नहीं सुन सकते हैं।

0: प्रेस चैनल पर 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्स, BRM 810 किलोहर्ट्स पर, और हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़े श्रोता हमें AIR न्यूज लाइव 24x7 यूट्यूब चैनल पर भी सुन सकते हैं।
1: और इस सफर में अगर कोई बात आती है ना आपके दिल में, कोई सुझाव हो, कोई शिकायत हो या कोई प्रतिक्रिया देनी हो, तो जरूर लिखिए fmgoldga@gmail.com पर, क्योंकि आपकी हर राय श्रुति जी हमारे लिए बहुत जरूरी है ना, है ना? और जल्दी हर बार की तरह हम आपसे कुछ पूछने भी वाले
0: हैं। रश्मि रुको रुको, अभी नहीं, पहले हम सुनाएंगे ये प्यारा सा गीत लता मंगेशकर की आवाज में। फिल्म है जब प्यार किसी से होता है।

0: तो दोस्तों, एक बार एक छोटा सा बच्चा साइकिल चलाना सीख रहा था। बार बार गिरता, घुटने छिल जाते, मगर हर बार उठकर फिर पैडल पर पैर रखता।
1: किसी ने उससे पूछा कि इतने बार गिरने के बाद भी तुमने हार नहीं मानी। बच्चे ने मुस्कुराकर कहा, मैं गिरा नहीं, मैं सीख रहा था। यही सोच है हमारे मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब की, और उन्होंने इसको बहुत अच्छे से शब्दों में बांधा था। आप जानती हो रश्मि क्या कहा था उन्होंने?
0: भाई, अगर आप असफल होते हैं तो कभी हार मत मानो, क्योंकि जब फेल होते हैं ना, यानी FAIL, उसका अर्थ है फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। पहला सबक सीखा आपने।
1: जी बिल्कुल, और जिंदगी भी कुछ ऐसी ही साइकिल है ना रश्मि, जिसमें गिरना तो तय है लेकिन उठना जो है
0: हमारे हाथ
1: वो
0: में
1: हमारे
0: है।
1: हाथ
0: जी
1: में है।
0: बिल्कुल। और देखिए, जो श्रुति थॉमस एडिसन ने जब बल्ब बनाया तो हजारों बार कोशिश की और हर नाकामी से उन्होंने कुछ सीखा।
1: हाँ बिल्कुल। तो दोस्तों, अगली बार जब कोई कोशिश नाकाम हो ना आपकी, तो उसे हार मत समझिए, उसे
0: जी
1: समझिए कि ये पहली कोशिश है जो आपको आगे कामयाब बनाएगी।
0: बिल्कुल, असफलता को हम दुश्मन नहीं माने, अपना दोस्त माने, अपना गुरु माने, क्योंकि वही आपको मंजिल तक पहुंचाएगी और सही रास्ता दिखाएगी।
1: तो दोस्तों, क्या आपने भी असफलता की सीढ़ी से सफर शुरू किया था जो बाद में सफलता में तब्दील हुआ? तो झटपट लिख भेजिए और ईमेल तो बता दे रश्मि
0: जी
1: आप।
0: बिल्कुल, बताती हूँ, fmgoldga@gmail.com। भाई जल्दी से लिख डालिए कि आपने क्या सबक सीखा जब पहली असफलता मिली और सफलता कैसे मिली।
1: और तब तक आनंद लीजिए इस गीत का।

0: लता मंगेशकर और मुकेश को अभी आप सुन रहे थे। फिल्म थी एक हसीना दो दीवाने। देखो रश्मि, अभी हमने सवाल पूछा था और हमारे श्रोता कितने जागरूक हैं, हमें फटाफट से एक मेल भी मिल गया है। और ये मेल हमें भेजा है नवीन भाटिया, जो मोती नगर दिल्ली से हैं। ये लिख रहे हैं कि 2003 में जब काम शुरू किया था तो कॉन्फिडेंस बिल्कुल कम था, पर धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बढ़ गया और आगे बढ़ते गए
1: जी। और एक और संदेश है, आप हैं अदिति दिल्ली से, वो कह रही हैं कि भाई स्कूल में एक दौड़ प्रतियोगिता में मैं पूरे आत्मविश्वास के साथ भागी, लेकिन आखिर समय में हार गई, लेकिन उस हार से मैंने प्रेरणा ली, मेहनत की और फिर अगली रेस जीती। भाई वाह अदिति, बनाए रखिए ऐसा ही जज्बा।
0: बिल्कुल। और देखो रश्मि, ये जो कैलेंडर होता है ना, कभी नोटिस किया ये कितने कमाल की चीज है। उसका एक ही पन्ना, एक ही तारीख, न जाने कितनी कहानियां अपने अंदर समेटे होता है।
1: भाई श्रुति, क्योंकि तारीख सिर्फ एक नंबर नहीं होती ना, वो तो किसी संघर्ष की निशानी होती है, किसी के सुर की गूंज होती है, बड़े बदलाव की शुरुआत भी होती है।
0: बिल्कुल रश्मि। और आज 24 जून है और ये तारीख कुछ ऐसी ही दिलचस्प कहानियां अपने अंदर छुपाए बैठी है। चलिए इन्हें एक एक करके खोलते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं उस दुनिया की तरफ जहां फैसले लिए जाते हैं, संधियां होती हैं और जहां सदियों से तस्वीर एक जैसी ही रही है, बदली नहीं है।
1: मैं समझ गई आप क्या कहना चाह रही हैं, थोड़ी सी पहेलियां बुझा रही हैं, लेकिन यानी कि कॉन्फ्रेंस टेबल में चारों भाई सूट बूट में बैठे पुरुष हैं, लेकिन भाई आज तो 24 जून इसी तस्वीर को बदलने का एक प्रतीक वाला दिन है। और ये दिन है दोस्तों डिप्लोमेसी में महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, है ना?
0: हाँ बिल्कुल। और साल 2022 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस दिन को मान्यता दी और इसका मकसद सिर्फ एक दिन का जश्न नहीं था बल्कि एक सवाल खड़ा करना था कि कूटनीति की दुनिया में महिलाएं कहाँ हैं।
1: वाह भाई भाई, क्योंकि इतिहास गवाह है कि जब भी महिलाओं को मौका मिला उन्होंने मिसाल कायम की। और कूटनीति सिर्फ ताकत की भाषा नहीं है, समझ और संवेदनशीलता की भी भाषा है, और ये भाषा तो भाई महिलाओं से बेहतर कौन जानता है, है ना?
0: बिल्कुल बिल्कुल। और यही वजह है कि ये दिन हर साल हमें याद दिलाता है कि जब तक आधी दुनिया की आवाज मेज पर नहीं होगी तब तक दुनिया के फैसले अधूरे रहेंगे।
1: और आज का दिन खास है क्योंकि आज की तारीख में एक सुर भी बसता है। जी हाँ, साल 1897 में आज ही के दिन जन्मे थे पंडित ओमकारनाथ ठाकुर, जिन्होंने आजादी की सुबह आकाशवाणी से वंदे मातरम गाकर इतिहास रच दिया था।
0: और साथ ही आज भारत के चौथे राष्ट्रपति वीवी गिरी की भी पुण्यतिथि है। वो इतिहास के इकलौते ऐसे राष्ट्रपति थे जो निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में सर्वोच्च पद पर रहे।
1: जी तो दोस्तों, बदलाव चाहे कूटनीति की मेज पर हो, संगीत के मंच पर हो या राजनीति के गलियारों में, उसकी जड़ में तो है हिम्मत और डटकर खड़े रहने की ताकत।

0: और आप सुन रहे थे लता मंगेशकर जी को, फिल्म थी दिल लगी।
1: हाँ, और देखो रश्मि, एक और मेल आई है पढ़ू उसे?
0: जी बिल्कुल
1: देखो अच्छा लगता है ना जब श्रोता हमसे बात करते हैं, अपने विचार अपने
0: जी
1: अनुभव
0: जी
1: हमसे साझा
0: जी
1: करते हैं। ये मेल आई है डी राजेश्वर राव की, और ये दिल्ली से लिख रहे हैं। लिख रहे हैं कि जब भी मैं कभी ऑफिस जाता हूँ तो गाड़ी में आपका FM सुनता हुआ जाता हूँ, मेरी एनर्जी बढ़ जाती
0: वाह
1: है।
0: वाह, क्या बात है।
1: और लिख रहे हैं कि जो असफलता है ना, वो एक कदम है, एक मील का पत्थर है सफलता की ओर। तो फेलियर कुछ भी नहीं होता, सफलता
0: वाह
1: की
0: क्या बात
1: सीढ़ियां ही
0: है
1: है ये
0: जी,
1: सब।
0: बिल्कुल। और एक और संदेश हमें मिला है कोटद्वार।

0: ये प्यार से रिश्तों को संजोए रखिए, जैसे हम संजोए रखते हैं
1: जी
0: यहाँ
1: बिल्कुल
0: एफएम
1: बिल्कुल।
0: गोल्ड के
1: और
0: चैनल से।
1: देखो बिल्कुल एक और मेल पढ़ दूं।
0: जी बिल्कुल।
1: ये गौरी शंकर जी का आया है, दिल्ली से। लिखते हैं कि आप दोनों बेटियों को राम राम, इंसान पूरी जिंदगी सीखता है, यानी मरते दम तक। शुरू में हम कोई काम सीखते हैं, मेहनत करने पर कामयाबी ना मिले तो हम दूसरे काम की कोशिश करने लगते हैं, शायद वहां कामयाबी मिल जाए। यानी कि हार नहीं माननी चाहिए, इंसान को कामयाबी जरूर मिलेगी। बाकी प्रोग्राम सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है।
0: वाह,
1: बहुत
0: अच्छा लग रहा है और
1: शुक्रिया।
0: मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा भी लगता है जब मैं फिल्में देखती हूँ, श्रुति, है ना। मैं
1: हाँ
0: थोड़ा सा बदल रही हूँ, अब सब्जेक्ट बदल रही हूँ, कि फिल्में मुझे बहुत अच्छी लगती हैं और
1: तो
0: हिंदी फिल्में भी मुझे बहुत पसंद
1: अच्छा,
0: हैं।
1: तो रश्मि जरा सोचिए, आपने आखिरी फिल्म कौन सी देखी थी? वो हिंदी में थी या किसी और भाषा में थी जिसने आपका दिल जीत लिया? शायद वो कंतारा थी या आरआरआर थी या कोई मराठी फिल्म थी?
0: भाई श्रुति, आपको जानकर बहुत हैरानी होगी, मैं क्षेत्रीय सिनेमा बहुत देखती हूँ और बरसों तक हमारे देश में एक धारणा बनी रही कि भाई बड़ी फिल्मों का अर्थ है हिंदी फिल्में, करोड़ों का बजट और उनके वहां के सुपरस्टार। पर विश्वास कीजिए, क्षेत्रीय सिनेमा बहुत खूबसूरत निखर कर आ रहा है।
1: और जानती हो, बाकी सब सिनेमा जो छोटा सीमित सिर्फ अपनी भाषा और अपने राज्य तक ही सीमित था, उसको कम पहचान मिलती थी। लेकिन अब
0: लेकिन पिछले सालों में बहुत कुछ बदला है ना
1: बिल्कुल
0: श्रुति,
1: बिल्कुल
0: और ये बदलाव अचानक नहीं आया बल्कि धीरे धीरे मगर मजबूती से बना है। भाई देखो, आज तेलुगु सिनेमा ऑस्कर तक पहुंचा है और कन्नड़ सिनेमा राष्ट्रीय बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड तोड़ता है। मलयालम सिनेमा की अगर बात करें तो भाई कहानी कहने की कला में दुनिया भर में सराहा जाता है। वाह, वहां की कला फिल्में और पंजाबी, बंगाली, मराठी, असमिया, भोजपुरी सिनेमा की तो अलग पहचान है।
1: और जानती हो रश्मि, इस बदलाव के पीछे एक बड़ी वजह है डबिंग का जादू।
0: भाई वाह, भाई
1: हाँ
0: डबिंग का जादू आपसे ज्यादा कौन जानेगा, आप तो आवाज की जादूगर हो ही, है ना।
1: नहीं वो तो देखो, हम यहाँ पर बैठे हैं तो सभी आवाज के जादूगर हैं।
0: जी
1: और आज कोई भी फिल्म जो है ना, सिर्फ अपनी मूल भाषा तक ही नहीं रुकती, बल्कि वो हिंदी में डब होकर सीधे पूरे भारत के घर घर तक पहुंचाती है। और कई बार तो तमिल, बंगाली, पंजाबी में भी डब होकर देश के हर कोने में अपनी जगह बना
0: हाँ,
1: लेती है।
0: और देखिए श्रुति, ओटीटी प्लेटफॉर्म के ने इस सफर को और भी आसान बना दिया है, क्योंकि एक क्लिक पर आप भाषा बदल सकते हैं। यानी कि आप फिल्म देख रहे हैं, आपको पसंद नहीं आई, आपको जम नहीं रही, तो आपने भाषा बदल दी और कहानी अपनी पसंद की जुबान में सुन सकते हैं। यही वजह है कि अब क्षेत्रीय सिनेमा सिर्फ अपने राज्य या अपनी भाषा तक सीमित नहीं रहा, बल्कि हर क्षेत्र में भी अपनी गर्मजोशी के साथ देखा जा रहा है और सराहा जा रहा
1: और
0: है।
1: इतना ही नहीं, क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में भी बहुत बड़ा योगदान दे रहा है क्षेत्रीय सिनेमा। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज हम घर बैठे अलग अलग राज्यों की कला और संस्कृति से रूबरू हो पा रहे हैं, और शायद इसीलिए नए टैलेंट को पहचान भी मिल
0: भाई
1: रही
0: और
1: है।
0: भी तो टैलेंट दिखाओ, कोई गीत भी तो सुनाओ श्रुति।
1: हाँ बिल्कुल सुनाते हैं। तो अप्रैल फूल फिल्म में आप सुने
0: लता
1: मंगेशकर
0: को।

0: देखो रश्मि, कितना अच्छा लगता है ना जब श्रोता हमारे कार्यक्रम के साथ जुड़ते हैं तो मजा आ जाता है। और एक और मेल हमारे पास आई है, ये हैं सुदर्शन मुखी, अनीता मुखी और सिमरन मुखी। ये लिख रहे हैं कि गिरकर उठना सीख लो, यही असली जिंदगी है। हार का डर मत पालो, कोशिश छोड़ना ही हार है। लक्ष्य को कभी मत छोड़ो, ये या तो मंजिल मिल जाएगी या फिर अनुभव। कितनी बढ़िया बात कही है ना।
1: बात है, वाह वाह। और एक और संदेश हमें प्राप्त हुआ है, कांता जी रोहिणी से कह रही हैं कि माँ की कहानी बता रही हैं। वो कह रही हैं कि बच्चों को अच्छी परवरिश देने की कोशिश में मुझे कई बार ऐसा लगा कि शायद मैं सही नहीं कर रही हूँ, लेकिन समय के साथ जब बच्चों को आगे बढ़ते देखा तो मैं समझ गई कि हर छोटी बड़ी गलती से भी जो सीख का हिस्सा ही थी और हर छोटी बड़ी गलती से मैंने सीखा। बहुत अच्छी बात। देखिए क्या करना है क्या नहीं करना बच्चों के साथ जो सिखाना है वो माँ से बेहतर और कौन जान सकता है ना।
0: और आजकल तो देखो फोन हर बच्चे के हाथ में है, हर बड़े के हाथ में
1: जी,
0: है
1: जी।
0: तो फोन से अगर हम अच्छी चीज जाने ना तो कितना अच्छा रहता है। मतलब ज्ञानवर्धक बातें अगर हमें मिलती रहे, हमारी जानकारियां बढ़ती रहे तो कितना अच्छा है।
1: बिल्कुल। और सवेरे सवेरे अगर फोन स्क्रॉल करे ना श्रुति जी, तो कभी कीटो डाइट, कभी इंटरमिटेंट फास्टिंग, कभी प्रोटीन डाइट, कभी डिटॉक्स जूस, ये सब भरमार दिख जाती है। और हर कोई कहता है ये तरीका अच्छा है। सच बताऊं कई कई बार मेरे दिमाग में बहुत उलझन पैदा हो जाती है।
0: देखो ना रश्मि, हर हफ्ते एक नया फिटनेस ट्रेंड आता है और हर ट्रेंड यही दावा करता है कि उसके पास सबसे तेज और सबसे आसान नतीजा है। दरअसल इन ट्रेंड्स की लोकप्रियता का सबसे बड़ा कारण जो है ना वो सोशल मीडिया की रफ्तार है। जहां किसी सेलिब्रिटी की एक पोस्ट या किसी इन्फ्लुएंसर का एक वीडियो किसी भी थ्योरी को रातों रात मशहूर बना देता है, भले ही वो शरीर के लिए सही हो या ना हो।
1: भाई श्रुति, मुझे तो लगता है इसके मुकाबले खड़ी है एक बहुत पुरानी और सीधी सीधी सोच भाई, जिसे कहा जाता है संतुलित डाइट, माने है ना। और इसमें ना कोई सख्त परहेज है ना कोई चमत्कारी शॉर्टकट है। बस आपको ये समझना है कि शरीर को अनाज, सब्जी, फल, प्रोटीन और थोड़ी वसा सभी की जरूरत है और इन्हें सही मात्रा में लेना ही असली सेहत की कुंजी है।
0: देखो कई बार ना ये जो हमारे पोषण विशेषज्ञ हैं ये बार बार यही कहते हैं कि किसी एक खाद्य समूह को पूरी तरह से छोड़ देना या किसी एक ही चीज को सब कुछ मान लेना लंबे समय में नुकसान कर सकता
1: है।
0: जबकि संतुलित और अच्छा खान पान जो होता है ना वो शरीर को लंबे समय तक मजबूत और ऊर्जावान बनाए रखता है।
1: तो यही तो कारण है श्रुति कि फिटनेस ट्रेंड चाहे कितने भी चमकदार दिखे लगे और कोई असली और टिकाऊ नतीजा जो है ना वो तो भाई संतुलन से ही मिलता है, भाई किसी फॉर्मूले से नहीं मिलता।
0: हाँ बिल्कुल ठीक कहा। तो अगली बार श्रोताओं अगर आपको कोई नया डाइट ट्रेंड फीड पर दिखे तो एक पल के लिए रुकें और सोचें कि क्या वो वाकई संतुलन की जगह ले सकता है या फिर एक नया शोर है। इसी सोच के साथ चलिए सुनते हैं ये गीत लता मंगेशकर की आवाज में, जिसे हमने लिया है हम आपके हैं कौन फिल्म से।

0: और श्रुति भाई, चॉकलेट लाइम जूस की बात हुई और ऐसे ही खाने पीने से जुड़ी जो है एक जवाब आ गया है मेरे पास, एक संदेश है। तो आप हैं सुरभि दिल्ली से, वो बता रही हैं कि पहली बार जब पूरे परिवार के लिए कोई खास डिश बनाई तो बिल्कुल ही खराब बन गई। हाँ, घर में सब हंसे, लेकिन फिर उस दिन से मेरे को खाना बनाने सीखने का शौक पैदा हुआ और आज मैं बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ भाई।
1: ये
0: वाह सुरभि।
1: बिल्कुल ठीक कह रही हो, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था कुछ, लेकिन वो बात हम बाद में करेंगे। अभी एक और मेल बता देते हैं। इदरिस सैफी जी का मेल आया है, ये बोल रहे हैं कि सुबह 11 बजे से रात के 9 बजे तक मैं दुकान पर बैठकर सिर्फ FM गोल्ड ही सुनता हूँ।
0: और इन्हें सवाल भी बता दो श्रुति एक
1: हाँ,
0: बार फिर।
1: सवाल बताना बहुत जरूरी है। हमने सवाल पूछा था कि क्या आपकी सफलता की सीढ़ियों में पहली सीढ़ी असफलता की थी, तो
0: और उससे आपने क्या सीखा है
1: और
0: ना?
1: उससे आपने क्या सीखा, क्योंकि आपके अनुभव किसी के लिए प्रेरणा बन सकते हैं।
0: जी
1: तो यदि आप हमारे कार्यक्रम से अभी जुड़े हैं तो हमें झटपट मेल भेजिए
0: FM गोल्ड
1: हमारे
0: चैनल, FM गोल्ड GA@gmail.com
1: पर।
0: जी।
1: और देखो, एक और मेल आया है हमारे पास, ये डी राजेश्वर राव जी का ही है, जिन्होंने जिनका मेल अभी हमने पढ़ा था। उन्होंने बोला कि मेरी
0: एक और
1: बेटी,
0: मेल आया
1: हाँ,
0: उनका
1: उनका
0: जी।
1: एक और मेल आया है, ये लिख रहे हैं कि मेरी बेटी जो है वो एक आर्टिस्ट है और MFA उसने किया था शांति निकेतन से, पर वो कहती है कि मैंने कुछ मिस्टेक्स कर दी, तो लेकिन वो कभी डिमोरलाइज नहीं होती है और वो हमेशा सही काम करने की सोचती है। तो हमेशा हर एक को सक्सेसफुल होने के लिए काम करना ही चाहिए।
0: जी, और चलते जाना ही जिंदगी का नाम है,
1: बिल्कुल।
0: रुकना हमारा काम नहीं है ना। और जब चलते जाना है तो फिर तो यानी कि एक सफर की बात हो रही है
1: हाँ,
0: ना। भाई एक खुली
1: बिल्कुल।
0: सड़क हो और खिड़की से आती ताजी हवा हो, पसंदीदा गीत हो और मंजिल कोई तय नहीं हो, बस चलते जाना हो, तो भाई इसे कहते हैं श्रुति रोड ट्रिप। इसका अलग ही मजा है ना।
1: बिल्कुल, क्या बात है रश्मि, बहुत शायराना बातें कर रही हो। ये कहीं हाल ही में तुमने कोई रोड ट्रिप तो नहीं किया, उसका अनुभव
0: जी
1: तो नहीं बता
0: नहीं।
1: रहे हैं। पर
0: जी
1: बात तो सच है, कभी कभी सफर ही मंजिल बन जाता है। आज पूरे भारत में रोड ट्रिप का जो क्रेज बढ़ रहा है ना, वो सिर्फ एक ट्रेंड नहीं है बल्कि एक नई सोच, एक जीवन का नया दर्शन है।
0: जी बिल्कुल। अब भारत में जो कहा जा रहा है कि यात्री अब हवाई जहाज की बजाय सड़क मार्ग से यात्रा करना पसंद कर रहे हैं और ये संख्या हर साल बढ़ती जा रही है। दरअसल ना, रोड ट्रिप का एक ऐसा अनुभव है जो वो आपको सब कुछ ऐसा दिखाता है जो फ्लाइट की खिड़की से कभी नहीं दिखता है ना।
1: बिल्कुल, रास्ते में पड़ने वाला एक छोटा सा ढाबा, किसी अनजान गांव की सुबह, पहाड़ों के बीच अचानक मिलती झील, या किसी गांव में किसी बुजुर्ग से अगर 5 मिनट बातचीत हो जाए, तो ये जिंदगी भर याद रहती है।
0: पर
1: यही तो
0: यही तो
1: असली
0: जी बिल्कुल। और
1: यात्रा
0: देखो ना श्रुति, कोरोना के बाद में ना लोगों में भीड़भाड़ वाली जगहों से बचने की एक प्रवृत्ति बढ़ी है और रोड ट्रिप उन्हें अपनी शर्तों पर, अपने समय पर और अपने लोगों के साथ घूमने की आजादी देती है। और अगर हम अपने देश भारत की बात करें तो यहाँ पर तो रोड ट्रिप के लिए पहले से भी बेहतर समय है ना।
1: हाँ, और जानती हो क्यों? क्योंकि सरकार के भारतमाला प्रोजेक्ट से देश में राष्ट्रीय राजमार्ग जैसे लेह लद्दाख, स्पीति वैली, कच्छ करण, कोंकण तट, कुर्ग की हरियाली, ये सब अब पहले से ज्यादा आसानी से सड़क मार्ग से जुड़ गए हैं। और
0: जी
1: युवाओं में तो ये जुनून इस कदर बढ़ा है कि सोलो रोड ट्रिप यानी अकेले निकल पड़ना एक नई
0: वाह।
1: पहचान बन गई है, खासकर महिलाओं में,
0: अच्छा।
1: जो अब बिना किसी झिझक के अकेले ही लंबी लंबी यात्राएं कर रही हैं।
0: तो दोस्तों, अगर जिंदगी की भाग दौड़ में कभी थका हुआ महसूस करें, मन उदास हो, कभी एक ब्रेक चाहिए, तो गाड़ी निकालिए, एक रास्ता चुनिए और निकल पड़िए, क्योंकि कुछ जवाब किताबों में नहीं मिलते भाई, सड़कों पर मिल जाते हैं जब आप बाहर निकलते हैं। रोड ट्रिप सिर्फ एक यात्रा नहीं है, खुद को फिर से खोजने का सबसे खूबसूरत तरीका है। पर सड़क पर चलते हुए ख्याल

0: देखो कितनी गर्मी पड़ रही है ना रश्मि, और ये जब चिलचिलाती धूप हो, शरीर थका हुआ हो, गला सूख रहा हो, तो एनर्जी ड्रिंक का ख्याल चारों तरफ से घेर लेता है। तब एक बार जरा सा थोड़ा सा रुककर सोचो तो सही कि हमारी नानी दादी बिना किसी एनर्जी ड्रिंक के इतनी गर्मी में भी तंदुरुस्त कैसे रहती थी।
1: भाई मैं बताती हूँ श्रुति, इसका जवाब है भाई सत्तू, वो देसी सुपर फूड जो सदियों से बिहार, उत्तर प्रदेश और पूर्वी भारत के घरों में गर्मियों का सबसे भरोसेमंद साथी रहा है और आज पूरे देश में जिसकी धूम मच रही है।
0: जानती हो रश्मि, सत्तू असल में भुने हुए चने या जौ को पीसकर बनाया जाता है, और इसे गरीबों का प्रोटीन भी कहा जाता है। गरीबों का नहीं, आजकल तो सबका प्रोटीन है, लेकिन इसके गुण बहुत महंगे हैं, क्योंकि जो किसी भी प्रोटीन पाउडर से कतई कम नहीं है। 100 ग्राम सत्तू में लगभग 22 ग्राम प्रोटीन, 7 ग्राम फाइबर और भरपूर मात्रा में आयरन, मैग्नीज और मैग्नीशियम पाया जाता है।
1: भाई मैं तो इतना जानती हूँ श्रुति कि ये शरीर को अंदर से ठंडा रखता है, पाचन दुरुस्त करता है और देर तक भूख नहीं लगने देता। और भाई गर्मियों में लू से बचाव के लिए तो सत्तू का शरबत एक कवच की तरह काम करता है। और अब तो बड़े बड़े शहरों में भी सत्तू की वापसी हो रही है।
0: हाँ, अब तो कैफे और हेल्थ स्टोर्स जो है ना, उनमें भी सत्तू स्मूदी, सत्तू के लड्डू, सत्तू एनर्जी बार मिलने लगे हैं।
1: वाह,
0: और फिटनेस विशेषज्ञ तो अब खुलकर सत्तू को पोस्ट वर्कआउट मील के रूप में सुझा रहे हैं।
1: भाई बहुत अच्छी बात है, अपना देसी सत्तू जो है इसे बहुत आसान ड्रिंक बना सकते हैं। हम आपको बता लेते हैं है
0: हाँ,
1: ना,
0: बिल्कुल।
1: नमकीन सत्तू शरबत कैसे बनाएं। भाई 1 गिलास ठंडे पानी में 2 बड़े चम्मच सत्तू घोलिए, उसमें आधा नींबू निचोड़िए और चुटकी भर काला नमक और थोड़ा सा भुना जीरा पाउडर मिला लीजिए। बस तैयार है आपका देसी कूलिंग ड्रिंक जो लू से भी बचाए और एनर्जी भी दे।
0: और अगर मीठा सत्तू पीना हो तो 1 गिलास ठंडे दूध या पानी में 2 चम्मच सत्तू, 1 चम्मच गुड़ या शहद और इलायची पाउडर मिलाइए। ये बच्चों को बहुत पसंद आता है और सुबह के नाश्ते के लिए बहुत बढ़िया विकल्प है।
1: हाँ, और देखिए कितने सारे तरीके हैं इसे इस्तेमाल करने के लिए। भाई आप सत्तू की लस्सी भी बना सकते हैं। एक कप दही ले, उसमें 2 चम्मच सत्तू डालें और थोड़ा पानी डालें, काला नमक और पुदीना मिलाकर फेंट दें और प्रोटीन से भरपूर ये ड्रिंक दोपहर की थकान को पल भर में उड़ा देती है और पेट भी देर तक भरा रखती है।
0: हाँ बिल्कुल, तो इस गर्मी में महंगे जो सप्लीमेंट और आर्टिफिशियल ड्रिंक्स है ना, इनसे थोड़ा सा ब्रेक लीजिए और अपनी रसोई में उसी पुरानी विरासत को जगह दीजिए। सत्तू सिर्फ एक खाद्य पदार्थ नहीं, ये हमारी संस्कृति का हिस्सा है, हमारे पुरखों की समझदारी है और जलती गर्मी में आपके शरीर के लिए प्रकृति का सच्चा तोहफा है। तो इसके साथ आप सीधा

0: भाई समय का तो पता नहीं चला, और देखिए आज की ये 50 मिनट की मुलाकात भी यहाँ पूरी हो रही है। उम्मीद है आपके दिन के इस हिस्से में हम थोड़ा सा सुकून और थोड़ी ताज़ा सोच जोड़ पाए होंगे।
1: आपकी राय, आपके सुझाव हमारे लिए हमेशा अहम रहेंगे, तो लिखते रहिए fmgoldga@gmail.com पर, और हमें बताइए कि आज की ये बातचीत आपको कैसी लगी। ये सिलसिला यही नहीं थमेगा, कल फिर इसी समय इसी जगह घर आंगन में आपका इंतजार करेंगे। तब तक के लिए स्वीकारिए श्रुति पुरी
0: और रश्मि कुकरेती का प्यार भरा नमस्कार।
1: नमस्कार। जी।

0: लता मंगेशकर को अभी आप फिल्म आंखें में सुन रहे थे।
1: आंगन आपके अस्तित्व आपके व्यक्तित्व से जुड़ा आपका घर आंगन। घर आंगन।

0: कड़ी आपत्ति व्यक्त की है। पाकिस्तान पर संयुक्त राष्ट्र मंच का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाते हुए भारत ने कहा कि साध्यक्ष के रूप में निष्पक्ष रहने के बजाय पाकिस्तान ने पद का दुरुपयोग किया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने साध्यक्ष के तौर पर पाकिस्तान के आचरण की आलोचना की। पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि आसिम इफ्तिखार अहमद की टिप्पणियों के जवाब में पी हरीश ने जम्मू कश्मीर पर भारत के लंबे समय से चले आ रहे रुख को दोहराया। उन्होंने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर पूरी तरह से भारत का आंतरिक मामला है। ईरान के तेहरान में भारतीय दूतावास ने सुरक्षा स्थिति में सुधार को देखते हुए भारतीय नागरिकों के लिए संशोधित परामर्श जारी किया है। दूतावास ने कहा कि बदलते घटनाक्रमों के बावजूद भारतीय नागरिकों को अगली सूचना तक सभी गैर जरूरी यात्राओं से बचना चाहिए। देश में रह रहे भारतीय नागरिकों और बहुत आवश्यक होने पर ईरान यात्रा करने वालों को अत्यधिक सावधानी तथा सतर्कता बरतने और स्थिति पर लगातार नजर रखने की सलाह दी गई है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो 3 दिन की खाड़ी क्षेत्र की यात्रा पर हैं। इसका उद्देश्य ईरान के साथ हुए नए संवाद और समझौते के बाद प्रमुख अरब सहयोगियों को विश्वास दिलाना है। 4 महीने से चल रहे पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के लिए अमेरिका ने ईरान के साथ नया समझौता किया है। यात्रा से पहले श्री रूबियो ने कहा कि उनकी यात्रा का उद्देश्य ईरान और अमेरिका की बातचीत में खाड़ी देशों की राय को महत्व देना है। उन्होंने कहा कि किसी भी समझौते के अंतर्गत ईरान को होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले जहाजों पर टोल लगाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। उन्होंने टोल वसूली को अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ बताया। आज पासपोर्ट सेवा दिवस है। ये दिन 24 जून 1967 को पासपोर्ट अधिनियम के लागू होने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस अवसर पर विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम के दूसरे चरण का क्रियान्वयन चिप आधारित ई पासपोर्ट की शुरुआत, नए पासपोर्ट सुरक्षा केंद्रों और पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र की स्थापना तथा रिकॉर्ड स्तर पर पासपोर्ट जारी करने से यात्रा सुगम हो रही है। भारी उद्योग मंत्री एचडी कुमार स्वामी ने इस्पात उद्योग से भविष्य के विकास के लिए डिजिटलीकरण अपनाने को कहा है। आज नई दिल्ली में इस्पात क्षेत्र में डिजिटलीकरण पर आयोजित चिंतन शिविर में उन्होंने ये बात कही। इस्पात क्षेत्र के मजबूत प्रदर्शन का उल्लेख करते हुए श्री कुमार स्वामी ने कहा कि देश वर्ष 2018 से विश्व के दूसरे सबसे बड़े इस्पात उत्पादक के रूप में अपनी मजबूत स्थिति बनाए हुए है। प्रवर्तन निदेशालय मुंद्रा बंदरगाह से 3000 किलोग्राम मादक पदार्थ आयात मामले से जुड़े धनशोधन मामले में दिल्ली के 5 स्थानों पर तलाश अभियान चला रहा है। निदेशालय के अधिकारियों ने बताया कि ये तलाशी हरप्रीत सिंह तलवार, शम शुदरुन और उनके सहयोगियों से जुड़े परिसरों पर की जा रही है। अधिकारियों ने बताया कि मादक पदार्थ से प्राप्त धन का कथित तौर पर दिल्ली के नाइट क्लबों में निवेश किया गया था। आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सेंट्रल विस्टा कॉरिडोर के लिए केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन पर निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। संवाददाताओं से बात करते हुए उन्होंने इस क्षण को ऐतिहासिक बताया और कहा कि ये परियोजना आवागमन को सुगम बनाएगी।
1: बहुत ही ऐतिहासिक मूवमेंट है जब देश की राजधानी जहां से पूरी सरकार चलनी है सेंट्रल विस्टा और यहां के कर्मचारी और यहां के जितने भी कार्यालयों में काम करने वाले सब लोग उनको एक ऐसी सुविधा प्रदान करने के लिए आज भूमि पूजन अथवा ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी आज ये की गई है और ये जब कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद दिल्ली के बहुत से छोर आपस में जहां जहां मेट्रो लाइन चलती हैं उनको ये जोड़ेगी। अब ये जो लाइन है ये आर के आश्रम से लेकर के और इंद्रप्रस्थ तक जिसके अंदर 9 स्टेशन है।
0: घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में लगभग 0.7% की वृद्धि दर्ज की गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 603 अंक के उछाल के साथ 76,804 पर जबकि निफ्टी 154 अंक बढ़कर 23,978 पर कारोबार कर रहा था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani. The news read by Abhishek Mukhopadhyay. India

सुभाष घई के निर्देशन में बनी कर्ज उस दौर की सबसे अनोखी फिल्मों में से एक थी। जब अधिकांश फिल्में पारिवारिक ड्रामा या एक्शन पर आधारित होती थी, तब कर्ज ने पुनर्जन्म, रहस्य, म्यूजिक और थ्रिलर का ऐसा मिश्रण प्रस्तुत किया जिससे दर्शक मंत्रमुग्ध हो गए। फिल्म 11 जून 1980 को रिलीज हुई थी और धीरे धीरे इसे भारतीय सिनेमा की कल्ट क्लासिक फिल्मों में शामिल किया जाने लगा। इस फिल्म में मुख्य भूमिका निभाई थी ऋषि कपूर ने, जो निभाया था किरदार मोंटी का, जो काफी फेमस हुआ था और बहुत ही लोकप्रिय भी हो गया था। ऐसा किरदार जो अपने पिछले जन्म की यादों के सहारे एक हत्या के रहस्य को उजागर करता है। इसके अलावा फिल्म में मुख्य भूमिका में थे

सिमी ग्रेवाल जो कामिनी का रोल किया, टीना मुनीम ने टीना का रोल किया, प्रेमनाथ, प्राण और राजकिरण। विशेष रूप से श्रोताओं, सिमी ग्रेवाल ने अपने नकारात्मक किरदार से दर्शकों को वाकई चौंका दिया था। उस समय पर ज्यादातर वो बहुत ही सॉफ्ट किरदार वाली फिल्में करती थी, बहुत ही पॉजिटिव किरदार वाली फिल्में करती थी, लेकिन कर्ज में उन्होंने एक महत्वाकांक्षी और खलनायिका का किरदार निभाकर अपने अभिनय क्षमता को दर्शकों के सामने दर्शा दिया।

0: हेलो
1: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
0: फिर से
2: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
3: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
0: सर इतने कहाँ से?
3: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
0: 2 लाख
4: क्या हुआ पापा?
0: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
2: अरे
0: काट दिया।
4: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
0: फ्रॉड?
4: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
0: तो पैसे गवाओगे,
5: RBI कहता है।
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म से। श्रोताओं, आज बात हो रही है फिल्म कर्ज की और कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ विजेता चतुर्वेदी। श्रोताओं, बात करते हैं इस फिल्म की कहानी की। कहानी शुरू होती है एक अमीर और नेक दिल युवक रवि वर्मा से। रवि को कामिनी नाम की एक खूबसूरत महिला से प्यार हो जाता है, कामिनी यानी कि सिमी ग्रेवाल, और दोनों शादी कर लेते हैं। लेकिन कामिनी का प्यार सच्चा नहीं होता और वो रवि की दौलत के लिए उससे शादी करती है। शादी के बाद कामिनी करोड़ों की संपत्ति की मालिक बन जाती है, लेकिन और दुर्घटना में यानी कि पहाड़ों से फेंक दिया जाता है रवि वर्मा को और उसको करार दिया जाता है कि ये दुर्घटना हो गई है। लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। रवि का पुनर्जन्म मोंटी नाम के गायक के रूप में होता है। बचपन से ही मोंटी को कुछ अजीब सपने आते रहते थे। जैसे जैसे वो बड़ा होता गया, उसे अपने पिछले जन्म की घटनाएं याद आने लगी थी। आखिरकार मोंटी कामिनी के अपराधों का पर्दाफाश करता है और अपने पिछले जन्म का बदला पूरा करता है। तो ये जो कहानी थी ये पुनर्जन्म की कहानी थी और यही सोचकर जब देखते हैं ना कि हीरो मर जाता है तो दर्शक मायूस हो जाते हैं, लेकिन जब वही हीरो मर के ऋषि कपूर के रूप में मोंटी के रूप में वापस आता है तो लोग एकदम से खुश हो जाते हैं और कहानी में एक अलग ही रोचक बन आ जाता है, एक अलग ही कहते हैं मोड़ आ जाता है, और ऐसा खूबसूरत मोड़ जिसे दर्शकों ने खूब सराहा, पसंद किया।

और कार्यक्रम में वक्त है अपने श्रोताओं के मेल्स को शामिल करने का। तो जी, सबसे पहला हमारे पास संदेश आया है सुनील पाठक जी का, और ये लिखते हैं कि एक ही फिल्म के तहत फिल्म कर्ज की गीतर कहानी सुन रहे हैं। फिल्म अपने जमाने की सुपरहिट फिल्म थी और इसे की कहानी और गीत सुनने के लिए सुनवाने के लिए तहे दिल से शुक्रिया। तो भैया, आपका भी शुक्रिया कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। नीतीश कुमार, तनुजा देवांगन, ईशात जुड़ रहे हैं पलारी छत्तीसगढ़ से, कार्यक्रम को सुन रहे हैं। साथ ही ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाब साबिर राही, महराज जहां, आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से जुड़ रहे हैं। इंदिरा नगर भवतपुर से राधेश्याम देवांगन और चंपा देवांगन जुड़ रहे हैं, कार्यक्रम सुन रहे हैं। सतीश अनेजा, विमला अनेजा लिखते हैं, कर्ज फिल्म बेहद खूबसूरत, अपने जमाने की हिट फिल्म रही है, गीत भी लाजवाब रहे हैं, सभी कलाकारों की भागीदारी भी शानदार थी। इसके अलावा संदेश हमारे पास आया है शशि भल्ला, किरण गुप्ता जी का, जगमोहन प्रजापति, किरण ठाकुर, और ये जुड़ रहे हैं मॉडल टाउन करनाल से। संदेश अगला है अजीत भवसार जी का, और ये लिखते हैं पुरानी फिल्म ऋषि कपूर, सिमी राजकिरण की फिल्म कर्ज, इस फिल्म में HMV का रिकॉर्ड है बिल्कुल, और डांस सॉन्ग फिल्म आ गया, गीत संगीत दोनों ही बहुत ही लाजवाब हैं। जिला पटियाला पंजाब से सोमदत्त, कैरव, ज्योति रानी, गुरमंत कौर, मनु भी जुड़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ पलारी से जुड़ रहे हैं प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा, यशस्वी वडिंगखेड़ा। पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली, आरती। जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं, और पहाड़गंज मुल्तानी डांडा से अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक, मधु नायक जुड़ रहे हैं। गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर जस्सी, सीता और गीता। फजिल का पंजाब खेड़ा से भूषण खेड़ा, विशु खेड़ा, विशाल खेड़ा और परिवार के सभी लोग जुड़ रहे हैं। और ये संदेश हमारे पास आया है दुर्गा कॉलोनी हांसी से राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी।

0: चौक गोराया जलंधर पंजाब से। तो देखिए हमारे पास बहुत सारे श्रोताओं के संदेश लगातार आ रहे हैं, आपके प्यार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल सुन लेते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।
1: Uptown girls, I know the 90s, we love it to the extreme and maximum.

श्रोताओं, कर्ज की कहानी 1975 की हॉलीवुड फिल्म द रीइंकार्नेशन ऑफ पीटर प्राउड से प्रेरित थी। सुभाष गहिर साहब ने खुद माना कि उस फिल्म का कुछ हिस्सा और भारतीय पुनर्जन्म की अवधारणा मिलाकर कर्ज फिल्म बनाई गई थी। और एक और खास बात यह है इस फिल्म की कि सिमी ग्रेवाल और ऋषि कपूर की ये दूसरी फिल्म थी साथ में। इसे पहले 1970 में मेरा नाम जोकर में दोनों साथ काम कर चुके थे। अब बात करते हैं इस फिल्म की म्यूजिक की, जो है इस फिल्म की जान, जैसे इस फिल्म को अमर बनाया लक्ष्मीकांत प्यारीलाल की जोड़ी ने। और इन दोनों महान संगीतकारों ने 1977 से लेकर 1980 तक लगातार 4 बार फिल्म फेयर अवार्ड बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर जीता था। और कर्ज ही इसी विजय सफर की आखिरी कड़ी थी। गीत लिखे थे महान गीतकार आनंद बख्शी जी ने, जिनकी कलम ने हिंदी सिनेमा को अनगिनत अमर गीत दिए। और गाने तो आप सुन ही रहे हैं इस फिल्म के गाने एक से

बढ़कर एक गाना ऐसा जहां आप ये फैसला नहीं कर सकते सकते कि कौन सा गाना ज्यादा फेमस है। और आवाज किशोर कुमार और लता मंगेशकर आशा भोसले की आवाजों में ये गाने हैं जो आज भी ऐसे हैं कि आपको थिरकने पर मजबूर कर देते हैं। तो आज का ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा श्रोताओं, आप हमें मेल करके जरूर बता सकते हैं। अब सुन लेते हैं कार्यक्रम का ये आखिरी गीत।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, डीआरएम 810 किलो हर्ट्स पर। अब समाचार होंगे। ते उर्दू च खबर सुनोगे।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। खबरां दे इस बुलेटिन नाल मैं अमन देव। पहला खास खबरां। भारत ने पाकिस्तान वालों संयुक्त राष्ट्र विच कश्मीर का मुद्दा उठाने ते सख्त इतराज जताया है। भारी उद्योग मंत्री एच डी कुमार स्वामी ने स्टील उद्योग नूं भविख दे विकास लई डिजिटलीकरण अपनाउण दा सद्दा दित्ता है। पंजाब विच वोटर सूचियां दी विशेष गहन सोध तहत घर घर गणना दा पड़ाव पलके तों शुरू हो रहा है। अमरीकी सीनेट ने राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप की ईरान विरुद्ध फौजी मुहिम नूं रोकण लई एक बिल पास किया है। हॉकी इंडिया ने 5 तों 14 जुलाई तक बरतानी

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान के खिलाफ कड़ा विरोध दर्ज कराया। पाकिस्तान पर सहअध्यक्ष के तौर पर अपनी स्थिति का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। ईरान में भारतीय दूतावास ने अपने नागरिकों के लिए संशोधित परामर्श जारी कर गैर जरूरी यात्राओं से बचने की सलाह दी। कोंकण और गोवा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में तेज बारिश और अचानक बाढ़ के बाद असम में हाई अलर्ट। हॉकी इंडिया ने अगले महीने ब्रिटेन दौरे के लिए 24 सदस्यीय जूनियर महिला टीम की घोषणा की और फीफा फुटबॉल विश्व कप में कोलंबिया ने

0: कांगो को 1-0 से हराकर नॉकआउट चरण में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के कश्मीर मुद्दा उठाने पर कड़ी आपत्ति व्यक्त की है। पाकिस्तान पर संयुक्त राष्ट्र मंच का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाते हुए भारत ने कहा कि साध्यक्ष के रूप में निष्पक्ष रहने के बजाय पाकिस्तान ने पद का दुरुपयोग किया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने साध्यक्ष के तौर पर पाकिस्तान के आचरण की आलोचना की। पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि आसिम इफ्तिखार अहमद के टिप्पणियों के जवाब में पी हरीश ने जम्मू कश्मीर पर भारत के लंबे समय से चले आ रहे रुख को दोहराया। उन्होंने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर पूरी तरह से भारत का आंतरिक मामला है।
1: मैं पाकिस्तानी पक्ष की टिप्पणियों का उल्लेख करता हूं। ये हैरान कर देने वाला है कि ऐसे मंच पर जहां राजनीतिक मुद्दों पर संतुलित और निष्पक्ष चर्चा की उम्मीद की जाती है ऐसी बातें कही गईं। मैं दोहराना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर पूर्ण रूप से भारत का घरेलू मामला है।
0: ईरान के तेहरान में भारतीय दूतावास ने सुरक्षा स्थिति में सुधार को देखते हुए भारतीय नागरिकों के लिए संशोधित परामर्श जारी किया है। एक रिपोर्ट।
2: भारतीय दूतावास ने कहा कि बदलते घटनाक्रमों के बावजूद भारतीय नागरिकों को अगली सूचना तक सभी गैर जरूरी यात्राओं से बचना चाहिए। बहुत आवश्यक होने पर ईरान यात्रा करने वालों को अत्यधिक सावधानी और सतर्कता बरतने तथा स्थिति पर लगातार नजर रखने की सलाह दी गई है। विश्वसनीय स्रोतों के जरिए स्थानीय घटनाक्रमों पर बारीकी से नजर रखने और स्थानीय अधिकारियों के निर्देशों का पालन करने को भी कहा गया है। लोगों से दूतावास को अपने बारे में जानकारी देने की सलाह दी गई है। ताजा जानकारी और आगामी परामर्श के लिए दूतावास की आधिकारिक वेबसाइट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगातार नजर बनाए रखने को कहा गया है। किसी भी तरह की सहायता के लिए दूतावास ने आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। ये नंबर है +98912810915। दूसरा नंबर है +98912810909। तीसरा नंबर +98912810902। और चौथा नंबर है +98993217935। इसके अलावा भारतीय नागरिक cons.tehran@mea.gov.in पर ईमेल के जरिए भी दूतावास से संपर्क कर सकते हैं। समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
0: विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने चुनौतीपूर्ण वैश्विक परिवेश के बीच भारत दक्षिण कोरिया संबंधों को और मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने कहा कि समान मूल्यों और आपसी विश्वास वाले देशों को और अधिक निकटता से मिलकर काम करना चाहिए। सियोल में दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ बैठक के दौरान उन्होंने ये बात कही।
1: इस साझेदारी को आगे बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है। इसमें सरकार के अलग अलग विभाग और देश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलू शामिल हैं, जिनके बीच तालमेल बैठाना बहुत आवश्यक है। मैं कहूंगा कि हमें भविष्य को ध्यान में रखते हुए एक आधुनिक साझेदारी की ओर बढ़ना चाहिए।
0: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो 3 दिन की खाड़ी क्षेत्र की यात्रा पर हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इसका उद्देश्य ईरान के साथ हुए नए संवाद और समझौते के बाद प्रमुख अरब सहयोगियों को विश्वास दिलाना है।
1: 4 महीने से जारी पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के लिए अमेरिका ने ईरान के साथ नया समझौता किया है। श्री रूबियो कल देर रात अबू धाबी पहुंचे। उनका संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत और बहरीन में बातचीत का कार्यक्रम है। इस सप्ताह के अंत में वे गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के अधिकारियों से मिलेंगे। इस दौरान वे क्षेत्रीय सहयोगियों को अमरीका और ईरान के बीच लागू अंतरिम शांति समझौते और संभावित अंतिम समझौते के ढांचे के बारे में जानकारी देंगे। यात्रा से पहले श्री रूबियो ने कहा कि उनकी यात्रा उद्देश्य ईरान और अमेरिका की बातचीत में खाड़ी देशों की राय को महत्व देना है। उन्होंने कहा कि किसी भी समझौते के अंतर्गत ईरान को होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले जहाजों पर टोल लगाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने टोल वसूली को अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ बताया। सप्ताहांत में स्विट्जरलैंड में अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत सकारात्मक रही, हालांकि दोनों पक्षों ने बैठक के बारे में अलग अलग राय व्यक्त की है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज

0: और यार ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रवर्तन निदेशालय मुंद्रा बंदरगाह से 3000 किलोग्राम मादक पदार्थ आयात मामले से जुड़े धनशोधन मामले में दिल्ली के 5 स्थानों पर तलाश अभियान चला रहा है। निदेशालय के अधिकारियों ने बताया कि ये तलाशी हरप्रीत सिंह तलवार, शम शुदरुन और उनके सहयोगियों से जुड़े परिसरों पर की जा रही है। अधिकारियों ने बताया कि मादक पदार्थ से प्राप्त धन का कथित तौर पर दिल्ली के नाइट क्लबों में निवेश किया गया था। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर कर्नाटक में उनके परिवार द्वारा संचालित एक ट्रस्ट को भूमि आवंटन से जुड़े कथित घोटाले में संलिप्त होने का आरोप लगाया है। पार्टी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने आज नई दिल्ली में कहा कि वर्ष 2024 में कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड ने एयरोस्पेस और रक्षा क्षेत्रों में अनुसंधान तथा विकास के लिए ट्रस्ट को लगभग 5 एकड़ औद्योगिक भूमि आवंटित की थी। श्री भंडारी ने आरोप लगाया कि इन क्षेत्रों में कोई पूर्व अनुभव न होने के बावजूद ट्रस्ट को लगभग 100 करोड़ रूपये की अनुमानित कीमत की भूमि आवंटित की गयी। भारी उद्योग मंत्री एचडी कुमार स्वामी ने इस्पात उद्योग से भविष्य के विकास के लिए डिजिटलीकरण अपनाने को कहा है। आज नई दिल्ली में इस्पात क्षेत्र में डिजिटलीकरण पर आयोजित चिंतन शिविर में उन्होंने ये बात कही। इस्पात क्षेत्र के मजबूत प्रदर्शन का उल्लेख करते हुए श्री कुमार स्वामी ने कहा कि देश वर्ष 2018 से विश्व के दूसरे सबसे बड़े इस्पात उत्पादक के रूप में अपनी मजबूत स्थिति बनाए हुए है। आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सेंट्रल विस्टा कॉरिडोर के लिए केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन पर निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। संवाददाताओं से बात करते हुए उन्होंने इस क्षण को ऐतिहासिक बताया और कहा कि ये परियोजना आवागमन को सुगम बनाएगी।
1: बहुत ही ऐतिहासिक मूवमेंट है जब देश की राजधानी जहां से पूरी सरकार चलनी है सेंट्रल विस्टा और यहां के कर्मचारी और यहां के जितने भी कार्यालयों में काम करने वाले सब लोग उनको एक ऐसी सुविधा प्रदान करने के लिए अश्मी पूजन अथवा ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी आज ये की गई है। और ये जब कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद दिल्ली के बहुत से छोर आपस में जहां जहां मेट्रो लाइन चलती है उनको ये जोड़ेगी। अब ये जो लाइन है ये आर के आश्रम से लेकर के और इंद्रप्रस्थ तक जिसके अंदर 9 स्टेशंस है।
0: केंद्रीय विद्यालयों के लिए 36वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता 2025-26 का पुरस्कार वितरण समारोह कल नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल इस समारोह की अध्यक्षता करेंगे। श्री मेघवाल विजेता विद्यार्थियों और विद्यालयों को पुरस्कार प्रदान करेंगे। पश्चिम बंगाल में कोलकाता के ताराताला के पास निर्माणाधीन गोदाम के छत गिरने से 5 लोगों के मारे जाने की आशंका है। मलबे में कुछ और लोग फंसे हुए हैं। अग्निशमन और आपातकालीन सेवा कर्मी तथा पुलिस बल मौके पर पहुंच चुके हैं। बचाव अभियान जारी है। आज पासपोर्ट सेवा दिवस है। ये दिन 24 जून 1967 को पासपोर्ट अधिनियम के लागू होने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस अवसर पर विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम के दूसरे चरण का क्रियान्वयन चिप आधारित ई पासपोर्ट की शुरुआत, नए पासपोर्ट सुरक्षा केंद्रों और पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र की स्थापना तथा रिकॉर्ड स्तर पर पासपोर्ट जारी करने से यात्रा सुगम हो रही है। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि सेवा, सुशासन और नागरिक सुविधा के संकल्प के साथ इंडिया पोस्ट द्वारा संचालित डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र के माध्यम से पासपोर्ट सेवाएं देश के सुदूर क्षेत्रों तक भी पहुंच रही हैं। गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज रानी दुर्गावती को श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि रानी दुर्गावती एक वीर रानी और नारी शक्ति का प्रतीक थीं। रक्षा मंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि रानी दुर्गावती ने अपनी मातृभूमि और संस्कृति की रक्षा में अद्वितीय साहस और वीरता का परिचय दिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने कोंकण और गोवा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। तटीय कर्नाटक और मध्य महाराष्ट्र में भी अगले दो दिन इसी तरह का मौसम रह सकता है। असम, मेघालय, कर्नाटक के भीतरी भाग, ओडिशा, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में 29 तारीख तक तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया गया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, लद्दाख में शनिवार तक तेज हवा के साथ वर्षा का अनुमान है। अरुणाचल प्रदेश के निचले सुबनसिरी जिले में तेज बारिश से असम के विभिन्न सीमावर्ती जिलों के निचले इलाकों में बाढ़ की आशंका बढ़ गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि असम में सभी संबंधित विभाग हाई अलर्ट पर हैं।
2: अरुणाचल प्रदेश में हुई भारी बारिश के बाद असम में संभावित बाढ़ की स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार ने सभी संभावित एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा है। इसके परिणाम स्वरूप असम में धेमाजी, लखीमपुर, विश्वनाथ और सोनितपुर सहित निचले क्षेत्रों में नदियों के जलस्तर और प्रवाह की गति में उल्लेखनीय वृद्धि होने की संभावना है। अगले एक से दो दिनों में बाढ़ का पानी और आगे के क्षेत्रों की ओर बढ़ सकता है। SDRF, NDRF और अन्य इमरजेंसी रेस्पॉन्स दलों को तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं। जिला प्रशासन को संवेदनशील क्षेत्रों पर कड़ी निगरानी रखने और आवश्यक एहतियाती उपाय सुनिश्चित करने को कहा गया है। निचले तथा बाढ़ संभावित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने, प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देश पालन करने, जलमग्न क्षेत्रों से दूर रहने तथा छोटी नावों से यात्रा न करने की सलाह दी गई है। राकेश तोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: हॉकी इंडिया ने 5 से 14 जुलाई तक ब्रिटेन दौरे के लिए 24 सदस्यीय जूनियर महिला टीम की घोषणा कर दी है। भारतीय टीम नए कोच टिम वाइट के नेतृत्व में जूनियर एशिया कप सहित आगामी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं की तैयारी के सिलसिले में स्कॉटलैंड और इंग्लैंड में 7 मैच खेलेगी। खैदिम शिलेमा जानू टीम की कमान संभालेंगी, जबकि निधि और एंगल हर्षारानी मिंज गोलकीपर की जिम्मेवारी संभालेंगी। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज मैक्सिको में खेले गए ग्रुप के मैच में कोलंबिया ने कांगो को 1-0 से हराकर नॉकआउट चरण में जगह बना ली। डैनियल मनोज के दूसरे हाफ में किए गए गोल की मदद से कोलंबिया ने लगातार दूसरी जीत हासिल करते हुए अगले दौर में प्रवेश किया। इससे पहले पुर्तगाल ने ह्यूस्टन में इसी ग्रुप के एक मैच में उज्बेकिस्तान को 5-0 से हराया। 41 वर्षीय क्रिस्टियानो रोनाल्डो के 2 शानदार गोल की बदौलत पुर्तगाल ने उज्बेकिस्तान पर 5-0 से जीत दर्ज की। रोनाल्डो अब 6 अलग अलग विश्व कप टूर्नामेंट में गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में 1% की वृद्धि दर्ज की गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 908 अंक के उछाल के साथ 77,109 पर, जबकि निफ्टी 241 अंक बढ़कर 24,065 पर कारोबार कर रहा था। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लेह में स्थित ऐतिहासिक हेमिस मठ में आज उत्साह और श्रद्धा के साथ हेमिस उत्सव की शुरुआत हुई। 2 दिन के उत्सव में देश विदेश के हजारों श्रद्धालु, पर्यटक, संस्कृति प्रेमी और बौद्ध विद्वान शामिल हो रहे हैं। प्रत्येक वर्ष मनाया जाने वाला हेमिस उत्सव लद्दाख के सबसे महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजनों में से एक है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान के खिलाफ कड़ा विरोध दर्ज कराया। पाकिस्तान पर सहअध्यक्ष के तौर पर अपनी स्थिति का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। ईरान में भारतीय दूतावास ने अपने नागरिकों के लिए संशोधित परामर्श जारी कर गैर जरूरी यात्राओं से बचने की सलाह दी। कोंकण और गोवा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में तेज बारिश और अचानक बाढ़ के बाद असम में हाई अलर्ट। हॉकी इंडिया ने अगले महीने ब्रिटेन दौरे के लिए 24 सदस्यीय जूनियर महिला टीम की घोषणा की और फीफा फुटबॉल विश्व कप में कोलंबिया ने कांगो को 1-0 से हराकर नॉकआउट चरण में जगह बनाई। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। आइए श्रोताओं, चलते हैं अगले कार्यक्रम की ओर। कार्यक्रम का नाम एक ही कलाकार। नमस्कार श्रोताओं, मैं रचना अग्निहोत्री आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ, अभिवादन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ आपके पसंदीदा कार्यक्रम एक ही कलाकार में। आज हम बात करेंगे 90 के दशक की उस अभिनेत्री की जिसने अपनी चुलबुली अदाओं, शानदार डांस और दमदार अभिनय से करोड़ों दिलों में जगह बनाई। जी हाँ, करिश्मा कपूर, जिन्हें प्यार से लोलो भी कहा जाता है। कार्यक्रम

श्रोताओं, 25 जून 1974 को जन्मी, मुंबई में जन्मी करिश्मा कपूर प्रतिष्ठित कपूर परिवार से आती हैं। उनके माता पिता अभिनेता रणधीर कपूर और बबीता कपूर हैं। उन्होंने कम उम्र में फिल्मों में कदम रख दिया था। 1991 में फिल्म प्रेम कैदी से अपने अभिनय करियर की उन्होंने शुरुआत की। उस दौर में कपूर परिवार की बेटियों का फिल्मों में आना असामान्य माना जाता था, लेकिन करिश्मा ने यह परंपरा बदली और अपने दम पर पहचान बनाई।

श्रोताओं, बहुत सारे करिश्मा कपूर पर फिल्माए हुए गीत हैं और इसी के साथ बहुत सारे ईमेल्स भी हमारे पास आ रहे हैं, बहुत सारे श्रोताओं के नाम हम एक बार आपको बता दें जो हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं। गुन्नौर से आदिल कमर, तस्दीक अली, मुजफ्फर अली, शुक्रिया धन्यवाद के साथ हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। किशनगंज बिहार से रविंद्र मोहन दास और आशा देवी भी हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ग्राम पजौनिया, जिला जालौन, उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार चंसौलिया, आदर्श सार्थक अलौकिक चंसोलिया भी हमारे कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सैयद मसरूर, शाइना हसन, नाजिया इब्राहिम भी हमारे कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पुरखुलूस आदाब कबूल करें, एक ही कलाकार कार्यक्रम को हम सुन रहे हैं। दादा बाबू रोड गिरिडीह झारखंड से मोहम्मद यासीन अंजान, साइमा नवाज, हसन नवाज, बाबू अहद, मिफ्रा नवाज, बेबी चाहत और सादिया, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन, पराग टेलर, पूना राम देवांगन, कृष्णा देवांगन, पलारी छत्तीसगढ़ से हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। मेरठ कैंट से दिग्दर्शन और कविता गौड़ हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। इसके साथ ही अगले मैसेज की तरफ जा रही हूं, जो कि आया है छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा और यशस्वी वर्मा का, जो कि हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत। संदीप मक्कड़ भी हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं, साथ में ज्योति मक्कड़, मन्नत मक्कड़, भरत मक्कड़, कमल साहनी, पिंगावाला चौक, गोराया, जालंधर, पंजाब से हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। बहुत सारे मैसेजेस हमारे पास आ रहे हैं। नमस्कार जी, पहला जी प्यार के पहले पंकज शर्मा जी, मुझे आपकी ये समझ में नहीं आ रही है, लेकिन हाँ, आप कहाँ से बोल रहे हैं, कहाँ से आपने मैसेज भेजा ये हमें दिखाई दे रहा है। मॉडल टाउन करनाल से सुधीर नूतन, अमर रमेश कुमार खत्री, संदीप गुगलानी, जगमोहन प्रजापति, प्रतिभा शर्मा, हरिपाल कौर, किरण ठाकुर, शशि बाला, किरण गुप्ता जी, राम राम जी के साथ हमारे कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। गांव फरांसी, जिला हिसार से राजकुमार डूडी जी, प्रमोद कुमार डूडी जी हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। 1991 में पहली फिल्म प्रेम कैदी से इन्होंने करियर की शुरुआत की, ये जानकारी हमें दे रहे हैं राजेश सेन जी। इन्हें घर में प्यार से बेबू कहते हैं, बेबो कहते हैं, इन्हें घर में प्यार से लोलो कहते हैं। मैं आपको बता दूं, इनकी जोड़ी गोविंदा के साथ इन्होंने कई सुपरहिट पिक्चर दी, राजा बाबू, धूले राजा, साजन चले ससुराल। आज इनके जन्मदिन पर इन्हें बहुत बहुत बधाई। यही लिखा है छत्रपति शिवाजी नगर खंडवा से राजेश सेन जी ने, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में और बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। एक ही कलाकार में आज करिश्मा कपूर जी के बारे में बहुत उम्दा बातें बता रही हो, लवली रोमांटिक गीत में मैं तो रस्ते पे जा रहा था। एवरग्रीन रेडियो ग्रुप गोवर्धन बिहारी कॉलोनी दिल्ली से तुलसी मस्कीन, वीना मस्कीन, चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशु रिधान खुराना हमारे कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। भोपालगढ़, राजस्थान से धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा और पूजा परिहार भी कार्यक्रम को सुन रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। सुदर्शन मुखी, अनीता मुखी, सिमरन मुखी, शांति नगर सोनीपत से हमारे कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है। चिरमिरी कुरासिया कालारी कालरी से इंद्रभान सिंह, अनुभव सिंह, ऋषभ सिंह, राम सहोदर, नारायण प्रसाद लहरे, दिनेश प्रसाद लहरे और कालिंद्री लहरे हमारे कार्यक्रम को सुन रहे हैं, हमारे कार्यक्रम में शामिल भी हो चुके हैं। बागपत उत्तर प्रदेश से संजय ढिंगिया, नमन ढिंगिया और अपार ढिंगिया भी कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। इसके साथ ही चलते हैं और सुनते हैं बहुत ही प्यारा सा नगमा करिश्मा कपूर जी पर फिल्माया गया।

1996 में आई राजा हिंदुस्तानी उनके करियर का बड़ा मोड़ रहा। इस फिल्म के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। 1997 में आई दिल तो पागल है ने करिश्मा कपूर को एक नई पहचान दी। इस फिल्म में उनके अभिनय और डांस को खूब सराहा गया। उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और फिल्म फेयर पुरस्कार दोनों मिले। हाल ही में उन्होंने बताया कि उस दौर में कई अभिनेत्रियों ने इस फिल्म में काम करने से मना कर दिया था क्योंकि उन्हें माधुरी दीक्षित के साथ डांस करना था, लेकिन करिश्मा ने इस चुनौती को स्वीकार किया और यादगार अभिनय किया।

हाँ श्रोताओ, सिर्फ मनोरंजक भूमिका ही नहीं बल्कि फिजा और जुबैदा जैसी फिल्मों ने करिश्मा के अभिनय का परिचय दिया। इन फिल्मों ने साबित कर दिया कि वे

श्रोताओं, हमारे पास मैसेजेस आ रहे हैं आपके। आप हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं और उसे पसंद कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक और मैसेज हमारे पास आया है, कभी रेडियो श्रोता संघ डोंडली

बूंदी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया, तुषार देव तामुरिया, डॉली बेबी, पूजा तामुरिया, राधिका और प्रभा देवी तामुरिया और पोता मास्टर अल कबीर भी हमारा कार्यक्रम सुन रहा है। आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। प्रोग्राम गीत पसंद आ रहे हैं ये लिख रहे हैं कस्बा गुन्नौर यूपी से फारूक अली खान, फैजी फराज, फरहीन फरहान, फारिया और ताहिरा। आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। छत्तीसगढ़ चूड़ी लाइन मुंगेली से मोहम्मद इसहाक, खतीजा बेगम मोहम्मद अशफाक, आफरीन कौसर मोहम्मद अल्ताफ, नीलोफर फातिमा भी हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक और मधु नायक भी हमारे कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं और इसी के साथ सुनते हैं कार्यक्रम का अंतिम गीत।

श्रोताओं, बहुत सारे मैसेजेस हमारे पास आ रहे हैं। मैडम जी नमस्कार के साथ, चने सरगोथ कराची से अमर रमेश कुमार खत्री, टेलर मास्टर कृष्ण लाल खत्री, मोहम्मद अमीन जफर, सादिक शेख, शंकर गुल शर्मा हमारे कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। इसके साथ ही अगले मैसेज की तरफ चल रहे हैं, जो कि कभी रेडियो श्रोता संघ डोंडीलो हारा बालोद छत्तीसगढ़ से ही आया है। देवशंकर तामुरिया जी ही हमारे कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं और लगातार हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं। बागपत उत्तर प्रदेश से संजय ढिंगिया, नमन ढिंगिया, अपार ढिंगिया नमस्कार के साथ हमारा कार्यक्रम पसंद आ रहा है, ये लिख रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में और बहुत बहुत शुक्रिया कार्यक्रम को पसंद करने के लिए। चिरमिरी कुरासिया कालरी से इंद्रभान सिंह, अनुभव सिंह, ऋषभ सिंह, राम सहोदर, नारायण प्रसाद लहरे, दिनेश प्रसाद लहरे और कालिंदरी लहरे भी हमारे कार्यक्रम को लगातार सुन रहे हैं। इसके साथ ही अगले मैसेज की तरफ चलते हैं, जो कि आया है सुदर्शन मुखी, अनीता मुखी, सिमरन मुखी, शांति नगर सोनीपत से हमारे कार्यक्रम को सुन रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आपने करिश्मा कपूर के बारे में बेहतरीन बातें बताई, रोचक किस्से सुनाए, नगमे भी सुनवाए, बेहतरीन प्रस्तुति रही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये लिख रहे हैं भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिंपा, कपिल छिंपा और पूजा परिहार। इसके साथ ही चलते हैं अगले मैसेज की तरफ, जो कि आया है एवरग्रीन रेडियो ग्रुप गोवर्धन बिहारी कॉलोनी दिल्ली से तुलसी मस्किन, वीना मस्किन, चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशु रिधान खुराना का, जो कि लगातार हमारे कार्यक्रम के साथ बने हुए हैं। दोस्तों, करिश्मा कपूर का सफर संघर्ष, मेहनत और सफलता की प्रेरक कहानी है। 90 के दशक की सबसे लोकप्रिय अभिनेत्रियों में शामिल करिश्मा ने हिंदी सिनेमा को अनेक यादगार फिल्में और गीत दिए हैं। इसी के साथ मुझे यानी रचना अग्निहोत्री को इजाजत दीजिए कार्यक्रम को समेटने की। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, आइए चलते हैं अगले कार्यक्रम की ओर, मैटिनी मेलोडीज़।

नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं मैटिनी मेलोडीज और मैं हूं आपकी दोस्त रचना अग्निहोत्री। आज हम लेकर आए हैं हिंदी सिनेमा का स्वर्णिम युग की ऐसी मधुर धुनें जिन्होंने दशकों बाद भी अपनी ताजगी और मिठास बरकरार रखी है। 1950 से 1990 के दशक के गीतों को अक्सर बॉलीवुड में गोल्डन इरा कहा जाता है, जो अपनी मधुरता, भावपूर्ण गायकी और उत्कृष्ट संगीत के लिए प्रसिद्ध है।

श्रोताओं, ये गीत जिंदगी के उन अनकहे एहसासों को बयां करता है जिन्हें शब्दों में बांधना आसान नहीं होता। लता जी की जादुई आवाज और शंकर जयकिशन का संगीत इसे अमर बनाता है।

दोस्तों, पुराने गीतों की सबसे बड़ी खूबी थी उनकी सादगी और गहराई। हर शब्द दिल को छू जाता था, हर धुन सीधे आत्मा तक पहुंचती थी।

स्वर्णिम दौर के गीतों में भारतीय शास्त्रीय संगीत और सुरीली धुनों का अद्भुत मेल देखने को मिलता था, जिसने इन्हें पीढ़ियों तक लोकप्रिय बना दिया। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला बहुत ही खूबसूरत गीत।

श्रोताओ, दोपहर की धूप में जब यादों का साया मिलता है तो पुराने गीतों का हर नगमा दिल को बहुत प्यारा लगता है ना।

दोस्तों, पुराने गीतों की खुशबू कुछ ऐसी होती है जैसे बंद किताब में रखा कोई गुलाब, सालों बाद भी महकता है और दिल को फिर से जवान कर जाता है।

दोस्तों, देखते ही देखते आज की ये संगीत की यात्रा अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच गई है। उम्मीद है कार्यक्रम के सारे गीत आपको बहुत पसंद आए होंगे और आपकी दोपहर को यादगार बना दिया होगा।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मैटनी मेलोडीज। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम, उर्दू मजलिस।

0: हम सफर के निस्वानी किरदार दीपाली सरकार, उमा राय और रोजी बहुत बाविकार और बावजन हैं। ये न सिर्फ मर्द किरदारों के मद्द मुकाबिल हैं, रफीक-ए-कार हैं, बल्कि वो मर्द किरदारों के मुकाबले ज्यादा साबित कदम, बेखौफ और अपने कॉज से ज्यादा कमिटेड नजर आते हैं। इस नॉवेल के निस्वानी किरदार सानवी या जिमनी किरदारों के बजाय मरकजी और बुनियादी किरदारों की शक्ल में नजर आते हैं। कुर्रतुल ऐन हैदर के नॉवलेट्स के मरकजी किरदार भी औरतें हैं। दिलरुबा उनका एक नॉवलेट है जो लखनऊ के जवाल पजीर जागीरदाराना माशरे के पस मंजर में लिखा गया है, जिसमें तब्दील होती हुई तहजीब की दास्तान है। इस नॉवलेट में एक तरफ खानदानी तवायफ गुलनार और उसकी बेटी गुलरू तरक्की करके एक फिल्म कंपनी चला रही हैं। बैनुल अक्वामी सतह पर वो ऐशो आराम और शोहरत की जिंदगी बसर कर रही हैं और दूसरी तरफ जागीरदार खानदान के जस्टिस रफाकत हुसैन और उनके बेटे बैरिस्टर शफात हुसैन जवाल की इस हद को पहुंच जाते हैं कि न सिर्फ उनका ताल्लुका जब्त और कोठी फरोख्त हो जाती है, बल्कि उनके खानदान की चश्मो चिराग दिलरुबा बनकर गुलनाज और गुलरु की फिल्म कंपनी में एक्ट्रेस बन जाती है और उनकी मुंह बोली बेटी भी बन जाती है यही दिलरुबा। इस नॉवलेट के सारे निस्वानी किरदार समाज के अखलाकी इकदार के दबाव में होते हुए भी अपनी किस्मत आप बना लेते हैं। ये औरतें किस्मत का गिला करके चुपचाप रो धोकर बैठ नहीं जाती, जिंदगी गुजारने के लिए जमाने की परवाह नहीं करती और आगे बढ़ती रहती हैं। उनका एक बहुत मशहूर नॉवलेट है अगले जन्म मोहे बिटिया न कीजो। इस जैसी अहदाफरी कहानी लिखकर औरत जात की हालत व कैफियत, जुबू हाली और माशरे के एक अलमिये को इस अंदाज से उन्होंने तहरीर किया है कि ये तहरीर अदब आलिया का लाफानी कारनामा बन गई है। एनी आपा ने एक इंटरव्यू में कहा था कि ये उनका सबसे अच्छा नॉवलेट है। इस नॉवल का उन्वान एक लोक गीत का मुखड़ा है, ओरे विधाता बिनती करूं तोरी पैया पढ़ूं बारंबार, अगले जन्म मोहे बिटिया न कीजो चाहे नरक दीजो डार। ये नॉवलेट दो गरीब लड़कियों रश्के कमर और जमीला की दास्तान पर मुश्तमिल है जो अपना पेट पालने के लिए रईस महजब और तालीम याफ्ता लोगों से भरी इस दुनिया में बे इंतहा जफा कशी करती हैं और मर्दों के इस्तेहसाल का शिकार है। इस नॉवलेट में गुर्बत की जो अक्कासी की गई है वो बहुत दिलदोज है, लेकिन इस नॉवल के निस्वानी किरदार किसी न किसी तरह जिंदा रहने के जतन करते हैं, हालात से नबर आजमा होते हैं। और उनका एक नॉवल है सीता हरण, जिसका मरकजी किरदार सीता मीर चंदानी इन किरदारों दूसरे किरदारों से बहुत मुख्तलिफ है। ये पढ़ी लिखी मुतमव्विल खानदान की सीता है जो तकसीम हिंद के बाद लुट पुट कर दिल्ली चली आती है और इसका महाजर खानदान बहुत सी माली मुश्किलात का सामना करता है। तहफ्फुज़ तमानियत और थोड़ी सी खुशी की तलाश में भटकती सीता एक मर्द से दूसरे मर्द की तरफ माइल होती रहती है। दो मजबूत बाजुओं का सहारा इसके लिए बहुत जरूरी है। हालात ने से एक शिकस्त खुर्दा औरत में तब्दील कर दिया है जिसकी इज्जत नफ्स पारा पारा हो चुकी है। जहनी खल्फिशार इंतहा को पहुंचता है तो वो निहायत आर्जी जिंसी ताल्लुक बनाने में भी नहीं झचकती। आमतौर पर इस नॉवल के मरकजी किरदार सीता को एक मनफी किरदार समझा जाता है, लेकिन इस नॉवलेट में मर्द असास दुनिया को भी देखिए। कमर इस्लाम चौधरी सीता को वरगलाने के बाद बीच मझधार में छोड़ जाता है। अपनी पसंद की लड़की से ब्याह करने के बाद खुशो खुर्रम जिंदगी गुजारने लगा। जमील भी सीता को तलाक न देने के बावजूद आराम से कुछ ही दिनों के अंदर एक स्पेनिश लड़की से शादी रचा लेता है। वो सीता को उसके बच्चे से मिलने तक नहीं देता कि वो एक आवारा और बद किरदार माँ है जिससे मिलना बच्चे के अखलाक पर खराब असर डालेगा। इस नॉवलेट में उस मर्द के किरदार के बारे में भी गौर कीजिए जो बीवी को अपने बच्चे कि माँ को बुरी तरह पीटने के बाद आधी रात के वक्त मूसलाधार बारिश में घर से निकाल देता है, माफी मांगने या सफाई में कुछ कहने का मौका ही नहीं देता। कुर्रतुल ऐन हैदर के नॉवलों में और अफसानों में नॉवलेट्स में औरत आजाद और खुद मुख्तार किरदारों की हैसियत से अपनी शनाख्त कराने वाली मर्दों की मरकजियत के खिलाफ एक चैलेंज बनकर उभरती है। वो सिर्फ एक सितमजदा रोती पीटती औरत नहीं है।
1: कुर्रतुल ऐन हैदर के निस्वानी किरदार।

0: तुम कहाँ जा रहे हो ऐ नासिर, तुम कहाँ जा रहे हो ऐ नासिर, वो किसी का कहाँ नहीं रखते, वो किसी का कहाँ नहीं रखते, वो बताते हैं हाल दुनिया का, वो बताते हैं हाल दुनिया का, जो के अपना पता नहीं रखते, जो के अपना पता नहीं रखते। तुम मसीहा मान लेता हूँ, तुम मसीहा हो मान लेता हूँ, दिल की लेकिन दवा नहीं रखते, दिल की लेकिन दवा नहीं रखते। कुछ भी हो जाए जिंदगानी में, कुछ भी हो जाए जिंदगानी में, दिल को दिल से जुदा नहीं रखते, दिल को दिल से जुदा नहीं रखते। रात को रात दिन को दिन कह दो, रात को रात दिन को दिन कह दो, इतना भी हौसला नहीं रखते, इतना भी हौसला नहीं रखते। दर बदर सर झुकाए फिरते हो, दर बदर सर झुकाए फिरते हो, क्या तुम अख्तर खुदा नहीं रखते, क्या तुम अख्तर खुदा नहीं रखते।
1: सामीन, अभी आप नवाए शायर के तहत जनाब हामिद अली अख्तर से उनका कलाम सुन रहे थे। प्रोग्राम था अक्से अदब और तरतीबो पेशकश थी इंतजार सैफी की। उर्दू मजलिस का आज का ये प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है। अपने मेजबान सरफराज आलम को इजाजत दें। खुदा हाफिज।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। अब से कुछ ही पलों में समाचार होंगे। नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान द्वारा कश्मीर मुद्दा उठाने पर कड़ी आपत्ति व्यक्त की है। पाकिस्तान पर संयुक्त राष्ट्र मंच का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाते हुए भारत ने कहा कि सह अध्यक्ष के रूप में निष्पक्ष रहने के बजाय पाकिस्तान ने पद का दुरुपयोग किया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि आसिम इफ्तिखार अहमद की टिप्पणियों के जवाब में जम्मू कश्मीर पर भारत का रुख दोहराया।
1: मैं पाकिस्तानी पक्ष की टिप्पणियों का उल्लेख करता हूं। यह हैरान कर देने वाला है कि ऐसे मंच पर जहां राजनीतिक मुद्दों पर संतुलित और निष्पक्ष चर्चा की उम्मीद की जाती है, ऐसी बातें कही गईं। मैं दोहराना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर पूर्ण रूप से भारत का घरेलू मामला है।
0: ईरान में तेहरान स्थित भारतीय दूतावास ने सुरक्षा स्थिति में सुधार को देखते हुए भारतीय नागरिकों के लिए नया परामर्श जारी किया है। दूतावास ने कहा है कि बदलते घटनाक्रमों के बावजूद भारतीय नागरिकों को अगली सूचना तक सभी गैर जरूरी यात्राओं से बचना चाहिए। बहुत आवश्यक होने पर ईरान यात्रा करने वालों को अत्यधिक सावधानी और सतर्कता बरतने तथा स्थिति पर लगातार नजर रखने की सलाह दी गई है। इस बीच अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो 3 दिन की खाड़ी क्षेत्र की यात्रा पर हैं। इस दौरान वे क्षेत्रीय सहयोगियों को अमेरिका और ईरान के बीच लागू अंतरिम शांति समझौते और संभावित अंतिम समझौते की जानकारी देंगे। श्री रूबियो का संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत और बहरीन में बातचीत का कार्यक्रम है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने चुनौतीपूर्ण वैश्विक परिदृश्य के बीच भारत दक्षिण कोरिया संबंधों को और मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया है। सोल में दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ बैठक के दौरान उन्होंने ये बात कही। विदेश मंत्री ने कहा कि वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय

0: परिदृश्य में विश्वसनीय साझेदारों के बीच सहयोग पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गया है।
1: इस साझेदारी को आगे बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है। इसमें सरकार के अलग अलग विभाग और देश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलू शामिल हैं, जिनके बीच तालमेल बैठाना बहुत आवश्यक है। मैं कहूंगा कि हमें भविष्य को ध्यान में रखते हुए एक आधुनिक साझेदारी की ओर बढ़ना चाहिए।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज अमरीकी व्यापार प्रतिनिधि राजदूत जैमिसिन ग्रीर और उनके प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठकें की। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि उन्होंने भारत अमरीकी व्यापार वार्ता की प्रगति की समीक्षा की और दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने के अवसरों पर चर्चा की। प्रवर्तन निदेशालय गुजरात के मुंद्रा बंदरगाह से 3000 किलोग्राम मादक पदार्थ आयात मामले से जुड़े धनशोधन मामले में दिल्ली के 5 स्थानों पर छापेमारी कर रहा है। निदेशालय के अधिकारियों ने बताया कि ये तलाशी हरप्रीत सिंह तलवार, शमशुद्दुरून और उनके सहयोगियों से जुड़े परिसरों पर की जा रही है। अधिकारियों ने बताया कि मादक पदार्थ से प्राप्त धन का कथित तौर पर दिल्ली के नाइट क्लबों में निवेश किया गया था। पश्चिम बंगाल में कोलकाता के ताराताला के पास निर्माणाधीन गोदाम की छत गिरने से 5 लोगों के मारे जाने की आशंका है। मलबे में कुछ और लोग फंसे हुए हैं। अग्निशमन और आपातकालीन सेवा कर्मी तथा पुलिस बल मौके पर पहुंच चुके हैं। बचाव अभियान जारी है। मौसम विभाग ने कोंकण और गोवा में आज मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। तटीय कर्नाटक और मध्य महाराष्ट्र में भी अगले 2 दिन इसी तरह का मौसम रह सकता है। असम, मेघालय, कर्नाटक के भीतरी भाग, ओडिशा, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में 29 तारीख तक तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया गया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में शनिवार तक तेज हवा के साथ वर्षा का अनुमान व्यक्त किया गया है। इस बीच अरुणाचल प्रदेश के निचले सुबनसिरी जिले में तेज बारिश से असम के विभिन्न सीमावर्ती

0: houses in Ogat Roy and before rallying past Chinese Taipei's Kua Kon. And that is the end of this news bulletin.
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, डीआरएम 810 किलो हर्ट्स पर। लीजिए प्रस्तुत है लापता व्यक्तियों के बारे में सूचना। सूचना अनुसार खोए हुए व्यक्ति का नाम है छवि पुत्री श्रीचंद, आयु 18 वर्ष है, रंग सांवला, चेहरा गोल, आंख नाक कान औसत है, कद 5 फुट। इनके बारे में किसी भी प्रकार की सूचना मिलने पर आप प्रभारी निरीक्षक थाना इकोटेक फेज 3 कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर से संपर्क कर सकते हैं। अगली सूचना अनुसार खोए हुए व्यक्ति का नाम है गुलशन कुमार। ये 17 मई 2026 से सदरपुर सेक्टर 45 नोएडा से लापता हैं। इनकी उम्र है 29 वर्ष, शरीर की बनावट मजबूत है, करीब 5 फुट 6 इंच कद है, बाएं हाथ पर टैटू बना हुआ है। इनके बारे में यदि आपके पास कोई भी जानकारी है तो आप प्रभारी निरीक्षक थाना सेक्टर 39 गौतम बुद्ध नगर से संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा मोबाइल नंबर 8868020954 पर भी सूचित कर सकते हैं। अगली सूचना अनुसार खोई हुई व्यक्ति का नाम है संतराम, पुत्र लालाराम। ये 12 मई 2026 से फेज 2 नोएडा सेक्टर 46 से लापता हैं। इनकी उम्र है 35 वर्ष, आंख नाक कान कद औसत है, रंग सांवला है। इनके बारे में किसी भी प्रकार की सूचना मिलने पर आप प्रभारी निरीक्षक थाना फेज 2 जनपद गौतम बुद्ध नगर से संपर्क कर सकते हैं, उन्हें जानकारी दे सकते हैं। अगली सूचना अनुसार लापता व्यक्ति का नाम है मनीष कुमार, पुत्र श्री छत्रपाल सिंह, निवासी सेक्टर 121 शिव कॉलोनी गौतम बुद्ध नगर। ये 3 मई 2024 से लापता है। आंख नाक कान औसत है, उम्र करीब 21 वर्ष है, कद 5 फुट 5 इंच है, शरीर की बनावट सामान्य है। इनके बारे में कोई भी सूचना मिलने पर आप प्रभारी निरीक्षक थाना बिसरख गौतम बुद्ध नगर को सूचित कर सकते हैं। मोबाइल नंबर है 9720123344। अन्य मोबाइल नंबर है 9218464004। लापता व्यक्ति का नाम है सोनी, पत्नी विमल कुमार। इन्हें अंतिम बार नया गांव गली नंबर 6 में देखा गया था 19 मई 2026 को। आयु 24 वर्ष है, आंख नाक कान औसत हैं, कद 4 फुट 6 इंच है। इनके बारे में यदि आपके पास किसी भी प्रकार की सूचना है तो आप प्रभारी निरीक्षक थाना फेज 2 जनपद गौतम बुद्ध नगर को सूचित कर सकते हैं। अन्य सूचना के अनुसार लापता व्यक्ति का नाम है सोनी, पुत्री जय भगवान, निवासी C98 पंचकुला गौतम बुद्ध नगर। ये 15 मई 2026 से लापता है। आयु है 25 वर्ष, कद 5 फुट। घटना के दिन इन्होंने जीन्स टॉप और तोता रंग के काले जूते पहने हुए थे। इनके बारे में कोई भी सूचना मिलने पर आप अमित कुमार प्रभारी निरीक्षक थाना बादलपुर गौतम बुद्ध नगर को सूचित कर सकते हैं एवं मोबाइल नंबर है 8923583355। खोए हुए व्यक्ति का नाम है सोनी, पुत्री राजेश, आयु 18 वर्ष है, आंख कान नाक औसत है, इकहरा बदन है, ऊंचाई 5 फुट है। इनके बारे में कोई भी सूचना मिलने पर आप थाना इकोटेक फेज 3 कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर प्रभारी निरीक्षक से संपर्क कर सकते हैं। खोए हुए व्यक्ति का नाम है मुनीस, पुत्र महेश, गांव गोकुल लगला कला सहजापुर, ग्राम ढाड़ा थाना कासना, आयु 18 वर्ष है, ऊंचाई 5 फुट। इनके बारे में यदि कोई भी सूचना आपको मिलती है तो आप धर्मेंद्र कुमार शुक्ल प्रभारी निरीक्षक थाना कासना कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर से संपर्क कर सकते हैं। इसी के साथ गुमशुदा व्यक्ति के संबंध में सूचना अब समाप्त हुई।

0: युवाओं के सपनों की उड़ान, रेडियो की मधुर पहचान, कहानियों के रंगों से सजा हर अरमान। आइए सुनते हैं दिलों को जोड़ती कुछ खास दास्तां। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं युवाणी और मैं हूँ श्वेता।
1: लग चुकी है तलब जीत की, अब खुद को आग में झोंक देंगे। ठोकरे कहती है मारा जाएगा, हौसले कहते हैं देख लेंगे। यूं ही नहीं मिलती मंजिलें, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। पूछा चिड़िया से कैसे बनाया आशियाना, बोली भरनी पड़ती है उड़ान, बार बार तिनका तिनका उठाना होता है। नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं आपका होस्ट अजीत बहुगुणा।
0: आज हम बात करेंगे आज के युवा की, उस युवा की जो अपने सपनों, मेहनत और इनोवेशन के दम पर दुनिया को नई ऊंचाइयों तक ले जा रहा है। हम जानेंगे कुछ ऐसी प्रेरणादायक कहानियां जो हमें बताती हैं कि आज का युवा सिर्फ अपना ही नहीं बल्कि देश का भविष्य भी बदल रहा है। तो अजीत, मैं आपसे एक सवाल पूछूं?
1: बिल्कुल।
0: जैसा कि कहते हैं, आज का युवा बदलाव नहीं बदलाव की पहचान है, आपको क्या लगता है ये कितना सही है?
1: बिल्कुल श्वेता, मुझे लगता है कि ये बात आज के युवाओं पर बिल्कुल सही बैठती है। आज का युवा सिर्फ सपने नहीं देखता बल्कि अपनी मेहनत, लगन और इनोवेशन के बल पर उन्हें हकीकत में भी बदल रहा है।
0: बिल्कुल अजीत, तो इसी बात पर हम सुनते हैं आज का पहला गीत, ऑल इज वेल फ्रॉम थ्री इडियट्स।

0: खूबसूरत गीत के बाद बढ़ते हैं अगले सेगमेंट में, मन से माइक्रोफोन तक। अजीत, हमारे देश में ऐसे कई युवा हैं जिनकी कहानियां लाखों लोगों के लिए इंस्पायरिंग है। आज मैं आपको दो ऐसे ही युवाओं, उत्कर्ष ठाकुर और शुभम बजाना की कहानी बताना चाहती हूँ। जब हमारे देश में COVID-19 जैसी महामारी आई थी, तब इन दोनों ने सीनियर सिटीजन्स की परेशानियों को समझा और उनके लिए एक ऐसी सुविधा शुरू की जिसने उनकी रोजमर्रा की जिंदगी को काफी आसान बना दिया। सबसे खास बात यह है कि उन्होंने सिर्फ सेवाएं शुरू नहीं की बल्कि उससे एक सफल स्टार्टअप में बदल दिया। आगे चलकर अपनी मेहनत और लगन के साथ द रेडी वाला ने सबवे, रोल्स किंग, फरार, बर्ट और मुंबईकर जैसे बड़े रेस्टोरेंट ब्रांड के साथ काम किया। अजीत,
1: क्या बात है श्वेता,
0: सिर्फ 10 महीनों में ही लाखों रुपए का एनुअल रेवेन्यू हासिल किया। आज ये स्टार्टअप ना केवल बड़े बायर्स को बल्कि आम ग्राहकों को भी सीधा किसानों से जोड़ने की दिशा में काम कर रहा है। ये कहानी हर युवा को ये संदेश देती है कि अगर सोच बड़ी हो, इरादे मजबूत हो और समाज के लिए कुछ करना चाहते हो तो हर चुनौती एक नया अवसर बदल सकती है। आज का युवा सिर्फ अपना भविष्य नहीं लिख रहा बल्कि भारत की कहानी भी लिख रहा है। और इसी प्रेरणादायक कहानी के साथ वक्त उछला है एक और खूबसूरत गीत का, तुम ही हो बंधु फ्रॉम कॉकटेल।

0: इसी के साथ श्रोताओं हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ जो है डे स्पेसिफिक वीकली सेगमेंट। तो श्वेता, आज की हर एक कहानी एक ही बात बताती है कि अगर हौसला हो तो हर एक सपना पूरा हो सकता है
1: जी।
0: और खुशी की बात यह है कि आज भारत सरकार भी युवाओं के सपनों को साकार करने के लिए बहुत सी योजनाएं चला रही है। आज हम बहुत सी महत्वपूर्ण योजनाओं पर बात करेंगे।
1: और क्या अजीत, आज का युवा सिर्फ नौकरी ढूंढने तक सीमित नहीं है। कोई एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है, कोई अपना स्टार्टअप शुरू करना चाहता है, कोई नए स्किल सीखना चाहता है और कोई टेक्नोलॉजी के माध्यम से दुनिया में अपनी पहचान बनाना चाहता है। इन सभी सपनों को साकार करने के लिए सरकार बेहतरीन योजनाएं लेकर आई है। चलिए इनमें से कुछ बेहद महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में बात करते हैं, पर उससे पहले एक और गीत सुन लेते हैं, गिव मी सम सनशाइन।
2: सारी उम्र हम मर मर के जी लिए, एक पल तो अब हमें जीने दो।

कंधों को किताबों के बोझ ने झुकाया, रिश्वत देना तो खुद पापा ने सिखाया। 99% मार्क्स लाओगे तो घड़ी वरना चढ़ी। लिख लिख कर पड़ा हथेली पर अल्फा बीटा गामा का छाला, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ने पूरा पूरा बचपन जला डाला।

0: विकास योजना यानी PMKVY। इसके अंतर्गत युवाओं को मुफ्त स्किल ट्रेनिंग, सर्टिफिकेशन और प्लेसमेंट असिस्टेंट दी जाती है। इस योजना का उद्देश्य है कि हर युवा अपनी क्षमता के अनुसार नए कौशल सीखे और आत्मनिर्भर बने।
1: और अगर आपके पास एक नया आइडिया है और आप अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो स्टार्टअप इंडिया आपके लिए बहुत उपयोगी योजना है। इसके माध्यम से नए एंटरप्रेन्योर्स को रजिस्ट्रेशन, मेंटोरिंग, फंडिंग सपोर्ट, टैक्स बेनिफिट्स और इंक्यूबेशन सेंटर्स की सुविधा मिलती है। आज भारत दुनिया के सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम में शामिल हो चुका है और इसमें युवाओं का योगदान सबसे अधिक है। श्वेता,
0: दोस्तों इसी तरह स्टैंडअप इंडिया योजना SC/ST और महिला एंटरप्रेन्योर्स को अपना बिजनेस शुरू करने के लिए बैंक लोन्स प्रदान कर रही है। ये योजना समान अवसर और समावेशी विकास का एक बेहतरीन उदाहरण है। इसी के साथ सुनते हैं अगला गाना, चक लेंदे फ्रॉम चानी चौक टू चाइना।

0: दोस्तों, बहुत से लोग बिजनेस शुरू करना तो चाहते हैं, लेकिन पैसों की कमी उनके सपनों के बीच आ जाती है। इसी समस्या का समाधान है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। इसके तहत बिना कोलेट्रल के माइक्रो और स्मॉल बिजनेस के लिए लोन दिया जाता है, चाहे टेलरिंग हो, मोबाइल रिपेयर, डेयरी फार्मिंग, ब्यूटी पार्लर या कोई छोटा व्यापार। मुद्रा योजना लाखों युवाओं को आत्मनिर्भर बना रहा है।
1: योजनाएं और युवा, शायद यही भारत है। पढ़ाई के बाद सबसे बड़ी चुनौती होती है एक्सपीरियंस। इसी को ध्यान में रखते हुए शुरू हुई है नेशनल एप्रिहेंसिव प्रमोशन स्कीम, यानी नैप्स। इसी योजना के तहत स्टूडेंट और ग्रेजुएट्स को इंडस्ट्रीज में प्रैक्टिकल ट्रेनिंग और स्टाइफेंड के साथ एप्रिहेंसिव करने का अवसर मिलता है। इसे युवाओं का कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है और एम्प्लॉयमेंट के चांसेस भी।
0: श्वेता, आज का युग डिजिटल युग है, इसीलिए डिजिटल इंडिया भी युवाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण अभियान है। डिजिटल लिटरेसी, ऑनलाइन सर्विसेज, ई गवर्नेंस और डिजिटल पेमेंट्स के माध्यम से भारत को डिजिटल एम्पावर्ड सोसाइटी बनाया जा रहा है। आज गांव का युवा भी इंटरनेट के माध्यम से दुनिया भर की जानकारी और अवसर तक अपनी पहुंच बना रहा है। तो चलिए इसी के साथ आगे चलते हैं मेक इन इंडिया में।
1: मेक इन इंडिया एक और महत्वपूर्ण अभियान। इसका उद्देश्य भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है और नए रोजगार का अवसर लाता है। जब देश में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, तब युवाओं के लिए एम्प्लॉयमेंट के नए रास्ते भी खुलते हैं।
0: बिल्कुल, आज का युवा सिर्फ करियर ही नहीं बनाना चाहता, बल्कि देश के लिए कुछ करना भी चाहता है। इसी सोच को आगे बढ़ाता है MY भारत, मेरा युवा भारत। ये प्लेटफॉर्म युवाओं को वॉलंटियरिंग, लीडरशिप, सोशल सर्विस और नेशन बिल्डिंग एक्टिविटीज से जोड़ता है। ये सिर्फ करियर नहीं, बल्कि जिम्मेदार नागरिक बनने की प्रेरणा भी देता है।
1: दोस्तों, इंटर्नशिप किसी भी करियर की मजबूत शुरुआत होती है, इसलिए प्राइम मिनिस्टर इंटर्नशिप स्कीम युवाओं को देश की प्रमुख कंपनीज में इंटर्नशिप का अवसर प्रदान करता है। इससे स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिलता है और इंडस्ट्री की जरूरतों को समझने का मौका भी।
0: अंत में बात करते हैं PM सेतु की। इस योजना का उद्देश्य है ITIs को मॉडर्न बनाना और वोकेशनल एजुकेशन को और ज्यादा स्ट्रांग बनाना। नई टेक्नोलॉजी, एडवांस मशीनें और इंडस्ट्री ओरिएंटेड करिकुलम के माध्यम से युवाओं को फ्यूचर रेडी बनाया जा रहा है। तो चलिए इसी के साथ सुनते हैं हम अपना अगला गीत, मुट्ठी में आसमान, फ्रॉम मूवी ऑफ इकबाल।

0: इन सभी योजनाओं का एक ही उद्देश्य है दोस्तों, हर युवा को अवसर मिले। चाहे आप पढ़ रहे हैं, नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, अपना स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं या किसी नए स्किल को सीखना चाहते हैं, सरकार की इन योजनाओं का लाभ उठाकर आप अपने सपनों को एक नई उड़ान दे सकते हैं।
1: बिल्कुल, याद रखिए, सपने वही सच होते हैं जिन्हें पूरा करने की हिम्मत भी हो। मेहनत आपकी होगी, हौसला आपका होगा, और जब सही मार्गदर्शन और सही अवसर साथ मिल जाए तो सफलता जरूर मिलती है।
0: इसी के साथ बढ़ते हैं हम अपने अगले सेगमेंट की तरफ, टुडे इन हिस्ट्री। युवा तो अपनी मेहनत से सफलता की ओर बढ़ ही रहा है, और इस सफर में हमारी महिलाएं भी किसी से कम नहीं हैं। आज 24 जून पूरी दुनिया इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन इन डिप्लोमेसी मना रहा है। इस दिन का असली उद्देश्य सिर्फ महिलाओं को सम्मान देना नहीं, बल्कि डिप्लोमेसी और अंतर्राष्ट्रीय रिलेशन में उनका महत्वपूर्ण योगदान की पहचान है। महिलाएं शांति स्थापना, देशों के बीच सहयोग बढ़ाना और विश्व में समानता का संदेश पहुंचाने में अहम भूमिका निभा रही हैं। आज भारत की ही नहीं, पूरी दुनिया इस बदलाव को एक सकारात्मक दिशा के रूप में देख रही है। जहां कभी डिप्लोमेसी का मुख्यतः पुरुषों के क्षेत्र माना जाता था, वहीं आज महिलाएं अपनी योग्यता, नेतृत्व और तीर्थ संकल्प से नए इतिहास लिख रही हैं। ये दिन हर युवा को प्रेरित करता है कि सपने देखने और उन्हें पूरा करने का अधिकार सबका है। अजीत, सफलता कभी भी जेंडर बायस की मोहताज नहीं है। और इसी खूबसूरत सोच के साथ आइए सुनते हैं चक दे इंडिया का गीत, बादल पे पांव हैं।

0: श्वेता, इतिहास एक दिन में नहीं बनता, लेकिन एक दिन अपने अंदर बहुत कुछ समा कर रखता है। इतिहास में हर दिन एक अपना एक विशेष महत्व है। आज के दिन 1564 में गोंडवाना की शासक रानी दुर्गावती मुगलों से लड़ते हुए शहीद हो गई थी। 1881 में आज के ही दिन ओम जय जगदीश हरे आरती के रचयिता पंडित श्रद्धाराम शर्मा का निधन हुआ था। 1863 में प्रसिद्ध भारतीय लेखक इतिहासकार काशीनाथ राजवाड़े का जन्म हुआ था। उन्हें संस्कृत और व्याकरण का प्रकांड पंडित माना जाता है। 1901 में आज के ही दिन दुनिया के सबसे मशहूर पेंटिंग में से एक पाब्लो पिकासो की पेंटिंग की पहली प्रदर्शनी पेरिस में लगी थी। पिकासो को 20वीं सदी के सबसे बड़े कलाकारों में से एक माना जाता है। श्वेता, 1938 में आज के ही दिन क्रिकेट को पहली बार टीवी पर प्रसारित किया गया था। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच चल रहे इस टेस्ट मैच को बीसीसी ने प्रसारित किया था और टेडी वकलाम ने कमेंट्री की थी। 1980 में भारत के चौथे राष्ट्रपति वीवी गिरी का निधन हुआ था। वे राष्ट्रपति के अलावा उपराष्ट्रपति, उत्तर प्रदेश, केरल और कर्नाटक के राज्यपाल भी रहे हैं। उन्हें 1975 में भारत रत्न से भी नवाजा गया। 1987 में लियोनेल मेसी का जन्म अर्जेंटीना में हुआ था। मेसी 2009 से 2012 तक लगातार 4 बार बेस्ट फुटबॉलर का खिताब भी अपने नाम कर चुके हैं। ऐसा करने वाले वो दुनिया के इकलौते खिलाड़ी हैं।
1: तो चलते हैं हम अपने अगले सेगमेंट क्विज पज में। दोस्तों, अब वक्त है आगे बढ़ने का। आज हम बात करेंगे एक ऐसे युवा

एंटरप्रेन्योर की जिसने साबित कर दिया कि बदलाव की शुरुआत किसी बड़े इन्वेस्टमेंट से नहीं बल्कि एक बड़ी सोच से होती है। बेंगलुरु के एक युवा एंटरप्रेन्योर ने देखा कि हर दिन हजारों किलो प्लास्टिक का ड्राई वेस्ट लैंडफिल में जा रहा है। अजीत, तुम्हें पता है, उन्होंने इस समस्या को सिर्फ बिजनेस अपॉर्चुनिटी नहीं बल्कि देश की जिम्मेदारी के रूप में देखा। इसी सोच के साथ उन्होंने एक डिजिटल प्लेटफॉर्म शुरू किया जहां लोग घर बैठे अपने रिसाइकलेबल वेस्ट बेच सकते हैं। ये वेस्ट सीधा ऑथराइज्ड रिसाइकल्स तक पहुंचाया जिससे प्लास्टिक दोबारा इस्तेमाल होता है, लैंडफिल का बोझ कम होता है। आज इस इनिशिएटिव की वजह से हजारों टन प्लास्टिक रिसाइकल हो चुका है, लोगों को रोजगार मिला है, रिसाइकलिंग के प्रति लोगों की जागरूकता भी बढ़ गई है। ये कहानी हमें बताती है कि आज का युवा सिर्फ नौकरी ढूंढने वाला नहीं बल्कि समस्याओं का समाधान ढूंढने वाला भी है। सस्टेनेबिलिटी सिर्फ एनवायरमेंट बचाने का नाम नहीं बल्कि नए अवसर, नए बिजनेस और नए भारत की पहचान है। और याद रखिए, प्रकृति की रक्षा ही भविष्य का सुरक्षा है। और इसी जज्बे के साथ सुनते हैं संजू मूवी का कर हर मैदान फतेह।

0: नए जानने और सीखने को मिला होगा। मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए और अपने सपनों को पंख देते रहिए। मैं हूँ श्वेता
1: और मैं हूँ अजीत।
0: हम आपसे लेते हैं इजाजत,
1: फिर मिलेंगे एक नए विषय और एक नए उत्साह के साथ।
0: तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए।
1: नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। अब आप समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान द्वारा कश्मीर मुद्दा उठाने पर कड़ी आपत्ति व्यक्त की है। पाकिस्तान पर संयुक्त राष्ट्र मंच का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाते हुए भारत ने कहा कि सह अध्यक्ष के रूप में निष्पक्ष रहने के बजाय पाकिस्तान ने पद का दुरुपयोग किया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि आसिम इफ्तिकार अहमद की टिप्पणियों के जवाब में जम्मू कश्मीर पर भारत का रुख दोहराया।
2: मैं पाकिस्तानी पक्ष की टिप्पणियों का उल्लेख करता हूं। यह हैरान कर देने वाला है कि ऐसे मंच पर जहां राजनीतिक मुद्दों पर संतुलित और निष्पक्ष चर्चा की उम्मीद की जाती है, ऐसी बातें कही गईं। मैं दोहराना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर पूर्ण रूप से भारत का घरेलू मामला है।
1: ईरान के तेहरान में स्थित भारतीय दूतावास ने सुरक्षा स्थिति में सुधार के बावजूद भारतीय नागरिकों को जारी नए परामर्श में अगली सूचना तक सभी गैर जरूरी यात्राओं से बचने को कहा है। बहुत आवश्यक होने पर ईरान यात्रा करने वालों को अत्यधिक सावधानी और सतर्कता बरतने तथा स्थिति पर लगातार नजर रखने की सलाह दी गई है। स्थानीय अधिकारियों के निर्देशों का पालन करने को भी कहा गया है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने चुनौतीपूर्ण वैश्विक परिदृश्य के बीच भारत दक्षिण कोरिया संबंधों को और मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया है। सोल में दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ बैठक में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में विश्वसनीय साझेदारों के बीच सहयोग पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज अमरीकी व्यापार प्रतिनिधि राजदूत जेमिसन ग्रीर और उनके प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठकें की। श्री गोयल ने भारत अमरीकी व्यापार वार्ता की प्रगति की समीक्षा की और दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने के अवसरों पर चर्चा की। उन्होंने वार्ता को आगे बढ़ाने के निरंतर प्रयासों की सराहना की। भारत और संयुक्त अरब अमीरात यूएई ने आज नई दिल्ली में सामरिक रक्षा साझेदारी ढांचे के अंतर्गत रक्षा सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए एक बैठक की आयोजित की। बैठक की सह अध्यक्षता अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के संयुक्त सचिव अमिताभ प्रसाद और यूएई के ब्रिगेडियर स्टाफ जमाल इब्राहिम मोहम्मद इब्राहिम अलमार जुकी ने की। चर्चा का मुख्य विषय रक्षा उद्योग सहयोग का विस्तार करना, नवाचार को बढ़ावा देना, विशिष्ट तकनीकों का लाभ उठाना और समुद्री सुरक्षा को मजबूत करना था। गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार को नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर

0: की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। स्वापक नियंत्रण ब्यूरो एनसीबी द्वारा आयोजित इस बैठक में केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और मादक पदार्थों से संबंधित कानून प्रवर्तन एजेंसियों के प्रतिनिधि मादक पदार्थों की तस्करी और दुरुपयोग से निपटने के प्रयासों की समीक्षा करने के लिए एक साथ आएंगे। श्री शाह इस अवसर पर मादक पदार्थ नियंत्रण के लिए वर्ष 2026 से 2029 के लिए दृष्टि पत्र जारी करेंगे। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने देश भर के राष्ट्रीय राजमार्गों पर अवैध पार्किंग और अतिक्रमण हटाने के लिए अभियान तेज कर दिया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने बताया कि ये कार्रवाई सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार की जा रही है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय राजमार्गों को अधिक सुरक्षित, सुगम और यात्रियों के लिए सुविधाजनक बनाना है। प्रवर्तन निदेशालय गुजरात के मुंद्रा बंदरगाह से 3000 किलो मादक पदार्थ आयात से जुड़े धन शोधन मामले में दिल्ली के 5 स्थानों पर छापेमारी कर रहा है। ये तलाशी हरप्रीत सिंह तलवार, शमसुद्रून और उनके सहयोगियों से जुड़े परिसरों पर की जा रही है। मादक पदार्थ से प्राप्त धन का कथित तौर पर दिल्ली के नाइट क्लबों में निवेश किया गया था। पश्चिम बंगाल में कोलकाता के तारातला में आज निर्माणाधीन गोदाम ढहने से 3 लोगों की मौत और 5 लोग घायल हो गए। घायलों का SMKM अस्पताल में इलाज चल रहा है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, पुलिस, अग्निशमन और आपातकालीन सेवाओं तथा स्थानीय लोगों ने बचाव कार्य में जुटे हुए हैं। मौसम विभाग ने कोंकण और गोवा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। तटीय कर्नाटक और मध्य महाराष्ट्र में भी अगले 2 दिन इसी तरह का मौसम रह सकता है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में शनिवार तक तेज हवा के साथ वर्षा का अनुमान है। हॉकी इंडिया ने अगले महीने ब्रिटेन दौरे के लिए 24 सदस्यीय जूनियर महिला टीम की घोषणा कर दी है। खेदिन शिलेमा चानू कप्तान तथा निधि और एंगिल हर्षारानी मिंज गोलकीपर की जिम्मेदारी दी गई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। India has strongly objected to Pakistan raising the Kashmir issue at a United Nations forum, accusing Islamabad of politicizing the platform, and also slammed it for misusing its position as co-chair instead of being unbiased as behoves the position. The remarks were made by India's permanent representative to the UN in New York, P. Harish, in response to comments by Pakistan's permanent representative, Asim Iftikhar Ahmed. Responding to Pakistan's intervention, Mr. Harish criticized the conduct of the co-chair and reiterated India's long-standing position on Jammu and Kashmir.
2: I also refer to the unwarranted remarks made by the representative of Pakistan. It is incredible that a co-chair expected to be balanced and unbiased in conduct has chosen to politicize this forum. I would only like to stress for brevity of time that the Union Territory of Jammu and Kashmir is a matter strictly internal to India. It has always been, is and will remain so.
1: The Indian Embassy in Tehran has issued a revised advisory for Indian nationals in view of the improving security situation in the country. In the light of recent positive developments and improvement in the overall situation, the embassy advised Indian nationals to contemplate about travelling to Iran. More from our correspondent.
3: Indian nationals are advised to continue to avoid all non-essential travel to Iran until further notice. The embassy said Indian citizens currently residing in Iran, as well as those required to travel to Iran for unavoidable reasons, are advised to exercise a high degree of caution, remain vigilant, and maintain constant situational awareness. The embassy also urged them to closely follow local developments through credible sources and comply with instructions issued by local authorities. The embassy further advised all Indian nationals currently in Iran and those arriving in the country to register their particulars with the embassy at the earliest opportunity. It also urged them to regularly monitor the embassy's official website and social media platforms for updates and further advisories. Vishnu PS, Akashwani News, Delhi.
1: Union Commerce and Industry Minister Piyush Goyal has concluded a series of meetings with U.S. Trade Representative Ambassador Jamieson Greer and his delegation this morning. In a social media post, Mr. Goyal said they reviewed the progress of the ongoing India-U.S. trade discussions and explored avenues to further deepen economic partnership between both countries. In West Bengal, rescue operations have started after an under-construction godown collapsed, trapping workers beneath heavy iron debris near Taratola in Kolkata today. Three persons

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, 5:10 हो चुके हैं और ये समय है लोक संगीत के कार्यक्रम लोक रंजनी का।

0: लोकरंजनी कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को नमस्कार। मैं हूँ आपके साथ शीतल और मेरे साथ हैं आज
1: वंदना
0: दीदी। तो वंदना दीदी, आज सबसे पहले अपने श्रोताओं से को क्या सुना रहे?
1: देखिए शीतल बहन, आज गंगा दशहरा है
0: जी,
1: और ये बहुत ही मतलब पावन दिन होता है और इसमें लोग बाग गंगा जी नहाने जाते हैं। जेठ का दशहरा होता है तो ये मेला भी लगता है
0: कई जगहों पे,
1: जगहों पे नहीं गंगा जी पे,
0: नहीं और, कई मंदिरों पे भी लगता है
1: बिल्कुल।
0: और आस्था की डुबकी लोग लगाते हैं, कहते हैं कि इस दिन गंगा स्नान का बहुत महत्व होता है।
1: बिल्कुल, तो आज पहले गंगा जी से ही बात करते हैं, तो हम भी मेले में चलते हैं।
0: हाँ चलिए चलते हैं।

0: शीतल बहन, देखिए अपने भाइयों को हम गंगा जी में स्नान करवा के ले आए हैं और आगे बढ़ते हैं, और अगला लोकगीत जो सुनीता महेश्वरी की आवाज में है उसको सुनाते हैं।
1: और उसमें वो क्या कह रही हैं, अपने झुमके की बाहर दिखा रही हैं, तो चलिए देखते हैं।
0: बिल्कुल।

0: श्रोता सुन रहे थे सुनीता महेश्वर की आवाज में ये लोकगीत, और अगला लोकगीत सुनेंगे हम रोली बरुआ की आवाज में।
1: जी बिल्कुल। और देखिए, आम का मौसम चल रहा है और आम के बाग में कोयल की जो आवाज आती है ना, शीतल बहन, वो अलग ही होती है।
0: लेकिन इस लोकगीत में बात चल रही है कि कोयल बिन बगिया सूनी लागे,
1: जी
0: तो आइए सुनते हैं।

नहीं बिल्कुल, अभी हमारे भाई सुन रहे थे रोली बरवा की आवाज में, बहुत प्यारा सा लोकगीत। और आगे बढ़ते हैं, अगला लोकगीत सुनवाते हैं सुधा श्रीवास्तव की आवाज में।

0: तो श्रोता सुन रहे थे सुधा श्रीवास्तव की आवाज़ में ये लोकगीत, और इसी के साथ हमारा आज का लोक रंजनी कार्यक्रम यही समाप्त होता है।
1: सुनने वाले सभी भाई बहनों को नमस्कार
0: नमस्कार।
1: और प्रस्तुत करता थे इस कार्यक्रम के प्रस्तुत करता थे तुषार पारासर और संयोजक शिव नंदन लाल।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे लोक संगीत का कार्यक्रम लोक रंजनी। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर। आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम, खेल खिलाड़ी।
1: खेल खिलाड़ी, खेलों का आईना।
2: नमस्कार, खेल खिलाड़ी कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ धर्मेंद्र और मेरे साथ हैं
3: विदुषी।
2: अगर हम खेलों की दुनिया की बात करें तो इस समय फुटबॉल का जादू तो सबके सिर चढ़कर बोल ही रहा है, साथ ही साथ महिला T20 विश्व कप क्रिकेट का रोमांच भी अपने चरम पर है। भारत की धड़कनें बढ़ी हुई हैं और अगर हम बात करते हैं शूटिंग की तो वर्ल्ड कप वहां पर भी चल रहा है लेकिन जूनियर वर्ग में, और भारत के लिए बड़े अच्छे परिणाम आ रहे हैं।
3: जी हाँ बिल्कुल, अगर हम बात करें तो बैडमिंटन की तरफ से भी हमारे पास बहुत अच्छे खेल समाचार हैं, साथ ही साथ प्रो लीग पर भी रिपोर्ट है।
2: जी, तो हमारे पास तमाम खेल खबरें हैं। शुरुआत करते हैं फुटबॉल से।

0: फुटबॉल फीवर इन दिनों दुनिया के सिर चढ़कर बोल रहा है। कुछ कम ख्याति प्राप्त टीमें बड़ी माने जाने वाली टीमों को चौंका रही हैं, तो वहीं युवा खिलाड़ियों की चमक के बीच बड़े नामों का जादू भी चल रहा है। तभी तो कभी मेसी, कभी एम्बाप्पे, तो कभी रोनाल्डो का करिश्मा देखने को मिल रहा है। संभवतः अपना आखिरी विश्व कप खेल रहे क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने उज्बेकिस्तान के खिलाफ रिकॉर्ड्स की बारिश की और उनकी टीम पुर्तगाल ने आक्रामक खेल दिखाते हुए फीफा वर्ल्ड कप 2026 में अपनी पहली जीत दर्ज की। ह्यूस्टन में खेले गए ग्रुप के एकतरफा मुकाबले में पुर्तगाल ने 5-0 की जीत के साथ टूर्नामेंट में जोरदार वापसी की। पहले मैच में डीआर कांगो के खिलाफ ड्रॉ खेलने के बाद रोनाल्डो की सेना पर वापसी का भारी दबाव था, लेकिन 41 साल के करिश्माई कप्तान ने न सिर्फ टीम को जीत दिलाई बल्कि कई रिकॉर्ड्स के साथ इतिहास के पन्नों में अपना नाम भी एक बार फिर स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज करा लिया। रोनाल्डो ने 6वें और 39वें मिनट में 2 गोल किए, जबकि नूनो मेंडेस ने 17वें और राफा लियाओ ने 87वें मिनट में 1-1 गोल किया। एक गोल पुर्तगाल को तोहफे में मिला जब उज्बेकिस्तान के नेमातोव ने 60वें मिनट में अपने ही गोल पोस्ट में गेंद को पहुंचा दिया। इस जीत से पुर्तगाल की टीम अपने ग्रुप में 4 अंक के साथ सबसे ऊपर पहुंच गई है। मैच के 6 मिनट में जोआसो कैंसिलो के बेहतरीन क्रॉस को रोनाल्डो ने गोल में तब्दील कर टीम का खाता खोला।
1: And we're underway in Houston. This Group K showdown. Portugal all in red. 5 in red in the middle. Ronaldo!

0: क्रिस्टियानो रोनाल्डो 41 वर्ष और 138 दिन की उम्र में फीफा वर्ल्ड कप में गोल करने वाले दूसरे सबसे उम्रदराज खिलाड़ी भी बन गए हैं। इस मामले में उनसे आगे सिर्फ कैमरून के रोजर मिला है, जिन्होंने 1994 में रूस के खिलाफ 42 वर्ष और 39 दिन की उम्र में गोल दागा था। शानदार खेल के लिए क्रिस्टियानो रोनाल्डो को मैच का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी भी चुना गया। उधर कोलंबिया ने ग्रुप के में डीआर कांगो को 1-0 से शिकस्त दी। दोनों टीमों के बीच मुकाबला कांटे का रहा। दोनों ने अपने नियंत्रण में गेंद को रखने की कोशिश की और वार पलटवार का दौर चलता रहा। पहले हाफ में तमाम कोशिशों के बाद भी किसी टीम की तरफ से कोई गोल नहीं हो सका, लेकिन दूसरे हाफ में 76वें मिनट में कोलंबिया के डेलियन मुलोज ने गोल को विरोधी गोल पोस्ट में डालकर अपनी टीम को आगे कर दिया।
1: Munoz, right place, right time, wonderful finish.
0: ये बढ़त अंत तक कायम रही। इस जीत से कोलंबिया अपने ग्रुप में शीर्ष पर बना हुआ है। के की वर्तमान स्थिति की बात करें तो कोलंबिया दो मैच में दोनों जीत कर 6 अंक के साथ शीर्ष पर है। पुर्तगाल एक जीत और एक ड्रॉ के बाद 4 टीमों में दूसरे स्थान पर है। डीआर कांगो दो मैच में एक ड्रॉ और एक हार के साथ 1 अंक लेकर तीसरे और उज्बेकिस्तान दोनों मैच हार कर सबसे नीचे चौथे स्थान पर है। वहीं ग्रुप एल में इंग्लैंड ने घाना के साथ मुकाबले में निराश किया। इंग्लिश टीम से बड़ी उम्मीदें थी, लेकिन मैच का अंतिम विजिल बजने तक कोई भी टीम गोल नहीं कर सकी और मैच 0-0 की बराबरी पर समाप्त हुआ। बोस्टन के जिलेट स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में दोनों टीमों के बीच जबरदस्त संघर्ष देखने को मिला। हम आपको बता दें कि दोनों टीमें अपने शुरुआती मुकाबले जीतकर आत्मविश्वास के साथ मैदान पर उतरी थीं। इंग्लैंड ने क्रोएशिया को 4-2 से हराया था, जबकि घाना ने पनामा को 1-0 से मात दी थी। ऐसे में दोनों के पास लगातार दूसरी जीत दर्ज कर समय से पहले राउंड ऑफ 32 में जगह पक्की करने का मौका था। साल 2018 विश्व कप के बाद से इंग्लैंड की एक पुरानी समस्या लगातार उसका पीछा कर रही है। टीम किसी भी टूर्नामेंट में अपना दूसरा मैच जीतने में सफल नहीं हो सकी है। यह सिलसिला अब थ्री लायंस के लिए चिंता का विषय बनता जा रहा है। इसी ग्रुप के एक अन्य मैच में एंटे बुदिमिर के गोल के दम पर क्रोएशिया ने पनामा को 1-0 से हराया।
2: Here go Croatia, whipped across and in. Budimir bounces off the bench, and the Croatian class comes to the fore. After all their work rate from the first half, Panama are undone, and it's the substitute who makes the difference.
0: इस जीत के साथ क्रोएशिया ने नॉकआउट दौर में पहुंचने की अपनी उम्मीदें बरकरार रखी हैं, जबकि पनामा टूर्नामेंट से बाहर हो गया है। ग्रुप एल की अंक तालिका की बात करें तो इंग्लैंड ग्रुप के दो मैच में एक जीत और एक ड्रॉ के बाद 4 अंक लेकर टॉप पर है। घाना के भी दो मैचों के बाद इतने ही अंक हैं, लेकिन गोल औसत के आधार पर वह इंग्लैंड से नीचे दूसरे स्थान पर है। क्रोएशिया के दो मैच में एक जीत और एक हार के बाद 3 अंक हैं और वह तीसरे स्थान पर है, जबकि पनामा अपने दोनों मैच हार कर सबसे नीचे चौथे स्थान पर है और फीफा विश्व कप 2026 में उसका सफर समाप्त हो गया है।

11 जून से शुरू हुए फीफा विश्व कप के 14वें दिन 6 मैच खेले जाएंगे। ग्रुप बी में स्विट्जरलैंड का सामना सह मेजबान कनाडा से होगा। इसी ग्रुप में एशियाई टीम कतर बोस्निया हर्जेगोविना के सामने होगी। ग्रुप सी में मोरक्को की टक्कर हैती से और स्कॉटलैंड का सामना ब्राजील से होगा। ग्रुप ए में साउथ अफ्रीका की टीम साउथ कोरिया से भिड़ेगी तो चेकिया का सामना मैक्सिको से होगा। ग्रुप ए में मैक्सिको पहले, कोरिया दूसरे स्थान पर है। ग्रुप बी में कनाडा पहले, स्विट्जरलैंड दूसरे स्थान पर है। ग्रुप सी में ब्राजील ने पहले नंबर पर जगह बना रखी है और मोरक्को दूसरी पोजीशन पर है।

श्रोताओं, अब लिए चलते हैं आपको क्रिकेट की तरफ। आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2026 इंग्लैंड के विभिन्न मैदानों में खेला जा रहा है और अब प्रतियोगिता अपने निर्णायक चरण में पहुंच चुकी है। सेमीफाइनल की दौड़ रोमांचक होती जा रही है और हर मुकाबला टीमों की किस्मत तय कर रहा है। आइए जानते हैं 23 जून को खेले गए दो महत्वपूर्ण मुकाबलों का हाल और आगे होने वाले बड़े मैचों का पूर्वावलोकन। इंग्लैंड में ग्रुप दो के एक अहम मुकाबले में श्रीलंका ने आयरलैंड को 9 विकेट से हराकर सेमीफाइनल की दौड़ को और दिलचस्प बना दिया। मुकाबला भारतीय समय अनुसार शाम 7

बजे शुरू हुआ श्रीलंका की कप्तान चम्मारी ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया और उनकी टीम ने शुरुआत से ही दबाव बना दिया। आयरलैंड की टीम महज 3 रन पर 2 विकेट गवा बैठी और जल्द ही उसका स्कोर 19 रन पर 3 विकेट हो गया। श्रीलंका के विकेटकीपर ने एमी हंटर को रन आउट कर और उसके बाद स्टंपिंग कर शानदार प्रदर्शन किया। कप्तान गेबी ने हालांकि संघर्ष जारी रखा और 50 गेंदों में 59 रन बनाए। उन्होंने लिया पॉल के साथ 66 रन की महत्वपूर्ण साझेदारी। अंत में एलिस टेकर ने 28 रन की उपयोगी पारी खेलकर आयरलैंड को 20 ओवर में 5 विकेट पर 130 रन तक पहुंचाया। श्रीलंका की ओर से मिथाली ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 4 ओवर में केवल 18 रन दिए और एक महत्वपूर्ण विकेट हासिल किया। 131 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए श्रीलंका ने विस्फोटक बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया। कप्तान चम्मारी ने टूर्नामेंट की अब तक की सबसे बड़ी व्यक्तिगत पारी खेलते हुए 61 गेंदों पर नाबाद 106 रन बनाए। उनकी पारी में 17 चौके और 2 छक्के शामिल रहे। अथियापथ्यू और इमेश ने पहले विकेट के लिए 98 रन जोड़े और आयरलैंड को मुकाबले से पूरी तरह बाहर कर दिया। उन्होंने चौका लगाकर जीत सुनिश्चित की और श्रीलंका ने 16वें ओवर में 1 विकेट पर 134 रन बनाकर मुकाबला जीत लिया। इस जीत के साथ श्रीलंका के 4 अंक हो गए हैं। अब टीम 26 जून को स्कॉटलैंड के खिलाफ मैदान पर उतरेगी और सेमीफाइनल की उम्मीदें बरकरार रखने के लिए उसे एक और बड़ी जीत की आवश्यकता होगी। अब बात ग्रुप ए के दूसरे मुकाबले की, जहां 6 बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को 113 रन के विशाल अंतर से हराकर सेमीफाइनल में अपनी जगह लगभग पक्की कर ली है। इस मुकाबले में पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी और पहली ही गेंद पर बेथ मुनी को आउट कर शानदार शुरुआत की, लेकिन इसके बाद एलिस पेरी ने मैच का रुख पूरी तरह बदल दिया। पेरी ने 48 गेंदों पर 71 रन की शानदार पारी खेली जिसमें 9 चौके और 1 छक्का शामिल था। उन्होंने जॉर्जिया वॉल के साथ शतकीय साझेदारी की, उन्होंने 39 रन का योगदान दिया। निकोला कैरी और एनाबेल की तेज पारियों के बदौलत ऑस्ट्रेलिया ने 20 ओवर में 7 विकेट पर 199 रन बनाए। 200 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी पाकिस्तान की टीम दबाव में बिखर गई। पावर प्ले के भीतर ही उसके 3 विकेट गिर गए। मुनीबा अली ने 25 गेंदों पर 32 रन बनाए, लेकिन उन्हें किसी अन्य बल्लेबाज का साथ नहीं मिला। एलिस पेरी ने गेंदबाजी से भी कमाल दिखाते हुए 1 ओवर में 2 विकेट लेकर केवल 9 रन दिए। सोफी और एनाबेल ने बाकी बल्लेबाजों को समेटते हुए पाकिस्तान को मात्र 86 रन पर आउट कर दिया। अब एक नजर डालते हैं आगामी मुकाबलों पर। आज ग्रुप 2 में इंग्लैंड और वेस्टइंडीज की टीमें आमने सामने होंगी। यह मुकाबला लंदन के ऐतिहासिक लॉर्ड्स मैदान पर भारतीय समय अनुसार रात 11 बजे शुरू होगा। दोनों टीमें आत्मविश्वास से भरी हुई हैं और सेमीफाइनल की दिशा में निर्णायक कदम बढ़ाना चाहेंगी। आमने सामने के रिकॉर्ड में इंग्लैंड का पलड़ा भारी रहा है। इंग्लैंड ने वेस्टइंडीज के खिलाफ 22 मुकाबले जीते हैं, जबकि वेस्टइंडीज को सिर्फ 10 जीत मिली हैं। इसके बाद भारतीय प्रशंसकों की नजरें होंगी 25 जून को चेस्टर में खेले जाने वाले भारत और बांग्लादेश के मुकाबले पर। ग्रुप ए का यह महत्वपूर्ण मैच भारतीय समय अनुसार शाम 7 बजे शुरू होगा। हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाली भारतीय टीम के लिए यह मुकाबला बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि सेमीफाइनल की राह मजबूत करने के लिए जीत जरूरी है। हालांकि भारत को एक बड़ा झटका लगा है। ऑलराउंडर श्रियंका पाटिल चोट के कारण पूरे टूर्नामेंट से बाहर हो गई हैं। उनकी जगह अनुभवी स्पिनर राधा यादव को अंतिम एकादश में मौका मिल सकता है। भारत की स्मृति मंदाना, शेफाली वर्मा, दीप्ति शर्मा और ऋचा घोष से अच्छे प्रदर्शन की उम्मीदें होंगी, जबकि बांग्लादेश की टीम एक बार फिर अपने अनुशासित और संघर्षपूर्ण खेल से चुनौती पेश करने की कोशिश करेगी। सेमीफाइनल की दौड़ अब बेहद रोमांचक हो चुकी है और आने वाले मुकाबले यह तय करेंगे कि कौन सी टीम अंतिम 4 में अपनी जगह बनाने में सफल रहती है। श्रोताओं, क्रिकेट जगत से आपको दे देते हैं 2 और बड़ी खबरें। दिल्ली कैपिटल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच हुई हाई प्रोफाइल खिलाड़ी अदला बदली पर पूरी हो गई है। ऋषभ पंत दिल्ली कैपिटल्स में लौट आए हैं, जबकि स्पिनर कुलदीप यादव अब लखनऊ सुपर जायंट्स का हिस्सा होंगे। इसी के साथ साथ चोटिल ऑलराउंडर नितेश कुमार रेड्डी आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ आगामी T20 श्रृंखलाओं से बाहर हो गए हैं। उनकी जगह सूर्यांश शेडगे को भारत टीम में शामिल किया गया है।

0: चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान से अपने आप को श्रेष्ठ साबित किया। लंदन में दोनों टीमों के समर्थकों की बड़ी संख्या में मौजूदगी के बीच मैन इन ब्लू ने अपने FIH प्रो लीग 2025-26 के लंदन लीग की शुरुआत पाकिस्तान को हरा कर की।
1: And it finishes and it's Indian cheers despite the late Pakistan third goal. A 7-goal thriller in the hot heat of London. And as Pakistan and India reacquaint themselves on the international stage, this decade run of Indian dominance continues.
0: ली वैली हॉकी एंड टेनिस सेंटर में खेले गए बेहद रोमांचक मुकाबले में भारत ने 4-3 की नजदीकी जीत हासिल की। मैच की शुरुआत दोनों टीमों ने संभल कर की और शुरुआती मिनटों में एक दूसरे के सर्कल में लगातार प्रवेश किया। विश्व की 12वीं रैंकिंग वाली टीम पाकिस्तान को 8वें मिनट में पहली सफलता मिली जब अहमद नदीम ने पेनल्टी कॉर्नर पर मिले मौके को भुनाते हुए टीम को 1-0 की बढ़त दिला दी। इसके बाद भारतीय टीम लगातार वापसी का प्रयास करती रही। यह अलग बात है कि सभी कोशिश नाकाम रही। पहले क्वार्टर के आखिरी मिनट में भारत ने लगातार 3 पेनल्टी कॉर्नर हासिल किए लेकिन सब बेकार गया। लेकिन दूसरे क्वार्टर में भारत ने खेल की रफ्तार और बढ़ाई और 22वें मिनट में स्कोर बराबर कर दिया। दिलप्रीत सिंह के दमदार शॉट को गोलकीपर मुनीबुर रहमान रजा ने रोक लिया लेकिन अभिषेक ने आक्रामक प्रदर्शन करते हुए रिबाउंड पर गेंद को गोल में पहुंचाकर स्कोर 1-1 कर दिया। 3 मिनट बाद भारत को एक और पेनल्टी कॉर्नर मिला। इस दौरान नीलकांत शर्मा ने गेंद पर सबसे पहले कब्जा जमाया और गोल दागकर भारत को 2-1 की बढ़त दिला दी। इसके बाद इसी क्वार्टर में पाकिस्तान के गोलकीपर रजा ने शानदार खेल दिखाया। उन्होंने 28वें मिनट में जुगराज सिंह और उसके कुछ ही देर बाद हरमनप्रीत के पेनल्टी कॉर्नर से गोल करने की कोशिशों को नाकाम कर दिया। हाफ टाइम तक स्कोर 2-1 बना रहा। हाफ टाइम के कुछ ही देर बाद 40वें मिनट में भारत की तरफ से एक और गोल किया गया। अभिषेक ने सर्कल के अंदर सुखजीत सिंह को एक शानदार पास दिया जिस पर उन्होंने शानदार फिनिश करते हुए अपनी टीम को 3-1 से आगे कर दिया। आखिरी क्वार्टर में काफी रोमांच देखने को मिला। पाकिस्तान ने स्कोर का अंतर कम करने के लिए हर मुमकिन कोशिश की लेकिन भारतीय डिफेंस ने 51वें मिनट में लगातार 2 पेनल्टी कॉर्नर रोके। इसके बाद भारत के स्ट्राइकर्स ने पलटवार किया और 1 मिनट बाद पेनल्टी कॉर्नर हासिल किया। राजेंद्र ने सब्स्टिट्यूट गोलकीपर वकार को चकमा देते हुए गोल किया और स्कोर 4-1 कर दिया। भारत की इतनी बड़ी बढ़त के बाद जैसे पाकिस्तानी खिलाड़ी नींद से जागे। पाकिस्तान ने मैच में वापसी की और कप्तान अबू महमूद ने पेनल्टी कॉर्नर के जरिए भारतीय गोलकीपर सूरज करकेरा को चकमा देते हुए गोल कर स्कोर 4-2 कर दिया। खेल खत्म होने में सिर्फ 14 सेकंड बाकी थे तभी पाकिस्तान के मोइन शकील ने पेनल्टी कॉर्नर के दौरान रिबाउंड पर गोल करके स्कोर 4-3 कर दिया। लेकिन दुनिया में पुरुष हॉकी में 8वें रैंकिंग वाली टीम भारत ने अंत तक धैर्य बनाए रखा और कड़ी टक्कर के बाद जीत अपने नाम की। इस जीत के साथ भारत FIH हॉकी प्रो लीग स्टैंडिंग में 13 मैचों में 13 पॉइंट के साथ 8वें स्थान पर बना हुआ है जबकि पाकिस्तान अपनी पहली जीत की तलाश में अभी भी सबसे नीचे है। FIH प्रो लीग के लंदन लीग में दोनों टीमें दूसरा मैच 26 जून को भारतीय समय के अनुसार रात 10:30 बजे खेलेंगी। उससे पहले भारतीय टीम इंग्लैंड के साथ खेलेगी। अंक तालिका में बेल्जियम सबसे ऊपर बना हुआ है। और अब चलते हैं अपने सहयोगी शाहिद आजमी के पास जो मौजूद हैं कहां पे, दिल्ली में, और स्टेडियम इंदिरा गांधी स्टेडियम यहां पर चल रही है एशियन फेंसिंग चैंपियनशिप। और जी क्षमा चाहेंगे आपसे, ये मुकाबला चल रहा है भारत मंडपम में और वहां पर भारतीय तलवारबाजों का क्या प्रदर्शन रहा है, पूरा टूर्नामेंट कैसा रहा है, बता रहे हैं हमारे साथी शाहिद आजमी।
2: नई दिल्ली के भारत मंडपम में संपन्न एशियन सीनियर फेंसिंग चैंपियनशिप 2026 के अंतिम दिन टीम स्पर्धाओं में शानदार मुकाबले देखने को मिले। प्रतियोगिता के अंतिम दिन भारतीय पुरुष फॉयल टीम ने 8वें स्थान पर रहते हुए एशियन गेम्स के लिए क्वालिफाई किया, वहीं महिला टीम 9वें स्थान पर रही। बात आज की स्पर्धाओं की करें उससे पहले बता दें कल 5वें दिन महिला सेबर टीम स्पर्धाओं में दक्षिण कोरिया ने जापान को हराकर स्वर्ण पदक जीता। दक्षिण कोरियाई टीम की अगुवाई व्यक्तिगत रजत पदक विजेता चेई सेबिन ने की जबकि जापान की ओर से व्यक्तिगत चैंपियन सानो यूएई ने चुनौती पेश की। वहीं पुरुष एपी टीम स्पर्धाओं में कजाकिस्तान ने रोमांचक मुकाबले में जापान को हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। जापानी टीम में व्यक्तिगत चैंपियन यामादा मसारू और ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता कोकी कानो जैसे दिग्गज खिलाड़ी शामिल थे लेकिन अनुभवी रुसलान कुर्बानोव के नेतृत्व में कजाकिस्तान ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए जीत दर्ज की। हालांकि नई दिल्ली में जारी सीनियर एशियन फेंसिंग चैंपियनशिप समाप्त हो गई मगर भारत का प्रदर्शन कैसा रहा इसी पर भारतीय फेंसिंग एसोसिएशन के सेक्रेटरी जनरल राजीव मेहता से हमने बात की।
3: बहुत अच्छा रहा इस चैंपियनशिप में, हमारे जो भारत के प्लेयर ने खेला है नेक टू नेक में हारे हैं, मेडल नहीं मिला हमें, बट आई एम टू मच सेटिस्फाइड विद ऑल द प्लेयर्स। अच्छा रिजल्ट आया, अच्छा खेला उन्होंने और कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ा है खिलाड़ियों का।
2: अभी देखा एपी में

0: 45-44 बिल्कुल करीब जाके हार गए हैं। उसके बाद रैंकिंग में दो लगातार लड़कियों ने मैच जीते, वहाँ कमाल किया है। और हारने की वजह आपको क्या लग रही है, जिस तरह करीब पहुंच के हार रहे हैं?
1: देखिए अभी कौन नो कमेंट्स वाला मामला है, इतनी जल्दी मेरा कहना सही नहीं है क्योंकि मैं एफसी में भी सेक्रेटरी जनरल हूँ। बट अब इसको थोड़ा गहराई से हम देख रहे हैं, क्यों हमारे खिलाड़ी लास्ट पॉइंट में हार रहे हैं, या कोई ऐसा तो नहीं है कोई डिसीजन गलत है या कोई इंटेंशन खराब है किसी का, इतनी जल्दी कोई कमेंट्स करना ठीक नहीं है। बट वी विल ट्राई अवर बेस्ट, ये उम्मीद करते हैं अगले साल से जिस तरीके से अभी खिलाड़ी खेले हैं इस चैंपियनशिप में आगे से रिजल्ट अच्छे आए।
0: देखा मैंने मुकाबला, प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबला या क्वार्टर फाइनल मुकाबला, वहाँ पर थोड़ा सा कुछ मोराल का कुछ वजह, क्योंकि रैंकिंग में जब जाते हैं वहाँ पर बहुत बूस्ट होता है, बहुत जबरदस्त खेलते हैं, क्या कुछ मोराल का फर्क है क्या?
1: देखिए मोराल कैसा है कि हम हमारे जो खिलाड़ी हैं उनको अभी इंटरनेशनल एक्सपोजर कम है, और जो दूसरे खिलाड़ी जिनसे मैच खेल रहे हैं वो तो यूरोप में रहते हैं, यूरोप में लगातार सीरीज चलती रहती है, कुछ ना कुछ उनका चैंपियनशिप चलती रहती है और वो दूसरे कंट्री के खिलाड़ियों से खेलते रहते हैं, तो वो एक्सपोजर की वजह से हमारे खिलाड़ी थोड़ा पीछे हैं। हम कोशिश करेंगे कि हमारे खिलाड़ियों को एक्सपोजर मिले और वो लगातार एक्सपीरियंस के साथ खेले, अच्छा रिजल्ट मिलेगा।
0: आगे के लिए क्या प्लान है?
1: आगे हम और वर्ल्ड कप या कुछ ऐसी चैंपियनशिप करेंगे जिससे हमारे खिलाड़ियों को और एक्सपोजर मिले, लोग देखें, दर्शक दीर्घ में खिलाड़ी बढ़े, देखने वाले बढ़े।
0: अब बात करते हैं आज के भारत के मुकाबलों की। महिला एपी टीम स्पर्धाओं में भारतीय टीम को प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले में चाइनीज ताइपे के खिलाफ बेहद करीबी मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा। मैच आखिरी क्षण तक रोमांच से भरपूर रहा, एक समय दोनों टीमों का स्कोर 44-44 के बराबरी पर था, लेकिन निर्णायक अंक हासिल कर चाइनीज ताइपे ने मुकाबला 45-44 से अपने नाम कर लिया। इसके बाद रैंकिंग मुकाबलों में भारतीय टीम ने शानदार वापसी करते हुए थाईलैंड को हराया। फिर 9वें और 10वें स्थान के मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारतीय खिलाड़ियों ने शुरुआत से जो बढ़त बनाए रखी थी वो अंत तक कायम रखी। इस तरह भारतीय महिला एपी टीम ने प्रतियोगिता का समापन 9वें स्थान पर रहते हुए किया। टीम के प्रदर्शन पर क्या कहना भारतीय खिलाड़ी तनिषा खत्री का सुनते हैं।
2: अभी ओवरऑल हमारा 9th रैंक आया है, हम लोग जो फर्स्ट मैच आ रहे हैं उसमें ऑलरेडी हम सब ने अपना बेस्ट देने का कोशिश किया, बट अनफॉर्चुनेटली हमारा लास्ट पॉइंट नहीं आ पाया, शायद से मैं ज्यादा बेटर परफॉर्म कर सकती थी। हम लोग में से कोई भी अगर थोड़ा बेटर ट्राई करता तो मैच भी जीत सकते थे, और उसके बाद हम लोग के कोचेज ने हमें दोबारा से पुश किया कि अभी दोबारा से खेलना है, तो जो मैच हो गया उसको छोड़ के नेक्स्ट वाला मैच।
0: होठों तक प्याला आकर छलक जाना दुख तो देता है, जिस तरह से पहला मैच हारी है
2: दुख तो हुआ था, पर अभी उसको तो चेंज नहीं कर सकते, अभी नेक्स्ट कॉम्पिटिशन पे फोकस करेंगे, थोड़ा ज्यादा हार्ड वर्क करेंगे और बैटिंग करने का ट्राई।
0: अब सुनते हैं टीम के कोच मोहित अश्विन को, उनका कहना है दर्शकों को एक बेहद शानदार और रोमांचक मुकाबला देखने को मिला।
3: बड़ा एक अच्छा कॉम्पिटिशन था और काफी इंजॉय भी एक तरफ से किया। 44 ऑल होना मतलब आप एनी साइड हो सकता है, ये जरूरी नहीं है कि हम ही हारे दूसरा भी हार सकता है, तो इसको एक पॉजिटिव साइन लेते हुए कि भाई हम इक्वली थे, दोनों टीम्स बराबर ही थी 44 ऑल तक। टॉस के बाद जाके डिसाइड हुआ कि किसकी प्रायोरिटी है, किसका राइट ऑफ वे होगा या क्या होगा, तो बड़ा अच्छा एक जो है मैच देखने को मिला। हाँ हम लूज कर गए, बट उसके बाद प्लेयर्स दोबारा कमबैक किया उन्होंने, लड़कियों ने आके दोबारा दोनों ही मैच थाईलैंड के अगेंस्ट भी और अभी ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट भी अच्छे मार्जिन से दोनों मैच जीते और 9th पोजीशन सिक्योर की है, और ये बड़ा पॉजिटिव साइन है हमारे सबके लिए कि जो हमारे एथलीट्स हैं वो इन जो टोन कहते हैं जिसको कि वो बिल्कुल ठीक है, उनकी उनकी परफॉर्मेंस, उनकी मूवमेंट, उनकी टेक्निकल स्किल्स, उनके टैक्टिक्स सब फाइन है, थोड़ा सा और पॉलिशिंग की जरूरत है। रही बात लड़कों की, तो दोनों में लड़कों में तो मैक्सिमम एज 24 ईयर्स है जो सबसे बड़ी एज चारों लड़कों में, और जो अगर मिनिमम देखें तो 19 ईयर्स एक जूनियर डिफेंसर भी है, अगर वो 13 नंबर पे आ सकते हैं टीम में, और पिछली बार भी टीम 13 नंबर पे रही थी जबकि उसमें 3 एक्सपीरियंस फेंसर्स थे, 28-29 ईयर के फेंसर्स थे, उनके पास काफी एक्सपीरियंस था, और इनके पास उस हिसाब से एक्सपीरियंस ना होने के बाद भी ये इन्होंने सिक्योर की अपनी पोजीशन 13, तो बहुत एक पॉजिटिव साइन है, और मैं उम्मीद रखता हूं कि आने वाले नेक्स्ट 2-3 ईयर्स में डेफिनेटली ये टीम पक्का फर्स्ट 8 में होनी है।
0: उधर पुरुष फॉयल टीम ने अपने शानदार प्रदर्शन से एशियन गेम्स के लिए क्वालिफाई कर लिया है। आज फॉयल स्पर्धा में भारतीय टीम ने प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले में कजाकिस्तान को हराकर अंतिम 8 में जगह बनाई, हालांकि क्वार्टर फाइनल में भारत को हांगकांग के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद रैंकिंग मुकाबले में भारतीय टीम पहले चीनी ताइपे से पराजित हुई और फिर 7वें और 8वें स्थान के मुकाबले में सिंगापुर से हार गई। इस तरह भारतीय पुरुष फाइनल टीम ने एशियन सीनियर फेंसिंग चैंपियनशिप का समापन 8वें स्थान पर रहते हुए किया। टीम के प्रदर्शन से कितना संतुष्ट है कोच ज्ञानेंद्र, सुनते हैं।
4: आज हमारा जो मैच था, पहले सबसे पहले तो कजाकिस्तान से था जो हमारे से ऊपर रैंकिंग थी उनकी, तो हमारे लड़कों ने काफी अच्छा खेला और मैच को जीता और प्री क्वार्टर जिसको बोलते हैं राउंड ऑफ 16 है उसको जीत के फिर आगे हम लोग गए जो बेस्ट 8 के अंदर, जो कि हमारे लिए काफी जरूरी था कि बेस्ट 8 के अंदर, क्योंकि इसी से हमारा एशियन गेम्स जाना कंफर्म होना था और प्लस आगे वर्ल्ड चैंपियनशिप है उसके लिए। तो जो कजाक के साथ लड़कों ने खेला काफी अच्छा, अपना सारा सब पूरी टीम ने अच्छा सहयोग किया और फिर नेक्स्ट हमारे जो क्वार्टर फाइनल में

0: जो वर्ल्ड नंबर वन टीम हांगकांग के साथ था, तो उसके साथ भी काफी अच्छा स्कोर किया, बट हम लोग जीत नहीं पाए। कुछ कहीं छोटी कमियां थी कुछ, जिसको हम आगे जाके ठीक करेंगे, मगर उनके साथ खेलने से काफी एक्सपीरियंस मिला कि नहीं, हमारी गलतियां कहाँ हैं, कहाँ पे हम अच्छा कर सकते हैं। उनके साथ हमें हारने के बाद फिर बाकी रैंकिंग बाउट थे, जो कि हमारे सिंगापुर से था और एक चाइनीज टाइपे से था, वो भी मैच लॉस हुआ। मगर लॉस तो हुए, मगर हमें कुछ काफी कुछ सीखने को मिला, जो आगे कॉम्पिटिशन उसमें अगर ऐसी टीमें आती तो हम उनको कैसे प्लान करके खेल सकते हैं।
1: बात करूँ, पहला मुकाबला आपने जीता था, दूसरा मुकाबला वर्ल्ड नंबर वन से होता है और वहाँ पे वो ऑफकोर्स बड़ा अच्छा उन्होंने खेला और जीता, लेकिन रैंकिंग में आने के बाद दोनों लगातार मैच हारना, थोड़ा सा वो उसके बारे में बताइए।
0: जी, वो तो है कि भाई अगर हम लोग हारे हैं तो कहीं ना कहीं कमियां हैं ही, लेकिन ऐसी बात नहीं, जो हमारे से टीमें जीती हैं वो भी काफी अच्छी टीम है, काफी एक्सपीरियंस है, जो कि आप रैंकिंग देखेंगे वर्ल्ड रैंकिंग में तो उनको भी काफी अच्छी है, हमारे से ऊपर रैंकिंग है। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि हमारे से ऊपर रैंकिंग है तो हम उन्हें जीत नहीं सकते, जीत सकते हैं, कहीं छोटी छोटी कमियां हैं उसको दूर करेंगे और आगे जो हमारी फेडरेशन का और हमारी भारत सरकार का जो सहयोग है, अगर ऐसे बना रहे तो डेफिनेटली हम आगे अच्छा करेंगे और ऐसी कंट्रियों को बिल्कुल आराम से जीतेंगे।
1: फाइनल लड़कियों का लड़कों का दोनों का देखा हमने, क्या निचोड़ निकला, ओवरऑल लबो लबाब क्या रहा?
0: लबो लबाब तो लड़कियों ने भी काफी एफर्ट किया, जो पहले बिल्कुल नहीं, पहले कुछ सालों में जो बहुत ऐसे था कि उनका कोई परफॉर्मेंस थोड़ा सा डाउन रहता था, और इस बार इन्होंने अच्छा दिखाया, अच्छा कॉम्पिटिशन कॉम्पीट किया सारे इवेंटों में लड़कों का, जैसे मैं बता दिया, लड़के भी अच्छा खेले, काफी अच्छा खेले।
1: यह है टीम के सदस्य तेजस मोहन पाटिल।
2: जैसे एशियन चैंपियनशिप में हमारा थर्ड डे पे इंडिविजुअल कंपटीशन था, उसमें मैं राउंड ऑफ 64 हार गया था 15-14 से चाइनीज टाइपे के एथलीट से, विच वाज प्रीटी गुड एक्सपीरियंस फॉर मी, क्योंकि ही वाज आल्सो एन गुड एथलीट एंड मैंने मेरा बेस्ट दिया। एंड आज जो हमारा टीम का कॉम्पिटिशन था, उसमें जो हमारा कैंप लगा हुआ था जिसमें हमने प्रैक्टिस किया, उस प्रैक्टिस सेशन में हमने रोज एक सेशन टीम कॉम्पिटिशन के लिए प्रैक्टिस की थी, एंड वही टीम प्रैक्टिस की वजह से आज हम अच्छा खेल पाए, क्योंकि हमारी बॉन्डिंग अच्छी हो गई थी, हम यूनिटी में खेल रहे थे और हमें एक दूसरे के प्लस पॉइंट्स पता थे, हम उस हिसाब से एक दूसरे को हेल्प कर रहे थे। एंड जैसे हमने प्लान किया था, हमें पहले से पता था कि कजाकिस्तान के साथ हमारा कंपटीशन रहने वाला है, तो हमने उनके एथलीट्स को अच्छे से नोटिस किया था कि कैसे खेलना है कैसे नहीं, और हमने उस हिसाब से सिक्वेंस बना के प्रैक्टिस की एंड परफॉर्म किया अच्छे से।
1: हांगकांग के खिलाफ कैसे लैक हो गया मुकाबला?
2: हांगकांग के सारे एथलीट्स बहुत अच्छा खेलते हैं ऑब्वियसली, उनमें दो ओलंपियंस भी, ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट भी है, एंड वी ट्राइड आवर बेस्ट, क्योंकि ना हमारा ऐसा था कि हमें अपना बेस्ट देना है, बट क्योंकि हमने उनके खिलाफ इतना ज्यादा प्लान नहीं किया था जो हमने करना चाहिए था, हमने फिर भी ऑब्वियसली वो भी ना ओलंपियंस है, वो हमसे सीनियर्स है, बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, हमने अपना बेस्ट दिया, बट कहीं ना कहीं लैक हो गया थोड़ा सा।
1: कितने नंबर देंगे अपनी टीम के प्रदर्शन को लेकर? टीम ने एशियन गेम्स के लिए क्वालिफाई कर लिया, 8वीं रैंकिंग के अंदर टीम रहे।
2: मैं अपने टीम को 10 out of 11 रैंक दूंगा। जो हमारी टीम है उसमें हम सब यंग एथलीट्स है, एंड जितना हमें एक्सपोजर मिला है और आगे मिलने वाला है, उस हिसाब से हमने अपना 101% दिया है, हम आगे भी वैसे ही परफॉर्म करते रहेंगे।
1: सीनियर एशियन फेंसिंग चैंपियनशिप पर आधारित रिपोर्ट में आज बस इतना ही। भारत मंडपम से कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता शाहनवाज खान के साथ आकाशवाणी के लिए मैं मोहम्मद शाहिद आजमी।
3: और अब बात एथलेटिक्स की। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में आज से 4 दिवसीय 65वीं नेशनल इंटरस्टेट एथलेटिक्स की शुरुआत हो गई है। प्रतियोगिता का आयोजन 28 जून तक होगा। इस चैंपियनशिप को एशियन गेम्स के लिए अहम माना जा रहा है। इसी प्रतियोगिता के आधार पर एथलीट एशियन गेम्स में क्वालिफाई कर सकेंगे। और अभी अभी जो खबर आ रही है उसमें 100 मीटर हर्डल के हिट वन में 13.14 सेकंड के समय के साथ आंध्र प्रदेश की ज्योति याराजी ने एशियन गेम्स के लिए क्वालिफाई कर लिया है। क्वालिफाइंग समय 13.34 सेकंड का था। और अभी और एक खबर आई है कि तमिलनाडु की के नंदिनी ने भी 13.24 सेकंड के समय के साथ क्वालिफाई कर लिया है। और इससे पहले सुबह के सत्र में जो परिणाम आया, पुरुषों की 5000 मीटर के फाइनल में गुलबीर सिंह 13:52 सेकंड के समय के साथ पहले स्थान पर रहे। अभिषेक पाल ने 13:54 सेकंड का समय लिया, दूसरे स्थान पर रहे। हरमनजोत सिंह तीसरे स्थान पर रहे। बात बैडमिंटन की।
4: जी हाँ, कैलिफोर्निया में आयोजित यूएस ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के पुरुष एकल वर्ग में भारतीय खिलाड़ी रौनक चौहान ने 2 क्वालिफायर जीतकर मुख्य ड्रॉ में जगह बनाई है। अब राउंड ऑफ 32 में उनका मुकाबला भारत के ही एस सुब्रमण्यम से होगा। इस वर्ग में दूसरा मुकाबला एस दयानंद और पूर्व विश्व नंबर 1 किदांबी श्रीकांत के बीच खेला जाएगा। महिला एकल वर्ग में भारत की अनमोल खरब अपने अभियान की शुरुआत करेंगी। इसके अलावा रक्षित अर्चिता श्री रामराज, तन्वी हेमंत, तन्वी शर्मा, देविका सिहाग, श्रियावल्ली शेट्टी और आकर्षी कश्यप भी अपने अपने मुकाबलों में चुनौती पेश करेंगी। महिला युगल वर्ग में भारत की प्रमुख जोड़ी ट्रीसा जॉली और गायत्री गोपीचंद राउंड ऑफ 16 में पहुंच चुकी हैं। अब उनका सामना जापान की जोड़ी से होगा। वहीं मिश्रित युगल वर्ग में भारत के ध्रुव

0: रावत और मनीषा अपने अभियान की शुरुआत राउंड ऑफ 32 से करेंगे। बढ़ते हैं वॉलीबॉल की तरफ।
1: जी हाँ, अहमदाबाद में एवीसी मेंस वॉलीबॉल टूर्नामेंट में भारतीय टीम ने लगातार शानदार प्रदर्शन करते हुए सेमीफाइनल में जगह बना ली है। शानदार फॉर्म में चल रही भारतीय टीम ने कल रात अपने चौथे मैच में बहरीन जैसी मजबूत टीम को हराकर अपने ग्रुप स्टेज के अभी तक के अपने सभी मैच जीत लिए हैं। बहरीन के खिलाफ मैच में भारतीय टीम शुरू से ही हावी रही। हालांकि पहले गेम में बहरीन ने तगड़ी टक्कर दी, लेकिन भारत ने 3 सेट में ही यह मुकाबला जीत लिया। पहला जो है वो 25-21 से जीता, दूसरा 25-16 से और फिर 25-23 से। शूटिंग की बात,
0: शूटिंग में हमारे लिए बहुत अच्छी खबर है कि सुहल में आयोजित ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में भारत के पास एक और स्वर्ण पदक आ गया है, जिसके साथ भारत की पदक तालिका में अब 6 स्वर्ण पदक हैं।
1: जी हाँ, और अब घड़ी की सुइयां कह रही हैं कि आज के हमारे खेल खिलाड़ी कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है। तो धर्मेंद्र और
0: विदुषी
1: का नमस्कार, लेकिन उससे पहले हम धन्यवाद देना चाहेंगे अपने प्रोड्यूसर शहनवाज खान का भी। नमस्कार।
0: नमस्कार।
2: खेल खिलाड़ी, खेलों का आईना।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान द्वारा कश्मीर मुद्दा उठाने पर कड़ी आपत्ति व्यक्त की है। पाकिस्तान पर संयुक्त राष्ट्र मंच का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाते हुए भारत ने कहा कि सह अध्यक्ष के रूप में निष्पक्ष रहने के बजाय पाकिस्तान ने पद का दुरुपयोग किया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि आसिम इफ्तिखार अहमद की टिप्पणियों के जवाब में जम्मू कश्मीर पर भारत का रुख दोहराया।
1: मैं पाकिस्तानी पक्ष की टिप्पणियों का उल्लेख करता हूं। ये हैरान कर देने वाला है कि ऐसे मंच पर जहां राजनीतिक मुद्दों पर संतुलित और निष्पक्ष चर्चा की उम्मीद की जाती है, ऐसी बातें कही गईं। मैं दोहराना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर पूर्ण रूप से भारत का घरेलू मामला है।
0: ईरान के तेहरान में स्थित भारतीय दूतावास ने सुरक्षा स्थिति में सुधार के बावजूद भारतीय नागरिकों को जारी नए परामर्श में अगली सूचना तक सभी गैर जरूरी यात्राओं से बचने को कहा है। बहुत आवश्यक होने पर ईरान यात्रा करने वालों को अत्यधिक सावधानी और सतर्कता बरतने तथा स्थिति पर लगातार नजर रखने की सलाह दी गई है। स्थानीय अधिकारियों के निर्देशों का पालन करने को भी कहा गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज अमरीकी व्यापार प्रतिनिधि राजदूत जैमिसिन ग्री और उनके प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठकें की। श्री गोयल ने भारत अमरीकी व्यापार वार्ता की प्रगति की समीक्षा की और दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने के अवसरों पर चर्चा की। उन्होंने वार्ता को आगे बढ़ाने के निरंतर प्रयासों की सराहना की। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने आज नई दिल्ली में सामरिक रक्षा साझेदारी ढांचे के अंतर्गत रक्षा सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए एक बैठक आयोजित की। बैठक की सह अध्यक्षता अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के संयुक्त सचिव अमिताभ प्रसाद और संयुक्त अरब अमीरात के ब्रिगेडियर स्टाफ जमाल इब्राहिम मोहम्मद इब्राहिम अलमारजूकी ने की। चर्चा का मुख्य विषय रक्षा उद्योग सहयोग का विस्तार करना, नवाचार को बढ़ावा देना, विशिष्ट तकनीकों का लाभ उठाना और समुद्री सुरक्षा को मजबूत करना था। गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार को नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। स्वापक नियंत्रण ब्यूरो द्वारा आयोजित इस बैठक में केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और मादक पदार्थों से संबंधित कानून प्रवर्तन एजेंसियों के प्रतिनिधि मादक पदार्थों की तस्करी और दुरुपयोग से निपटने के प्रयासों की समीक्षा करने के लिए एक साथ आएंगे। केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत त्रिपुरा में 96 सड़क परियोजनाओं के निर्माण के लिए 211 करोड़ रुपए से अधिक की राशि स्वीकृत की है। इस परियोजना से राज्य में 160 किलोमीटर से अधिक लंबी सड़कों का निर्माण होगा। इन परियोजनाओं से राज्य की 96 बस्तियों को पहली बार हर मौसम में सुगम सड़क संपर्क प्राप्त होगा। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने देशभर के राष्ट्रीय राजमार्गों पर अवैध

0: यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। आइए अब सुने हिंदी वार्ता।
1: हिंदी कार्यक्रम के इस अंक में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं भेंट वार्ता। आज का विषय है वैश्विक संवाद और कूटनीति में महिलाओं की भूमिका। वार्ताकार हैं सिमरन सोडी, वरिष्ठ पत्रकार, भेंटकर्ता संतोष द्विवेदी मनुज।
2: श्रोताओं नमस्कार, आज है अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति महिला दिवस। इसी विशेष मौके पर आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार और विदेश मामलों के विशेषज्ञ सिमरन सोडी जी। सिमरन जी, कूटनीति महिला दिवस की आपको ढेरों शुभकामनाएं और कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
3: धन्यवाद संतोष।
2: सिमरन जी, सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूंगा कि ये जो अंतर्राष्ट्रीय महिला कूटनीति दिवस है तो इसकी आज के दिन में क्या प्रासंगिकता है?
3: संतोष देखिए, यूएन ने इस दिन को रखा कि सेलिब्रेट करें विमेन डिप्लोमेसी में, जो हमारी ग्लोबली हमको दिखती हैं महिलाओं। मेरे ख्याल में जो इसका असली वजह वो ये है कि हम लोगों को याद दिला पाए कि जहां हम डिप्लोमेसी की बात करते हैं, चाहे वो हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे करें चाहे नेशनल पे करें, तो जो महिलाओं की संख्या है वो बहुत कम है, जिसको हम कहते हैं कि एक अंडर रिप्रेजेंटेशन है। ऐसा नहीं है कि महिलाएं नहीं है, महिलाएं हैं, पर जब हम उनका परसेंट देखते हैं मेल काउंटर पार्ट के साथ तो अंडर रिप्रेजेंटेशन है। जो हमारे पास डेटा है उसके अकॉर्डिंग सिर्फ 20% जो एम्बेसडर पोजीशंस हैं ग्लोबली वो महिलाएं हैं, बाकी सब जो है वो मेल है। तो यूएन का जो एक मकसद है वो ये है कि इस दिन पे हम याद रखें कि जो महिलाएं हैं वो भी उतनी ही केपेबल हैं, उनमें भी उतनी ही एबिलिटी है, तो उनको आगे लाना बहुत जरूरी है। ये जो 20% का जो हमको एक ग्लोबली जो एक डेटा दिखता है इसको हमको सही करना बहुत जरूरी है।
2: जी बिल्कुल, जैसे आपने कहा कि मेल और फीमेल का जो रेशियो है उसमें बहुत असमानता है, आपको क्या लगता है कि ये असमानताएं क्यों हैं? और या आगे बढ़ के मैं आपसे पूछूं कि अगर ये अनुपात ठीक करना हो तो क्या किया जाए?
3: संतोष, मेरे ख्याल में देखिए बहुत बढ़िया सवाल है, क्योंकि यही हम डिस्कशंस करते हैं कि आखिर महिलाएं आगे क्यों नहीं आ पा रही हैं। तो अगर हम भारत में देखते हैं तो हम देखते हैं कि बचपन से थोड़ा डिस्क्रिमिनेशन रहता है। तो सबसे पहले तो हमको बिल्कुल मतलब बेसिक लेवल से शुरू करना पड़ेगा, जहां हम कहते हैं कि जो गर्ल चाइल्ड है, जो हमारी सरकार ने भी शुरू किया है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कि जब तक आप अपनी बेटियों को पढ़ाएंगे नहीं, उनको बेसिक एजुकेशन नहीं देंगे, उसी माध्यम से चलकर वो आगे आएंगी, एग्जामिनेशंस क्लियर करेंगी और उनको आगे मौका मिलेगा। तो मेरे ख्याल में प्रॉब्लम सोसाइटी का भी है, एजुकेशन का भी है और सोच का भी है, और ये हम ग्लोबली देखते हैं, क्योंकि जो 20% हमने जो डेटा पॉइंट आउट किया वो ग्लोबल है। एक समस्या ही मैं मानूंगी, ये भारत की नहीं है, ये हर जगह है कि हम कहीं ना कहीं महिलाओं को थोड़ा पीछे रखते हैं, चाहे वो हमारे घरों की बात हो या हमारे काम वर्क प्लेसेस की बात हो। तो उसको बदलना, माइंडसेट को बदलना बहुत जरूरी है कि महिला आज वो काम कर सकती है जो आप अपने एक मेल कलीग से कराते हैं। पर मेरा ये भी मानना है कि जो चेंज है

0: वो बिल्कुल बेसिक लेवल पर हो, फैमिली लेवल से हो, आप अपनी बेटियों की एजुकेशन में खूब इन्वेस्टमेंट करिए।
1: जी बिल्कुल, इसमें एक काफी रोचक तथ्य आपने रखा कि ये ग्लोबल विषय है। फीमेल के साथ जो विसंगतियां हैं या उनके साथ जो भेदभाव होता है वो सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में है। और जैसे आपने कहा कि 20 और 80 का जो रेशो है महिला और पुरुष का, इसके लिए बिल्कुल मूल में जाना होगा इसके, और नीचे से जब पढ़ाई शुरू करता है कोई बच्चा तब से हमें इसे सुधार करना होगा। सिमरन जी, मैं एक रिपोर्ट देख रहा था और उसमें एक बड़ी रोचक चीज आई। बेशक महिलाओं की संख्या तो काफी कम है डिप्लोमेसी के मामले में, कूटनीतिज्ञ जितने भी हैं विश्व भर में, पर ऐसा माना जाता है कि जिन समझौतों में अगर महिला राजनयिक होती हैं तो उनकी संभावना जो है 35% बढ़ जाती है कि ये जो शांति समझौता है ये 15 वर्षों से अधिक तक रह पाएगा। दुनिया को क्यों ना ऐसा करना चाहिए कि जो भी उनके डेलीगेशन है उसमें महिला राजनयिकों की संख्या बढ़ाएं।
0: संतोष, आपने बिल्कुल एक अच्छी स्टडी को सामने लाए हैं कि अगर हमारे पास विमेन पार्टिसिपेंट्स होती हैं डिप्लोमेसी में, निगोशिएशंस में, तो 15 साल से ज्यादा उस ट्रीटी के लास्ट करने का ये एक स्टडी का रिजल्ट है। पर मैं आपके सवाल में पॉइंट आउट करूंगी, देखिए अब हम सब न्यूज फॉलो कर रहे हैं, स्विट्जरलैंड में ईरान और अमेरिका का जो एग्रीमेंट पे बातचीत है। अब एज अ महिला खुद मुझे जो चीज बहुत हैरान लगी है वो ये लगी है कि उस इतने बड़े कमरे में आप अमेरिका की डेलीगेशन देखिए, अमेरिका तो सुपर पावर है, पढ़े लिखे लोग हैं, ईरान थोड़ा गरीब है पर वो एक पुराना सिविलाइजेशन है, पर किसी भी डेलीगेशन में एक भी महिला नहीं है। तो ये तो मेरे लिए बड़े एक हैरानी की बात है कि ऐसा क्या हो गया कि हम अगर उस डेलीगेशन को देखते हैं और उसको भी अगर आप एक्सपैंड कर दीजिए जो उसमें बाकी पार्टिसिपेटिंग डेलीगेशंस आई हैं, कतर से आए हैं लोग, बाकी जगह से आए हैं, तो हमको एक भी महिला डिप्लोमेट नहीं दिख रही है। तो लगता है हम शायद अपनी सोच से ही समझौता नहीं कर पा रहे हैं, जहां हम अपने आप को और अपने मेल कोलीग्स को इस बात को हम एक स्ट्रेंथ के साथ रख सकें कि महिलाएं उतनी ही केपेबल हैं, और शायद अगर आप उन्हें इंक्लूड करेंगे तो आपके एग्रीमेंट्स 15 साल से ज्यादा लास्ट करेंगे। तो शायद हमको अमेरिका और ईरान को भी यह याद चाहिए।
1: सिमरन जी, अगर हम भारत की बात करें, कई ऐसी महिला राजनयिक या फिर विदेश मंत्री रही हैं जिन्होंने भारत का नाम रोशन किया है कूटनीति के मामले में, जैसे विजय लक्ष्मी पंडित जी हुए या फिर सुषमा स्वराज जी हैं। मैं आपसे चाहूंगा आप थोड़ा विस्तार से हमें समझाएं कि इन महिला राजनयिकों का भारत की कूटनीति में क्या छाप रही।
0: देखिए संतोष, भारत में बहुत अच्छी विमेन डिप्लोमेट्स जो फॉरेन अफेयर्स में आगे आए हैं लोग लीडरशिप में, उनका नाम जैसे आपने लिया, विजय लक्ष्मी पंडित, सुषमा स्वराज। तो सुषमा स्वराज जो फॉरेन मिनिस्टर थी, तो मैं एक्चुअली एज अ जर्नलिस्ट मैंने कवर भी किया उनको बहुत, तो बहुत बढ़िया एक पॉलिटिशियन भी थी और एक बहुत बढ़िया डिप्लोमेट भी थी। तो हमने निरुपमा राव को भी देखा, वो फॉरेन सेक्रेटरी बनी भारत की। तो भारत में भी एक तरह से एक फॉरेन सर्विस में भी देखते हैं तो हमको ज्यादा दिखती है रिप्रेजेंटेशन विमेन डिप्लोमेट्स की पहले के, अभी भी कम है पर फिर भी ज्यादा चेहरे दिखने लगे हैं, जो कि मेरे ख्याल में एक अच्छी चीज है, एक पॉजिटिव हमको इंडिकेटर दिखता है कि आहिस्ता आहिस्ता विमेन रिप्रेजेंटेशन बढ़ रहा है। पर मेरा ये भी मानना है, जैसे कि हमने बात की कि अगर डेलीगेशन में विमेन होती हैं तो शायद उसका रीजन ये भी है कि जो महिला है वो सोसाइटी का वो हिस्सा रिप्रेजेंट करती है जिसने चीजों को मेल काउंटर पार्ट से अलग देखा है, हम अपने घरों में देखते हैं। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको आप सॉफ्ट पावर कह लीजिए, जो चीजें शायद हम इतना ध्यान से देखते नहीं हैं पर दुनिया की हर सोसाइटी में मौजूद है। तो महिलाओं का होना इस डिप्लोमेसी में, निगोशिएशंस में बहुत जरूरी है, क्योंकि वो अपना एक ऐसा नजरिया लाती हैं जो शायद मेल काउंटर पार्ट्स का नजरिया उस चीज से चौक खा जाए, क्योंकि वो इस चीज में इतना इन्वॉल्व नहीं होते हैं। मेरे ख्याल में अगर हम महिलाओं को रखेंगे, उनके नजरिए को हम इम्पोर्टेंस देंगे, तो हमारी जो डिप्लोमेसी है ग्लोबली वो भी हम देखेंगे कि बेहतर हो जाएगी।
1: जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो पुरुष राजनयिक और महिला राजनयिक में एक बेसिक डिफरेंस ये भी है कि महिला राजनयिकों या कूटनीतिज्ञों के आने से एक ह्यूमन एंगल ज्यादा बेहतर तौर पर प्रस्तुत हो पाता है।
0: जी
1: सिमरन जी, बहुत सारे श्रोता हमें इस समय सुन रहे हैं, विशेषकर ऐसी बेटियां जो आपको अभी सुन रही हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: संतोष, मेरा संदेश तो बहुत सिंपल होगा, वो ये होगा कि हर लड़की को अपने पर मेहनत करनी चाहिए। आप अपनी एजुकेशन पर मेहनत करिए, अपने आप पर मेहनत करिए, और इस चीज को भी ध्यान में रखिए कि आपको दुनिया चाहे कितना भी इस चीज का एहसास दिलाए कि आप महिला हैं या गर्ल चाइल्ड हैं तो थोड़ा कम है, तो उस चीज पर विश्वास

0: विश्वास मत करिए, अपने पर विश्वास करिए, अपनी पढ़ाई करिए। और मेरे ख्याल में हमारी एजुकेशन एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो हमको एम्पावर करता है, हर लड़की को एम्पावर करता है। और अपने पर विश्वास रखिए, तो मुझे लगता है डिप्लोमेसी है या कोई भी आपका चुना हुआ करियर ऑप्शन है, उसमें कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए।
1: सिमरन जी, आपने इस कार्यक्रम में भाग लिया और इतने महत्वपूर्ण विचार साझा किए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे वैश्विक संवाद और कूटनीति में महिलाओं की भूमिका विषय पर भेंटवार्ता। वार्ताकार थी सिमरन सोडी, वरिष्ठ पत्रकार। भेंटकर्ता एवं प्रस्तुतकर्ता संतोष द्विवेदी मनुज।

0: यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स पर, डीआरएम 810 किलो हर्ट्स पर। श्रोताओं, आइए अब से कुछ ही पलों में सुनते हैं संस्कृत में समाचार।
1: इयम् आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। आदौ मुख्य वार्ताः। भारतेन संयुक्तराष्ट्रसंघस्य एकस्मिन् मञ्चे पाकिस्तानदेशेन कृत काश्मीरविषयकचर्चायां दृढतया आक्षेपः प्रकटितः। इस्लामाबादः अस्य मञ्चस्य राजनीतिकरणम् अकरोत् इति आक्षेपोऽपि कृतः। ईरानदेशस्य परिष्कृत सुरक्षास्थितिं वीक्ष्य तेहरानस्थित भारतीयदूतावासपक्षतः भारतीयनागरिकाणां कृते एकः संशोधित सुरक्षापरामर्शः निर्गतः, यत्र हि अग्रिमसूचनापर्यन्तम् अनावश्यकयात्रां वर्जयितुम् उपादिष्टम्। विदेशमन्त्री डॉ एस जयशंकरः अद्य वर्तमान वैश्विक समाह्वानानां मध्ये भारत दक्षिण कोरिया देशयोः सम्बन्धस्य सुदृढीकरणस्य महत्त्वं प्रतिपादितवान्। हॉकी इंडिया संस्था अद्य आगामी यूनाइटेड किंगडम प्रवासार्थं 24 सदस्यानां कनिष्ठ महिला हॉकी दलस्य उद्घोषणां अकरोत्। अपि च फीफा विश्वकप क्रीडायां कोलंबिया देशः अद्य मैक्सिको देशस्य ग्वाडलहारा नगरे ग्रुप के क्रीडायां डीआर कांगो देशं 1-0 इत्यनेन अंकेन पराजित्य राउंड ऑफ 32 इत्यस्मिन् प्रविष्टः। अथ वार्ताः विस्तरेण। भारतेन संयुक्तराष्ट्रसंघस्य एकस्मिन् मञ्चे पाकिस्तानदेशेन कृत काश्मीरविषयकचर्चायां दृढतया आक्षेपः प्रकटितः। इस्लामाबादः अस्य मञ्चस्य राजनीतिकरणम् अकरोत् इति आक्षेपोऽपि कृतः। अपि च सः अध्यक्षत्वेन स्वस्थानस्य दुरुपयोगाय अपि भारतेन कट्वालोचिता। न्यूयॉर्क नगरे संयुक्तराष्ट्रसंघस्य भारतस्य स्थायी प्रतिनिधिना पी हरीशेन पाकिस्तानस्य स्थायी प्रतिनिधिद्वारा असीम इफ्तिखार अहमद इत्यस्य वक्तव्यस्य प्रतिक्रियारूपेण एषा टिप्पणी कृता।
2: मैं पाकिस्तानी पक्ष की टिप्पणियों का उल्लेख करता हूं। यह हैरान कर देने वाला है कि ऐसे मंच पर जहां राजनीतिक मुद्दों पर संतुलित और निष्पक्ष चर्चा की उम्मीद की जाती है ऐसी बातें कही गईं। मैं दोहराना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर पूर्ण रूप से भारत का घरेलू मामला है।
1: पाकिस्तानात् हस्तक्षेपस्य प्रतिक्रियारूपेण श्रीहरीशः सह अध्यक्षस्य आचरणस्य निन्दाम् अकरोत्। जम्मू कश्मीर विषये भारतस्य दीर्घकालस्य स्थितिं पुनरुद्घाटयच्च भारतीयः राजदूतः संयुक्तराष्ट्रसंघस्य अशीति संरचनायाः अन्तर्गतस्य संयुक्तराष्ट्रसंघस्य आदेशानां वर्तमान समीक्षायाः विषये अपि अवदत्, यस्योद्देश्यं सम्पूर्ण संस्थायां कार्यक्षमतां वर्धयितुमस्ति। ईरान देशस्य परिष्कृत सुरक्षास्थितिं वीक्ष्य तेहरान स्थित भारतीय दूतावास पक्षतः भारतीय नागरिकाणां कृते एकः संशोधितः सुरक्षा परामर्शः निर्गतः। देशस्य सकारात्मक परिवर्तनानि सामान्य स्थितिं च अवलोक्य दूतावासेन नागरिकाः ईरान प्रवास विषये विचारं कर्तुं सूचिताः, किन्तु साकमेव अग्रिम सूचना

0: पर्यन्तम् अनावश्यक यात्रां वर्जयितुम् अपि उपादिष्टम्। परामर्शानुसारं ये भारतीयाः सम्प्रति ईरान निवसन्ति अथवा केनापि अनिवार्य कारणेन तत्र गच्छन्तः सन्ति तेभ्यः उच्चस्तरीय अवधानतायाः वर्तितुं सतर्कं भवितुं तथा च परिस्थिति अनुकूल जागरूकतां धारयितुं निर्देशः प्रदत्तः। दूतावासेन सर्वे भारतीय नागरिकाः शीघ्रातिशीघ्रं दूतावासे स्वविवरणं पञ्जीकर्तुम् अपि निर्दिष्टाः। आपत्काले साहाय्यार्थं दूतावासेन एताः दूरभाष संख्याः निर्गताः। संख्या अस्ति 9891210915 9891210915। नागरिकाः cons.tehran@mea.gov.in इति ईमेल संकेते संपर्कं कर्तुं शक्नुवन्ति। विदेशमंत्री डॉक्टर एस जयशंकरः अद्य वर्तमान वैश्विक समाह्वानानां मध्ये भारत दक्षिण कोरिया देशयोः संबंधस्य सुदृढीकरणस्य महत्वं प्रतिपादितवान्। सः अवदत् यत् समान मूल्यवन्तः तथा परस्पर विश्वासयुताः देशाः सम्प्रति इतोपि निकटेन सहकार्यं कुर्युः। सियोलद् नगरे दक्षिण कोरियायाः विदेशमन्त्रिणा चो हुन इत्यनेन सह प्रवृत्तायां चर्चायाम् आरम्भिक भाषणे तेन प्रतिपादितं यत् वर्तमान अन्ताराष्ट्रिय स्थितिः विश्वसनीय सहयोगिनां मध्ये परस्पर सहयोगम् अनिवार्यं करोति।
1: इस साझेदारी को आगे बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है। इसमें सरकार के अलग अलग विभाग और देश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलू शामिल हैं, जिनके बीच तालमेल बैठाना बहुत आवश्यक है। मैं कहूंगा कि हमें भविष्य को ध्यान में रखते हुए एक आधुनिक साझेदारी की ओर बढ़ना चाहिए।
0: सामाजिक अन्तर्जालीय माध्यमे एकेन सन्देशेन विदेशमन्त्रिणा सूचितं यत् उभौ द्वयोः देशयोः मध्ये राजनीतिक व्यापार निवेश रक्षा प्रौद्योगिकी स्वच्छ ऊर्जा संस्कृति परस्पर जनसम्पर्कमित्यादिषु क्षेत्रेषु सहयोगस्य समीक्षां विहितवन्तौ। अनेन सहैव नवाचारः वित्तीय प्रौद्योगिकी तथा च बहुपक्षीय मञ्चेषु उपलब्ध अवसरेषु अपि विस्तरेण चर्चा समजायत। तौ स्वस्व क्षेत्रस्य तथा च वैश्विक विकासस्य परिदृश्य अपि विचाराणाम् आदान प्रदानं कृतवन्तौ। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ newsonair चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। केन्द्रीय आवास एवं नगरीय कार्यमन्त्री मनोहर लालः अद्य राष्ट्रिय राजधान्यां सेन्ट्रल विस्टा कॉरिडोर इत्यस्य कृते केन्द्रीय सचिवालय मेट्रो स्थानके निर्माण कार्यस्य औपचारिकम् उद्घाटनं कृतवान्। वार्ताहरैः सह संवादे मन्त्री इमं क्षणम् ऐतिहासिकम् इति वर्णितवान्। तेन प्रख्यापितं यत् इयं परियोजना सर्वकारीय कर्मचारिणाम् अन्येषां च सर्वेषां वृत्तिजीविनां कृते दैनिक गमनागमनम् अत्यन्तं सुगमं सुव्यवस्थितं च करिष्यति, येन सम्पूर्ण देहली क्षेत्रे यात्रा इतोपि सरला क्षिप्रा कार्यकुशला च भविष्यति।
2: बहुत ही ऐतिहासिक मूवमेंट है, जब देश की राजधानी जहाँ से पूरी सरकार चलनी है सेंट्रल विस्टा, और यहाँ के कर्मचारी और यहाँ के जितने भी कार्यालयों में काम करने वाले सब लोग, उनको एक ऐसी सुविधा प्रदान करने के लिए लक्ष्मी पूजन अथवा ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी आज ये की गई है। और ये जब कम्प्लीट हो जाएगी उसके बाद दिल्ली के बहुत से छोर आपस में जहाँ जहाँ मेट्रो लाइन चलती है उनको ये जोड़ेगी। अब ये जो लाइन है ये आर के आश्रम से लेकर के और इंद्रप्रस्थ तक, जिसके अंदर 9 स्टेशन्स है।
0: भारत ऋतु विज्ञान विभागेन अद्य कोंकण गोवा प्रदेशयोः अतिवृष्ट्यै रेड अलर्ट इति रक्तवर्णीया संचेतना प्रसारिता अस्ति। आगामि दिनद्वयोः तटीय कर्णाटक राज्ये मध्यप्रदेशे च एतादृशी स्थितिः भवितुमर्हति। अस्य मासस्य 31 दिनांकपर्यन्तं मेघालये, आन्तरिक कर्णाटके, ओडिशायां, तेलंगानायां, पश्चिमबंगप्रदेशे, सिक्किमराज्ये च प्रचण्ड वृष्टिः भविष्यति इति ऋतुविभागेन पूर्वानुमानं प्रकटितम्। ऋतुविभागेन दिल्ली, हरियाणा, चण्डीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखण्ड, जम्मू कश्मीर, लद्दाख इत्येतेषु प्रदेशेषु शनिवासरपर्यन्तं मेघगर्जनेन विद्युद्योतनेन सह झंझावातस्य च पूर्वानुमानं कृतमस्ति। अंडमान निकोबार

0: आर द्वीपेषु आंध्रप्रदेशे बिहारे गुजराते झारखंडे केरलम राज्ये माहे प्रदेशे लक्षद्वीपे मध्यप्रदेशे महाराष्ट्रे ओडिशायां पश्चिमी उत्तरप्रदेशे च शनिवासर पर्यन्तं एतादृशी स्थिति अपेक्षते। हॉकी इंडिया संस्था अद्य आगामी यूनाइटेड किंगडम प्रवासार्थं चतुर्विंशति सदस्यानां कनिष्ठ महिला हॉकी दलस्य उद्घोषणाम् अकरोत्। अयं प्रवासः जुलाई मासस्य पञ्च दिनांकादारभ्य चतुर्दश दिनांकं यावत् प्रचलिष्यति। नूतन प्रशिक्षकस्य टिम वाइट इत्यस्य निर्देशने भारतीय दलं स्कॉटलैंड इंग्लैंड देशयोः विभिन्न स्थानेषु सप्त द्वन्द्वान् क्रीडिष्यति, यत् आगामि कनिष्ठ एशिया कप इत्यादि अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगितानां सिद्धतायै एक्सपोजर टूर रूपेण अस्ति। अस्य युवा दलस्य नेतृत्वं दलनायिका खैदेम सिलैमाचानु करिष्यति। अस्य वर्षस्य फीफा विश्वकप क्रीडायां कोलंबिया देशः अद्य मैक्सिको देशस्य ग्वाडलहारा नगरे ग्रुप के क्रीडायां डी आर कांगो देशम् एकं शून्यम् इत्यनेन अंकेन पराजित्य राउंड ऑफ 32 इत्यस्मिन् प्रविष्टः। इतः पूर्वं संयुक्त राज्य अमेरिका देशस्य ह्यूस्टन नगरे ग्रुप के इत्यत्र पुर्तगाल देशः उज्बेकिस्तान देशं पञ्च शून्यांकैः पराजयत् इति वार्ताः।
1: यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। आइए अब सुने कार्यक्रम ग्राम संसार।

0: ग्राम संसार सुनने वाले सभी भाई बहनों को राम राम, राम।
1: तो श्रोताओं, जैसे कि आप देख रहे हैं, मौसम लगातार बदल रहा है, बढ़ रहा है तापमान, और कभी कभी बारिश भी वंदना दीदी देखने को मिलती है। मौसम अचानक से आंधी आती है, अचानक से बारिश हो जाती है, बहुत सारी चीजें देखने को मिलती है। लेकिन ऐसे में क्या होता है, आप बीमार पड़ जाते हैं। कब? क्योंकि जब तापमान अधिक बढ़ जाता है, लू लग जाती है, फिर ठंडा गर्म हो जाता है।
0: बिल्कुल, जैसे हमारे बच्चे बाहर खेलते हैं ना कितनी बार, और धूप में खेलते रहते हैं शीतल, तो उसमें क्या होता है कि बच्चों को जब गर्मी लगती है और फिर पानी पी लेते हैं तुरंत, तो उनको ठंडा गर्म हो जाता है। कितनी बार गर्म हवाएं चलती हैं, और उसमें भी अगर वो खेलते रहते हैं या बाहर निकलते हैं, और वो बच्चों को ही नहीं, बड़े छोटे बुजुर्ग सबको लग सकता है। अगर आप बाहर निकल रहे हैं और गर्म हवाएं चल रही हैं, सबसे बड़ी बात ये। और आप जब, आपको कहते हैं ना कपड़ा सिर पे रखना चाहिए, हाथ में आपके पानी वानी भी होना चाहिए, सब कुछ ऐसी चीजें होनी चाहिए जो आप लू से बच सकें।
1: जी बिल्कुल। और इसके लक्षण तो जैसे आपको पता ही है, जैसे उल्टी महसूस होती है जी, मचलाता है जी, कभी कभी घबराहट बहुत तेज बढ़ जाती है।
0: बिल्कुल।
1: और कभी कभी ऐसा लगता है ना, बहुत लो फील हो रहा है, बस बैठे रहे, आंखें मिच रही हैं, बंद हो रही हैं, तो ऐसा है कि आपको पता चल जाना चाहिए कि आपको लू लग गई है।
0: बिल्कुल। और इसमें और भी ज्यादा तबीयत खराब हो जाती है। कितनी बार ऐसा होता है, बेहोशी की हालत बन जाती है आदमी की, और वो चक्कर खा के गिर जाता है, तो तुरंत उसे डॉक्टर के पास लेके जाएं, क्योंकि ये जो लू लगना या कि हीट स्ट्रोक जो होता है, ये बहुत ही खतरनाक हो जाता है जान के लिए।
1: जी बिल्कुल। और इसके बहुत सारे बचाव भी हो सकते हैं, आपको डॉक्टर के पास जाने की नौबत ना आए,
0: बिल्कुल
1: ना लगे, तो इसका बचाव आप कर सकते हैं। इसी से संबंधित हम आपको अब सुनवाते हैं एक बार था, बच्चों में हीट स्ट्रोक लक्षण और बचाव। और ये बातचीत है, इसमें हिस्सा ले रहे हैं डॉक्टर रशन कुमार, और इनसे बातचीत कर रहे हैं तुषार पारसर।
2: नमस्कार, आकाशवाणी के सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। श्रोताओं, दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में पारा लगातार बढ़ रहा है, और इस कड़कती धूप और भीषण गर्मी का सबसे ज्यादा असर हमारे घर के नौनिहालों यानी हमारे बच्चों पर पड़ रहा है। इस मौसम में बच्चों में हीट स्ट्रोक या लू लगने का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि बच्चे अक्सर अपनी तकलीफें ठीक से बयां नहीं कर पाते, इसलिए माता पिता के तौर पर हमारी जिम्मेदारी दोगुनी हो जाती है। इसी बेहद गंभीर विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं CGHS दिल्ली के बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रोशन कुमार जी। डॉक्टर

0: लिए या टेम्परेचर रेज होने के लिए। थोड़ा सा
1: एक पेरेंट्स के तौर पर हम कैसे पहचाने कि बच्चा लू की चपेट में आ गया है, और वो कौन से शुरुआती लक्षण हैं जिन्हें हमें बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए?
0: चलिए, इनिशियल सिम्टम्स जो होते हैं वो जस्ट लाइक डिहाइड्रेशन, जो आप बोलते हो कि पानी की कमी हो जाना। पानी की कमी होने से शरीर में आपकी जुबान सूखने लगती है, या फिर पेशाब आना कम हो जाता है, स्किन ड्राई हो जाता है, या टेम्परेचर बढ़ जाता है बॉडी का। तो इन चीजों को हमें सबसे पहले चीज नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन्हीं से शुरुआत होती है जो डिफरेंट टाइप स्टेजेज हैं हीट के। सबसे पहले डिहाइड्रेशन होता है, फिर क्रैम्स होते हैं, फिर एग्जॉशन, फिर स्ट्रोक। ये एक प्रोसेस है जिसे हमें इनिशियली समझना होगा।
1: डॉक्टर साहब, इस मौसम में टाइफाइड, जॉन्डिस, पीलिया, इस प्रकार के भी जो रोग हैं वो फैलते हैं जिनमें सिम्टम्स ऑलमोस्ट लगभग सेम होते हैं, तेज बुखार हो गया या उल्टी हो गया, तो माता पिता अक्सर इन चीजों से थोड़ा सा एक पशुपेश में पड़ जाते हैं कि बच्चे को लू लगी है या कोई इन्फेक्शन हुआ है, तो इस भ्रम को किस प्रकार से हम दूर करें?
0: नहीं, इन्फेक्शन के साइंस और भी साथ में होंगे, जैसे वॉमिटिंग होगा या बच्चों को और सिम्टम होगा, बच्चा हमारा शांत हो जाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो होता है एक्टिविटी बच्चों की, अगर छोटा बच्चा है तो बिल्कुल शांत पड़ जाएगा। तो उसको आपको जज करना है कि बच्चा, इसको हीट स्ट्रोक है या फीवर है, फीवर कितने दिनों से चला आ रहा है। अगर किसी बच्चे को टाइफाइड है तो लॉन्ग टाइम ऑफ पीरियड टाइम होगा उसका फीवर का, लेकिन जो हीट स्ट्रोक होगा वो सडन होगा। अगर बच्चा इनिशियली कहीं गया हाई टेम्परेचर में या कंटिन्यूअस बाहर खेल रहा है, उस दौरान जो हाई टेम्परेचर हुआ बॉडी में वो हीट स्ट्रोक में पता लगेगा। लेकिन जो बीमारी कंटिन्यूअस, जो क्रॉनिक है, जो पुराने टाइम से चल रहा है, तो उसके लिए अलग टाइम पीरियड फ्रेम ही अलग होगा।
1: तो डॉक्टर साहब, इसमें क्या हाई ग्रेड फीवर रहता है जो एक बार लगभग उतना ही मेंटेन रहता है, मतलब किस तरह से फीवर का उसमें पैटर्न होता है?
0: फीवर जनरली एकाएक, सबसे पहले ऐसी बात नहीं कि सीधा हीट स्ट्रोक ही हो जाता है। नॉर्मली जो मैंने शुरू में बताया कि डिहाइड्रेशन के लक्षण को आपको पहचानना है, उल्टी दस्त या यूरिन आउटपुट कम होना, कोल्ड क्लेमी स्किन, मतलब जो ठंडे पड़ जाते हैं शरीर, ये चीजें आपको देखने को मिलेगी। तो इसे हमें समझना है, और ये ग्रेजुअली धीरे धीरे कन्वर्ट होता है। लाइक जैसे पहले किसी को डिहाइड्रेशन हुआ, उसके बाद क्या होगा, उसको क्रैम्प्स होंगे मसल्स, वो एक अलग नेक्स्ट स्टेज है कि हीट क्रैम्प्स बोलते हैं उसको। उसमें पेनफुल मसल क्रैम्प्स होता है, मतलब जोड़ों में, मांसपेशियों में पेन होना जिसको बोलते हो। उसके बाद स्टेज जो होता है उसमें बोलते हैं हीट एग्जॉशन। एग्जॉशन में क्या हुआ कि स्वेटिंग होगी काफी, रैपिड हार्ट बीट बढ़ जाएगा, सांसें तेज लेगा बच्चा, लेकिन उसमें क्या होगा, स्वेटिंग होगी। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हीट स्ट्रोक और हीट एग्जॉशन को डिफ्रेंशिएट करने का। जो हमारा हीट स्ट्रोक है वो लास्ट स्टेज है जिसमें की इमरजेंसी कंडीशन है वो, उसमें आपको स्वेटिंग नहीं होगी, बिल्कुल बिल्कुल ड्राई होगा स्किन और हाई टेम्परेचर होगा बॉडी का
1: जी।
0: और ये कोर टेम्परेचर जो, इससे भी हम डिसाइड देख सकते हैं कि ये हीट एग्जॉशन फेज में है या फिर आपके हीट स्ट्रोक फेज में। अगर 100 से लेके 104 तक है तो ये आप हीट एग्जॉशन के अंदर आते हैं, जिसको आप मैनेज कर सकते हो कि ओआरएस दे दिया या फिर कुछ उसके
1: प्राथमिक तौर पर कर सकते हैं।
0: लेकिन अगर हीट स्ट्रोक में है, अगर 101.04 से ऊपर चला गया टेम्परेचर, तो हीट स्ट्रोक होने के बहुत चांसेस हैं। और इनकेस बच्चे को अगर लॉस ऑफ कॉन्सियसनेस, सीजर या कुछ भी इस टाइप का आपको लगता है कि जो अनयूजुअल है, बच्चा हमारा इरिटेबल हो रहा है, तो उसमें आपको इमरजेंसी सहायता लेनी चाहिए।
1: तो डॉक्टर साहब, उस स्थिति में हमें बच्चे को तुरंत अस्पताल ले जाना अनिवार्य है,
0: क्योंकि आप उस कंडीशन में कोई अनकॉन्सियस हो रहा है या सीजर हो रहा है तो आप उसको कुछ दे भी नहीं सकते। ओआरएस पिला दिया तो वो फिर स्पिरिट कर लेगा, बच्चा ऐसे डेथ हो जाएगी, तो उससे हमें बचना है।
1: तो डॉक्टर साहब, जो आपने 100 से 104 डिग्री के बीच में जो एक प्राथमिक उपचार है, तो कितने दिनों तक ये परसिस्ट,
0: कितने दिनों तक नहीं, इमीडिएट बच्चे का जैसे यूरिन आउटपुट बढ़ना चाहिए। जैसे कोई बच्चा डिहाइड्रेटेड है, हमने उसको हाइड्रेट किया, अगर छोटा बच्चा है तो उसको फीड कराना चालू कर, फीड कराते रहेंगे टाइम टू टाइम कि उसका बॉडी में कमी ना हो किसी सॉल्ट की या जो भी मिनरल है जो भी। तो हम ये देखना है बच्चे का यूरिन आउटपुट आया कि नहीं प्रॉपर, बच्चा पेशाब कितनी बार कर रहा है, जो टंग को वॉच करना हमें, टंग ड्राई है वो, अगर उसकी हाइड्रेशन प्रॉपर आएगी तो टंग ड्राइनेस खत्म होने लग जाएगा। तो ये सब चीजें हमें देखनी पड़ेगी।
1: तो डॉक्टर साहब, कई बार जो हमारे जो नवजात शिशु होते हैं वो बोलकर नहीं बता पाते, तो उस केस में थोड़ा पेरेंट्स के लिए, अभिभावकों के लिए थोड़ा सा एक सिचुएशन थोड़ी सी अलग हो जाती है।
0: वो इम्पोर्टेंट इन यूरिन आउटपुट,
1: उस केस में हम उनके यूरिन आउटपुट से और उनके टंग के
0: एक्टिविटी से कुछ शांत हो जाए तो ये भी अलार्मिंग साइन है। अगर वो फीड ना ले, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट साइन, बच्चा अगर फीड ही नहीं लेगा इसका मतलब कुछ प्रॉब्लम है।
1: तो डॉक्टर साहब, इस कई बार ऐसा होता है कि बच्चा धूप में गया बाहर और हमें लगता है कि उसे तेज बुखार या ये जो सिम्टम्स हम लोगों ने बात की वो आ गए हैं, तो उस केस में घर पर हमें किस तरह से उसको प्राथमिक एक उपचार देना चाहिए? आपने ORS का बताया, इसके अतिरिक्त भी कोई
0: प्राथमिक उपचार? सबसे पहले हमें यह देखना है बच्चे ने कुछ ज्यादा कपड़ा तो नहीं पहन रखा, सबसे पहले हमें कपड़ा रिमूव करना है उसका
1: जी।
0: उसके बाद उसकी जो आइसिंग या AC में रखो, बर्फ के उसके कोल्ड कंप्रेशन, फिर आप उसको

0: ऐसी जगह में करो जहाँ के बहुत ज्यादा हीट ना हो, कंटिन्यूअस कहीं बाहर खेलना उसको मना करना चाहिए हमें, कि अभी इंडोर गेम जैसे ज्यादा टेम्परेचर, बच्चे को कोशिश करें कि वो घर में ही खेलें या कोई इंडोर गेम हो तो वो खेलें। ये चीजें बहुत प्राथमिक उपचार में यही कर सकते हैं
1: तो डॉक्टर साहब, जैसे आपने कपड़ों की बात की, तो
0: हम।
1: गर्मी के दिनों में बच्चों के पहनावे को लेकर भी काफी गलतियां माँ बाप करते हैं, तो इस मौसम में बच्चों क्या फैब्रिक और रंग किस प्रकार का के कपड़े पहनाएं जो थोड़ा हीट स्ट्रोक से थोड़ा बचाव हो सके?
0: डार्क कलर नहीं होना चाहिए उसमें, लाइट कलर जो होता है जब बेटर होता है, क्योंकि डार्क कलर एब्जॉर्ब करते हैं सन रेज को और वो ज्यादा हीट को वो बॉडी में करेंगे,
1: जो एब्जॉर्ब ना करें,
0: बिल्कुल
1: रिफ्लेक्ट
0: रिफ्लेक्ट करेंगे, ये
1: करें।
0: ज्यादा अच्छा रहेगा। और ढीला कपड़ा पहने, स्वेटिंग हो उसको ठीक से, पानी पिए, हाइड्रेशन वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम खेल रहे हैं प्यास लग रही है तो कंटिन्यूस पानी पीते रहना चाहिए, ORS या जूस जो भी है पीना चाहिए, और ORS का काफी ज्यूडिशियस यूज होना चाहिए कि अच्छे तरीके से ORS को पिए, ये नहीं कि हमने किसी एक ग्लास में पूरे ORS को घोल के पी लिया, ये रॉन्ग प्रैक्टिस है। वो 1 लीटर में बनाना है तो 1 लीटर में ही बना के पीना
1: और डॉक्टर साहब,
0: है,
1: कितनी बार
0: कंटिन्यूस
1: पी सकते हैं हम उसको?
0: पी सकते
1: कॉन्टिन्यूसली
0: हैं,
1: उसको हम पी
0: पी
1: सकते
0: सकते हैं।
1: हैं। तो डॉक्टर साहब, इसके अलावा हम, जैसे आप देख रहे हैं कि ORS तो हम देते ही हैं, इसके अलावा बाजार में कुछ रेडीमेड ग्लूकोज के या फिर इस तरह के स्पोर्ट्स ड्रिंक भी हैं जो माँ बाप को लगता है कि ये देना बच्चों के लिए बेटर
0: कोई
1: रहेगा?
0: कोई जरूरी नहीं है, आप घर में सिंपल ORS भी बना सकते हैं अगर अवेलेबल नहीं है तो। हमें बच्चों के बॉडी में सिर्फ नमक की कमी नहीं होने देना चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट ये है, जो कि नमक पोटेशियम जो होता है जिसको सोडियम बोलते हो आप, तो नमक में ही हमारा सोडियम होता है, तो उसको
1: जी
0: कम नहीं होने के लिए हम, अगर कोई नहीं अफोर्ड कर रहा है तो हम सिंपल चीनी पानी नमक घोल के लेमन के साथ दे सकते हैं उसको।
1: तो डॉक्टर साहब, कई बार हम देखते हैं कि आजकल के बच्चों की जो जीवन शैली है, क्योंकि पहले क्या होता था कि बच्चे काफी बाहर आउटडोर गेम्स में ज्यादा इन्वॉल्व रहते थे, आजकल मोबाइल और स्क्रीन टाइम के कारण बच्चे ज्यादातर घर में रहते हैं और ओबिसिटी बच्चों में एक आजकल एक कॉमन फैक्टर हो गया है, तो क्या उसका भी असर हीट स्ट्रोक पे या उनकी बच्चों की इम्यूनिटी पर कुछ हो सकता है?
0: हाँ, ऐसा देखा गया है कि जो ओबीज बच्चे होते हैं उनको होने के चांसेस ज्यादा होते हैं हीट स्ट्रोक। ओबीज बच्चे हो गए या फिर आपको कोई सिक बच्चा है, किसी को कोई बीमारी है, इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज है, तो उस कंडीशन में भी चांसेस होने के ज्यादा हैं, तो उस कंडीशन में प्रिकॉशन लेना ऐसे बच्चों के लिए।
1: तो डॉक्टर साहब, रिकवरी भी फिर उसी प्रकार से फिर
0: रिकवरी भी
1: उसको
0: वैसे ही
1: इफेक्ट
0: होगी,
1: करेगी?
0: रिकवरी भी फास्ट नहीं होगी इनकी, धीरे धीरे ही होगी।
1: तो डॉक्टर साहब, चलते चलते आप हमारे उन सभी अभिभावकों को, माता पिता को क्या एक जरूरी संदेश देना चाहेंगे?
0: सभी अभिभावकों से मेरा यही जरूरी संदेश है कि बच्चों को अभी जो काफी टेम्परेचर 45 के अराउंड जो रहता है, उस टाइम में हम कोशिश करें कि बच्चों को मतलब ज्यादा बाहर जाना अवॉइड करें, और जो स्कूल के टाइम में जैसे बाहर स्कूल में खेलते हैं वो भी अवॉइड करने की कोशिश करें स्कूल में बोल के, या फिर ज्यादा टाइम बस का वेट करते हैं तो उस टाइम में उनको जल्दी पिक करना छोड़ना ये चीजें, और घर से बाहर निकल रहे हैं एक प्रॉपर ड्रेस होना चाहिए कि कवर करे बॉडी को, जिससे ज्यादा हीट बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब ना हो, वो भी चीज हमें करना पड़ेगा। और हाइड्रेशन सबसे इम्पोर्टेंट, कि पानी पीते रहना चाहिए बच्चों को, चाहे जूस के फॉर्म में हो, ORS के फॉर्म में, पानी के फॉर्म में। छोटे बच्चों के लिए ब्रेस्ट फीडिंग मैंने आपको बताया जो सबसे इम्पोर्टेंट है, अगर जो 6 महीने से नीचे के बच्चे हैं।
1: तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका स्टूडियो में आने के लिए। आपने बेहद सरल और व्यवहारिक तरीके से बताया कि किस प्रकार सही खान पान और अवेयरनेस से हम बच्चों को इस भीषण गर्मी में भी सुरक्षित और मुस्कुराता हुआ रख सकते हैं।
2: तो श्रोता सुन रहे थे ये बातचीत बच्चों में हीट स्ट्रोक लक्षण और उनके बचाव, और इसमें हिस्सा ले रहे थे डॉक्टर रोशन कुमार, और इनसे बातचीत कर रहे थे तुषार पारासर।
3: जी हाँ, और अब करवाते हैं अपने भाइयों का मनोरंजन और सुनवाते हैं ये रागनी योगेश कुमार और साथियों से।

0: अभी हमारे भाई सुन रहे थे, ये किस्सा था रामायण से और कलाकार थे योगेश कुमार और उनके साथी।
1: जी बिल्कुल श्रोताओं, और अब हम बात करेंगे उस योजना के बारे में जो कि केंद्र सरकार की एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा योजना यानी कि अटल पेंशन योजना है।
0: बिल्कुल
1: यह योजना असंगठित क्षेत्रों के कामगारों और आम नागरिकों को वृद्धावस्था में आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से की गई है।
0: बिल्कुल
1: ये उन भाई बहनों के लिए है, उन वृद्ध लोगों के लिए है कि जो 60 वर्ष के बाद दूसरों पर आश्रित हो जाते हैं, निर्भर हो जाते हैं, तो उन लोगों को बहुत दिक्कत होती है। तो सरकार ने ये योजना चलाई है ताकि उन लोगों को दूसरों पर आश्रित ना होना पड़े।
0: बिल्कुल। और ये योजना शुरू होती है जब आपकी उम्र 18 साल है और 40 साल के आप, या 40 साल के बीच में, 18 साल से 40 साल के बीच में आप इस योजना में भाग ले सकते हैं, अपना पंजीकरण करा सकते हैं। और जितनी जल्दी आप इसमें योजना में अपना नाम लिखवाते हैं या अपनी पेंशन का खाता खुलवाते हैं, उतना ही आपको फायदा
1: उतना
0: होगा।
1: ज्यादा आपको फायदा होगा। ऐसे
0: बिल्कुल
1: क्या होती है, इसकी शुरुआत जो होती है 1,000 से 5,000 रुपए तक के बीच में आपको एक सुनिश्चित पेंशन मिल जाती है। आप जितना
0: बिल्कुल
1: लेट करेंगे उतना कम मिलेगी, और जितना जल्दी आप शुरू कर
0: बिल्कुल
1: देंगे उतना ज्यादा आप इसका लाभ ले पाएंगे। तो चलिए श्रोताओं
0: यहाँ आगे बढ़ते हैं और करवाते हैं मनोरंजन और सुनवाते हैं एक और रागनी अपने भाइयों से, भाइयों को ज्ञानेंद्र सरधाना की आवाज में।

0: तो श्रोता सुन रहे थे ज्ञानेंद्र सरधाना की आवाज में ये रागनी। और श्रोताओं, जैसे कि हम अपने जीवन में कुछ ऐसा करें जिससे कि दूसरों को खुशी मिले और किसी को ऐसा खुशी मिले जो उसके लिए जिंदगी भर के लिए अच्छा हो, तो इसमें बात करेंगे हम रक्तदान महादान की। रक्तदान ऐसा दान है जिससे आप दान करके दूसरों की जान बचा सकते हैं। जैसे कि कई बार क्या होता है, एक्सीडेंट होते हैं, दुर्घटनाएं होती हैं, ऑपरेशन होते हैं, प्रसव होते हैं, गंभीर बीमारियां जैसे थैलीसीमिया, ऐसे मरीजों को समय समय पर खून की जरूरत होती है। तो आप अपनी इच्छा से अगर रक्तदान करते हैं तो ऐसे लोगों की जान बचाई जा सकती है।
1: बिल्कुल। और एक बार में किया हुआ रक्तदान शीतल बहन तीन अलग अलग लोगों की जान बचा सकता है। जैसे कि प्लाज्मा बन जाता है उसका, प्लेट्स और लाल रक्त कोशिकाएं, यानी कि तीन तरह से उस खून को यूज कर सकते हैं और तीन लोगों की जान बचा सकते हैं।
0: लेकिन लोगों को क्या लगता है, कई बार लोग इसलिए रक्तदान नहीं करते कि अगर हमने रक्तदान कर दिया या हमने अपना खून दे दिया तो हमारे शरीर में खून की कमी हो जाएगी।
1: लेकिन ऐसा नहीं है। बिल्कुल
0: जी, बिल्कुल। ए हमेशा स्वस्थ व्यक्ति 18 साल से लेके 65 साल की उम्र तक अपना रक्तदान कर सकता है। और जो रक्त आपने दान किया है वो कुछ ही घंटों में आपके शरीर में दोबारा बन जाता
1: बनना शुरू हो जाता है। और ऐसे में हृदय रोग का

0: जो रोग होते हैं उसका भी खतरा कम रहता है।
1: जी बिल्कुल।
0: और इसी के साथ आज का हमारा ग्राम संसार कार्यक्रम यही संपन्न होता है। सुनने वाले सभी भाई बहनों को राम
1: राम, राम।
0: इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे तुषार पारासर और संयोजक शिवनंदन लाल।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ग्राम संसार। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स पर, डीआरएम 810 किलो हर्ट्स पर। आइए कुछ ही पलों में सुने हिंदी में समाचार।
1: ये आकाशवाणी है, अब आप मुकेश कुमार से समाचार सुनिए। पश्चिम बंगाल में कोलकाता के तारातला में आज निर्माणाधीन गोदाम ढहने से 3 लोगों की मौत हो गई और 5 अन्य घायल हो गए। घायलों का SSKM अस्पताल में इलाज चल रहा है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी स्थिति का जायजा लेने के लिए दुर्घटना स्थल पर पहुंच गए हैं। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, पुलिस, अग्निशमन और आपातकालीन सेवा तथा स्थानीय लोग बचाव कार्य में जुटे हुए हैं। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के कश्मीर मुद्दा उठाने पर कड़ी आपत्ति व्यक्त की है। पाकिस्तान पर संयुक्त राष्ट्र मंच का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाते हुए भारत ने कहा है कि सह अध्यक्ष के रूप में निष्पक्ष रहने के बजाय पाकिस्तान ने पद का दुरुपयोग किया। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हरीश पर्वत नैनी ने पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि आसिम इफ्तिकार अहमद की टिप्पणियों के जवाब में जम्मू कश्मीर पर भारत का रुख दोहराया।
2: मैं पाकिस्तानी पक्ष की टिप्पणियों का उल्लेख करता हूं। यह हैरान कर देने वाला है कि ऐसे मंच पर जहां राजनीतिक मुद्दों पर संतुलित और निष्पक्ष चर्चा की उम्मीद की जाती है, ऐसी बातें कही गईं। मैं दोहराना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर पूर्ण रूप से भारत का घरेलू मामला है।
1: ईरान के तेहरान में भारतीय दूतावास ने सुरक्षा स्थिति में सुधार के बावजूद भारतीय नागरिकों को जारी नए परामर्श में अगली सूचना तक सभी गैर जरूरी यात्राओं से बचने को कहा है। बहुत आवश्यक होने पर ईरान यात्रा करने वालों को अत्यधिक सतर्कता बरतने तथा स्थिति पर लगातार नजर रखने की सलाह दी गई है। स्थानीय अधिकारियों के निर्देशों का पालन करने को भी कहा गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज अमरीकी व्यापार प्रतिनिधि राजदूत सैमसन ग्रीन और उनके प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठकें की। श्री गोयल ने भारत अमरीकी व्यापार वार्ता की प्रगति की समीक्षा की और दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी और मजबूत करने के अवसरों पर चर्चा की। उन्होंने वार्ता को आगे बढ़ाने के निरंतर प्रयासों की प्रशंसा की। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने आज नई दिल्ली में सामरिक रक्षा साझेदारी ढांचे के अंतर्गत रक्षा सहयोग आगे बढ़ाने के लिए एक बैठक की। बैठक की अध्यक्षता अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के संयुक्त सचिव अमिताभ प्रसाद और संयुक्त अरब अमीरात के ब्रिगेडियर स्टाफ जमाल इब्राहिम मोहम्मद इब्राहिम अलमार जुकी ने की। चर्चा का मुख्य विषय रक्षा उद्योग सहयोग का विस्तार करना, नवाचार को बढ़ावा देना, विशिष्ट तकनीकों का लाभ उठाना और समुद्री सुरक्षा को मजबूत करना था। गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार को नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। स्वापक नियंत्रण ब्यूरो द्वारा आयोजित इस बैठक में केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और मादक पदार्थों से संबंधित कानून प्रवर्तन एजेंसियों के प्रतिनिधि मादक पदार्थों की तस्करी और दुरुपयोग से निपटने के प्रयासों की समीक्षा करने के लिए एक साथ आएंगे। श्री शाह इस अवसर पर मादक पदार्थ नियंत्रण के लिए वर्ष 2026 से 29 के लिए दृष्टि पत्र जारी करेंगे। केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत त्रिपुरा में 96 सड़क परियोजनाओं के निर्माण के लिए 211 करोड़ रुपए से अधिक की राशि स्वीकृत की है। इस परियोजना से राज्य में 160 किलोमीटर से अधिक लंबी सड़कों का निर्माण होगा। इन परियोजनाओं से राज्य की 96 बस्तियों को पहली बार हर मौसम में सुगम सड़क संपर्क प्राप्त होगा। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने देश भर के राष्ट्रीय राजमार्गों पर अवैध पार्किंग और अतिक्रमण हटाने के लिए अभियान तेज कर दिया है। सड़क

0: वाहन और राजमार्ग मंत्रालय ने बताया कि कार्रवाई सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के अनुसार की जा रही है। प्रवर्तन निदेशालय ने बेंगलुरु और मुंबई में राजेश एक्सपोर्ट्स लिमिटेड से जुड़े 9 ठिकानों पर छापेमारी की। ये कार्रवाई कल शुरू की गई। ये जांच राजेश एक्सपोर्ट्स लिमिटेड और उससे जुड़े लोगों के खिलाफ विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम फीमा के कथित उल्लंघन के मामले में की जा रही है। यूएस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला डबल्स में त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। भारतीय जोड़ी ने स्पेन की पाउला लोपेज और लूसिया रोड्रिगेज को हराया। फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप बी मुकाबले में देर रात स्विट्जरलैंड का मुकाबला कनाडा से होगा। वहीं इसी ग्रुप में कतर और बोस्निया हर्जेगोवना आमने सामने होंगे। दोनों मुकाबले कल रात 12:30 बजे से खेले जाएंगे। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम कृषि जगत।

0: कृषि जगत कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान बहन भाइयों को
1: राम राम, राम।
0: तो श्रोताओं एक बार फिर हाजिर हैं हम आपका कार्यक्रम लेके कृषि जगत
1: जी। और देखिए कृषि जगत में हम मृदा स्वास्थ्य कार्ड पे भी बातचीत करेंगे और अपने भाइयों से भी बातचीत करवाएंगे कृषि समाचार के माध्यम से जो संध्या गुप्ता लेकर आई हैं और उनका मनोरंजन भी कराएंगे। तो सबसे पहले हम कृषि समाचार दर्शन संध्या गुप्ता से सुनवाते हैं, जो उन्होंने किसान भाइयों से कुछ बातें करी हैं, तो वो सुनते हैं।
2: नमस्कार, कृषि समाचार दर्शन में मैं संध्या आपका स्वागत करती हूँ। दिनांक 20 जून 2026 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा पश्चिम बंगाल की हुगली से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त किसानों के खाते में हस्तांतरित की गई है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लाभार्थी किसानों ने खुशी व्यक्त करते हुए अपने अनुभव हमारे साथ साझा करे हैं।
3: मैं संजय शर्मा, पुश्तैनी किसान, गौतम बुद्ध नगर, नोएडा से। मेरे यहाँ सब्जियों की खेती होती है। दिनांक 20 जून 2026 को पीएम किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त जारी की गई, जो कि किसानों के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि भी है और सहायता के रूप में ही कहूंगा कि ऐसे टाइम पे जब बुआई का टाइम आता है, खाद बीज उर्वरक की जरूरत होती है, उस टाइम पे ये किस्त आती तो बहुत काम आती है। इसमें महिला किसान भी लगभग 2 करोड़ से ज्यादा उनको भी लाभ मिला है और ये विश्व की सबसे बड़ी डीबीटी पहलों में से एक बन गई है, जो डायरेक्ट किसान के खाते में, सरकार का पैसा डायरेक्ट किसान के खाते में जाता है, कोई बिचौलिया नहीं है। और मैं अगर किसान उसकी बात करूं कि इसके अलावा भी बहुत सारी योजनाएं जिनका हम लाभ ले रहे हैं। हम वेजिटेबल्स की खेती, सब्जियों की खेती करते हैं, तो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से भी, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से भी जो भी योजनाएं होती है उनका मैक्सिमम लाभ हमको मिलता है। कभी कभी तो ये प्रोग्राम चल रहा होता है और एकदम से जो पता नहीं चलता और मैसेज आ जाता है, कभी कोई टेक्निकल इश्यू की वजह से एक दो दिन लग जाता है, बाकी वैसे उसी टाइम पे आ जाती है, उसी दिन जिस दिन प्रोग्राम चल रहा होता है। प्रधानमंत्री जी सीधा किसानों से संवाद करते हैं, सामने भी और वर्चुअल माध्यम से भी, मतलब बड़ा आनंद आता है। जो उनका वितरण करने का तरीका है वो भी अपने आप में सराहनीय है। सबको जानकारी दी जाती है उसके लाभों के बारे में, सब चीज के बारे में, और वो बहुत आनंद आता है, किसान बहुत खुश होते हैं। क्योंकि मुझे तो इसका प्रोग्राम जो होता है वो उत्सव हो गया और सहायता है ही है। ये किसानों के लिए सहायता भी है, उत्सव भी है, सम्मान भी है और प्रोत्साहन भी है। अब तो सब ये इतनी दिक्कत आती नहीं है, थोड़ी बहुत अगर आती है तो उसका एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से उनका डायरेक्ट संवाद करा के डायरेक्ट उनसे जो छोटी मोटी प्रॉब्लम है वो शॉर्ट आउट की जाती। शुरू में आती थी, अब इतनी बड़ी परेशानी नहीं है। सरकार का एक बहुत बड़ा विजन है पीएम किसान सम्मान निधि, किसान का जो सम्मान सरकार द्वारा किया जा रहा है, ये पूरे देश के किसानों को एक साथ जोड़ करके उनके खातों में सम्मान निधि के रूप में किस्त देना अपना आप सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि और किसानों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। और विश्व में इस तरह की पहल को हमने कभी सुना नहीं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन रहा है, जो किसानों से वो सीधा संवाद करते हैं, सीधा जुड़ते हैं और एफपीओ भी वो बना रहे हैं, किसान सम्मान निधि होगी, उन्होंने एफपीओ बनवाए किसानों के, बहुत सारी चीजें जो

0: व्यक्तिगत तौर पर नहीं तो सरकार किसानों के लिए बहुत कुछ कर रही है। और ऐसी बात नहीं है, जो डिपार्टमेंट नहीं है वो भी सर किसानों को खूब जानकारी दे रहे हैं और किसान उसका लाभ भी ले रहे हैं और भी योजनाओं का लाभ ले रहे हैं।
1: नमस्कार, मैं यशपाल सिंह राठौर, ग्राम कंदा, तहसील जोबट, जिला अलीराजपुर, मध्य प्रदेश का एक किसान हूँ। 40-50 साल से खेती कर रहे हैं, उस बचपन से ही कर रहे हैं समझो। यहाँ पे पहाड़ी इलाका है अलीराजपुर जिला, तो ये मक्का है, ज्वार है, बाजरा है, ये खेती बरसात की करते हैं। आम का बगीचा भी मैंने लगाया है पश्चिम बंगाल से, जो 20 जून को डाला है हमारे किसानों के लिए। तो ये तो हम तो बिल्कुल ताक में रहते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी कब हमें ऐसी सहायता दे। और अभी तो ये बरसात का मौसम है, तो ऐसे में अगर हमारे को ऐसी सहायता मिल जाए तो इतना मैं खुश हूँ। ये इलाका जो अलीराजपुर है बिल्कुल आदिवासी इलाका, गरीब जैसा है, तो यहाँ पे अगर 2000 की सहायता मिल गई तो किसान तो इतने खुश है कि पूछो मत, उनको खाद बीज का सहायता मिल जाती है। जी, ये 23वीं किस्त प्रधानमंत्री जी ने हमारे को आई है, बहुत ईजी काम है। जिसका भी किसान में के उसमें नाम है तो हमारे वहाँ पटवारी और मोदी जी ने इतना अच्छा सहयोग किया था कि किसानों को दौड़ना ही नहीं पड़े। पटवारी साहब खुद आए थे, सब डॉक्यूमेंट, आधार कार्ड और कुल ऑनलाइन ले लिया उनने, खाता नंबर और सब। पटवारी साहब ये ग्राम पंचायत में आए थे सब अधिकारी, और उन लोगों ने सब डॉक्यूमेंट्स लेके और चालू हो गए। हमारी बहुत अच्छे से चालू है अभी पंचायत, तो दूसरी जगह को पता नहीं, लेकिन हमारे वहाँ तो पंचायत में खुद अधिकारी, बैंक का अधिकारी आया थे, पटवारी साहब आए थे, ग्राम पंचायत के सचिव सरपंच सब बैठे थे और हर की ड्यूटी लगाई थी। हर किसान को आधार कार्ड है, बैंक का खाता नहीं तो उसका जीरो से खाता भी खुला उन लोगों ने, और बहुत अच्छे से आराम से कोई तकलीफ नहीं है, हमको इधर उधर दौड़ना नहीं पड़ा और आज हमसे चालू होगी। जी, ये 24 फरवरी 2019 से जो ये हमारे नरेंद्र मोदी जी ने जो योजना लागू की है उससे पूरे साल भर में आती है, तो ये तो बहुत अच्छी योजना है और हमारे को तो खूब लाभ होता है। 10 रुपए भी किसी को देना नहीं, 2000 रुपए है तो डायरेक्ट पूरे दो, मतलब 10 पैसे भी किसी के पास नहीं जाएंगे, पूरे 2000 रुपए हमारे पास ही आएंगे। और इसमें हमारे वहां तो महिलाओं का भी, गरीब महिला है आदिवासी, और ये उनका भी किसानों में नाम है, किसान के साथ नाम रहता है, तो वो उनके उस खाते में भी पैसे आ रहे हैं 2000 रुपए। तो महिला तो इतना ज्यादा खुश है कि मोदी जी का नाम लेके बहुत उनको तारीफ कर रहे हैं, और मतलब ये समझो कि अगर किसी के पास कुछ नहीं और 2000 की सहायता मिल जाती है तो बहुत बड़ी राहत हो जाती है। ये मतलब कि मक्का का बीज लेना है, छोटी छोटी बात, 100-200 रुपए भी किसानों के पास नहीं रहते हैं, तो हम लोग जब मार्केट में जाना है तो वो लेके अगर मिल जाएंगे तो अभी बरसात की बिल्कुल तैयारी है, खाद लेना, बीज लेना। तो छोटे बच्चे पढ़ाई के लिए अभी चालू हो रहे हैं स्कूल में, तो सिर्फ देना कितने उनको 50 रुपए 100 रुपए चाहिए, लेकिन हमारे वहाँ आदिवासी बेल्ट है तो किसी के पास इतने भी पैसे नहीं मिलते। इतने में अगर ये 2000 की राशि मिल गई तो बहुत ही ज्यादा खुशी की बात है, हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। अगर किसी के पास हम लेंगे बीज और उधार में लेंगे क्या, या फिर व्यापारी से लेंगे तो जब पकेगा तो डबल देना पड़ता, लेकिन वो तो अब रहेगा ही नहीं। हम बिल्कुल नगद लेके आएंगे, मार्केट में जाएंगे, पैसा देंगे और नगद में लाएंगे, और तो बहुत अच्छा है, अच्छी खुशी की बात है। ये किसानों की आय में तो अच्छा है, जैसे हमारे वहाँ पे ये जो पकता है तो सरकार उसको खरीदती भी है, जैसे गेहूं है, और बोनस मिलता है हमको जो मार्केट में बिकता है उससे 2 पैसे ज्यादा में बिकता है हर चीज, तो बहुत अच्छा है। सब भी अपने बच्चों को, सबको पढ़ाई भी अच्छी करवा रहे हैं और आने वाला टाइम भविष्य और अच्छा रहेगा। हम शाम को मेरे मोबाइल में तो उनने 20 तारीख को कल डाला है, लेकिन हमारे मैसेज मोबाइल में आज आया मैसेज, और हम साथ में कम से कम 3-4 साथ में मित्र थे, तो वो बोले मेरे मैसेज आ गया। हम कल से देखते रहते वो मैसेज में क्या, थोड़ा सा 1-2 कलाक ऐसा लेट हो सकता आगे पीछे, तो फिर मैंने बोला कि देखो मेरे आगे 2000, तो फिर थोड़ी देर बाद एक मेरा मित्र बोले कि मेरे भी आगे यार, तो वो फिर तीसरा बोलता है थोड़ी मेरे भी आ गया मैसेज, तो एक खुशी की एक लहर अलग ही रहती है। इसके लिए हम तो सोचते हैं कि ऐसे मोदी जी हमारे लिए खूब किसानों के लिए जो काम कर रहे हैं, तो हमें तो मतलब आपसे अभी क्या बताएं, अगर आप रूबरू में देखो तो हमारी आंखों में आंसू है खुशी के। ऐसा देश का प्रधानमंत्री हमने पहला देखा जो गरीबों को, हमारे किसानों जैसे को याद करते हैं, जो गरीबों का, किसानों का हितेशी हो। बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं हम तो मोदी जी को। जी, प्रधानमंत्री जो सम्मान निधि की जो राशि मोदी जी ने जो की है उसके लिए मोदी जी और हमारे देश के प्रधानमंत्री को बहुत बहुत धन्यवाद, और इतना दिल से धन्यवाद कि गरीब जो है वो तो आपको इतनी दुआ दे रहे हैं कि हम तो भगवान ही मानते हमारे लिए।
2: जी नमस्कार, मेरा नाम अंकित व्यास है, तहसील गैरतगंज के ग्राम हिनौतिया खालसा में मेरी जमीन है। मुझे माननीय प्रधानमंत्री जी वाला जो बीज भी किस्त आई है इसके लिए मैं उनका

0: आभार व्यक्त करता हूँ। और उनके द्वारा जो आर्थिक रूप से ये मदद की जा रही है, बहुत लाभकारी मदद है। ये साल के अंतराल में जो भी हमें राशि व्यय होती है, उसका हम कहीं ना कहीं बहुमूल्य उपयोग करते हैं, क्योंकि अभी इस समय बोनी से संबंधित कृषि में कई लाभकारी कार्य किए जाते हैं, पैसे की आवश्यकता होती है। और इस समय पे जो राशि आई है, इसके लिए आभार व्यक्त करते हैं, क्योंकि ये राशि कहीं ना कहीं जाके बहुत अच्छे आयाम के लिए उपयोग हो रही है। इस समय पे अभी पैसा व्यय करने के बाद में जो छोटे किसान के पास नहीं बचता, उस समय ये पैसा आया है, इसके लिए तो आभार ही व्यक्त कर सकते हैं उनका हम। ये सब YouTube पर प्रसारण देख रहे थे, तब बहुत अच्छा संदेश है प्रधानमंत्री जी का कि ये गरीब लोगों के लिए, जो आर्थिक छोटे छोटे किसान है, उनके लिए ये मदद कर रहे हैं। बाकी अभी तक किसानों के हित के बारे में किसी ने नहीं सोचा, उनके लिए ये बहुत सुंदर और अच्छा निर्णय लेके उन्होंने जो एक प्रावधान प्रारंभ किया है, इसके लिए मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। और हमारे क्षेत्र के किसान भी बहुत प्रसन्नता पूर्वक बात करते हैं, जब अच्छा भी लगता है जब हम उन लोगों के बीच बैठकर इन तरीके की चर्चा निकलती है। किसान अभी उन्नत खेती करते करते तो हम आ रहे हैं, लेकिन जैविक खेती और इनके प्रति जो माननीय प्रधानमंत्री जी हमें प्रोत्साहन देते हैं, इससे किसानों की आर्थिक स्थिति सुधर रही है और उनको कहीं ना कहीं बहुत बेहतर तरीके से लाभ प्राप्त हो रहा है। जैसे सोयाबीन का बीज अभी इस समय बहुत महंगा चल रहा है, लेकिन ये है कि मैं जो किसान की क्षमता नहीं थी लेने की, लेकिन ये धनराशि आ गई है, तो मक्का का, धान का और सोयाबीन का बीज लेने में जो असमर्थ थे, तो इस जगह पे आकर यदि ये पैसा मिलता है, तो कहीं ना कहीं जाके अपन अपनी बुआई के लिए बीज इकट्ठा कर पा रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा 24 फरवरी 2019 से जो धनराशि मिल रही है, उसका कहीं ना कहीं उपयोग हो रहा है। इससे पहले देखते थे कि बीज लेने के लिए साहूकारों से बीज लेते थे, जो कि मनमानी तरीके से बीज देते थे, और कहीं गांव पे एक प्रथा चलती है कि बीज को डबल करके देना। पैसे का अभाव था तो मैं भी और अन्य किसान भी उस बीज को लेते थे, जिसे डबल करके देना पड़ता था। मगर माननीय प्रधानमंत्री द्वारा जो एक निर्णय लिया गया है, किसानों को ये धनराशि देते हैं, जिससे आज हमें ये बीज खरीदने में बहुत उन्नत बीज खरीद लेते हैं और हम अपने तरीके से बीज लेते हैं। पहले क्या होता था कि हम बीज लेते थे, उधारी का बीज ऐसा होता था कि हमें उनकी तरफ से उनकी जैसा जो बीज उन्होंने दे दिया, हमें वो देना पड़ता था, जो कहीं ना कहीं 30 से 40% उगता था। आज हम अपनी मन से पसंद करके जो बीज लेते हैं, हाईब्रिड का या किसी भी तरीके का, तो वो उन्नत बीज उत्पादन में हमारी क्षमता बढ़ा रहा है, तो उससे हमारी पैदावार बढ़ रही है, इससे आर्थिक स्थिति दूसरी ओर से भी सुधर रही है, पैदावार अच्छी हो रही है। तो साथ साथ हमारे क्षेत्र के निवासियों को भी इसका लाभ मिल रहा है, क्योंकि ये कम राशि में अच्छी गेहूं, चावल, मक्का, धान सब हमें अर्थ रूप से यहीं प्राप्त हो रहे हैं कि डायरेक्ट किसान के खाते में DVD के माध्यम से आ रहे हैं। ये बहुत सुंदर और सराहनीय निर्णय है, क्योंकि इसमें बीज का राशि का हस्तांतरण होना या किसी को लेना देना, ये सब बातें खत्म हो गई। प्रचार प्रसार पहले से चल रहा था, तो हम उत्साहित थे कि राशि आएगी। धन्यवाद।
1: मैं दीन नारायण सिंह, ग्राम दुगना, जिला गोरखपुर का रहने वाला हूँ। 20 जून 2026 को किसान सम्मान निधि हम किसानों को मिला है। किसान सम्मान निधि के समय किस्त देख मिला, बहुत प्रसन्नित हुआ। इससे इस समय अब धान की बुआई की तैयारी चल रही है, इसे किसानों को हम लोगों का खाद का बीज का खेत को समृद्ध करने में आसानी होता है, जिससे हम लोग खाद का प्रयोग कर लेते हैं, पैसे का तेल का भी यूज हो जाता है, इससे किसानों को सहूलियत मिलती रहती है। सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। बहुत से किसानों मिलते हैं, तुरंत एक दूसरे लोग बात करते हैं, लोग हमारे खाते में आ गया, हमारे खाते में किसान समझ आ गया। जो अपने किसान अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति लोग करना शुरू कर देते हैं, 2 महीना बाद हो जाता है तो हम लोग प्रतीक्षा करना शुरू कर देते हैं। जो है ना तारीख को किसान सम्मान निधि हम लोग मिलेगी, जे डेट जारी हो जाता है तो हम लोग उसी दिन का इंतजार करते हैं, किसी खाते में पैसा आया, किसी खाते नहीं हो आया, नहीं आया तो क्यों नहीं आया, वो किसान उदास रहता है जब तक खाते में पैसे नहीं आते हैं। जब पैसे आ जाते हैं तो उसका चेहरा खिल जाता है, जिसका KYC नहीं होता उनका रुक जाता है, जिनका KYC अपडेट किसान किए रहते हैं उनका समय से मिलता रहता है, वो अपने किसी भी हम जाके संपर्क करते हैं तो वहाँ सुधार हो जाता है, फिर पुनः आना शुरू हो जाता है। एक बोरा तो हम लोग डाई तो यूरिया ले लेंगे, 1500 में डाई मिल जाएगी, एक वो यूरिया मिल जाएगी, से हमारा ये कम से कम एक आधार तो हो जाता है, 1 एकड़ खेत के लिए हो जाता है हमारा, चाहे जुताई दे सकते हैं, चाहे तेल के दे सकते हैं, चाहे बुआई के लिए बीज ला सकते हैं, ये चीज का पूर्ति हो जाती है 1 एकड़ के लिए हमारे। छोटे भी किसान, सीमांत भी, सबको खुशी मिलती है पैसे मिल करके। सुधार तो आ ही रहा है, धीरे धीरे किसान हमारे जागृत हो रहे हैं, सरकार के प्रति, नए नए नवाचार के प्रति, नई नई कृषि की विधियों के प्रति अपनी जागृति दिखा रहे हैं। और किसान आगे बढ़ेगा तभी देश आगे बढ़ेगा। जो भी कृषि है चाहे सिंचाई हुआ सब पर सरकार दे रही है अनुदान। जो किसान जागृत है अपना आवेदन कर रहे हैं वो लाभ दे रहे हैं। और हमेशा टीवी पर अखबार पर हमेशा न्यूज में पेपर में आता रहता है किसानों का अनुदान के लिए किसानों को सुविधाएं के लिए।

0: सरकार सब कुछ दे रही है, बोरिंग दे रही है, इंजन दे रही है, ट्रैक्टर दे रही है। प्रधानमंत्री जी बोले थे कि किसानों को आय दूना करने के लिए, जैसे पैसा मिल रहा है तो और जब तक तो किसान नवाचार नहीं करेगा, नई विधि नहीं अपनाएगा, तब से किसान का आय दूना नहीं हो सकती। किसान को भी आगे आना पड़ेगा, आगे करना पड़ेगा, और देश का विकास खेत खलिहानों तो धंधों से होकर गुजरता है। जब तक देश का विकास है किसानों से होकर निकलता है, तब किसान जब आगे बढ़ेगा देश भी हमारा आगे बढ़ेगा। किसान सम्मान निधि जो हमारे किसानों को मिल रहा है, इसके लिए सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि हमारी सरकार किसानों को हमेशा ऐसा सुविधाएं मिलती रहे, आर्थिक सहयोग और यांत्रिक सहयोग जो भी कृषि की सुविधाएं हैं मिलती रहे, इसलिए सरकार को हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं।
1: नाम सुदीप चौरसिया, ग्राम कड़ैया का एक प्रगतिशील कृषक हूँ। 20 जून को जो है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की हमारे खाते में सीधा राशि का हस्तांतरण किया गया है और इससे हमें बहुत प्रसन्नता है। माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किसानों को इसका लाभ पहुंचाया जा रहा है और इससे हम जो है अपने कई कार्य काम कर सकते हैं। जैविक खेती की जिस तरफ वो ध्यान दे रहे हैं और उसके बाद उर्वरकों का जिस प्रकार से नियंत्रण कर रहे हैं और उत्पादन वृद्धि में जिस प्रकार से सहायता प्रदान कर रहे हैं, किस प्रकार से खेतों में कम से कम पेस्टिसाइड का उपयोग करके और ज्यादा से ज्यादा उत्पादन कैसे प्राप्त किया जा सकता है, इस पर भी विशेष ध्यान दे रहे हैं। किसान सम्मान निधि जो है सभी के खातों में डीबीटी के माध्यम से डायरेक्ट किसानों के खाते में हस्तांतरित हो रही है और इससे किसी प्रकार की समस्या नहीं है। प्रतीक्षा तो कर रहे थे और यहाँ पर बढ़िया माहौल है और लोग इससे काफी प्रसन्न हुए हैं। इससे छोटे किसानों को काफी लाभ प्राप्त हो रहा है और जो सम्मान निधि से जो भी उनको रुपया मिलता है, पैसा मिलता है, उससे वो अपने कृषि में नए नए उपकरण वगैरह या किसी प्रकार से हकाई जुताई में इसका वहन करके और इससे फायदा ले रहे हैं और अपना जो भी कृषि से जो भी आय हो रही है उससे इसमें बचत हो जाती है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है जिससे किसानों को काफी लाभ पहुंच रहा है। इसके अतिरिक्त उद्यानिकी में कई सारी योजनाएं हैं, कृषि विभाग की बहुत सारी योजनाएं हैं जिससे कि किसानों को बराबर इनसे लाभ ले सकते हैं और हम भी इसका लाभ ले रहे हैं। सरकार काफी सारी योजनाएं चला रही है, इसी तरीके से और नई नई योजनाएं चला करके किसानों को लाभ पहुंचा सकती है। भारत सरकार किसानों के लिए एक नए नए आयाम विकसित कर रही है और काफी अग्रणी विकास कर रही है। 20 जून को जो हमारे खाते में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त जो डली हुई है, उसके लिए हम भारत सरकार का माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का धन्यवाद करते हैं।
2: कृषि समाचार दर्शन का यह अंक यहीं संपन्न होता है। प्रस्तुतकर्ता तुषार पाराशर और कार्यक्रम संयोजक शिवनंदन लाल के साथ मैं संध्या आपसे विदा लेती हूँ। अनुमति दीजिए, नमस्कार।
3: अभी हमारे भाई सुन रहे थे संध्या गुप्ता के साथ कुछ किसान भाइयों की बातचीत। हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं उन्होंने कल 23वीं किस्त हमारे किसान भाइयों के खाते में डाली थी और इसी वजह से हमारे किसान भाई बहुत खुश थे कि वो बीज ले सकते हैं, अपनी अपनी फसल के लिए कुछ और कर सकते हैं या उनके हाथ में पैसा आ गया है तो वो अपनी फसल के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं। तो इन सब बातों को जब उन्होंने 23 जून पे सीधी किस्त उनके खातों में डाली और उन्होंने मैसेज देखा तो उनके चेहरों पर अलग ही खुशी
4: रौनक थी।
3: बिल्कुल,
4: तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं दिनेश गिरी की आवाज में एक उपदेश।
3: जी,
5: जिस घर में नित्य

0: अभी हमारे भाई सुन रहे थे दिनेश गिरी की आवाज में ये उपदेश, और इसी के साथ आज का हमारा कृषि जगत कार्यक्रम यही संपन्न होता है। सुनने वाले सभी भाई बहनों को राम राम।
1: कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे तुषार पारासर और संयोजक थे शिवनंदन लाल।

श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कृषि जगत। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज पर। आइए अब सुनते हैं हमारा कार्यक्रम गीत और गजल, जिसके अंतर्गत आज हम लेकर आए हैं एक बहुत ही खूबसूरत सी गजल। कलाकार हैं जगजीत सिंह और साथ में चित्रा।

शफक कहते हैं किरणों को रेस, और धनुक रेनबो, महताब चंद्रमा, घटाएं तो आपको मालूम है। शफक धनुक महताब घटाएं तारे नगमे बिजली फूल।

0: श्रोता, अभी आप सुन रहे थे गीत गजल के कार्यक्रम के अंतर्गत ये चंद खूबसूरत सी गजलें। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है, मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज पर। आइए अब सुने प्रादेशिक समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने सेंट्रल विस्टा कॉरिडोर के लिए केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन पर निर्माण कार्य शुरू किया। दिल्ली सरकार ने राजधानी में लगभग 657 करोड़ रुपए की सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी। दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को अपराध पर कड़ा नियंत्रण बनाए रखने का निर्देश दिया। लोक निर्माण विभाग मंत्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा ने मानसून पूर्व तैयारियों की समीक्षा की। दिल्ली यातायात पुलिस के सहयोग से सभी जिला न्यायालयों में 5 जुलाई से सप्ताहांत अदालत शुरू की जाएगी। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने आज सेंट्रल विस्टा कॉरिडोर के लिए केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन पर निर्माण कार्य की शुरुआत की। हमारी संवाददाता ने बताया है कि आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने इस निर्माण कार्य का शुभारंभ किया।
2: दिल्ली मेट्रो ने बताया कि यह स्टेशन चरण 5A के अंतर्गत विकसित किया जा रहा है, जो वर्तमान मेजेंटा लाइन का जनकपुरी वेस्ट से आरके आश्रम मार्ग का विस्तार है। 9.9 किलोमीटर लंबे इस कॉरिडोर में 9 भूमिगत स्टेशन शामिल हैं। इनमें शिवाजी स्टेडियम, युगे युगीन भारत, केंद्रीय सचिवालय, कर्तव्य भवन, इंडिया गेट, वॉर मेमोरियल, हाई कोर्ट, बड़ौदा हाउस, भारत मंडपम और इंद्रप्रस्थ शामिल हैं। दिल्ली मेट्रो ने बताया कि केंद्रीय सचिवालय स्टेशन को ट्रिपल इंटरचेंज स्टेशन के रूप में विकसित किया जाएगा, जहां नई मेजेंटा लाइन का स्टेशन मौजूदा येलो और वॉयलेट लाइन से निर्बाध रूप से जुड़ जाएगा। इससे सरकारी कर्मचारियों, यात्रियों और लुटियंस दिल्ली क्षेत्र में आने वाले लोगों को सुविधा मिलेगी। इस अवसर पर मीडिया से बातचीत करते हुए केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने इस क्षण को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि यह परियोजना आवागमन को सुगम बनाएगी। उन्होंने बताया कि यह परियोजना आरके आश्रम मार्ग से इंद्रप्रस्थ तक चलेगी।
3: बहुत ही ऐतिहासिक मूवमेंट है, जब देश की राजधानी जहां से पूरी सरकार चलनी है, सेंट्रल विस्टा और यहां के कर्मचारी और यहां के जितने भी कार्यालयों में काम करने वाले सब लोग, उनको एक ऐसी सुविधा प्रदान करने के लिए आजमी पूजन अथवा ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी आज ये की गई है। और ये जब कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद दिल्ली के बहुत से छोर आपस में जहाँ जहाँ मेट्रो लाइन चलती हैं, उनको ये जोड़ेगी। अब ये जो लाइन है, ये आरके आश्रम से लेकर के और इंद्रप्रस्थ तक, जिसके अंदर 9 स्टेशन है।
2: यह परियोजना राजधानी दिल्ली के मुख्य हिस्से से आवागमन को सुदृढ़ करने और यात्री सुविधा को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रादेशिक समाचार के लिए सौम्या शरण।
1: दिल्ली सरकार ने राजधानी में लगभग 657 करोड़ रुपए की सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में व्यय वित्त समिति की बैठक में आज ये निर्णय लिया गया।
4: इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस परियोजना के माध्यम से राजधानी की सड़कों को अधिक सुरक्षित, टिकाऊ और बेहतर बनाया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस निर्णय से पूर्वी, उत्तरी और दक्षिणी दिल्ली के प्रमुख मार्गों की गुणवत्ता में सुधार होगा और सड़क अवसंरचना को आधुनिक मानकों के अनुरूप सुदृढ़ किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि लोक निर्माण विभाग के पूर्वी रखरखाव क्षेत्र में लगभग 58 किलोमीटर लंबी सड़कों के सुदृढ़ीकरण पर 147 करोड़ रुपए, उत्तरी रखरखाव क्षेत्र में 104 किलोमीटर लंबी सड़क पर 247 करोड़ रुपए और दक्षिणी रखरखाव क्षेत्र में लगभग 107 किलोमीटर लंबी सड़कों पर 263 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत व्यय की जाएगी। सौम्य की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए नेहा गोस्वामी।
1: बैठक में उत्तरी दिल्ली के धीरपुर में डॉक्टर बीआर अंबेडकर विश्वविद्यालय के अत्याधुनिक नए कैंपस के निर्माण को मंजूरी दी गई है। श्रीमती गुप्ता ने बताया कि लगभग 1668 करोड़ रुपए की लागत से विकसित होने वाला ये कैंपस राजधानी में गुणवत्तापूर्ण, आधुनिक और भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप उच्च शिक्षा के अवसरों का विस्तार करेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि नया कैंपस विद्यार्थियों को विश्व स्तरीय शैक्षणिक सुविधाएं प्रदान करेगा और राष्ट्रीय राजधानी में उच्च शिक्षा के अवसरों के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत संधू ने आज नई दिल्ली के पुलिस मुख्यालय में पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक बैठक की अध्यक्षता की। एक रिपोर्ट।
5: सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री

0: संधू ने कहा कि उन्होंने पुलिस बल को अपराध पर कड़ा नियंत्रण बनाए रखने का निर्देश दिया है। इसमें महिलाओं, बच्चों और वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा पर विशेष बल दिया गया है। उपराज्यपाल ने अधिकारियों को निरंतर कौशल वृद्धि पर ध्यान केंद्रित करने, सर्वोत्तम पुलिस पद्धतियों को अपनाने और AI तथा ड्रोन जैसी उभरती प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने को कहा है। उन्होंने अधिकारियों से सामुदायिक पुलिसिंग और खुफिया जानकारी जुटाने में रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन और मार्केट एसोसिएशन को सक्रिय रूप से शामिल करने का भी आग्रह किया। श्री संधू ने मानवीय मान और सक्रिय नागरिक केंद्रित पुलिसिंग की आवश्यकता पर भी बल दिया ताकि जनता का विश्वास और भरोसा मजबूत हो। बैठक के दौरान उपराज्यपाल ने यातायात नियमों का कड़ाई से पालन करके यातायात चुनौतियों का समाधान करने का भी निर्देश दिया और सड़क उपयोगकर्ताओं के बीच सकारात्मक व्यवहार परिवर्तन को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल दिया। श्री संधू ने कर्मियों के कल्याण, पुलिस बल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने और पुलिस आवासीय परिसरों को अवशिष्ट मुक्त कॉलोनियों में बदलने के महत्व पर भी चर्चा की। सकलेन की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए शक्ति सिंह।
1: उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने आज नई दिल्ली में VIP कल्चर इन इंडिया, पावर, प्रिविलेज एंड डिस्टेंस फ्रॉम डेमोक्रेसी नामक पुस्तक का विमोचन किया। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति ने कहा कि इस पुस्तक में सरकार और आम नागरिकों के बीच दूरी पर विचार किया गया है। इसमें जन केंद्रित शासन के माध्यम से यह दूरी कम करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि पुस्तक दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में भारत की पहचान का उल्लेख करती है।
2: भारत इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी एंड इज आल्सो कॉल्ड द मदर ऑफ डेमोक्रेसी। आवर कॉन्स्टिट्यूशन एनविसेंस ए सोसाइटी बेस्ड ऑन जस्टिस, इक्वालिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी।
1: दक्षिणी दिल्ली के भारतीय जनता पार्टी सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी ने बताया है कि दिल्ली के किसानों की वैकल्पिक आवासीय प्लाटों के आवंटन की मांग को मंजूरी दे दी गई है। उन्होंने बताया कि यह फैसला उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया। श्री बिधूड़ी ने बताया कि जिन किसानों की भूमि अधिग्रहित की गई थी तथा जिनके वैकल्पिक आवासीय भूखंडों के आवेदन भूमि और भवन विभाग की सिफारिश के साथ दिल्ली विकास प्राधिकरण को भेजे जा चुके हैं, उन्हें 3 महीने के भीतर वैकल्पिक आवासीय भूखंड उपलब्ध कराए जाएंगे। दिल्ली सरकार में मंत्री आशीष सूद ने आज जन सुनवाई कार्यक्रम के दौरान नागरिकों की समस्याओं और सुझावों को ध्यानपूर्वक सुना और उनके समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। श्री सूद ने कहा कि जनता की समस्याओं का समाधान ही सुशासन की पहचान है। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार नागरिकों को जवाबदेह, संवेदनशील और प्रभावी प्रशासन उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। दिल्ली सरकार में मंत्री और बवाना के विधायक रविंद्र इंद्राज सिंह ने आज जन संवाद कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों के नागरिकों से मुलाकात की। श्री सिंह ने बताया कि कार्यक्रम में जनहित और विकास के मुद्दों पर सार्थक चर्चा हुई। इसमें क्षेत्र की प्रगति और जन कल्याण को नई गति देने का संकल्प दोहराया गया। उन्होंने कहा कि नागरिकों की अपेक्षाओं को प्राथमिकता देना और विकास को नई दिशा देना ही दिल्ली सरकार का प्रयास है। दिल्ली के महापौर प्रवेश वाही ने आज लाजपत नगर अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान श्री वाही ने रोगियों से बातचीत कर अस्पताल की सुविधाओं का निरीक्षण किया। उन्होंने अस्पताल में OPD, डे केयर, फिजियोथेरेपी, एक्सरे कक्ष और दवाओं की उपलब्धता की जांच की। श्री वाही ने कहा कि अस्पताल में पर्याप्त मात्रा में दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। इसके साथ ही उन्होंने असमर्थ रोगियों के लिए आवश्यक सुविधाओं का भी निरीक्षण किया। नई दिल्ली में रफी मार्ग पर उद्योग भवन के पास झुग्गी में आज तड़के आग लग गई। दमकल विभाग को सवेरे 3 बजे सूचना मिली और इसके बाद आग पर काबू पा लिया गया। मॉनसून के आगमन को देखते हुए राजधानी में तैयारियों की लगातार निगरानी की जा रही है। इसी क्रम में दिल्ली सरकार के लोक निर्माण विभाग मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने आज कीर्ति नगर और मोती नगर में मॉनसून पूर्व तैयारियों की समीक्षा की। एक रिपोर्ट।
3: लोक निर्माण विभाग ने बताया कि राजधानी में नालों की डी सॉल्टिंग का लगभग 90% कार्य पूरा कर लिया गया है। सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग ने बताया कि इस वर्ष डी सॉल्टिंग अभियान में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल हुई है। विभाग ने कहा कि इस वर्ष लगभग 30 लाख मीट्रिक टन गाद हटाने का कार्य पूरा किया गया है। मीडिया से बातचीत में श्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा ने कहा कि आज दिल्ली में वरिष्ठ अधिकारी, मुख्य अभियंता और फील्ड टीमें मानसून से पहले सड़कों और नालों का निरीक्षण कर रही हैं। श्री सिंह ने बताया कि अगले 10 से 15 दिनों में दिल्ली की सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों का निरीक्षण किया जाएगा।
4: 70 विधानसभा अगले 10-15 दिन में हम देख लें कि सारे काम हो रहे या नहीं हो रहे। जो काम ठीक नहीं हो रहे उनके कॉन्ट्रेक्टर की पेमेंट रुकवा रहे हैं। जो इंजीनियर ठीक काम नहीं करेंगे उनके ऊपर में एक्शन लिया जाएगा। अगर दिल्ली की जनता को इस बारिश में कोई जल भराव ना दिखाई दे, इसके लिए हमारा प्रयास।
3: श्री

0: ने कहा कि रखरखाव अनुबंध होने के बावजूद कार्यों की वास्तविक स्थिति का आकलन केवल जमीनी स्तर पर जाकर ही किया जा सकता है। सौम्या की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: दिल्ली सरकार ने राजधानी में डेंगू और अन्य मच्छर जनित बीमारियों की रोकथाम के लिए अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी क्रम में दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पंकज कुमार सिंह ने सभी संबंधित विभागों को आवश्यक उपायों को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए।
2: बैठक में अधिकारियों ने राजधानी में इन बीमारियों की वर्तमान स्थिति, निगरानी व्यवस्था, अस्पतालों की तैयारियों, मच्छर नियंत्रण गतिविधियों तथा जन जागरूकता अभियानों की समीक्षा की। इस अवसर पर श्री सिंह ने कहा कि दिल्ली सरकार डेंगू और अन्य मच्छर जनित बीमारियों से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने कहा कि डेंगू के खिलाफ लड़ाई में जन भागीदारी अत्यंत आवश्यक है। साथ ही श्री सिंह ने नागरिकों से अपील की कि घरों और आसपास कहीं भी मच्छरों के पनपने की स्थिति न बनने दें। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य विभाग ने डेंगू और अन्य मच्छर जनित बीमारियों की शीघ्र पहचान और प्रभावी प्रबंधन के लिए एक सुदृढ़ निगरानी तथा त्वरित प्रक्रिया तंत्र की व्यवस्था को विकसित किया है। श्री सिंह ने कहा कि दिल्ली में 35 सेंटिनल सर्विलांस अस्पताल सक्रिय रूप से इन मामलों की निरंतर निगरानी कर रहे हैं। प्रादेशिक समाचार के लिए मैं अमित कुमार त्यागी।
1: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार को नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। गृह मंत्रालय ने बताया कि स्वापक नियंत्रण ब्यूरो की इस बैठक में केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और मादक पदार्थों से संबंधित कानून प्रवर्तन एजेंसियों के प्रतिनिधि मादक पदार्थों की तस्करी और दुरुपयोग से निपटने के प्रयासों की समीक्षा करने के लिए शामिल होंगे। इस अवसर पर श्री शाह मादक पदार्थ नियंत्रण के लिए वर्ष 2026 से 29 के लिए दृष्टि पत्र जारी करेंगे। इसे हितधारकों के साथ व्यापक विचार विमर्श के बाद तैयार किया गया है। मंत्रालय ने कहा कि ये पत्र मांग और आपूर्ति में कमी तथा पुनर्वास पर केंद्रित समन्वित उपायों के माध्यम से मादक पदार्थों के खतरे से निपटने में सहायता प्रदान करेगा। दिल्ली यातायात पुलिस के सहयोग से राजधानी के सभी जिला न्यायालय परिसरों में 5 जुलाई से सप्ताहांत अदालतें शुरू की जाएंगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: यातायात पुलिस ने बताया कि ये न्यायालय सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक माह के दूसरे शनिवार और प्रत्येक रविवार को आयोजित किए जाएंगे। इसमें सभी व्यक्तिगत और व्यावसायिक वाहनों के समझौता योग्य यातायात नोटिस या चालान शामिल किए जाएंगे, जिसमें चालान या नोटिस की सीमा प्रति वाहन अधिकतम 20 निर्धारित की गई है। ये सुविधा दिल्ली के पटियाला हाउस, कड़कड़डूमा, 30,000, साकेत, रोहिणी और द्वारका न्यायालयों में उपलब्ध कराई जाएगी। यातायात पुलिस ने कहा कि चालान डाउनलोड करने के लिए वेबसाइट कल से लाइव की जाएगी। सौम्या की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए प्रशांत कुमार।
1: राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने देश के राष्ट्रीय राजमार्गों पर अवैध पार्किंग और अतिक्रमण हटाने के लिए अभियान तेज कर दिया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने बताया कि ये कार्रवाई सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के अनुसार की जा रही है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय राजमार्ग को अधिक सुरक्षित, सुगम और यात्रियों के लिए सुविधाजनक बनाना है। मंत्रालय के अनुसार प्राधिकरण ने विभिन्न राज्यों में राष्ट्रीय राजमार्गों पर अवैध पार्किंग के 595 संवेदनशील स्थानों की पहचान की है। इन स्थानों से अवैध पार्किंग हटाने के लिए राज्य सरकारों, जिला प्रशासन और संबंधित एजेंसियों के साथ मिलकर काम किया जा रहा है। राजधानी दिल्ली में आज दोपहर के समय तेज धूप रही, वहीं शाम में वर्षा से दिल्लीवासियों को भीषण गर्मी से राहत मिली। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 39.3 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने बताया है कि कल हल्के बादल छाए रहने की संभावना है, वहीं कल का अधिकतम तापमान 38 से 40 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 से 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने सेंट्रल विस्टा कॉरिडोर के लिए केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन पर निर्माण कार्य शुरू किया। दिल्ली सरकार ने राजधानी में लगभग 657 करोड़ रुपए की सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी। दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत संधू ने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को अपराध पर कड़ा नियंत्रण बनाए रखने का निर्देश दिया। लोक निर्माण विभाग मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने मॉनसून पूर्व तैयारियों की समीक्षा की और दिल्ली यातायात पुलिस के सहयोग से सभी जिला न्यायालयों में 5 जुलाई से सप्ताहांत अदालत शुरू की जाएंगी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज पर, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। श्रोताओं, सुडो की घड़ी वक्त बता रही है 8:00। ये लीजिए पूरे हुए 15 सेकंड। और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम गीत मालिका, जिसके अंतर्गत हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए चंद बहुत ही खूबसूरत से फिल्मी गीत। आइए आगाज करते हैं इस खूबसूरत सी पेशकश के साथ।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे गीत मालिका के अंतर्गत फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़ पर। आइए अब से कुछ ही पलों में सुनते हैं समाचार हिंदी, अंग्रेजी और फिर उर्दू में। नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने अमेरिका के व्यापार

0: प्रतिनिधि दूत जेमिसन ग्रीर के साथ व्यापार वार्ता की प्रगति की समीक्षा की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून से सोल में मुलाकात की। वैश्विक चुनौतियों के बीच भारत दक्षिण कोरिया संबंधों को मजबूत करने का आह्वान किया। ओमान ने होर्मुज जलडमरू मध्य से एक अस्थायी समुद्री गलियारा खोलने की घोषणा की। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में निर्माणाधीन गोदाम गिरने से 3 लोगों की मौत, बचाव अभियान जारी। अरुणाचल प्रदेश में मूसलाधार वर्षा से अचानक बाढ़ आई, असम में चेतावनी जारी की गई। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में कनाडा आज रात स्विट्जरलैंड से खेलेगा। अब समाचार विस्तार से। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज अमरीकी व्यापार प्रतिनिधि दूत जेमिसन ग्रीर और उनके प्रतिनिधिमंडल के साथ नई दिल्ली में बैठकें की। श्री गोयल ने भारत अमरीकी व्यापार वार्ता की प्रगति की समीक्षा की और दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने के अवसरों की खोज की। उन्होंने राजदूत ग्रीर के नेतृत्व और दोनों पक्षों के रचनात्मक तथा प्रगतिशील तरीके से वार्ता को आगे बढ़ाने के निरंतर प्रयासों की भी सराहना की। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने आज नई दिल्ली में सामरिक रक्षा साझेदारी ढांचे के अंतर्गत रक्षा सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए एक बैठक आयोजित की। बैठक की सह अध्यक्षता अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के संयुक्त सचिव अमिताभ प्रसाद और संयुक्त अरब अमीरात के ब्रिगेडियर स्टाफ जमाल इब्राहिम मोहम्मद इब्राहिम अलमारजूकी ने की। चर्चा का मुख्य विषय रक्षा उद्योग सहयोग का विस्तार करना, नवाचार को बढ़ावा देना, विशिष्ट तकनीकों का लाभ उठाना और समुद्री सुरक्षा को मजबूत करना था। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने चुनौतीपूर्ण वैश्विक परिदृश्य के बीच भारत दक्षिण कोरिया संबंधों को और मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया है। सोल में दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ बैठक में डॉ जयशंकर ने कहा कि वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में विश्वसनीय साझेदारों के बीच सहयोग पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गया है।
1: It is really our responsibility.
2: इस साझेदारी को आगे बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है। इसमें सरकार के अलग अलग विभाग और देश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलू शामिल हैं, जिनके बीच तालमेल बिठाना बहुत आवश्यक है। मैं कहूँगा कि हमें भविष्य को ध्यान में रखते हुए एक आधुनिक साझेदारी की ओर बढ़ना चाहिए।
1: रिलेशनशिप इन अ मोर डिफिकल्ट वर्ल्ड।
0: ईरान में मौजूद भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों के लिए यात्रा परामर्श जारी किया है। दूतावास ने कहा है कि अगली सूचना तक भारतीय नागरिक जब तक आवश्यक ना हो ईरान की यात्रा न करें। एक रिपोर्ट।
3: जो भारतीय नागरिक वर्तमान में ईरान में रह रहे हैं या किसी आवश्यक कारण से वहां यात्रा करने जा रहे हैं, उन्हें विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है। दूतावास ने भारतीय नागरिकों से कहा है कि वे अपने आसपास की स्थिति पर लगातार नजर रखें और स्थानीय प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का पालन करें। दूतावास ने ईरान में मौजूद सभी भारतीय नागरिकों और वहां पहुंचने वाले लोगों से जल्द से जल्द अपना विवरण भारतीय दूतावास में पंजीकृत कराने की अपील की है। भारतीय नागरिकों को दूतावास की आधिकारिक वेबसाइट और सोशल मीडिया मंचों पर जारी वाले अपडेट तथा सलाह पर नियमित रूप से नजर रखने की भी सलाह दी गई है। विष्णु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: इस बीच ओमान ने होर्मुज जलडमरू मध्य से एक अस्थायी समुद्री गलियारा खोलने की घोषणा की है। ये वाणिज्यिक जलमार्ग को बहाल करने और खाड़ी में फंसे हजारों नाविकों के संकट को कम करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। ओमान सरकार ने कहा है कि ये पहल संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के समन्वय से की गई है। इससे क्षेत्रीय संघर्ष से जुड़ी महीनों के व्यवधान के बाद जलमार्ग से जहाजों की सुरक्षित आवाजाही को सुगम बनाया जा सकेगा। संगठन के अनुसार क्षेत्र में 11,000 से अधिक नाविक फंसे हुए हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज नई दिल्ली में वीआईपी कल्चर इन इंडिया, पावर, प्रिविलेज एंड डिस्टेंस फ्रॉम डेमोक्रेसी नामक पुस्तक का विमोचन किया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये पुस्तक सत्ता संस्थानों और लोगों के बीच मौजूद दूरी को जन केंद्रित शासन के माध्यम से इस दूरी को कम करने की आवश्यकता पर बल देती है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये पुस्तक दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में भारत की पहचान का उल्लेख करती है।
4: That Bharat is the world's largest democracy and is also called the mother of democracy. Our constitution envisions a society based on justice, equality, liberty and fraternity.
0: उपराष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उदाहरण देते हुए कहा कि

0: प्रधानमंत्री ने नीट परीक्षा देने वाले छात्रों को यातायात असुविधा से बचाने के लिए हवाई अड्डे से अपनी उड़ान लगभग 45 मिनट तक विलंबित की थी। रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह ने आज पंजाब के जालंधर में दो महत्वपूर्ण रोड ओवरब्रिज आरओबी परियोजनाओं की आधारशिला रखी। उन्होंने बताया कि जालंधर शहर जालंधर कैंट खंड पर गुरु नानकपुरा आरओबी का निर्माण 48 करोड़ 95 लाख रुपए की लागत से किया जाएगा, जबकि दूसरा बस स्टैंड गढ़ा रोड आरओबी 63 करोड़ 98 लाख रुपए की लागत से बनेगा। दोनों परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता रेलवे देगी। गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार को नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। स्वापक नियंत्रण ब्यूरो द्वारा आयोजित इस बैठक में केंद्रीय मंत्रालय, राज्य सरकारें और मादक पदार्थों से संबंधित कानून प्रवर्तन एजेंसियों के प्रतिनिधि मादक पदार्थों की तस्करी और दुरुपयोग से निपटने के प्रयासों की समीक्षा करेंगे। भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स अंतरिक्ष एजेंसियों के प्रमुखों की 2026 की बैठक आज बेंगलुरु में संपन्न हुई। विज्ञान, प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह समापन सत्र में शामिल हुए। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन ने कहा कि दो दिन की बैठक में आपदा प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन निगरानी सहित कई विषयों पर चर्चा हुई।
1: इस बैठक में 10 देशों के 26 प्रतिनिधियों के साथ साथ इसरो, इन स्पेस और अंतरिक्ष विभाग के लोग भी शामिल हुए। इसमें ब्रिक्स देशों के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए रिमोट सेंसिंग उपग्रह समूहों के इस्तेमाल पर काफी चर्चा हुई, जिसमें आपदा प्रबंधन, जलवायु परिवर्तन और दूसरे पहलू शामिल थे। हमने मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन प्रबंधन तथा अंतरिक्ष अभियानों के सतत संचालन पर भी विचार विमर्श किया।
0: विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने 14वें पासपोर्ट सेवा दिवस के अवसर पर सभी पासपोर्ट अधिकारियों की उनकी समर्पित सेवा और नागरिकों के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के लिए सराहना की। श्री सिंह ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में भारत की पासपोर्ट सेवाओं में उल्लेखनीय परिवर्तन आया है। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि वर्ष 2025 में क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालयों, पासपोर्ट सेवा केंद्रों और विदेशों में भारतीय दूतावासों के माध्यम से भारतीय नागरिकों को लगभग 1.5 करोड़ पासपोर्ट और संबंधित सेवाएं प्रदान की गई हैं। देशभर में पासपोर्ट सेवा केंद्रों और डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्रों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हुई है। वर्तमान में देश में ऐसे 545 केंद्र कार्यरत हैं। पिछले वर्ष 10 नए डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र खोले गए थे और इस वर्ष भी 10 नए केंद्र खोले जाने की योजना है। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी योजना ग्रामीण के मसौदा समन्वय ढांचे पर आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय अंतर मंत्रालय बैठक का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता ग्रामीण विकास विभाग के सचिव रोहित कंसल ने की। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने बताया है कि ये बैठक अगले महीने की पहली तारीख से लागू होने वाले विकसित भारत जी राम जी योजना की तैयारियों के अंतर्गत आयोजित की गई। स्वच्छ गंगा राष्ट्रीय मिशन ने राष्ट्रीय नगर कार्य संस्थान के सहयोग से गंगा नदी के तट पर शहरी नदी प्रबंधन योजनाओं का विस्तार किया है। ये प्रबंधन योजनाएं नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत हैं। अब तक 13 शहरों के लिए शहरी नदी प्रबंधन योजनाएं पूरी हो चुकी हैं। इस योजना के प्रथम चरण में 27 शहरों और दूसरे चरण में 33 शहरों के लिए योजनाएं तैयार की जा रही हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। पश्चिम बंगाल में कोलकाता के तारातला इलाके में निर्माणाधीन गोदाम की छत गिरने की घटना के बाद राहत और बचाव अभियान जारी है। हादसे में अब तक 3 लोगों की मौत की खबर है। एक रिपोर्ट।
2: बचाव काम युद्धकालीन तत्परता से जारी है। अब तक 18 श्रमिकों को मलबे की ढेर से जिंदा निकाला गया है। करीब 15 और घायल लोग वहां फंसे रहने का संभावना है। घायलों की इलाज SSKM अस्पताल में हो रहा है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है उससे भी ज्यादा लोग फंसे हो सकते हैं। सेना, NDRF, सिविल डिफेंस, फायर ब्रिगेड और कोलकाता पुलिस मिलकर बचाव अभियान चला रहे हैं। दुर्घटना के कारण पर उन्होंने कहा कि प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक निर्माण के नक्शे में त्रुटि थी, लेकिन जिम्मेदारी किसकी है ये अभी स्पष्ट नहीं है। कल विधानसभा में इसी विषय पर बयान दिया जाएगा। आकाशवाणी समाचार के लिए कलकत्ता से अभिरूप भट्टाचार्य।
0: अरुणाचल प्रदेश के की पन्योर जिले के याजाली स्थित पोसा में मूसलाधार बारिश और अचानक आई बाढ़ से काफी नुकसान हुआ है। ताजा खबरों के अनुसार 4 लोग लापता हैं, 17 लोग घायल हुए हैं, जिनमें 3 की हालत गंभीर है।

0: प्रशासन नुकसान का आकलन कर रहा है। भूस्खलन के कारण प्रभावित क्षेत्र याजाली और होजपोटेन दोनों तरफ से अब भी संपर्क से बाहर हैं। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा है कि वे स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। उन्होंने लोगों से सभी सुरक्षा निर्देशों का पालन करने को कहा है। इस बीच अरुणाचल प्रदेश में तेज वर्षा के बाद असम में निचले इलाकों में बाढ़ की आशंका को देखते हुए राज्य सरकार ने सभी एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और अन्य आपातकालीन बचाव दलों को तैयार रखा गया है। मौसम विभाग ने कल देश के कई हिस्सों में मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। पूर्वोत्तर क्षेत्र, झारखंड, महाराष्ट्र, उड़ीसा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, तटीय कर्नाटक, कोंकण और गोवा में तेज वर्षा हो सकती है। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में कल तक तेज हवाओं के साथ आंधी तूफान की स्थिति बनी रह सकती है। बिहार में भी अगले दो दिनों तक ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान है। दिल्ली में कल बारिश की संभावना है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान द्वारा कश्मीर मुद्दा उठाने पर कड़ी आपत्ति व्यक्त की है। पाकिस्तान पर संयुक्त राष्ट्र मंच का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाते हुए भारत ने कहा कि सह अध्यक्ष के रूप में निष्पक्ष रहने के बजाय पाकिस्तान ने पद का दुरुपयोग किया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि आसिम इफ्तिखार अहमद की टिप्पणियों के जवाब में जम्मू कश्मीर पर भारत का रुख दोहराया।
1: मैं पाकिस्तानी पक्ष की टिप्पणियों का उल्लेख करता हूं। यह हैरान कर देने वाला है कि ऐसे मंच पर जहां राजनीतिक मुद्दों पर संतुलित और निष्पक्ष चर्चा की उम्मीद की जाती है ऐसी बातें कही गईं। मैं दोहराना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर पूर्ण रूप से भारत का घरेलू मामला है।
0: भारतीय नौसेना के जहाज उदयगिरी और कवरत्ती दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में अपनी परिचालन तैनाती के अंतर्गत वियतनाम के हो चिन मिन शहर से दौरा पूरा करने के बाद रवाना हो गए हैं। इस दौरे पर पूर्वी बेड़े के फ्लैग ऑफिसर रियर एडमिरल आलोक आनंद ने हो चिन मिन शहर की पीपल्स कमेटी और वियतनाम पीपल्स नेवी के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समुद्री सहयोग, आपसी समन्वय और क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा पर चर्चा की। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लक्ष्य में आईएनएस कवरत्ती पर एक संयुक्त योग सत्र भी आयोजित किया गया। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ है अम्बरीश सक्सेना।
2: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 791 अंक बढ़कर 76,991 अंकों पर बंद हुआ। निफ्टी भी 198 अंक बढ़कर 24,022 अंकों पर जा पहुंचा। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के व्यापक बाजार में मिड कैप 100 सूचकांक 0.1% और स्मॉल कैप सूचकांक 0.4% तक बढ़ा। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया एक डॉलर की तुलना में 8 पैसे मजबूत होकर 94.66 पर बंद हुआ।
0: फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप बी मुकाबले में देर रात स्विट्जरलैंड का मुकाबला कनाडा से होगा। इसी ग्रुप में कतर और बोस्निया एंड हर्जोगोविना आमने सामने होंगे। दोनों मुकाबले रात 12:30 बजे से खेले जाएंगे। यूएस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला डबल्स में त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। भारतीय जोड़ी ने स्पेन की पाउला लोपेस और लूसिया रॉड्रिक्स को हराया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि दूत जेमिसन ग्रीर के साथ व्यापार वार्ता की प्रगति की समीक्षा की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून से सोल में मुलाकात की। वैश्विक चुनौतियों के बीच भारत दक्षिण कोरिया संबंधों को मजबूत करने का आह्वान किया। ओमान ने होर्मुज जलडमरू मध्य से एक अस्थायी समुद्री गलियारा खोलने की घोषणा की। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में निर्माणाधीन गोदाम गिरने से 5 लोगों की मौत, बचाव अभियान जारी। अरुणाचल प्रदेश में मूसलाधार वर्षा से अचानक बाढ़ आई, असम में चेतावनी जारी की गई। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में कनाडा आज रात स्विट्जरलैंड से खेलेगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: ने सफीर जेमिसन ग्रेयर के साथ तिजारती मुजाकरात की पेशरफ्त का जायजा लिया। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने सियोल में जनूबी कोरिया के अपने हमनसब शोहयून के साथ मीटिंग की और आलमी चैलेंजों के तनाजुर में भारत जनूबी कोरिया ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करने पर जोर दिया। ओमान ने आबनाए हुरमुस के जरिए एक आर्जी बहरी राहदारी खोलने का ऐलान किया है। कोलकाता में एक जेर तामीर गोदाम के मुनहदिम होने के हादसे में 5 अफराद हलाक हो गए हैं। इमदादी कार्रवाइयां तेजी के साथ जारी हैं। अरुणाचल प्रदेश में शदीद बारिश के सबब अचानक सैलाब की सूरत हाल पैदा हो गई। आसाम में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। और फीफा वर्ल्ड कप में आज रात वैंकूवर में ग्रुप बी के मैच में कनाडा का सामना स्विट्जरलैंड से होगा। अब खबरें तफसील से। तिजारत और सनत के मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने अमरीकी तिजारती उमूर के नुमाइंदे सफीर जेमिसन ग्रेयर और उनके वफद के साथ आज सुबह सिलसिलेवार मीटिंगें की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब गोयल ने कहा कि मीटिंगों में भारत और अमरीका के दरमियान जारी तिजारती मुजाकरात की पेशरफ्त का जायजा लिया गया और दोनों मुल्कों के दरमियान इकतसादी शराकतदारी को मजीद गहरा करने के मौके के इम्कान की तलाश की गई। उन्होंने सफीर ग्रेयर की क्यादत और बातचीत को एक तामीरी समत अता देने की फाल कोशिशों की सताइश की। भारत और मुत्तहिदा अरब अमारात ने नई दिल्ली में स्ट्रेटेजिक दिफाई शराकतदारी के फ्रेमवर्क के तहत दिफाई तआवुन की तरक्की में पेशरफ्त की गरज से आज एक मीटिंग की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में वजारत दिफा ने मुत्तला किया कि मीटिंग की मुश्तरका सदारत बैनुल अक्वामी तआवुन के ज्वाइंट सेक्रेटरी अमिताभ प्रसाद और मुत्तहिदा अरब अमारात के ब्रिगेडियर स्टाफ जमाल इब्राहिम मोहम्मद इब्राहिम अलमारजूकी ने की। पोस्ट में मजीद कहा गया है कि तबादला ख्याल में दिफाई सनती शराकतदारी को वसत देने, इख्तरा को फरोग देने, जदीद टेक्नोलॉजी से इस्तेफादा करने और बहरी सलामती में इजाफा करने पर तवज्जो मरकूज की गई। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने आज कहा कि मौजूदा आलमी चैलेंजों के दौर में भारत और जनूबी कोरिया के दरमियान ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाना निहायत अहम है। उन्होंने जोर देकर कहा कि मुश्तरका अकदार और बाहमी एतमाद रखने वाले मुल्कों को एक दूसरे के साथ ज्यादा करीबी तआवुन करना चाहिए। सियोल में जनूबी कोरिया के वजीर खारजा शोहयून के साथ मीटिंग के आगाज में अपने खिताब के दौरान उन्होंने कहा कि मौजूदा बैनुल अक्वामी हालात काबिले एतमाद शराकतदारों के दरमियान तआवुन को पहले से ज्यादा अहम बना रहे हैं। डॉ जयशंकर ने आज शाम जनूबी कोरिया के कौमी सलामती के डायरेक्टर वी संगलेक से भी मुलाकात की। बाद में सोशल मीडिया पर जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि दोनों फरीकों के दरमियान आलमी हालात व वाकयात और भारत बहरुल काहिल खित्ते से मुतालिक अहम स्ट्रेटेजिक उमूर पर मुफीद और नतीजा खेज बातचीत हुई। ओमान ने स्ट्रेटेजिक एतबार से अहम आबनाए हुरमुस के जरिए आर्जी बहरी राहदारी को खोले जाने का ऐलान किया है। ये इकदाम तिजारती बहरी नकलो हमल की बहाली और इस बहरी बहरान को कम करने की जानेब एक अहम कदम करार दिया गया है, जिसके बाइस खलीज में हजारों समुद्री कारकुन फंसे हुए थे। ओमानी हुकूमत के मुताबिक ये मनसूबा अक़्वाम मुत्तहिदा की बैनुल अक़्वामी बहरी तंजीम IMO के तआवुन से तैयार किया गया है, ताकि इलाकाई तनाज़ात से पैदा होने वाली कई माह की रुकावटों के बाद आबी गुजरगाह से जहाजों की महफूज आमद रफ्त को यकीनी बनाया जा सके। बैनुल अक़्वामी बहरी तंजीम के मुताबिक खित्ते में 11,000 से ज्यादा बहरी कारकुन फंसे हुए हैं और जिन्हें मरहलावार तरीके से निकाला जाएगा और आमद रफ्त के मनसूबे के तहत मदद फराहम की जाएगी। तेहरान में वाकई भारतीय सिफारतखाने ने ईरान में सिक्योरिटी की सूरत हाल में बेहतरी के मद्देनजर भारतीय शहरियों के लिए सफर से मुतालिक नजरसानी शुदा एडवाइजरी जारी की है। सिफारतखाने ने हालिया मुस्बत हालात वाकयात और मजमू सूरत हाल में बेहतरी के तनाजुर में भारतीय शहरियों को ईरान के सफर के बारे में संजीदगी से गौर करने का मशवरा दिया है। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
1: एडवाइजरी के मुताबिक भारतीय शहरियों को आइंदा इत्तला तक ईरान के गैर जरूरी सफर से गुरेज करने का मशवरा दिया गया है। सफारतखाने ने कहा है कि जो भारतीय शहरी इस वक्त ईरान में मुकीम हैं या नागुजेर वजूहात के बिना पर ईरान का सफर करना चाहते हैं, वो इंतहाई एहतियात बरतें, सूरतेहाल पर मुसलसल नजर रखें और मकामी हालात से बाखबर रहें। सफारतखाने ने शहरियों को हिदायत दी है कि वो मोतबर जराए से वहां के हालात व वाकयात पर नजर रखें और मुकामी हुक्काम की जानिब से जारी करदा हिदायत पर अमल करें। ईरान में मौजूद तमाम भारतीय शहरियों और नए आने वालों को जल्द अज जल्द सफारतखाने में अपनी मालूमात दर्ज कराने का भी मशवरा दिया गया है। इसके अलावा सफारतखाना ने सरकारी वेबसाइट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जारी होने वाली ताज़ा मालूम

0: और हिदायात पर बाकायदगी से नजर रखने की तलकीन की गई है। विष्णु की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं फैसल हबीब।
1: मगरी बंगाल में कोलकाता के तारातला इलाके के नजदीक जेर तामीर एक गोदाम के मुनहदिम होने के बाद इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। गोदाम के मुनहदिम होने से कई मजदूर भारी लोहे के मलबे तले दब गए हैं। एसएसकेएम अस्पताल में 5 अफराद को मुर्दा करार दिया गया जबकि जख्मियों का इलाज जारी है। वजीर आला और सुवेंदु अधिकारी जाए हादसा पर पहुंच गए हैं। रियासती वजरा अग्निमित्र पॉल और डॉक्टर इंद्रानिल खा भी सूरत हाल का जायजा लेने के लिए जाए हादसा पर पहुंचे। कुदरती आफात की सूरत में काम करने वाली कौमी फोर्स एनडीआरएफ पुलिस आग बुझाने के अमले इमरजेंसी सर्विसेज और भारतीय फौज की टीमें तलाश और बचाव की कार्रवाइयों में मसरूफ हैं। अंदेशा है कि और भी कई मजदूर मलबे के नीचे फंसे हो सकते हैं। रियासती सेक्रेटेरिएट नवन्ना ने मुतासरीन की मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर्स जारी किए हैं। ये नंबर्स हैं 1697-9860-0033-221-4356 और 0332-25-351-8। मजीद तफसील हमारे नामनिगार से।
0: भारतीय फौज एनडीआरएफ पुलिस और आग बुझाने वाले अमले के अफराद मुश्तरका तौर पर कोलकाता के तरातरा इलाके में जेर तामीर गोदाम के मलबे तले दबे अफराद को निकालने के लिए इमदादी कार्रवाईयों में मसरूफ हैं। जख्मियों का कोलकाता के एसएसकेएम अस्पताल में इलाज किया जा रहा है, बचाव कार्रवाई जारी है। वजीर आला सुविंदु अधिकारी ने जाए हादसा का दौरा किया और इमदादी अहलकारों की कोशिशों की तारीफ की। उन्होंने मीडिया को बताया कि कोलकाता मेट्रोपॉलिटन अथॉरिटी आज रात उन्हें हादसे से मुतालिक रिपोर्ट पेश करेगी जिसके बाद वो कल असेंबली में इस बारे में बयान देंगे। कोलकाता पुलिस ने इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज कर लिया है, मजीद तहकीकात जारी है। कोलकाता से करियान लाहा की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं मोहम्मद अम्मार।
1: ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। अरुणाचल प्रदेश में आज शदीद बारिश और अचानक सैलाब के सबब केपन्यार जिले के तहत यजाली सर्कल में नेपको कॉलोनी में भारी नुकसान पहुंचा है। ताजा तरीन इत्तलात के मुताबिक 4 अफराद लापता हैं। हुकाम ने अभी किसी जानी नुकसान की तस्दीक नहीं की है, अलबत्ता अभी नुकसान का जायजा लिया जा रहा है, तफसीलात का इंतजार है। नेपको के प्रोजेक्ट के सरबरा ने मुतला किया कि 17 अफराद जख्मी हुए हैं जिनमें से 3 की हालत संगीन है। संगीन तौर पर जख्मियों को इलाज के लिए बजरिया एम्बुलेंस जीरो ले जाया गया है। वजीर आला पेमा खांडू ने मुतासरीन और उनके कुनबों से ताजियत का इजहार किया है जो अपने अजीजों के बारे में पता चलने का बेचैनी से इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने यकीन दहानी की कि हुकूमत मुतासर कुनबों के साथ मजबूती से खड़ी है और बचाव राहत और तिब्बी मदद फराहम करने में कोई कसर बाकी नहीं रखी जाएगी। मरकजी वजीर किरण रिजिजू ने अरुणाचल प्रदेश सैलाब से मुतासर अफराद से अपील की है कि वो एहतियात से काम लें। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब रिजिजू ने कहा कि लोगों की हिफाजत हुकूमत के लिए निहायत अहम है। इस दौरान अरुणाचल प्रदेश ने शदीद बारिश और अचानक सैलाब के तनाजुर में आसाम सरकार ने भी हाई अलर्ट जारी कर दिया है। पेश है एक रिपोर्ट।
0: अरुणाचल प्रदेश में शदीद बारिश के बाद आसाम के निचले इलाकों में सैलाब के शदीद खतरात के पेश नजर आसाम हुकूमत ने अपनी तमाम मुतालिका एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा है जिसके नतीजे में रियासत के निचले अजला बशमूल धीमाजी लखीमपुर बिस्वानाथ और सोनीपत में पूर में पानी की सतह में इजाफा और बहाव की रफ्तार में नुमायां तेजी का खतरा दरपेश है जबकि अगले 1 से 2 दिन के दौरान सैलाब के मजीद आगे बढ़ने का इम्कान है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ और दीगर हंगामी इमदादी टीमों को अलर्ट पर रखा गया है जबकि जिला इंतजामिया को हिदायत दी गई है कि वह हसास इलाकों की कड़ी निगरानी करें और तमाम जरूरी एहतियाती इकदाम करें। निचले और सैलाब के तई हसास इलाकों में रहने वाले लोगों को चौकस रहने, सरकारी हदायात पर अमल करने, पानी वाले इलाकों में जाने से बचने और छोटी कश्तियों के जरिए सफर करने से गुरेज करने की हिदायत जारी की गई है। गुवाहाटी से राकेश डोले की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं फैसल हबीब।
1: नायब सदर जनाब सीबी राधाकृष्णन ने आज नई दिल्ली में एक किताब का इजरा किया जिसका उन्वान है वीआईपी कल्चर इन इंडिया पावर प्रिविलेज एंड डिस्टेंस फ्रॉम डेमोक्रेसी। इस मौके पर शुरुका से खिताब करते हुए जनाब राधाकृष्णन ने कहा कि किताब में इकतदार से मुतालिक इदारों और आम शहरियों के दरमियान अक्सर मौजूद फासले की अक्कासी की गई है और इस बात पर जोर दिया गया है कि अवाम पर मरकूज हुक्मरानी के जरिए इस खला को पुर करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि किताब दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत के तौर पर اور بھارت کی شناخت کو اجاگر کرتی ہے۔ نیز آئین میں پیش کیے گئے

इंसाफ, मसावात और आजादी के ख्यालात का इआदा करती है। भारत की सदारत में ब्रिक्स मुल्कों के खलाई इदारों के सरबराहों की मीटिंग 2026 बेंगलुरु में इख्तिताम पजीर हुई। साइंस और टेक्नोलॉजी और खला के वजीर मुमलिका डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इख्तितामी इजलास में शिरकत की और आलमी सतह पर खलाई सरगर्मियों में भारत के बढ़ते हुए रोल को उजागर किया। इसरो के चेयरमैन वी नारायणन ने नामा निगारों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि दो रोजा मीटिंग में 10 ममालिक के 26 मंदुबीन ने शिरकत की, जिनमें इसरो, इनस्पेस और खला के महकमे के नुमाइंदे भी शामिल थे। उन्होंने कहा कि मीटिंग में समाजी इक्तिसादी तरक्की के लिए रिमोट सेंसिंग, सैटेलाइट निजाम के इस्तेमाल, खसूसन कुदरती आफात के बंदोबस्त और आबोहवा की तब्दीली की निगरानी पर तबादला ख्याल किया गया। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने बेंगलुरु और मुंबई में राजेश एक्सपोर्ट्स लिमिटेड से मुंसलिक 9 मकामात पर तलाश की कार्रवाइयां की। गैर मुल्की जरम मुबादला मैनेजमेंट एक्ट फेमा 1999 की दफात की मुश्तबा खिलाफ वर्जी के मामले में राजेश एक्सपोर्ट्स लिमिटेड और उससे जुड़े अफराद के बारे में जारी छानबीन के सिलसिले में ईडी ने कल से यह तलाशी की कार्रवाइयां शुरू की थीं। एजेंसी ने कहा कि तफ्तीश से इंकशाफ हुआ है कि मस्कूरा कंपनी और उससे जुड़े अफराद गैर मुल्की जरम मुबादला मैनेजमेंट एक्ट फेमा की मुबैना खिलाफ वर्जियों, जिसमें बैरून ममालिक रकम का लेन देन, 3,000 करोड़ रुपए मालियत की गैर शफाफ तरीके से तजारत, 40% स्टॉक के हिसाब में गड़बड़ और बैरून मुल्क बेनामी दारों के हिस्से में हेरा फेरी के मामलात शामिल हैं। ईडी ने तलाशी की कार्रवाइयों के दौरान बरामद किए गए मुख्तलिफ काबिल एतराज दस्तावेजात और डिजिटल शवाहिद के बारे में भी इंकशाफ किया। केरलम के विजिनजाम बैन अलाक्वामी बंदरगाह पर आज शाम एक 1,000वां तिजारती जहाज पहुंचा। ये अहम संगमेल बंदरगाह पर एमएससी लुसियाना नामी बड़े जहाज की आमद के साथ हासिल किया गया। इस कामयाबी के बाद विजिनजाम ने दुनिया की तेजी से तरक्की करने वाली बंदरगाहों में अपनी जगह मजीद मुस्तहकम कर ली है। रांची के राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में मेडिकल सीटों के अलॉटमेंट और दाखिलों के अमल में मुबैना बेजाब्तगियों की तहकीकात करने के लिए सीआईडी की एक टीम रिम्स पहुंची। सीआईडी की टीम ने डीन के दफ्तर और दीगर शोबों के दस्तावेजात की जांच शुरू कर दी है। ये तहकीकात गुज़िश्ता तालीमी साल में बाज ना अहल उम्मीदवारों को जाब्तों के खिलाफ वर्जी करते हुए दाखिला दिए जाने की शिकायत के बाद शुरू की गई हैं। भारतीय महकमा मौसमियात ने शिमाल मशरिकी खित्ते, झारखंड, महाराष्ट्र, उड़ीसा, जैली हिमालयी मगरबी बंगाल, तेलंगाना, साहिली कर्नाटक, कोंकण और गोवा के मुख्तलिफ मकामात पर कल शदीद बारिश होने की पेशगोई की है। महकमे ने महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और मगरबी मध्य प्रदेश में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान जाहिर किया है, जबकि अगले 2 दिनों के लिए बिहार में भी इसी तरह के मौसम की सूरत हाल की पेशगोई की गई है। मौसमियात के महकमे के मुताबिक मगरबी राजस्थान में कल धूल भरी आंधी की पेशगोई है। महकमे के मुताबिक शिमाल मशरकी बहर अरब, गुजरात और मध्य प्रदेश, नीज महाराष्ट्र के बकिया हिस्सों और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों और झारखंड में जुनूब मगरबी मानसून मजीद पेशकदमी कर गया है। इस दौरान आज शाम कौमी राजधानी के कुछ हिस्सों में हल्की से औसत बारिश के बाद लोगों को गर्मी से राहत मिली है। फीफा वर्ल्ड कप में आज कनाडा के वैंकूवर में ग्रुप बी के मैच में कनाडा का मुकाबला स्विट्जरलैंड से होगा। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक रात 12:30 बजे शुरू होगा। एक और मैच में वाशिंगटन के स्टील स्टेडियम में बोस्निया और हर्जेगोविना का मुकाबला कतर से होगा। इससे पहले मैक्सिको के शहर गुडालाजारा में कोलंबिया ने जमहूरिया कांगो को 0-1 एक गोल से शिकस्त देकर राउंड ऑफ 32 के लिए क्वालिफाई किया। आखिर में खास खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। तिजारत और सनत के वजीर पीयूष गोयल ने अमरीकी तजारती नुमाइंदे सफीर जैमिसन ग्रेयर के साथ तजारती मुजाकरात की पेशरफ्त का जायजा लिया। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने सियोल में जनूबी कोरिया के अपने हमनसब शोह्यून के साथ मीटिंग की और आलमी चैलेंजों के तनाजुर में भारत जनूबी कोरिया ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करने पर जोर दिया। ओमान ने आबनाए हुरमुज के जरिए एक आर्जी बहरी राहदारी खोलने का ऐलान किया है। कोलकाता में एक जेर तामीर गोदाम के मुनहदिम होने के हादसे में 5 अफराद हो गए हैं। इमदादी कार्रवाइयां तेजी के साथ जारी हैं। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।

0: चर्चा का विषय है।
1: ये आकाशवाणी है, चर्चा का विषय है। कार्यक्रम में

0: प्रस्तुत है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार देश के प्रतिभावान बच्चों का सम्मान विषय पर महिला और बाल विकास मंत्रालय में संयुक्त सचिव अजीत कुमार के साथ आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति की विशेष बातचीत।
1: नमस्कार श्रोताओं, हर साल देश में कुछ ऐसी प्रतिभाओं और ऐसे प्रेरणादायी बच्चों को आप राष्ट्रीय बाल पुरस्कार हासिल करते हुए देख पाते हैं, जिन्होंने देश में अपनी वीरता से, अपने समाज सेवा से और तमाम क्षेत्रों में अपने प्रेरणादायी कामों से देश को प्रेरित किया है। तो इस वर्ष भी राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के जो नामांकन की प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। तो आज हम कार्यक्रम में राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के महत्व, इसकी नामांकन की प्रक्रिया पर हम विस्तार से जानकारी हासिल करेंगे और बातचीत करेंगे, और साथ ही हम पिछले साल के राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेताओं और जो नामांकित होकर जिन्हें पुरस्कार प्राप्त हुआ था उन बच्चों से भी उनकी कहानियां सुनेंगे। तो आप सभी का मैं स्वागत करना चाहूंगा कार्यक्रम में। हम सबसे पहले तो स्वागत करेंगे महिला और बाल विकास मंत्रालय में संयुक्त सचिव अजीत कुमार सर का। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका।
2: सबसे पहले मुझे आपने इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसी प्रेरणादायक पहल के बारे में बात करने के लिए यहाँ मेरा आना अत्यंत में मेरे लिए बहुत खुशी की बात है।
1: जी, इस बार का जो राष्ट्रीय बाल पुरस्कार है उसके नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। थोड़ा सा हमारे जो देश भर के सुनने वाले परिवार हैं, बच्चे हैं, उनको जानकारी दें और बताएं कि राष्ट्रीय बाल पुरस्कार का मकसद क्या है, किस तरह से इस बार का ये राष्ट्रीय बाल पुरस्कार का जो पूरी प्रक्रिया है ये इस बार भी विशेष है।
2: जी, तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, जिसको हम लोग शॉर्ट में PMRBP भी बोल सकते हैं, 5 से 8 वर्ष के जो बच्चे होते हैं इस आयु के, उनके लिए भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। और यह पुरस्कार 6 श्रेणियों में दी जाती हैं। ये श्रेणियां हैं बहादुरी, सामाजिक सेवा, पर्यावरण, खेल, कला एवं संस्कृति और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। तो इन 6 श्रेणियों में जो बच्चे उत्कृष्ट उपलब्धियां प्राप्त करते हैं उनको हम लोग इस पुरस्कार के माध्यम से सम्मानित करते हैं। और यह पुरस्कार हमारे युवा नागरिकों के साहस, प्रतिभा और योगदान को मान्यता देने के लिए स्थापित किया गया है।
1: जी, हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि इस बार की जो प्रक्रिया है नामांकन की, वो किस तरह से हमारे आप सुनने वालों को बताना चाहेंगे उसके बारे में, और क्या क्या योग्यताएं या क्या क्राइटेरिया है पूरा।
2: जो हमने आपको पूर्व में बताया कि 6 श्रेणियां आइडेंटिफाई की गई हैं, तो इसमें जो एक्सीलेंट अचीवमेंट्स होते हैं, इन 6 फील्ड्स में से कोई भी फील्ड में अगर किसी बच्चे का एक अत्यंत ही उत्कृष्ट उन्होंने अगर कोई कार्य किया हो, काम किया हो, तो वो उसको दर्शाते हुए हमारी जो आवेदन की प्रक्रिया है उसके माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।
1: जी, तो हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि जैसे ये 6 श्रेणियां रखी गई हैं, इन श्रेणियों को हमने देखा है कि जो अब इन श्रेणियों के होने से एक विविध तरह के प्रतिभाएं हमारे सामने पेश होती हैं हर साल। तो इन श्रेणियों को जिस तरह से अब 6 किया गया है और अलग अलग श्रेणियां हैं, तो उनके बारे में भी हमारे सुनने वालों को हम चाहेंगे कि आप विस्तार से बताएं कि कौन कौन सी श्रेणी है और किस तरह से इन श्रेणियों से अलग अलग प्रतिभाओं के जो बच्चे हैं वो हमारे सामने प्रस्तुत हो पाते हैं।
2: देखिए, जैसे पहली जो श्रेणी है बहादुरी, बहादुरी का मतलब अंग्रेजी में ब्रेवरी शब्द यूज करते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि बच्चे अपनी जान की बाजी लगा के दूसरों को बचाते हैं। ऐसे हमारे सामने कई ऐसे उदाहरण हैं और पिछले वर्ष भी उत्तर प्रदेश से और अन्य राज्यों से भी कई ऐसे उदाहरण आए थे जिसमें 2 बच्चे तो पोस्ट्यूमस जिनका देहांत हो गया था और उनको मरणोपरांत अवार्ड दिया गया था, तो उन बच्चों ने अपनी जान की परवाह किए बिना अन्य बच्चों को बचाया था। एक यूपी का बच्चा था जिसने जो है उसके पिताजी को एक मगरमच्छ ने पकड़ रखा था, वो एक पानी के स्रोत में अपने पिताजी को उन्होंने जो है बचाया था। ये तो मैंने बहादुरी की बात की। सामाजिक सेवा की बात करें तो पिछले वर्ष एक केस आया था जिसमें ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एक हमारा बच्चा वो हमारे जवानों को अपनी सेवाएं दे रहा था, तो सामाजिक सेवा का ये बहुत ही अत्यंत ही उत्कृष्ट उदाहरण है। ऐसे ही एनवायरनमेंट के क्षेत्र में, पर्यावरण के क्षेत्र में भी लोगों ने कई सारे ऐसे उत्कृष्ट कार्य किए हैं, और आज आपने जिन बच्चों को शामिल किया है वो भी इसके बारे में और आपको उदाहरण स्वरूप बताएंगे। खेल की अगर हम बात करें, स्पोर्ट्स की, वैभव सूर्यवंशी

0: मिला के इन 6 एंट्रीज में 6 जो मतलब श्रेणियां रखी गई हैं, इसमें काफी बड़ी संख्या में बढ़ चढ़ के बच्चे आ रहे हैं और उनकी हमारे पास नॉमिनेशंस आ रही हैं।
1: जी आपसे सर हम ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि राष्ट्रीय बाल पुरस्कार का ये भी एक बड़ा फोकस रहता है कि जो प्रतिभावान बच्चे हैं वो देश के कोने कोने से आए, दूर दराज गांवों से आए और ऐसे वर्गों से आए जो वंचित हैं, हाशिए पर हैं, दिव्यांग हैं। तो इस बार भी क्या इन्हीं बातों पर फोकस होगा नॉमिनेशन के वक्त कि देश के अलग अलग कोनों से, दूर दराज के इलाकों से भी जो प्रतिभावान बच्चे हैं उनको राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया जाए?
0: अवश्य देखिए, हम लोगों का एक प्रयास ये भी रहता है कि हम भारत के हर कोने से, चाहे वो नॉर्थ हो, साउथ हो, ईस्ट हो, वेस्ट हो, नॉर्थ ईस्ट हो, सारे रीजन से हम लोगों का तो ये भी प्रयास रहता है कि यथासंभव मतलब हर जोन और हर राज्य से भी हम बच्चों को शामिल कर सकें। हम लोग हर साल 20 से 25 बच्चों को सम्मानित करते हैं, तो प्रयास यही रहता है कि एक तो भारत के हर एक कोने से बच्चे आए, दूसरा ये भी है कि जो बच्चे आर्थिक परिस्थितियों से, जिनके पेरेंट्स उतने वेल टू डू नहीं हैं, मतलब जो गरीबी से जूझ रहे हैं, जो कठिन परिस्थितियों से जूझ रहे हैं, तो प्रयास ये रहता है कि हर प्रकार के, हर वर्ग के और विशेषकर वैसे बच्चे जो कठिन परिस्थितियों में कार्य कर रहे हैं, उनके योगदान को हम लोग जो है उनको सराहा जाए और उनको ज्यादा से ज्यादा, बड़ी से बड़ी संख्या में सम्मानित किया जाए।
1: बिल्कुल। और हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि जैसे बहुत सारे परिवार वालों और बच्चों के मन में ये प्रश्न होगा कि जब बच्चे नॉमिनेशन के लिए खुद का आवेदन करेंगे तो इसमें हम देख रहे थे कि दो प्रक्रिया है कि एक थर्ड पार्टी नॉमिनेशन और सेल्फ नॉमिनेशन। तो इसके बारे में भी आप कुछ हमारे सुनने वालों को बताना चाहेंगे कि इन दोनों प्रक्रियाओं को रखने का मकसद क्या है, क्योंकि इसमें यह भी है कि बच्चा खुद से भी आवेदन कर सकता है या किसी संस्था या परिवार या कहीं और से भी उसकी प्रतिभा का आवेदन किया जा सकता है।
0: जी, नॉमिनेशन के बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं कि
1: जी
0: नॉमिनेशन ऑलरेडी 1 अप्रैल से प्रारंभ हो चुका है और 31 जुलाई तक नॉमिनेशंस होंगे, और इसके लिए एक राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल https://awards.gov.in,
1: जी
0: इसके माध्यम से आवेदन किया जा सकता है और यह प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन है। जो आपने मूल प्रश्न पूछा था कि कैसे नामांकन किया जा सकता है, कैसे नॉमिनेशंस किए जा सकते हैं, तो बच्चा स्वयं भी अपना नामांकन कर सकता है, लेकिन कई बार परिस्थितियां ऐसे होती है कि बच्चे को उतनी जानकारी नहीं होती, तो कोई संस्था भी उनके बिहाफ पे, उनके पेरेंट्स या कोई भी रिश्तेदार या कोई भी संस्था उनके बिहाफ पे भी नॉमिनेशंस कर सकती हैं।
1: जी जो ये प्रतिभावान बच्चे हैं इनकी निश्चित रूप से अलग अलग क्षेत्रों में प्रतिभाओं को हम राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के जरिए समझ पाते हैं। तो मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगा कि आवेदन के बाद की प्रक्रिया क्या रहती है, जब उनका चयन हो जाता है इस पुरस्कार के लिए, उसके बाद की प्रक्रिया के बारे में भी आप अगर हमारे सुनने वालों को बता सकें।
0: देखिए, जब बच्चे का चयन हो जाता है तो एक बात ये रहती है कि थोड़ी सी गोपनीयता का भी ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम
1: बिल्कुल
0: किसी बच्चे को जिस दिन पुरस्कार देने का दिवस होता है उससे पहले ही उनके नाम सार्वजनिक ना हो जाएं, तो थोड़ा सा हमको ये ध्यान रखना होता है। तो जिन बच्चों का चयन होता है, 2 से 3 दिन या 4 दिन पूर्व हम संबंधित जिले के कलेक्टर साहब को बताते हैं और वहां के जो कंसर्न कलेक्टर साहब होते हैं वो फिर उस बच्चे से, उस बच्चे के परिवार से संपर्क करते हैं और उन बच्चों को, वो जहां भी हो, देश के जिस भी कोने में हो, उनको हम बकायदा हवाई जहाज के माध्यम से, या आसपास के बच्चे हों
1: जी
0: तो मतलब बाय रोड भी वो आ सकते हैं, तो उनके आने, उनके लाने, ले जाने, ठहराने, वो सारी व्यवस्थाएं करते हैं और उनके साथ उनके पेरेंट्स या परिवार का कोई एक सदस्य भी आ सकता है, तो उनको बकायदा हम जहां भी पुरस्कार दिया जाता है, मोस्टली दिल्ली में ही होता है, तो हम उनके लिए पूरी व्यवस्था करते हैं।
1: बिल्कुल
0: तो उनका चयन होने के पश्चात उनको इन्फॉर्म करने, उनको कम्युनिकेट करने के साथ साथ उनको उस स्थान से दिल्ली लाने और दिल्ली से वापस छोड़ने और यहाँ पे ठहरने, और कार्यक्रम जहां भी हो, चाहे राष्ट्रपति भवन में हो या विज्ञान भवन में हो या अन्य किसी स्थल पे हो, हम पूरी व्यवस्था करते हैं ताकि उनको किसी प्रकार से कोई कठिनाई ना हो और वो उस पुरस्कार को ग्रहण कर सके।
1: बिल्कुल सर, क्योंकि इस राष्ट्रीय बाल पुरस्कार में हम सभी जानते हैं कि बच्चों के साथ साथ उनके अभिभावक, स्कूलों, संस्थाओं की भी बड़ी भूमिका होती है, क्योंकि वो अपने आसपास असाधारण बच्चों को तलाश सकते हैं। तो अंत में हम आपसे उन स्कूलों, अध्यापकों और जो शिक्षक हैं

0: या परिवार है, अभिभावक है, या पूरा समाज है, उसके लिए आप कुछ अपील करना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे कि वो अपने आसपास किस तरह से बच्चों को तलाश सकते हैं और उसके लिए नामांकन कर सकते हैं 31 जुलाई से पहले पहले, जिससे कि ऐसे बच्चे जो असाधारण हैं, जिन 6 श्रेणियों की हमने बात की, उन 6 श्रेणियों में अगर किसी भी तरह की उनमें ऐसी असाधारण प्रतिभा दिखाई देती है जो इस पुरस्कार के लिए बहुत जरूरी है या इस पुरस्कार के लिए खरी उतरती है, तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे और कुछ आप बताना चाहेंगे अंत में?
1: देखिए, इस पुरस्कार के बारे में इसका पर्याप्त प्रचार प्रसार हो, इसके लिए हम लोग न्यूज़पेपर्स में एडवर्टीजमेंट्स देते हैं। इसके अलावा रेलवेज पे भी हमारी एक पट्टी चलती है ताकि उसका प्रचार प्रसार हो सके। इस बार भारतवर्ष के समस्त कलेक्टर्स को, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को मैंने स्वयं डीओ लेटर लिखा है और उनसे निवेदन किया है कि जो भी बच्चे उनके जिले में हों, आसपास में हों, उनके बारे में नॉमिनेशंस भेजें। इसी के साथ साथ हमने ऑनरेबल गवर्नर्स, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर्स, जितनी भी मिनिस्ट्रीज हैं, इसके अलावा माननीय जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, इसके अलावा जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हमारी जो महिला एवं बाल विकास की संस्थाएं हैं, जैसे आंगनवाड़ी हैं और अन्य संस्थाएं हैं, सारे स्कूल्स में, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के माध्यम से सारे स्कूल्स में और अन्य सारे विभाग, जो भी महत्वपूर्ण विभाग हैं जहां से हमें एंट्रीज प्राप्त हो सकती हैं, चाहे वो केंद्रीय विद्यालय संगठन हो, नवोदय विद्यालय संगठन हो, समिति हो, तो हमने इस बार प्रयास ये किया है कि हमारी इस योजना या इस पुरस्कार के बारे में पूरे भारतवर्ष में इसका प्रचार प्रसार हो ताकि ज्यादा से ज्यादा एंट्रीज आ सकें। तो मैं समस्त भारतवर्ष के समस्त नागरिकों से और बच्चों के अभिभावकों से, उनके जो टीचर्स हैं स्कूल के, उन सबसे यही आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि आपको कोई भी बच्चा ऐसा अगर आपके ध्यान में आता है, आपके संपर्क में आता है जिसमें प्रतिभा है, और मैं कहना चाहूंगा यहाँ कि भारतवर्ष में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, बात सिर्फ इतनी है कि उस प्रतिभा को तराशने की जरूरत है, तो हम यही निवेदन करना चाहेंगे कि आपको कोई भी ऐसा बच्चा जो उत्कृष्ट कार्य करता हुआ दिखे, मिले या आपके संपर्क में आए, उनके जो नॉमिनेशंस हैं आप जरूर उनके नॉमिनेशंस करें ताकि बड़ी से बड़ी संख्या में हमारे पास नॉमिनेशंस आएं ताकि हम इन बच्चों को पुरस्कृत कर सकें।
0: बिल्कुल, बहुत धन्यवाद सर, आपके जो भी बातें हैं निश्चित रूप से हमारे देश भर के विभिन्न श्रोताओं तक पहुंची होंगी और इस कार्यक्रम के माध्यम से बहुत सारे ऐसे परिवार या बच्चे जरूर आगे आएंगे जो नामांकन करना चाहते हैं राष्ट्रीय बाल पुरस्कार की इस संस्करण के लिए। आप हमारे साथ जुड़े कार्यक्रम में सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपसे आगे भी आगे आने वाले अवसरों पर जरूर बातचीत करना चाहेंगे और जानकारी लेना चाहेंगे विभिन्न गतिविधियों पर महिला और बाल विकास मंत्रालय की। बहुत बहुत धन्यवाद सर।
1: थैंक यू सो मच।
0: जी। अब हम कार्यक्रम के दूसरे हिस्से में उन प्रेरणादायी कहानियों को सुनते हैं जिन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा को दिखाया है, देश के लिए बहुत बड़ा अमूल्य योगदान दिया है, समाज को अपने कारनामों से प्रेरित किया है। हमारे साथ सबसे पहले जुड़ी है शिवानी हसुरु, जो एक 17 वर्षीय एक पैरा एथलीट है और दिव्यांग होना उनके लिए कोई बाधा नहीं है। जैवलिन, शॉर्टफुट थ्रो, इन सभी में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने मेडल्स जीते हैं। तो शिवानी, बताएं अपनी कहानी हमारे सुनने वालों को, आप कहाँ से आती हैं और किस तरह से आपने अपनी छोटी सी आयु में पैरा एथलीट होने का इतना बड़ा गौरव हासिल किया है।
2: मेरा नाम शिवानी है, मैं आंध्र प्रदेश से हूँ और मैं
0: जी
2: पैरा एथलीट हूँ, शॉर्टपुट जैवलिन करती हूँ। तो मेरे को पहले बचपन से ही मेरा हाथ नहीं है,
0: जी
2: तो पहले बचपन में बहुत फील होती थी लाइक मेरे को हाथ नहीं है, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी ऐसा। अभी मैं नवोदय स्कूल में पढ़ती थी, 6 से लेकर 12 तक। बचपन में बहुत लोग बहुत कुछ बोला है कि ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, तेरे को हाथ नहीं है वैसा। तो मम्मी पापा ने एक ही बात बोला है कि हमको बड़े करेंगे, तुम कुछ भी मत बोलो, हम है इसके साथ, ऐसा बोल के मेरे को साथ दिया है। ऐसे मेरे को बचपन से हॉस्टल में भेजा है कि मेरे को लाइक आदत पढ़ने के लिए, विदाउट हैंड करने के लिए जो भी। फिर मैं नवोदय स्कूल में गई हूँ 6th से लेकर 12th तक।
0: जी
2: फिर
0: जी
2: एक हैदराबाद में आदित्य मेहता फाउंडेशन है जिसमें ओनली पैरा एथलीट्स को सपोर्ट करते हैं, उसमें मेरा डिफरेंट डिफरेंट गेम्स में मेरा बेस्ट लिया था, तो मेरा शॉटपुट जावलिन में अच्छा था, तो मेरे को ट्रेनिंग देते हैं, साथ में कंपटीशन भी देते हैं। वैसे मैं शाहपुर जाने में स्टेट में।

0: और इंटरनेशनल लेवल तक गई हूँ। इंडिया के लिए 4 गोल्ड मेडल लाई हूँ और ऐसे मेरे पास अभी अभी तक 19 मेडल्स है, उसमें से 16 गोल्ड, 1 सिल्वर, 2 ब्रॉन्ज है। और मैं उसके लिए बहुत कुछ करना चाहती हूँ, ओलंपिक्स में रिप्रेजेंट करना
1: बिल्कुल
0: चाहती हूँ आगे से।
1: बिल्कुल, हमारी बहुत शुभकामनाएं शिवानी आपके साथ। जिस तरह से आपने अपनी छोटी सी उम्र में पैरा एथलीट होने का एक बड़ा अवसर हासिल किया और साथ में आपने बहुत सारे मेडल्स जीते, तो ये मेडल्स की झड़ी आपके लिए लगातार बनी रहे। और आपसे बस ये भी मैं जानना चाहूंगा कि राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिलने का आपका एक्सपीरियंस कैसा था, क्या कैसा मन में उत्साह था, इसके बारे में भी हमारे सुनने वालों को बताएं।
0: कभी भी मैं टीवी में देखती थी नरेंद्र मोदी जी को और मैम को, द्रौपदी मुर्मू मैम को, मैं सोचती थी इतना बड़े लोगों से मैं कब मिलूंगी, ऐसा सोचती थी। फिर सोचा भी है कि मैं कभी नहीं मिल पाऊंगी, ऐसा मैं सोचती थी। पर मैं बहुत खुश हूँ ये अवार्ड मिला है। उधर जाके सर से, पीएम नरेंद्र मोदी जी से बात करना, उनसे इंटरेक्ट करना, ये सब कुछ मेरे को सपना जैसा लगा, पर वो सच था, बहुत अच्छा लगा।
1: जी बहुत धन्यवाद शिवानी, बहुत शुभकामनाएं आगे के आपके फ्यूचर के लिए। थैंक यू हमसे जुड़ने के लिए। अब हम जुड़ रहे हैं एक और प्रेरणादायी व्यक्तित्व से, और हम सभी जानते हैं कि ये सभी बच्चे हमारे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। आयशी प्रिशा बोरा, इन्होंने छोटी सी 14 साल की उम्र में एक यंग इनोवेटर होने का गौरव हासिल किया। साइंस और इनोवेशन की कैटेगरी में इन्हें ये राष्ट्रीय बाल पुरस्कार का सम्मान मिला, और इन्होंने खास तौर पर सस्टेनेबल फार्मिंग और वेस्ट रिसाइकलिंग के नए नए तरीके खोजे हैं। तो चलिए इनसे ही जानते हैं कि कैसे ये एक यंग इनोवेटर होते हुए सस्टेनेबल फार्मिंग और जो रिसाइकलिंग है और जो हमारा इन्वायरमेंट है उसको लेकर काम कर रही हैं। बहुत स्वागत है आयशी आपका
2: नमस्कार सर, थैंक यू सर।
1: जी। तो बताएं अपने बारे में, आपको सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे कि आपकी प्रोफाइल से ही लग रहा है कि एनवायरनमेंट से बहुत प्यार है और हम सभी को होना भी चाहिए, तो बताएं कि किस तरह से आपके मन में इस तरह की बातें आती हैं। जैसा कि हम आपने सुनने वालों को बता भी रहे थे कि जो सस्टेनेबल खेती है या जो वेस्ट रिसाइकलिंग है, ऐसे इस इन सब चीजों पर काम करने को लेकर कैसे प्रेरणा आती है।
2: मेरा मेन मोटिव यही होता है कि मैं जितना हो सके उतना अपनी मदर अर्थ को प्रोटेक्ट कर
1: बिल्कुल
2: सकूं। सस्टेनेबिलिटी मेरे हिसाब से एक जरूरत बन चुकी है आज के समय में, सो दैट्स व्हाई आई वर्क ऑन दीज स्टफ एंड या आई वांट टू वर्क फर्दर ऑन इट, मेकिंग मोर सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स एंड व्हाटएवर आई कैन डू।
1: जी, तो बहुत इंटरेस्टिंग आपके इनोवेशन है आयशी। ये भी हम आपसे जानना चाहेंगे कि आगे कोई ऐसा आपका कोई सपना है कि अपना स्टार्टअप हो, आगे आपकी कोई कंपनी हो, आपके प्रोडक्ट्स राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह के जो वेस्ट मटेरियल के प्रोडक्ट्स हैं वो बिकें, तो कुछ ऐसा सोचा है आपने।
2: राइट नाउ आई विल बी कम्प्लीटली ऑनेस्ट, आई डोंट नो अबाउट स्टार्टअप्स एंड ऑल, बट एज ऑफ टूडे व्हाट
1: हाँ
2: आई एम ट्राइंग टू फोकस ऑन इज टू कम अप विद द मोस्ट सस्टेनेबल सोल्यूशन टू
1: सॉल्यूशंस
2: ऑल दी सोसाइटल प्रॉब्लम्स, एंड इफ फ्यूचर आई गेट द चांस टू इम्प्लीमेंट देम इन रियल लाइफ, डेफिनेटली आई एम वेरी ईगर टू डू दैट, बट राइट नाउ आई एम जस्ट फोकसिंग ऑन बिल्डिंग द सोल्यूशंस एंड एज ऑफ नाउ आई एम ट्राइंग टू फोकस ऑन माई स्टडीज ऑल्सो एज आई एम अ 10th grader दिस ईयर।
1: साथ में आपसे भी वही सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगा कि राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिलने का आपका अनुभव कैसा था, एक्सपीरियंस कैसा था, क्या आपके मन में एक्साइटमेंट था, उसके बारे में भी आप बताएं।
2: इट वॉज समथिंग दैट आई नेवर ड्रीम्ड ऑफ एंड इवन टूडे, आज भी मैं शब्द नहीं ढूंढ पा रही हूँ मैं कैसे एक्सप्रेस करूँ। बहुत अच्छा लगा, लाइक इट्स समथिंग द लिटिल आईशी इन साइड मी वॉज वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड फॉर, एंड आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन इट टू बी ऑनेस्ट।
1: थैंक यू सो मच आयशी, आप हमारे साथ जुड़ी और आपने अपने एक्सपीरियंस, अपने इनोवेशंस के बारे में हमारे सुनने वालों को बहुत डिटेल में बताया। थैंक यू सो मच।
2: थैंक यू सर।
1: अब हमारे साथ एक और प्रेरणादायी व्यक्तित्व है, एक और हमारे साथ राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के विजेता पिछले साल के जुड़ रहे हैं, वंश तयाल। वंश तयाल ने अपने जीवन में किसी भी तरह के मिसिंग को, किसी भी तरह के लॉस को लॉस नहीं समझा, और आज वो एक बहुत बड़े यूथ लीडर हैं और एक केयर गिवर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी उन्हें सराहना मिली है, तो वंश को हम जोड़ना चाहेंगे। वंश, अपने बारे में बताएं थोड़ा सा। हम सभी जानते हैं कि आपका परिवार नहीं है, माता पिता नहीं है, लेकिन इसके बावजूद आपने अपने जीवन में किसी भी तरह की रुकावट को महसूस नहीं किया, और आज आपने इस लॉस को उबारते हुए एक बहुत

0: बड़े यूथ लीडर के तौर पर उभर कर सामने आने का खुद को मौका दिया, बताएं अपने बारे में कुछ।
1: तो ये मौका मिले बहुत एक कठिन समय रहा, जब तक मेरे माता पिता नहीं थे, लेकिन बहुत रिश्तेदारों का सपोर्ट नहीं था, बहुत कठिन समय रहा मेरे लिए, बहुत ही आगे मूव ऑन कैसे करना है, कैसे खड़ा होना अपने पैरों पे, बहुत मुश्किल था लाइफ में, है ना, कि अब तो हिम्मत हार गई थी कि क्या ही करेंगे, कहाँ जाएंगे, अकेला हूँ, क्या करूंगा, ऐसी रह जाऊंगा, बहुत मुश्किल, रिश्तेदारों ने भी सपोर्ट नहीं किया बिल्कुल भी, कुछ नहीं बना। फिर थोड़ा होप हुई एक, फिर होम में आया मैं, चिल्ड्रन होम में आया चंडीगढ़ में, फिर देखा वहां पर एनवायरमेंट, देखा लगा ना कुछ 4-5 महीने लगे, हुआ थोड़ा सा बैकअप आया, धीरे धीरे सपोर्ट आया, वहाँ के स्टाफ ने काफी सपोर्ट किया मुझे इस बात के लिए। उसके बाद फिर एक छोटा सा बच्चा आया, मतलब बहुत छोटा बच्चा था, स्पेशल बच्चा, एक साइबर पॉलिसी थी उसको, मतलब वो चल नहीं पाता था, बोल नहीं पाता था, तो उससे काफी इंस्पायर हुआ, काफी मोटिवेट हुआ उस बच्चे से मैं, कि हाँ चलो बहुत छोटा है, और उसको बच्चे को उनके माँ बाप ने छोड़ दिया, उसको भी हाँ उसकी हालत ऐसी है, पर मैं तो फिर भी मैं रिलायबल हूँ, सेल्फ इंडिपेंडेंट हूँ, कि कुछ भी कर सकता हूँ। तो आई वॉज वेरी इंस्पायर्ड फ्रॉम हिम, कि हाँ कैन डू, सर्वाइव तो मैं तो क्या ही हूँ, मैं तो फिर भी अपने काफी बड़ा हूँ, 12-13 साल का था उस टाइम, तो काफी अच्छा मौका था मेरे लिए, मैंने फिर काफी इंस्पायर होके मैंने सोचा कि इसको वॉलंटियर सर्विस दूंगा, और काफी जिस होम में मैं रहता था तो काफी स्पेशल बच्चे भी रहते थे वहाँ पे, तो उन सबकी हेल्प करना, हेल्प आउट करके, मतलब उन सबकी मदद करके, और उस बच्चे को मैंने काफी ना एक टूडे की वो चल भी सकता है, खा भी सकता है, बोल भी पा रहा है आराम से, तो काफी था ये समय। फिर धीरे धीरे नॉमिनेशन का पता लगा कि हाँ राष्ट्रीय बाल पुरस्कार का भी नॉमिनेशन हो जाता है सोशल वर्क में, तो मेरे सुपरिटेंडेंट्स रहे थे मिस्टर ललित अरोड़ा, उन्होंने भी काफी इंस्पायर किया, काउंसलर मिस्टर प्रदीप ठाकुर थे, उन्होंने भी काफी इंस्पायर किया कि हाँ करो करो, तो फिर उन्होंने दोनों ने इकट्ठे मिलकर फॉर्म वगैरह भरा मेरा।
0: बिल्कुल, निश्चित तौर पर आपने इतनी छोटी सी उम्र में अपने जीवन के अनुभव से जो समाज सेवा का एक बहुत बड़ा बीड़ा उठाया है, ये बहुत सच में सराहनीय बात है। हम आपसे और जानना चाहेंगे कि फ्यूचर में जिस तरह से हम भी जानते हैं कि देश भर में ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनके परिवार नहीं है, उनके लिए आप कुछ करना चाहते हैं, क्या आपने सोचा है फ्यूचर में कि आप कैसे अपने इस समाज सेवा के काम को आगे बढ़ाना चाहेंगे?
1: जैसे ये मेरा एक स्कोप है इन फ्यूचर में, कि मैं एक अच्छा पढ़ाई करके साइकोलॉजिस्ट बनूं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, और जितनी करीबी से मैंने मुसीबतों को देखा है वो मैं चाहता हूँ कि वो लोग ना देख पाए, कि वो युवा पीढ़ी ना देख पाए, जो बच्चे हैं वो ना देख पाए, उनका साथ में अपनी सोशल सर्विस कंटिन्यू रखना चाहता हूँ, और सबकी हेल्प आउट करना चाहता हूँ, कि जितनी मेरे से हो सके, मतलब सेल्फ होके वो मैं हेल्प करना चाहूंगा उनकी।
0: बिल्कुल, बहुत शुभकामनाएं वंश आपके लिए हमारी कि आप इस तरह से अपने समाज सेवा के काम को आगे बढ़ाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम जुड़ते हैं सुमन सरकार से। सुमन सरकार एक तबला वादक हैं, छोटी सी उम्र में इन्होंने बहुत सारे मंचों पर अपने तबला वादन का परफॉर्मेंस दिया है, और साथ में इनका एक और काम है कि ये जो ऐसे बच्चे जो म्यूजिक के लिए अफोर्ड नहीं कर सकते हैं ट्रेनिंग, उनको फ्री ट्रेनिंग की भी इन्होंने कोशिश की है, तो ऐसे भी समाज सेवा का ये काम कर रही है। बहुत स्वागत है सुमन आपका।
2: सर आपको बहुत धन्यवाद।
0: तो सुमन बताएं कि कैसे आपके मन में म्यूजिक को लेकर ये इंटरेस्ट आया था, क्योंकि आपको कला के क्षेत्र में राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो आप अपनी प्रतिभा के बारे में हमारे सुनने वालों को बताएं।
2: तो सर देखिए, मेरा जर्नी जो शुरू हुआ था 3 साल की उम्र में ही शुरू हो गया था, जब मैं एकदम छोटा था, तो तभी मैं ये तबला को, मतलब आसपास के जब कुछ चीजों को बजाने की कोशिश करता था, मेरे फादर का जो बहुत सपना था वो थोड़े शास्त्रीय संगीत का चर्चा करेंगे, मेरे परदादा जो थे वो श्रीखोल बजाते थे, तो मेरे फादर का फाइनेंशियल प्रॉब्लम के लिए ये सपना पूरा नहीं हो पाया, तो उसी हिसाब से उन्होंने मेरे अंदर ये सपना देखना शुरू किया। तो जब मैं 3 साल का उम्र का था, तभी मेरे पापा ने ये नोटिस किया कि बच्चे के अंदर ताल का कुछ ज्ञान है, तो मेरे फादर ने शिक्षा चालू कर दिया था मेरे गाँव में, मेरे प्रथम गुरु का नाम है श्री पोबेट कुमार सरकार, उनसे मैं सीखना चालू किया, तो वहां से जानने शुरू हुआ। तो फिर चलते चलते जब मेरा उम्र 7 साल का हुआ, तो मेरा फर्स्ट स्टेज प्रोग्राम था, कंपटीशन था, तो मैं बहुत डरता था तब स्टेज पे सबके सामने बजाने के टाइम, तो मेरे पापा ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मम्मी ने भी बहुत सपोर्ट किया, गुरु का आशीर्वाद तो रहता ही है।
0: बिल्कुल,
2: तो इसी हिसाब से लाइफ में फर्स्ट जब कंपटीशन दिया तो उसमें मैं फर्स्ट हुआ, मेरा उम्र तब 7 साल का था, मैं तब फर्स्ट हुआ, तो जो जजमेंट में था उन्होंने बोला कि मेरे फादर को उन्होंने एडवाइस दिया कि बच्चे को और ऊपर ले जाओ और अच्छे गुरु के पास ले जाओ, तभी से मैं कोलकाता के गुरु से सीखने लगा, श्री उज्जवल भारती से, तभी से मेरा जर्नी, ये जो शास्त्रीय संगीत का जर्नी है तभी शुरू हुआ, धीरे धीरे ये बढ़ता रहा, मैंने रियाज करता, हमारा तो पूरा ही रियाज पे चलता है ये शास्त्रीय संगीत, मैं पढ़ाई लिखाई के साथ साथ ये शास्त्रीय संगीत का जो प्यार मेरे अंदर बढ़ता रहा
0: जी। और ये भी

0: हम आपसे समझना चाहेंगे, जो आपकी कोशिश है कि आप फ्री ट्रेनिंग दें जो संगीत सीखने वाले बच्चे हैं उनको, उसके बारे में भी बताएं किस तरह का ये आप काम कर रहे हैं।
1: आज का जो जनरेशन है वो सिर्फ एडुकेशन पे भागता है, तो मेरा एक ही कहना है कि एडुकेशन के साथ साथ ये जो शास्त्रीय संगीत व हमारा कला संस्कृति जो है इसमें भी बहुत बड़े बड़े सम्मान पा सकते हैं, यही मेरा वार्ता रहेगा समाज के अंदर। जो पद्मश्री पद्मभूषण बड़े बड़े जो सम्मान है वो शास्त्रीय संगीत में भी मिल सकते हैं।
0: बहुत धन्यवाद, और आपको बहुत बहुत बधाई भी कि पिछले साल आपने जो राष्ट्रीय बाल पुरस्कार का ये सम्मान हासिल किया। थैंक यू सो मच सुमन।
1: थैंक यू सर।
0: अब हम जुड़ रहे हैं अर्णव अनुप्रिया महर्षि से। इनका जो एक एआई पावर्ड रिहैबिलिटेशन सॉल्यूशन है दिव्यांग लोगों के लिए, वो बहुत चर्चा में है, उसने इंटरनेशनल लेवल पर रिकॉग्निशन हासिल की है। तो आइए उनके इस सॉल्यूशन के बारे में उनसे जानते हैं, और साथ में जो पिछले साल राष्ट्रीय बाल पुरस्कार का जो सम्मान मिला है उसके बारे में भी उससे हम बातचीत करते हैं। अर्णव, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे श्रोताओं को सबसे पहले अपनी इनोवेशन के बारे में बताएं कि किस तरह से आपने एआई के जरिए एक सॉल्यूशन निकालने की कोशिश की।
2: मेरा जो एक AI सॉल्यूशन है उसका नाम फेयर चांस है, जिसका फुल फॉर्म है फाइन मोटर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस असिस्टेड रिहैबिलिटेशन चांस। ये उन दिव्यांग लोगों के लिए बना है जिनके उंगलियों की जो ताकत रहती है वो बहुत कमजोर रहती है, उसके रिहैबिलिटेशन के लिए बना है, जैसे पैरालिसिस पेशेंट्स, सेरिब्रल पॉल्सी पेशेंट्स। ये जो AI इनोवेशन है ये एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जो कोई भी साधारण लैपटॉप या स्मार्टफोन पे चल जाता है, और इस एप्लीकेशन के थ्रू आपको एक लाइव असेसमेंट मिलता है, एक लाइव आउटपुट मिलता है कि आप कितना अच्छा आपके उंगलियों के मूवमेंट्स कर रहे हो।
0: आपसे आखिर में मैं ये भी जानना चाहूंगा कि जो राष्ट्रीय बाल पुरस्कार का सम्मान है उसको हासिल करके आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्या मन में था, उसके बारे में भी अपना एक्सपीरियंस बताएं।
2: यही पुरस्कार के माध्यम से मेरे जो ये काम है इसको एक क्रेडिबिलिटी मिली है कि सचमुच का ये असली मतलब सचमुच का काम कर रहा हूँ जो एक्चुअली दूसरे दिव्यांग लोग और दूसरे पेशेंट्स के काम में आ सकता है।
0: जी, आपके लिए बधाइयां भी इस पुरस्कार के लिए। धन्यवाद आप जुड़े हमारे साथ इस कार्यक्रम में। श्रोताओं, जिस तरह से इस पूरे कार्यक्रम में हमने महिला और बाल विकास मंत्रालय के संयुक्त सचिव अजित कुमार जी से चर्चा की राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के बारे में, हमारे श्रोताओं को बहुत सी जानकारियां नामांकन से लेकर इस पुरस्कार के मकसद के बारे में जरूर हासिल हुई होंगी। और साथ में कार्यक्रम के दूसरे हिस्से में हमने पिछले साल के राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित कुछ प्रेरणादायी बच्चों से बात की, तो उनके अलग अलग कहानियों को सुनकर भी बहुत सारे सुनने वाले जो बच्चे हैं, परिवार हैं, वो प्रेरित हुए होंगे कि जो 1 अप्रैल से 31 जुलाई तक इस साल के राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए नामांकन की प्रक्रिया चल रही है, अगर किसी श्रेणी में उन्होंने कोई ऐसा कारनामा किया है, कोई छुपी हुई प्रतिभा है, तो जरूर वो सामने आएंगे और नामांकन करेंगे। आप सभी का कार्यक्रम में हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
3: अभी आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार देश के प्रतिभावान बच्चों का सम्मान विषय पर महिला और बाल विकास मंत्रालय में संयुक्त सचिव अजीत कुमार के साथ आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति की विशेष बातचीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।
4: चर्चा का विषय है।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में प्रगति की 52वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में लगभग 30,000 करोड़ रुपए की 4 प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री ने परियोजनाओं को समय पर पूरा करने और लंबित मुद्दों के शीघ्र समाधान पर बल दिया। बैठक में टीबी मुक्त भारत अभियान की भी समीक्षा की गई। श्री मोदी ने टीबी उन्मूलन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग और जागरूकता अभियानों में एनसीसी कैडेटों की भागीदारी बढ़ाने का सुझाव दिया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज अमरीकी व्यापार प्रतिनिधि दूत जैमिसन ग्रिर और उनके प्रतिनिधिमंडल के साथ नई दिल्ली में बैठकें की। श्री गोयल ने भारत अमरीकी

0: पर वार्ता की प्रगति की समीक्षा की और दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने के अवसरों की खोज की। उन्होंने राजदूत ग्रिर के नेतृत्व और दोनों पक्षों के रचनात्मक और प्रगतिशील तरीके से वार्ता को आगे बढ़ाने के निरंतर प्रयासों की भी सराहना की। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने आज नई दिल्ली में सामरिक रक्षा साझेदारी ढांचे के अंतर्गत रक्षा सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए एक बैठक आयोजित की। बैठक की सह अध्यक्षता अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के संयुक्त सचिव अमिताभ प्रसाद और संयुक्त अरब अमीरात के ब्रिगेडियर स्टाफ जमाल इब्राहिम मोहम्मद इब्राहिम अलमारजुकी ने की। चर्चा का मुख्य विषय रक्षा उद्योग सहयोग का विस्तार करना, नवाचार को बढ़ावा देना, विशिष्ट तकनीकों का लाभ उठाना और समुद्री सुरक्षा को मजबूत करना था। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने चुनौतीपूर्ण वैश्विक परिदृश्य के बीच भारत दक्षिण कोरिया संबंधों को और मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया है। सोल में दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ बैठक में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में विश्वसनीय साझेदारों के बीच सहयोग पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गया है।
1: It is clearly our responsibility.
2: इस साझेदारी को आगे बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है। इसमें सरकार के अलग अलग विभाग और देश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलू शामिल हैं, जिनके बीच तालमेल बिठाना बहुत आवश्यक है। मैं कहूँगा कि हमें भविष्य को ध्यान में रखते हुए एक आधुनिक साझेदारी की ओर बढ़ना चाहिए।
1: रिलेशनशिप इन अ मोर डिफिकल्ट वर्ल्ड।
0: ईरान में मौजूद भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों के लिए यात्रा परामर्श जारी किया है। दूतावास ने कहा है कि अगली सूचना तक भारतीय नागरिक जब तक आवश्यक न हो ईरान की यात्रा न करें। दूतावास ने भारतीय नागरिकों से कहा है कि वे अपने आसपास की स्थिति पर लगातार नजर रखें और स्थानीय प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का पालन करें। इस बीच ओमान ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य से एक अस्थायी समुद्री गलियारे के खोलने की घोषणा की है। ये वाणिज्यिक जलमार्ग को बहाल करने और खाड़ी में फंसे हजारों नाविकों के समुद्री संकट को कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ओमान सरकार ने कहा कि ये पहल संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO के समन्वय से विकसित की जा रही है। संगठन के अनुसार क्षेत्र में 11,000 से अधिक नाविक फंसे हुए हैं। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने आज नई दिल्ली में VIP कल्चर इन इंडिया पावर प्रिविलेज एंड डिस्टेंस फ्रॉम डेमोक्रेसी नामक पुस्तक का विमोचन किया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये पुस्तक दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में भारत की पहचान का उल्लेख करती है। पश्चिम बंगाल में कोलकाता के तारातला इलाके में निर्माणाधीन गोदाम की छत गिरने की घटना के बाद राहत और बचाव अभियान जारी है। हादसे में अब तक 3 लोगों की मौत की खबर है। एक रिपोर्ट।
3: बचाव काम युद्धकालीन तत्परता से जारी है। अब तक 18 श्रमिकों को मलबे की ढेर से जिंदा निकाला गया है। करीब 15 और घायल लोग वहां फंसे रहने का संभावना है। घायलों की इलाज SSKM अस्पताल में हो रहा है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है उससे भी ज्यादा लोग फंसे हो सकते हैं। सेना NDRF सिविल डिफेंस फायर ब्रिगेड और कोलकाता पुलिस मिलकर बचाव अभियान चला रहे हैं। दुर्घटना के कारण पर उन्होंने कहा कि प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक निर्माण के नक्शे में त्रुटि थी, लेकिन जिम्मेदारी किसकी है ये अभी स्पष्ट नहीं है। कल विधानसभा में इसी विषय पर बयान दिया जाएगा। आकाशवाणी समाचार के लिए कलकत्ता से अभिरूप भट्टाचार्य।
0: फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप बी के मुकाबले में देर रात स्विट्जरलैंड का मुकाबला कनाडा से होगा। वहीं इसी ग्रुप में कतर और बोस्निया एंड हर्जे गोविना आमने सामने होंगे। दोनों मुकाबले रात 12:30 बजे से खेले जाएंगे। अन्य मुकाबलों में पुर्तगाल, क्रोएशिया और कोलंबिया ने जीत दर्ज की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Prime Minister Narendra Modi today chaired the 52nd meeting of Pragati, the ICT-enabled multimodal platform for proactive governance and timely implementation at Seva Teerth in New Delhi. During the meeting, Mr. Modi reviewed 4 major infrastructure projects in the road, power, industrial corridor and metro rail sectors across 4 states involving an investment of around 30,000 crore rupees. The projects aimed at boosting economic growth, regional connectivity, industrial development and public welfare were reviewed with a focus on timelines, interagency coordination and speedy resolution of pending issues. The Prime Minister stressed that delays in infrastructure

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम माटी के रंग। इसके अंतर्गत आज आपने सुने श्री विनोद कुमार गंधर्व की आवाज में हिमाचली गीत। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। रात्रि के 10:30 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम राग रंजन। इसके अंतर्गत हिन्दुस्तानी शास्त्रीय संगीत में आज आप सुनेंगे पंडित रंजीत सेन गुप्ता का राग जोग कोंस में सरोद वादन।

0: अभी आप सुन रहे थे राग रंजन हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत पंडित रंजीत सेन गुप्ता का राग जो कौंस में सरोद वादन। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। रात्रि के 11 बजने को है। लीजिए अब सुनिए समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में प्रगति की 52वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में लगभग 30,000 करोड़ रुपए की 4 प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री ने परियोजनाओं को समय पर पूरा करने और लंबित मुद्दों के शीघ्र समाधान पर बल दिया। बैठक में टीबी मुक्त भारत अभियान की भी समीक्षा की गई। श्री मोदी ने टीबी उन्मूलन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग और जागरूकता अभियानों में एनसीसी कैडेटों तथा माय भारत स्वयं सेवकों की भागीदारी बढ़ाने का सुझाव दिया। प्रधानमंत्री ने साइबर अपराध और डिजिटल धोखाधड़ी के बढ़ते मामलों पर चिंता व्यक्त करते हुए सभी एजेंसियों, बैंकों और डिजिटल प्लेटफॉर्मों के बीच बेहतर समन्वय तथा जन जागरूकता बढ़ाने के निर्देश दिए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज अमरीकी व्यापार प्रतिनिधि दूत जैमिसन ग्रीर और उनके प्रतिनिधिमंडल के साथ नई दिल्ली में बैठक की। श्री गोयल ने भारत अमरीकी व्यापार वार्ता की प्रगति की समीक्षा की और दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने के अवसरों की खोज की। उन्होंने राजदूत ग्रीर के नेतृत्व और दोनों पक्षों के रचनात्मक और प्रगतिशील तरीके से वार्ता को आगे बढ़ाने के निरंतर प्रयासों की भी सराहना की। भारत और संयुक्त अरब अमेरिका

0: रात ने आज नई दिल्ली में सामरिक रक्षा साझेदारी ढांचे के अंतर्गत रक्षा सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए एक बैठक आयोजित की। बैठक की सह अध्यक्षता अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के संयुक्त सचिव अमिताभ प्रसाद और संयुक्त अरब अमीरात के ब्रिगेडियर स्टाफ जमाल इब्राहिम मोहम्मद इब्राहिम अलमार जुकी ने की। चर्चा का मुख्य विषय रक्षा उद्योग सहयोग का विस्तार करना, नवाचार को बढ़ावा देना, विशिष्ट तकनीकों का लाभ उठाना और समुद्री सुरक्षा को मजबूत करना था। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने चुनौतीपूर्ण वैश्विक परिदृश्य के बीच भारत दक्षिण कोरिया संबंधों को और मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया है। सोल में दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ बैठक में डॉ जयशंकर ने कहा कि वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में विश्वसनीय साझेदारों के बीच सहयोग पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गया है।
1: It is clearly our responsibility.
2: इस साझेदारी को आगे बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है। इसमें सरकार के अलग अलग विभाग और देश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलू शामिल हैं, जिनके बीच तालमेल बिठाना बहुत आवश्यक है। मैं कहूंगा कि हमें भविष्य को ध्यान में रखते हुए एक आधुनिक साझेदारी की ओर बढ़ना चाहिए।
1: रिलेशनशिप इन अ मोर डिफिकल्ट वर्ल्ड।
0: नागर विमानन मंत्रालय ने कहा है कि 22 जून को दिल्ली से अमृतसर जा रही एयर इंडिया की एक उड़ान को रनवे निरीक्षण के दौरान के कारण अमृतसर हवाई अड्डे पर कुछ समय तक प्रतीक्षा करने के निर्देश दिए गए थे। मंत्रालय के अनुसार इस दौरान विमान रडार के मार्गदर्शन के तहत कुछ समय के लिए पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र में प्रवेश कर गया था। ये प्रक्रिया पाकिस्तान के हवाई यातायात नियंत्रण अधिकारियों के समन्वय से की गई। बाद में विमान को दिल्ली वापस भेजा गया, जहां वे सुरक्षित रूप से उतरा। मंत्रालय ने बताया कि घटना की सूचना न देने के मामले में संबंधित एयर ट्रैफिक कंट्रोलर और विमान चालक दल के खिलाफ अंतरिम कार्रवाई की गई है। पश्चिम बंगाल में कोलकाता के तारातला इलाके में निर्माणाधीन गोदाम की छत गिरने की घटना के बाद राहत और बचाव अभियान जारी है। हादसे में अब तक 5 लोगों की मौत की खबर है। घायलों का इलाज सरकारी SSKM मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में चल रहा है। इस बीच मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने घटनास्थल का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि कोलकाता नगर निगम घटना की रिपोर्ट तैयार कर रही है। उन्होंने कहा कि हादसे की विस्तृत जानकारी कल विधानसभा में दी जाएगी। गुजरात के भुज क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय में आज AI आधारित स्वचालित ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक का उद्घाटन किया गया। नई व्यवस्था के अंतर्गत ड्राइविंग टेस्ट से पहले वाहन का पंजीकरण, प्रशिक्षण वीडियो देखना, फोटो स्कैनिंग और RFID सेंसर लगाना अनिवार्य किया गया है। अधिकारियों के अनुसार इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और पूरी प्रक्रिया अधिक निष्पक्ष बनेगी। ईरान में मौजूद भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों के लिए यात्रा परामर्श जारी किया है। दूतावास ने कहा है कि अगली सूचना तक भारतीय नागरिक जब तक आवश्यक न हो ईरान की यात्रा न करें। दूतावास ने भारतीय नागरिकों से कहा है कि वे अपने आसपास की स्थिति पर लगातार नजर रखें और स्थानीय प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का पालन करें। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। रात्रि के 11:10 हुए हैं और इंतजार की घड़ियां हुई खत्म, लेकर आपका मनपसंद कार्यक्रम फिल्म संगीत। आज मैं हूं आपके साथ सविता और मेरे साथ है मेरी साथी
1: वंदना।
0: आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और वंदना, बड़े लंबे अंतराल के बाद आज हम अपने दोस्तों के साथ एक बार फिर से मुखातिब हो रहे हैं और उन्हें भी हमारा इंतजार जरूर रहता होगा।
1: बिल्कुल रहता है और हमें भी बेसब्री के साथ रहता है। और इंतजार की कहानी कहते हुए आज के इस प्रोग्राम को हम सजोकर भी लाए हैं, जो इंतजार को दूर करने का या फिर कहें पाटने का काम भी करता था सविता, लेकिन राज खोलेंगे गीत के बाद। क्यों?
0: बिल्कुल सही कहा। तो चलिए इस गीत से आप अंदाजा लगाने की कोशिश कीजिए कि आज हम क्या बात करने वाले हैं। और उम्मीद करते हैं कि आप बहुत सारे श्रोता हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ेंगे और जो हम बात करना चाह रहे हैं उसके साथ आप भी अपनी बात जरूर जोड़ेंगे। फिलहाल गीत से कार्यक्रम का आगाज करते हैं।

0: जी हाँ, बड़ा ही खूबसूरत सा गीत पंकज उदास और उनके साथियों की आवाज में गीत। जब इस गीत की बात सुनते हैं तो शायद ही वो कोई आंख बनी होगी जो उस गीत को सुनकर नम ना होती होगी, खासकर वो जो कि विदेश में बैठे हैं और अपने देश में या तो चिट्ठी भेजने का इंतजार कर रहे हैं और या फिर अपने देश की मिट्टी की चिट्ठी आने का इंतजार कर रहे हैं। यानी इंतजार के जो लम्हे होते हैं वो चिट्ठी के जरिए कहीं ना कहीं पाटे जा सकते हैं वंदना, क्योंकि जो इंतजार की घड़ियां होती हैं वो संदेशों के जरिए जो है उस इंतजार को कम कर देती है, दिल के हाल को बयां कर देती है। और चिट्ठी की अगर बात की जाए तो चिट्ठी वाकई अपने आप में पूरी की पूरी एक जिंदगी होती है।
1: बिल्कुल ठीक कहा सविता, और बहुत ही सुंदर टॉपिक भाई। सबसे पहले तो तुमने सुना चुन लिया आज, उसके लिए बहुत बहुत तुम्हें बधाई भी देती हूँ। और चिट्ठी की जहाँ तक बात है तो भाई ये एक ऐसा खूबसूरत सा दौर रहा सविता, जहाँ संवाद के आज के जैसे बहुत सारे साधन तो नहीं थे, लेकिन ये जो संवाद होता था ना इसमें भावनाएं होती थी।
0: जी बिल्कुल सही।
1: मोबाइल की घंटियां भले ही ना बजे, लेकिन जब जब डाकिया आता था और उसकी साइकिल की घंटी बजती थी टन टन, तो पूरे जो गांव मोहल्ला या फिर अपने क्षेत्र में एक खुशी की लहर दौड़ पड़ती थी कि भाई चिट्ठी आई है और खत आए हैं। क्यों
0: बिल्कुल सही कहा है। और आज जब हम डिजिटलीकरण के दौर में जिंदगी जी रहे हैं तो बस अब हम एक नीले टिक का इंतजार करते हैं, लेकिन पहले उस नीली चिट्ठी का इंतजार किया करते थे, उस पीली चिट्ठी का इंतजार किया करते थे जिसमें दिल को खोल के रख दिया जाता था, जिसमें न सिर्फ अपने घर के अपने जज्बातों की बात होती ही बल्कि अपने आसपास मोहल्ले की उन सभी बातों को समेट दिया जाता था जो बात हम किसी को बताना चाहते हैं। और ये संदेशे जो थे वो बड़े मायने रखते थे। कभी कभार ऐसा भी होता था वंदना की गुलाबी चिट्ठी हुआ करती थी, और वो गुलाबी चिट्ठी कुछ इस तरह से बयां करती थी कि लगता था कि अपनी जिंदगी की हर बात उसमें लिख दी जाए, अपने दिल के जज्बात को उसमें समेट दिया जाए। लेकिन भाई खत तो खत है, अगर वो किसी के हाथ लग गया तो क्या होगा। इसलिए कभी कभार हम इस बात का सहारा भी लेते थे कि जो तुझे खत लिखे हैं ना वो तो सितारे बन गए हैं।
1: बिल्कुल ठीक। और चलो एक खूबसूरत सा गीत भी सुनवा दो।

0: प्यार होता था, एक एतबार और एक अजीब सा रिश्ता होता था जिसे शब्दों में शायद हम बयान नहीं कर सकते। और आज जब उन खतों का सिलसिला बदला जरूर है, लेकिन जो ये रिश्ता है वो आज भी कायम है सभ्यता, है ना।
1: बिल्कुल सही। और आज हमें इस कार्यक्रम के जरिए हमारी उन यादों के डाकघर का दरवाजा खोल रहे हैं, जहां पर कुछ डाकिए की बात होती थी तो कहीं चिट्ठियों की बात होती थी। उस डाकिए को देखकर मन ऐसा करता था कि मानो शायद ये यही कहने वाला है कि आपके नाम का एक खत आया है।
0: बिल्कुल। और आज भी खत तो हमारे पास आ रहे हैं, उसका रूप रंग बदल गया है सविता।
1: और जैसे कि हमने कहा था कि वंदना कि अब डबल टिक, यानी कि जब नीला हो
0: तो
1: जाता है तब हमें लगता है कि अब वो खत हमें मिला है। और खत ऐसे ही मिलते हैं आजकल, जैसे आप बता रही हैं कि कुछ नीले निशान हमारे भी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे
0: झिलमिला
1: हैं।
0: रहे हैं। और मैं देख रही हूँ तुमने तैयारी कर ली है कि उन सभी जो खतों को हैं तुम लेने वाली हो। ये थोड़े से डिजिटल खत हैं, क्यों?
1: जी बिल्कुल। और क्योंकि अब डिजिटलीकरण का जमाना आ गया है, जहां पर आप बस एक छोटा सा संदेशा लिखकर भेजिए, आप कहीं पर भी हो फटाफट वो हमें मिल जाते हैं। यानी कि सेम टाइम पर, रियल टाइम पर हमें मिल रहा है, वो रियल टाइम पे हम पर पहुंच रहा है। और आपका जो पहला संदेशा हम कार्यक्रम में ले रहे हैं, ये संदेशा हमें करजत मुंबई से मिला है। ये है फूल वाले परिवार, जो कि पूरा परिवार हमारे कार्यक्रम को सुन रहा है। और साथ ही कापस हेड़ा नई दिल्ली से भी हमारे साथ कुछ और दोस्त जुड़े हुए हैं, जो कि फूल वाले परिवार से ही संबंधित है। देखिए, आप सभी के नाम नहीं ले पाएंगे, लेकिन कोशिश करेंगे कि आपके खत को शामिल कर लिया जाए। यानी कि जो आपका मुखिया है ना, उस खत को भेजने वाला, उसके नाम जरूर शामिल करें, उसी में पूरा परिवार हमारे साथ जुड़ जाता है। फागुराम यादव भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो सतीश अनेजा जी हमारे साथ जुड़े हैं। ये सतीश अनेजा जी हमें लिखते हैं चंडीगढ़ सिटी से, और इनके साथ हैं बिमला अनेजा जी। साथ हैं हमारे ये सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से लिखने वाले, बहुत सारे नाम है भाई, इन सभी के नाम लेंगे तो जरूरी हो जाता है, क्योंकि सभी अलग अलग तरह के लोग हैं। यानी कि लगता है कि परिवार कम और दोस्त ज्यादा हैं, लेकिन अब जो दोस्त होते हैं ना, वो भी खतों के जरिए वंदना परिवार का ही रूप बन जाते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो ये लिखकर भेजने वाले हैं टीडी मल्होत्रा, ऋतिक, प्रतीक, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप, और कालका से है शुभ चंद्र बजाज, साहिल और बिट्टा, इन सभी का खत हमें मिला है। तो ये खत हमें मिला है, कह रहे हैं कि सविता जी, वंदना जी, प्यार भरा आदाब आपको, कार्यक्रम इन्हें पसंद आ रहा है। ये गुन्नौर से लिखकर भेज रहे हैं आदिल कमर तसदीक, और कह रहे हैं आपका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ा ही आपने अच्छा सा टॉपिक लिया है। स्वीटी दीवाना जी जो हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो जुड़े हैं हमारे साथ कृष्णा पार्क से, सुखविंदर सिंह जोड़ा जी हैं हमारे साथ। साथ ही हैं हमारे दिग्दर्शन और कविता गौड़, जो कि हमें मेरठ कैंट से संदेशा भेज रहे हैं। तो अनिल मोहन जी भी अपने परिवार के साथ हमारे कार्यक्रम को सुन रहे हैं और लिखकर भेज रहे हैं कि सविता जी, आप सभी का भी, आप जैसे हमारे कार्यक्रम में हमारा अभिवादन करते हैं, तो ऐसे ही हम भी इस कार्यक्रम के जरिए आपका अभिवादन करते हैं। ये इनके साथ हैं अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक और मधु नायक, और इन्होंने पुरानी दिल्ली से संदेशा भी, इन्होंने पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से हमें संदेशा भेजा है। तो ये संदेशा हमें मिला है, कह रहे हैं कि इन्हें कार्यक्रम पसंद आ रहा है, लिखकर भेज रहे हैं। गुरमीत सिंह मेहता जो कि साउथ एक्सटेंशन से हमें संदेशा भेज रहे हैं, कह रहे हैं कि सुहाने गीत भी आप हमारे लिए लेकर आए, बहुत अच्छा है। वड़िंग खेड़ा पंजाब से हैं मिंटू टोमस जी और आर कुमार जी हमारे साथ हैं। तो होस्ट बहनों को आदाब, लिखकर भेज रहे हैं और सदा खुश रहो, ऐसी कामना कर रहे हैं अहमद भाई। किसान ये है किशन सपकाल, आशा सपकाल, जो कि हमें शास्त्री नगर बीड शहर से संदेशा भेज रहे हैं, के साथ उनके पूरे परिवार के सदस्य हैं संदेश के साथ। देखिए, इतने सारे संदेश हैं कि अब गला भी जो कह रहा है कि थोड़ा शांत हो जाओ, लेकिन फिर भी संदेश तो आपके कार्यक्रम में शामिल करने ही हैं। कनेरा मोहल्ला पटियाला से संदेशा भेज रहे हैं मुकेश बत्ता जी, और इनके साथ इनका पूरा परिवार है। तो वहीं हमारे साथ नवी हसन अब्बासी जी भी कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं। भूषण खेरा है हमारे साथ, और ये हमें पंजाब से संदेशा भेज रहे हैं। आमिर हुसैन हैं जो कि कह रहे हैं आप दोनों का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है, और प्लीज हमारे मेल को कार्यक्रम में शामिल कर लीजिएगा। ये हमें गंज डिंडवाड़ा से संदेशा भेज रहे हैं, लिखकर भेजा है जैसे कि हमने बताया कि आमिर हुसैन जी ने, और इनका पूरा परिवार हमारे साथ कार्यक्रम के साथ जुड़ा हुआ है। ये मेरठ से जुड़े हुए हैं अनिल जैन, संयम जैन, मुस्कान जैन, जो कि पूरा और कह रहे सारा जैन परिवार इस कार्यक्रम को सुन रहा है। तो ये है नासिर शेख हमें संदेशा भेज रहे हैं और कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाना चाहते हैं। साथ में हमारे पास ये संदेशा है प्रकाश वर्मा जी का, संदेश के साथ हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं। ये लिखकर आए हैं कि दोस्ती

0: बड़ी ही दमदार है, और इस दोस्ती यानी कि हमारी और आपकी दोस्ती जो है वो टूटने ना पाए भाई, आपकी और हमारी दोस्ती बिल्कुल ना टूटे। और अभिवादन कर रहे हैं एक बार फिर से हमारा ये है, चलिए संदेश को, बड़ा सा ये संदेश है, इसको कार्यक्रम में जरूर शामिल करेंगे लेकिन कुछ समय के बाद। मोहम्मद कुमार हैं जो कि हमें कहते हैं कि अंतरदेशीय पत्र, जैसे कि वंदना तुमने बात की थी, वो कह रहे थे कि डाकखाने पोस्ट ऑफिस से जो चिट्ठियां लेकर आते थे वो दोस्तों रिश्तेदारों को पोस्ट किया करते थे, और वो ना जाने कितने सारे खत और कितनी सारी चिट्ठियां हम लेकर आते थे, फिर उसमें लिखते थे, यानी वो खाली चिट्ठियां लेकर आते थे डाकघर से और उसमें अपना अपना संदेशा लिखकर और वो भेजा करते थे। साथ ही साथ जितने भी आकाशवाणी स्टेशन हुआ करते थे, वंदना वो कह रहे हैं कि हम लगातार उन सभी को अपने संदेशे भेजते थे और कम से कम 5 दिन का इंतजार करते थे, क्योंकि 5 दिन लग जाते थे उस संदेशे को उस व्यक्ति तक पहुंचने के लिए जिसको वो संदेशा भेजा गया है, चाहे वो कोई आकाशवाणी स्टेशन हो या फिर अपने कोई दोस्त या रिश्तेदार हो। वाकई ये जो पोस्ट ऑफिस की जो सर्विस हमें मिला करती थी ना, वो जो सेवाएं थी ना, वो वाकई बड़ी गजब हुआ करती थी, क्योंकि डाकिये को देख के ही एक मन में उत्साह हो जाता था कि शायद हमारे नाम की भी कोई चिट्ठी आई होगी। ऐसा लिखकर भेजा है ये आदिल कुमार ने, जो कि गुन्नौर से हमें संदेशा भेज रहे हैं। तो नासिर शेख भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और निसार अली जी भी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ गए और कह रहे हैं कि संदेशों की अपनी अलग ही दुनिया रही है। तो ये तो संदेशों की बात होगी, और वंदना जैसे कि हम खत की बात कर रहे हैं, हम उस चिट्ठी की बात कर रहे हैं, जो चिट्ठी जो है लिखने से पहले सोचना पड़ता था कि क्या लिखा जाए। कुछ खत बिल्कुल ऐसे हुआ करते थे, एक समय ऐसा भी था वंदना जब खत एक खुले किताब के जैसे हुआ करते थे कि उस खत को कोई भी पढ़ सकता था, तो वहां पर शब्दों का चयन बड़े सूझबूझ के साथ
1: और
0: करना
1: इससे
0: पड़ता था।
1: जुड़ा हुआ एक बहुत रोचक किस्सा भी है मेरे पास, एक गाना सुनवाओ फिर मैं वो किस्सा अपने सभी साथियों के बीच लेकर आती हूँ।
0: तो चलिए फिलहाल गाने का आनंद लेते हैं और फिर सुनते हैं अपनी बहना वंदना से किस्सा।
2: पता है

0: जी हाँ, पहले जब खत लिखते थे तो डाक बाबू से कहना पड़ता था कि डाकिया बाबू जरा हमारा खत लिख दीजिए या फिर जरा हमारे खत को पढ़कर सुना दीजिए, क्योंकि जो पहले के खत हुआ करते थे वंदना, जिसे चिट्ठी कहा जाता है, और चिट्ठी तो फिर भी एक बार हम कहते हैं कि वो चिट्ठी है जो कि गुप्त है, लेकिन जब हम पोस्ट कार्ड की बात करते हैं तो वो पोस्ट कार्ड एक अपने आप में खुली किताब जैसा हो जाता है जिसे कोई भी पढ़ सकता है। ऐसे में जब डाक बाबू से कहा जाए कि को इसको खत लिख दीजिए, किसी का नाम लिख दीजिए, उसके बारे में कुछ लिख दीजिए, तो लगता था इस खत को कौन कौन पढ़ लेगा और कैसे कैसे उस तक पहुंचेगा।
1: बिल्कुल बिल्कुल। और इसी बात से सविता मुझे भी याद आता है, मेरी मम्मी जो है जब वो टीचर ट्रेनिंग किया करती थी जयपुर, तो मम्मी बहुत रोचक किस्से खतों से जुड़े हुए सुनाती हैं। तो मम्मी बोलती है अक्सर नानी खैर खबर लेने के लिए कि सबसे अच्छा तरीका है पोस्ट कार्ड लिख कर भेज दो, तो वो लिख कर भेज देती थी। अब चूंकि जब वो गर्ल्स हॉस्टल था तो वहां पर लेटर्स सीधा जाते नहीं थे,
0: जी
1: पहले उसकी छटनी हुआ करती थी कि कुछ ऐसी खबर या किसने भेजा है ये सब चीजें। अब वो ओपन पोस्ट कार्ड ठहरा, तो उस पे जब भी वो चिट्ठी खुलती तो कई कई बार मम्मी बोलती कि आता कि हमारा तोता जो है वो बहुत ज्यादा बीमार है और उसकी खैर खबर के लिए हमने तुम्हें बताया है। या एक बार ऐसा भी हुआ कि मेरी मम्मी कहती हैं कि कुछ सामान भेजा हमें और वो सामान थोड़ा सा कम था कुरियर में, तो उन्होंने लिखा कि सामान का वेट बराबर हो जाए इसके लिए हमने दो प्याज रख के भेज दिए। तो ये चिट्ठी जब वो क्लास में पढ़ी जाती या बताया जाता तो मैं बोलती इतनी हास्यास्पद स्थिति हो जाती थी सविता कि क्या बताएं। और मेरा टीचर कहता रात को कि सब जाना आज स्वराज्य के यहाँ कि उनका तोता बीमार है या फिर प्याज आया है, तो सैलेड की तैयारी उन्हीं के हाथ से करेंगे। तो ये बहुत मजेदार भी हुआ
0: बिल्कुल
1: करता
0: सही
1: था।
0: कह रहे हो कि वंदना के उस टाइम में ओपन खत मिला करते थे, और जब खत कुछ ऐसा आ जाता था, जैसे मेरी मम्मी ने एक बार मुझे कहानी बताई कि जब वो जो है वो दिल्ली पुलिस की ना ट्रेनिंग ले रही थी, और ट्रेनिंग के दौरान उनके जो थे वो इंगेजमेंट हो चुकी थी, अब सगाई हो चुकी है, तो होता है ना भाई खत तो आएगा ही आएगा।
1: बिल्कुल
0: खत आया, उस पर कुछ शब्द ऐसे लिखे हुए थे जो बड़े ही प्रेम पूर्वक शब्द थे, उन शब्दों को सुना गया। और जैसे कि होता है कि जो मिलिट्री होती है, नेवी होती है, आर्मी होती है, या पुलिस की, जो जब आप पुलिस में ट्रेनिंग ले रहे हैं तो जो खत होता है वो सभी पढ़ते हैं
1: हाँ
0: उस खत
1: बिल्कुल
0: को,
1: बिल्कुल
0: क्योंकि जैसा आपने बताया कि जब आंटी टीचर ट्रेनिंग कर रही थी तो उनका खुला तो वो पोस्ट कार्ड हुआ करता था, तो सब सुनते थे, सब पढ़ के बताया जाता था। ऐसा ही मम्मी के साथ हुआ, तो मम्मी कहती हैं कि बड़ा ही मजाक बन गया, और मुझे अंततः ये लिखकर भेजना पड़ा कि मुझे यहाँ पर किसी तरह की चिट्ठी ना
1: ना
0: भेजी
1: भेजी
0: जाए,
1: जाए।
0: क्योंकि ये हास्यप्रद हो रहा है और लोग छेड़ते हैं, चिढ़ाते हैं, लेकिन इसका भी एक अलग ही मजा हुआ
1: मजा
0: करता
1: था
0: था।
1: बहुत। अच्छा, उन चिट्ठियों, उन चीजों को ना आज भी हम संकलित करके

0: बहुत सहेज कर रखते हैं
1: जी।
0: मुझे याद है जब तुम्हारा और मेरा सिलेक्शन ही हुआ था रेडियो में यहाँ, तो वो जो लेटर आया था कंफर्मेशन की यू आर सिलेक्टेड, कितना उसे हमने सीने से लगा कर रखा था और आज भी सहेज कर रखा हुआ है। क्यों
1: जी, बिल्कुल सही कहा आपने। कुछ खत ऐसे होते हैं जो दिल के बेहद करीब हो जाते हैं और इन करीबी खतों को हम हमेशा से सहेज कर रखना चाहते हैं। फिलहाल तो ये भी बता दें हम कि कुछ गीत भी हमने आपके लिए सहेज कर रखे हैं, तो वो भी आप तक पहुंचाने बेहद जरूरी हो जाते हैं। फिलहाल अगले गीत की तरफ बढ़ते हैं।

0: बहुत ही सुंदर गीत। और वंदना, जब खतों की बात आती है तो खतों को जब लिखा जाता था तो उसमें सिर्फ खत में शब्द नहीं हुआ करते थे, उसमें जज्बात हुआ करते थे, उसकी लिखावट हुआ करती थी, और उसी से बहुत सारी चीजों का अंदाजा लगाया जाता था।
1: बहुत अच्छा। और शब्दों को ही पढ़ पढ़ के ना, कई बार कितनी बार हम सीने से लगाते हैं और लगता है ना वो जो चेहरा है वही उभर कर शायद नरेशन का काम कर रहा है, हमें सुना रहा है वो बात जो कि एक शब्द में बयां करती हुई हमें उस वक्त उस शख्स की कहानी सुना रही है ना।
0: जी हाँ, और कई बार लिखावट भी ये बता देती थी कि वो खत किस तरह से लिखा गया है। जैसे कि अगर राइटिंग लिखावट टेढ़ी है तो लगता था कि शायद हड़बड़ी में लिखा गया खत है, या कहीं स्याही फैल जाती थी तो इससे अंदाजा लगा दिया जाता था कि आंसू का एक कतरा उस पर गिर गया होगा जिसकी वजह से वो स्याही शायद फैल गई है। और वहीं अगर डाक बाबू की बात की जाए तो डाकिया बाबू ऐसे होते थे जो सिर्फ चिट्ठी नहीं बल्कि पूरे मोहल्ले के सुख दुख की खबर लेकर आया करते थे।
1: और सबसे अच्छी जो चिट्ठियों की या खतों की जो चीज होती थी वो होती थी आपको सिखाती थी धैर्य और इंतजार, है
0: इंतजार,
1: ना,
0: जी
1: जो
0: हाँ।
1: आजकल के 5G एरा में तो बिल्कुल ही मुझे लगता खत्म हो रहा है। हम बड़े बड़ी बात भी आजकल सुनना नहीं चाहते सविता, ऐसे बच्चे ही कह देते हैं कि अरे मुद्दे की बात पर आ जाओ, है ना। तो इनको लिखने में जो भावनाएं व्यक्त होती थी और फिर से जो सुनने में व्यक्त होती थी, फिर जो सहेज कर रखा जाता था, उसका एक अपना ही एक गोल्डन एरा था।
0: बिल्कुल सही कहा। और खत सिर्फ उदासी या जुदाई के नहीं होते थे, खत तो मोहब्बत के पहले गवाह भी माने जाते थे। वो जमाना भी क्या जमाना हुआ करता था जब दिल की बात को हफ्तों हफ्तों तक लगातार उस खत के जरिए बयां किया जाता था, और उस खत का इंतजार किया जाता था जो खत हमने भेजा है उसका जवाब कब आएगा। दिल में बहुत सारी जो है वो खलबली मची रहती थी, लगता था पता नहीं कौन सा इमोशन अब जागेगा और वो खत आएगा तो हम कुछ उसके बारे में कुछ सोच पाएंगे, कुछ डिसीजन ले पाएंगे।
1: और ये भी बहुत बड़ा डर कि खत सही हाथों में जाए, कहीं इधर उधर हो गया तो रुसवाइयां हो जाएंगी,
0: जी
1: क्यों।
0: हाँ, बिल्कुल लेने के देने पड़ सकते हैं। फिलहाल आपके खत हमें मिले हैं, जल्दी जल्दी से आपके खतों को ले लेते हैं। सतीश अनेजा जी ने हमें एक बड़ा सा अच्छा सा संदेशा भेजा है। उन्होंने कहा है कि बहुत सुकून मिलता था, ये जो खत हुआ करते थे ये बड़े ही अलग अलग रंगों में भेजे जाते थे, बड़े अलग तरीके से भेजे जाते थे, जिससे ये पता लगता था कि खत किस वजह से भेजे गए हैं। और वो लगातार आकाशवाणी को अपने खत भेजते रहते, तो उन्होंने खत का बड़ा प्यारा सा जो है एक चित्र भी हमें भेजा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और लेकिन वो कह रहे हैं कि आज डिजिटलीकरण के इस युग में ये जो है वो खत्म होते जा रहे हैं। साथ ही हमारे पास हाजी मजहर का संदेश आया है, ये नासिर शेख जी भी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े हैं। तो अश्वनी चुंग जी हैं जो कि कह रहे हैं कि चिट्ठी का जवाब जो हम बात कर रहे थे ना, ये जो चिट्ठी का जवाब देना है ना, ये इंतजार करना भी सिखाता है, और अच्छा लगता था जब अपनी चिट्ठी का इंतजार किया करते थे। आज के जमाने में तो बस जो है जज्बात एक दूसरे के साथ उस तरह से बयां नहीं किए जाते जैसे पहले किए जाते थे, और अब तो लोग फोन के बिना रह भी नहीं पाते हैं। तो वहीं अनिल मोहन जी लिखकर भेजते हैं कि खत और चिट्ठी जो है वो भावनात्मक माध्यम हुआ करता था किसी के साथ जुड़ने का, और एक स्थायी माध्यम था। जब हम खत लिखते थे तो उसमें बहुत सारी अपनेपन की बातें हुआ करती थी, और इन खतों को सहेज कर रखा जाता था जो कि आने वाले समय के लिए एक दस्तावेज बन जाते थे। बिल्कुल सही कहा अनिल मोहन जी आपने।

0: तो सुदर्शन मुखी जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े हैं, जो कि कह रहे हैं कि संदेशों की अपनी अलग ही दुनिया होती है। सविता जी और वंदना जी, आज आपने बड़ा ही अच्छा ये एक जो एक प्रस्तुति का जो एक टॉपिक लिया है, ये बहुत अच्छा है।
1: बहुत और बहुत शुक्रिया,
0: आपके संदेशों से हमारा भी हौसला बढ़ रहा है। फिलहाल तो कार्यक्रम की अगले गीत की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि अब कार्यक्रम जो है धीरे धीरे समाप्ति की ओर जा रहा है। जी जी।

0: लता मंगेशकर की आवाज़ में फिल्म हिना का ये बहुत ही सुंदर सा गीत, और वाकई इस गीत के जरिए ये भी संदेश रहा है कि जो चिट्ठी है वो कितने मायने रखती है। कोई चिट्ठी आपके जज्बातों को बयां कर सकती है, कोई चिट्ठी आपकी भावनाओं को एक बार फिर से उस तरह से बयां कर सकती है जैसे आप बयां करना चाहते हैं, क्योंकि शब्द जब चिट्ठी पे उकेरे जाते हैं तो वो सिर्फ शब्द नहीं होते हैं बल्कि दिल के लिए हमेशा हमेशा के लिए एक दस्तावेज बन जाते हैं।
1: बिल्कुल सही तुमने कहा सविता, चिट्ठियां जो है वो केवल एक कागज नहीं होती। अगर हम यूं कहें कि यादों की पोटली है तो कहना गलत नहीं होगा, क्यों? और दूरियों के बीच बना हुआ एक पुल भी हम चिट्ठियों को कह सकते हैं। ये दिल से निकलती हुई या फिर कहें सविता एक ऐसी आवाज जो दूसरे के दिल तक पहुंचती है।
0: जी हाँ बिल्कुल, तो उम्मीद करते हैं कि हमारे जितने भी साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं या किसी के साथ भी जुड़े हैं, बस वो इस डोर को हमेशा बांधे रखेंगे, एक दूसरे के साथ यूं ही जुड़े रहेंगे। फिलहाल इस कार्यक्रम को यहीं संपन्न करने की मुझे और वंदना को दीजिए इजाजत, आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम फिल्म संगीत, ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर। इस समय रात्रि के 12 बजने को है। अब इन मीटरों पर हमारे प्रसारण यहीं संपन्न होते हैं। सुबह 4:50 पर आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, शुभरात्रि। लेकिन AIR लाइव न्यूज 24x7 पर हमारे प्रसारण अब भी जारी हैं। रात्रि के 12 बजने को है, लीजिए अब सुनिए समाचार।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में प्रगति की 52वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में लगभग 30,000 करोड़ रुपए की 4 प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री ने परियोजनाओं को समय पर पूरा करने और लंबित मुद्दों को शीघ्र समाधान पर बल दिया। बैठक में टीबी मुक्त भारत अभियान की भी समीक्षा की गई। श्री मोदी ने टीबी उन्मूलन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग और जागरूकता अभियानों में एनसीसी कैडेटों तथा माई भारत स्वयंसेवकों की भागीदारी बढ़ाने का सुझाव दिया। प्रधानमंत्री ने साइबर अपराध और डिजिटल धोखाधड़ी के बढ़ते मामलों पर चिंता व्यक्त करते हुए सभी एजेंसियों, बैंकों और डिजिटल प्लेटफॉर्मों के बीच बेहतर समन्वय तथा जन जागरूकता बढ़ाने के निर्देश दिए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने अमरीकी व्यापार प्रतिनिधि दूत जैमिसन ग्रीर और उनके प्रतिनिधि मंडल के साथ नई दिल्ली में बैठकें की। श्री गोयल ने भारत अमरीकी व्यापार वार्ता की प्रगति की समीक्षा की और दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने के अवसरों की खोज की। उन्होंने राजदूत ग्रीर के नेतृत्व और दोनों पक्षों के रचनात्मक और प्रगतिशील तरीके से वार्ता को आगे बढ़ाने के निरंतर प्रयासों की भी सराहना की। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने नई दिल्ली में सामरिक रक्षा साझेदारी ढांचे के अंतर्गत रक्षा सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए एक बैठक आयोजित की। बैठक की सह अध्यक्षता अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के संयुक्त सचिव अमिताभ प्रसाद और संयुक्त अरब अमीरात के ब्रिगेडियर स्टाफ जमाल इब्राहिम मोहम्मद इब्राहिम अलमारजूकी ने की। चर्चा का मुख्य विषय रक्षा उद्योग सहयोग का विस्तार करना, नवाचार को बढ़ावा देना, विशिष्ट तकनीकों का लाभ उठाना और समुद्री सुरक्षा को मजबूत करना था। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने चुनौतीपूर्ण वैश्विक परिदृश्य के बीच भारत दक्षिण कोरिया संबंधों को और मजबूत करने की आवश्यकता

0: सख्ता पर बल दिया है। सोल में दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ बैठक में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में विश्वसनीय साझेदारों के बीच सहयोग पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गया है।
1: It is clearly our responsibility.
2: इस साझेदारी को आगे बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है। इसमें सरकार के अलग अलग विभाग और देश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलू शामिल हैं, जिनके बीच तालमेल बिठाना बहुत आवश्यक है। मैं कहूंगा कि हमें भविष्य को ध्यान में रखते हुए एक आधुनिक साझेदारी की ओर बढ़ना चाहिए।
1: रिलेशनशिप इन अ मोर डिफिकल्ट वर्ल्ड।
0: ईरान में मौजूद भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों के लिए यात्रा परामर्श जारी किया है। दूतावास ने कहा है कि अगली सूचना तक भारतीय नागरिक जब तक आवश्यक न हो ईरान की यात्रा न करें। दूतावास ने भारतीय नागरिकों से कहा है कि वे अपने आसपास की स्थिति पर लगातार नजर रखें और स्थानीय प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का पालन करें। भारत और तजाकिस्तान के बीच आतंकवाद रोधी संयुक्त कार्य समूह की पांचवी बैठक ताजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे में आयोजित की गई। बैठक की सह अध्यक्षता विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव डॉ विनोद बहाड़े और ताजिकिस्तान के विदेश मंत्रालय के अधिकारी शेराली जोनो ने की। बैठक में दोनों देशों ने वैश्विक और क्षेत्रीय स्तर पर आतंकवादी संगठनों से उत्पन्न खतरों तथा उग्रवाद, कट्टरपंथ, आतंकवाद के वित्त पोषण, तकनीक के दुरुपयोग और मादक पदार्थों की तस्करी जैसे मुद्दों पर चर्चा की। अमेरिका की एक संघीय अदालत ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के चुनाव संबंधी कार्यकारी आदेश के अधिकांश प्रावधानों पर स्थायी रोक लगा दी है। बोस्टन की संघीय न्यायाधीश डेनिस कैस्पर ने कहा कि चुनावों को विनियमित करने का अधिकार राज्यों और कांग्रेस के पास है, राष्ट्रपति के पास नहीं। राष्ट्रपति ट्रंप के आदेश में मतदाता पंजीकरण के लिए नागरिकता का दस्तावेजी प्रमाण अनिवार्य करने, चुनाव के बाद प्राप्त डाक मतपत्रों की गिनती रोकने तथा नियमों का पालन न करने वाले राज्यों के लिए संघीय धनराशि रोकने जैसे प्रावधान शामिल थे। ओमान ने होर्मुज जलडमरू मध्य से एक अस्थायी समुद्री गलियारे के खोलने की घोषणा की है। ये वाणिज्यिक जलमार्ग को बहाल करने और खाड़ी में फंसे हजारों नाविकों के समुद्री संकट को कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप बी मुकाबले में देर रात स्विट्जरलैंड का मुकाबला कनाडा से होगा। वहीं इसी ग्रुप में कतर और बोस्निया एंड हर्जेगोविना आमने सामने होंगे। दोनों मुकाबले रात 12:30 बजे से खेले जाएंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Aparajita Nair. Prime Minister Narendra Modi chaired the 52nd meeting of Pragati, the ICT-enabled multimodal platform for proactive governance and timely implementation at Seva Teerth in New Delhi. During the meeting, Mr. Modi reviewed four major infrastructure projects in the road, power, industrial corridor and metro rail sectors across four states, involving an investment of around 30,000 crore rupees. The Prime Minister stressed that delays in infrastructure projects lead to cost escalation and deprive citizens and industries of timely benefits. He directed the concerned ministries and state governments to resolve bottlenecks in a mission mode and ensure close monitoring of project implementation. The Prime Minister also emphasized the effective use of the PM Gati Shakti National Master Plan for efficient planning and timely execution of infrastructure projects. The Prime Minister's office informed that the meeting also reviewed the TB Mukt Bharat Abhiyan. Mr. Modi also reviewed grievances related to cybercrime and digital arrest cases. Union Commerce and Industry Minister Piyush Goyal has concluded a series of meetings with U.S. Trade Representative Ambassador Jamie Sun Greer and his delegation in New Delhi yesterday. In a social media post, Mr. Goyal said, "They reviewed the progress of the ongoing India-U.S. trade discussions and explored avenues to further deepen economic partnership between both the countries." He also appreciated Ambassador Greer's leadership and the sustained efforts of both teams in advancing the discussions in a constructive and forward-looking manner. The 12th Indo-European Union Human Rights Dialogue was held in New Delhi yesterday. During the dialogue, both sides noted their commitment to the promotion and protection of all human rights and emphasized the universality, indivisibility and interrelatedness of all human rights. The MEA said that both sides discussed their shared interest in increased cooperation on humanitarian

आप सुन रहे हैं AIR लाइव न्यूज 24/7। रात के 12:10 हो चुके हैं और इसी के साथ समय हो गया है आपके पसंदीदा कार्यक्रम सुरों का सफरनामा का, जिसमें आज आपके साथ मैं हूं मनोज। श्रोताओं, आज का सुरों का सफरनामा है उस कलाकार के नाम जिसने संगीत निर्देशन के क्षेत्र में एक अमिट छाप छोड़ी। अपने संगीत से वे सदा के लिए अमर हो गए। वे केवल एक अच्छे संगीत निर्देशक ही नहीं बल्कि एक बेहतरीन गायक भी थे, और वो थे हम सबके चहेते, हमारे दिलों में बसे रविंद्र जैन। जी हाँ, आज का सुरों का सफरनामा है रविंद्र जैन के नाम। सुनते हैं उनके संगीत निर्देशन में फिल्म कांच और हीरा से ये गीत।

श्रोताओं, रविंद्र जैन वो शख्सियत हैं जो किसी भी परिचय के मोहताज नहीं हैं। भारतीय सिनेमा के ये प्रसिद्ध संगीतकार और गायक थे। मुख्यतः उन्हें भजन गायक के रूप में ख्याति मिली थी। इनका जन्म 1944 में अलीगढ़ में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित इंद्रमणि जैन और माता का नाम किरण जैन था। ये कुल 7 भाई और 1 बहन थे। अपने भाइयों में रविंद्र जैन तीसरे नंबर पर थे और ये जैन समुदाय से संबंध रखते थे। इनके पिता संस्कृत के प्रकांड पंडित थे और माँ एक गृहिणी थी। रविंद्र जैन जन्म से ही नहीं देख सकते थे, लेकिन इनके पिता ने इनकी प्रतिभा को पहचाना और उन्होंने इन्हें जनार्दन शर्मा और नाथुराम जैसे गुरुओं के पास संगीत की शिक्षा लेने के लिए भेजा। जब ये नौजवान हुए तो इन्होंने मंदिरों में भजन गाने शुरू कर दिए। शुरुआत में ये जैन मंदिरों में भजन गाया करते थे। ये वो गायक थे जिन्होंने सरगम के 7 सुरों के माध्यम से जितना समाज से पाया उससे कई गुना ज़्यादा अपने श्रोताओं को लौटा भी दिया। ये मधुर धुनों के सर्जक होने के साथ साथ बेहतरीन गायक भी रहे थे। इसी के साथ श्रोताओं सुनते हैं इनके संगीत निर्देशन में फिल्म सौदागर से ये गीत।

श्रोताओं, रविंद्र जैन के पिता ने डॉक्टर की नसीहत को ध्यान में रखकर रविंद्र जैन के लिए संगीत की राह चुनी, क्योंकि उसमें आंखों का कम उपयोग होता है। रविंद्र ने अपने पिता और भाई की आज्ञा मानकर मन की आंखों से सब कुछ जानने समझने की एक सफल कोशिश की। बड़े भाई से आग्रह करके उन्होंने अनेकों उपन्यास सुने, कविताओं के भावार्थ समझे, धार्मिक ग्रंथों और इतिहास पुरुषों की जीवनियों से जीवन का मर्म समझा। ये बचपन से ही बहुत तेज बुद्धि के थे और एक बात को यदि कोई सुन लेते थे और तो वो इन्हें कंठस्थ कर लिया करते थे, जो उन्हें हमेशा याद रहती थी। शायद इसी कारण ये संगीत की दुनिया में इतने आगे बढ़ पाए। परिवार के धर्म दर्शन और अध्यात्ममय माहौल में इनका बचपन बीता। हर रोज ये मंदिर जाते और वहाँ एक भजन गाकर सुनाना इनकी दिनचर्या में शामिल हो गया था। उसके बदले में इनके पिताजी एक गाना

लगाने पर 1 रुपया इन्हें रोज इनाम दिया करते थे। इसी के साथ श्रोताओं सुनते हैं इनके संगीत निर्देशन में फिल्म चोर मचाए शोर से ये गीत किशोर कुमार की आवाज़ में।

रविंद्र जैन ने कोलकाता के रविंद्र संगीत के बारे में काफी कुछ सुन रखा था। इनके ताऊ जी के बेटे पदम भाई ने वहां चलने का प्रस्ताव दिया तो ये फौरन राजी हो गए और इनके पिताजी ने 75 रुपये इन्हें जेब खर्च के लिए दे भी दिए। कानपुर स्टेशन पर जब ये भाई के साथ नीचे उतरे तो अचानक ट्रेन चल पड़ी। पदम भाई तो चढ़ गए लेकिन ये नीचे रह गए, लेकिन एक अजनबी ने इन्हें सहारा दिया और कहा कि जब तक आपके भाई नहीं आ जाते आप हमारे साथ रहना। उसके बाद फिल्म निर्माता राधेश्याम झुनझुनवाला के जरिए रविंद्र को संगीत सिखाने के लिए एक ट्यूशन मिली। मेहनताने में चाय के साथ नमकीन समोसा मिलना शुरू हो गया और इनकी पहली नौकरी बालिका विद्या भवन में 40 रुपये महीने पर लगी। इसी शहर में इनकी मुलाकात पंडित जसराज और पंडित मणिरत्नम से हुई। नई गायिका हेमलता से इनका परिचय भी हुआ और इन्होंने मिलकर बंगला तथा अन्य भाषाओं में धुनों की रचना की। इसके बाद एक पंजाबी फिल्म में हारमोनियम बजाने का इन्हें मौका मिला और सार्वजनिक मंच पर प्रस्तुति के 151 रुपये तक मिलने लग गए। इसी सिलसिले में इनकी मुलाकात अभिनेता संजीव कुमार से हुई और उसके बाद कोलकाता से ये सीधा मुंबई आ गए।

फिल्म फकीरा से अब ये गीत आपने किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ में सुना। तो हम बात कर रहे थे रविंद्र जैन के ऊपर। श्रोताओं, सन 1968 में राधे श्याम झुनझुनवाला के साथ रविंद्र जैन मुंबई आए, तो उनकी पहली मुलाकात गायक मुकेश से हुई। रामरिक मनहर ने कुछ महफिलों में गाने के अवसर जुटाए और नासिक के पास जब देवलाली में फिल्म पारस की शूटिंग चल रही थी तो संजीव कुमार ने इन्हें वहां बुलाया और निर्माता NN सिप्पी से मिलवाया। रविंद्र ने अपने खजाने से कई अनमोल गीत और धुनें एक के बाद उनको सुनाई और सुनने वालों में शत्रुघ्न सिन्हा, फरीदा जलाल और नारी सिप्पी भी मौजूद थे। इस तरह इनका फिल्मों में इन्हें पहली फिल्म में गीत देने का मौका मिला जिसका नाम था कांच और हीरा। इस तरह इनकी फिल्मों में एंट्री हो गई और इन्होंने कई फिल्मों में उसके बाद एक से बढ़कर एक संगीत दिया। सुनते हैं श्रोताओं, इनके संगीत निर्देशन में फिल्म अखियों के झरोके से ये गीत येसुदास, हेमलता और बंसरी के मधुर स्वर में।

श्रोताओं, रामरिक मनहर के जरिए राष्ट्रीय प्रोडक्शन के ताराचंद परजातिया से जब रविंद्र जैन की मुलाकात हुई तो वही मुलाकात उनके फिल्मी करियर को संवार गई। अमिताभ बच्चन और नूतन अभिनीत फिल्म सौदागर में हालांकि गानों की गुंजाइश नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद भी रविंद्र जैन ने एक गुड़ बेचने वाले सौदागर के लिए मीठी धुनें बनाई और वही मीठी धुनें यादगार हो गई। और यहीं से राजश्री और रविंद्र जैन का सरगम का कारवां आगे बढ़ता चला गया। उसके बाद तपस्या, चिच्चोर, सलाखें, फकीरा के गाने काफ़ी लोकप्रिय हुए और मुंबई के संगीतकारों में रविंद्र जैन का भी नाम स्थापित हो गया। सुनते हैं फिल्म चिच्चोर से ये गीत।

श्रोताओं, 70 के दशक में रविंद्र जैन ने अनेक फिल्मों में सफल संगीत दिया था। ऐसी ही एक फिल्म थी गीत गाता चल। आइए सुनते हैं फिल्म गीत गाता चल से ये गीत।

श्रोताओं, जब फिल्म दीवानगी बन रही थी तो अचानक सचिन देव बर्मन बीमार हो गए और ये फिल्म उन्होंने रविंद्र जैन को सौंप दी। एक महफिल में रविंद्र जैन हिमलता गा रहे थे तो उन श्रोताओं में राज कपूर भी थे। एक राधा एक मीरा दोनों ने श्याम को चाह गीत सुनकर राज कपूर झूम उठे और वो बोले, ये गीत किसी को दिया तो नहीं। पलटकर रविंद्र जैन ने कहा कि राज कपूर को दे दिया है। बस यहीं से उनकी एंट्री राज कपूर के शिविर में हो गई। आगे चलकर राम तेरी गंगा मैली का संगीत रविंद्र जैन ने ही दिया और ये फिल्म और संगीत बहुत लोकप्रिय हुए। सुनते हैं इसी फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज में गाया हुआ ये गीत।

श्रोताओं, रविंद्र जैन का निधन 9 अक्टूबर 2015 को मुंबई में हो गया था। उनके शरीर के कई अंगों ने काम करना बंद कर दिया था और आखिरकार वे इस दुनिया को छोड़कर चले गए। उनकी मृत्यु पर फिल्म इंडस्ट्री के अधिकतर लोग मौजूद थे। हालांकि रविंद्र जैन हमारे बीच आजकल आज मौजूद नहीं है, लेकिन अपने संगीत के जरिए वो

हमेशा हमारे बीच मौजूद रहेंगे। इसी के साथ श्रोताओं, सोनू का सफरनामा कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं फिल्म नदिया के पार से ये गीत।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में प्रगति की 52वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में लगभग 30,000 करोड़ रुपए की 4 प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री ने परियोजनाओं को समय पर पूरा करने और लंबित मुद्दों के शीघ्र समाधान पर बल दिया। बैठक में टीबी मुक्त भारत अभियान की भी समीक्षा की गई। श्री मोदी ने टीबी उन्मूलन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की उपयोग और जागरूकता अभियानों में एनसीसी कैडेटों तथा माई भारत स्वयं सेवकों की भागीदारी बढ़ाने का सुझाव दिया। प्रधानमंत्री ने साइबर अपराध और डिजिटल धोखाधड़ी के बढ़ते मामलों पर चिंता व्यक्त करते हुए सभी एजेंसियों, बैंकों और डिजिटल प्लेटफार्मों के बीच बेहतर समन्वय तथा जन जागरूकता बढ़ाने के निर्देश दिए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने अमरीकी व्यापार प्रतिनिधि दूत जेमिसन ग्रीर और उनके प्रतिनिधि मंडल के साथ नई दिल्ली में बैठकें की। श्री गोयल ने भारत अमरीकी व्यापार वार्ता की प्रगति की समीक्षा की और दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने के अवसरों की खोज की। उन्होंने राजदूत ग्रीर के नेतृत्व और दोनों पक्षों के रचनात्मक और प्रगतिशील तरीके से वार्ता को आगे बढ़ाने के निरंतर प्रयासों की भी सराहना की। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने चुनौतीपूर्ण वैश्विक परिदृश्य के बीच भारत दक्षिण कोरिया संबंधों को और मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया है। सोल में दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री जो ह्यून के साथ बैठक में डॉ जयशंकर ने कहा कि वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में विश्वसनीय साझेदारों के बीच सहयोग पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गया है।
1: इस साझेदारी को आगे बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है। इसमें सरकार के अलग अलग विभाग और देश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलू शामिल हैं, जिनके बीच तालमेल बिठाना बहुत आवश्यक है। मैं कहूंगा कि हमें भविष्य को ध्यान में रखते हुए एक आधुनिक साझेदारी की ओर बढ़ना चाहिए।
0: कोलकाता में भवन ढहने की घटना के संबंध में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने भवन के परियोजना पर्यवेक्षक सहित 3 आरोपियों को हिरासत में लिया है और मामले की जांच जारी है। इस हादसे में अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई अन्य घायल हुए हैं। सेना, एनडीआरएफ, पुलिस और अग्निशमन विभाग की टीमें राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्मेनिया के प्रधानमंत्री निकोल पाशिनयान और उनकी पार्टी को हाल ही में हुए संसदीय चुनावों में जीत पर

0: बधाई दी है। दोनों नेताओं के बीच आज टेलीफोन पर बातचीत हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम एशिया की हालिया परिस्थितियों के बीच ईरान में फंसे भारतीय नागरिकों की निकासी में सहयोग के लिए आर्मेनिया का आभार व्यक्त किया। दोनों नेताओं ने व्यापार, रक्षा, प्रौद्योगिकी और लोगों के बीच संपर्क जैसे क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत बनाने की प्रतिबद्धता दोहराई। ईरान में मौजूद भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों के लिए यात्रा परामर्श जारी किया है। दूतावास ने कहा है कि अगली सूचना तक भारतीय नागरिक जब तक आवश्यक ना हो ईरान की यात्रा ना करें। दूतावास ने भारतीय नागरिकों से कहा है कि वे अपने आसपास की स्थिति पर लगातार नजर रखें और स्थानीय प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का पालन करें। अमेरिका की एक संघीय अदालत ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के चुनाव संबंधी कार्यकारी आदेश के अधिकांश प्रावधानों पर स्थायी रोक लगा दी है। बोस्टन की संघीय न्यायाधीश टेनिसन कैस्पर ने कहा कि चुनावों को विनियमित करने का अधिकार राज्यों और कांग्रेस के पास है, राष्ट्रपति के पास नहीं। राष्ट्रपति ट्रंप के आदेश में मतदाता पंजीकरण के लिए नागरिकता का दस्तावेजी प्रमाण अनिवार्य करने, चुनाव के बाद प्राप्त डाक मतपत्रों की गिनती रोकने तथा नियमों का पालन न करने वाले राज्यों के लिए संघीय धनराशि रोकने जैसे प्रावधान शामिल थे। कोलंबिया के राष्ट्रपति चुनाव में वामपंथी उम्मीदवार इवान सेपेडा ने अपनी हार स्वीकार कर ली है। प्रारंभिक परिणामों के अनुसार उन्होंने दक्षिणपंथी कारोबारी एबिलार्डो डेला एस्प्रियाला ने बेहद कम अंतर से पराजित किया है। हार स्वीकार करते हुए श्री सेपेडा ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर चुनाव में हस्तक्षेप का आरोप लगाया। वहीं अंतिम आधिकारिक मतगणना की प्रक्रिया अभी जारी है। मौसम विभाग ने आज देश के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश की संभावना जताई है। पूर्वोत्तर क्षेत्र झारखंड, महाराष्ट्र, उड़ीसा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, तटीय कर्नाटक, कोंकण और गोवा में तेज बारिश हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय आशीष इब्राहिम। Prime Minister Narendra Modi chaired the 52nd meeting of Pragati, the ICT-enabled multimodal platform for proactive governance and timely implementation at Seva Tirth in New Delhi. During the meeting, Mr. Modi reviewed four major infrastructure projects in the road, power, industrial, corridor and metro rail sectors across four states, involving an investment of around 30,000 crore rupees. The PM directed the concerned ministries and state governments to resolve bottlenecks in a mission mode and ensure close monitoring of project implementation. Mr. Modi also reviewed grievances related to cybercrime and digital arrest cases, expressing concern over the growing misuse of digital platforms to defraud citizens. He called for intensified public awareness campaigns and directed stakeholders to strengthen systems for prevention, reporting, investigation and grievance redressal in cyber fraud cases. The PM's office informed that the meeting also reviewed the TB Mukt Bharat Abhiyan. The PM highlighted the importance of leveraging emerging technologies, including artificial intelligence, in the fight against tuberculosis. Union Commerce and Industry Minister Piyush Goyal has concluded a series of meetings with U.S. Trade Representative Ambassador Jamieson Greer and his delegation in New Delhi yesterday. In a social media post, Mr. Goyal said they reviewed the progress of the ongoing India-U.S. trade discussions and explored avenues to further deepen economic partnership between both the countries. He also appreciated Ambassador Greer's leadership and the sustained efforts of both teams in advancing the discussions in a constructive and forward-looking manner. India and Tajikistan held the fifth meeting of the Joint Working Group on Counterterrorism in Dushanbe yesterday. Ministry of External Affairs said that during the meeting, both sides discussed threats posed by terrorist groups globally and in their respective regions. The two sides also discussed measures to strengthen bilateral cooperation in the field of counterterrorism through enhanced information sharing, capacity building, and the exchange of best practices. In West Bengal, rescue operations are in full swing after an under-construction godown collapsed, trapping workers beneath heavy iron debris near Taratala in Kolkata yesterday. Five people were declared dead at the SSKM hospital and the injured are being treated there. Chief Minister Suvendu Adhikari visited the accident site and lauded the efforts of rescue personnel. He informed the media that Kolkata Metropolitan Authority would submit a report to him.

आप सुन रहे हैं AIR लाइव न्यूज 24/7। समय हो गया है रात्रि के 1:10 और ये समय है पुरानी फिल्मी गीतों के कार्यक्रम गीत सुनहरे का, जिसमें आज आपके साथ मैं हूं मनोज। श्रोताओं, आइए सुनते हैं फिल्म तानसेन से ये गीत KL सहगल साहब की आवाज में।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में प्रगति की 52वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में लगभग 30,000 करोड़ रुपए की 4 प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री ने परियोजनाओं को समय पर पूरा करने और लंबित मुद्दों के शीघ्र समाधान पर बल दिया। बैठक में श्री मोदी ने टीबी उन्मूलन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग और जागरूकता अभियानों में एनसीसी कैडेटों तथा माय भारत स्वयंसेवकों की भागीदारी बढ़ाने का सुझाव दिया। प्रधानमंत्री ने साइबर अपराध और डिजिटल धोखाधड़ी के बढ़ते मामलों पर चिंता व्यक्त करते हुए सभी एजेंसियों, बैंकों और डिजिटल प्लेटफॉर्मों के बीच बेहतर समन्वय तथा जन जागरूकता बढ़ाने के निर्देश दिए। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने चुनौतीपूर्ण वैश्विक परिदृश्य के बीच भारत दक्षिण कोरिया संबंधों को और मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया है। सोल में दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री जो ह्यून के साथ बैठक में डॉ जयशंकर ने कहा कि वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में विश्वसनीय साझेदारों के बीच सहयोग पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गया है।
1: इस साझेदारी को आगे बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है। इसमें सरकार के अलग अलग विभाग और देश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलू शामिल हैं, जिनके बीच तालमेल बिठाना बहुत आवश्यक है। मैं कहूँगा कि हमें भविष्य को ध्यान में रखते हुए एक आधुनिक साझेदारी की ओर बढ़ना चाहिए।
0: केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से ब्रिटेन की 3 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर जाएंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया कि यह यात्रा भारत और ब्रिटेन के बीच महत्वपूर्ण व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते तथा दोहरे अंशदान पर समझौते के लागू होने से पहले हो रही है। ये समझौते 15 जुलाई से लागू हो जाएंगे। यात्रा के दौरान पीयूष गोयल लंदन में ब्रिटेन के व्यापार और वाणिज्य मंत्री पीटर काइल के साथ उच्च स्तरीय द्विपक्षीय बैठक करेंगे। बैठक में व्यापार समझौते को लागू करने की तैयारियों पर चर्चा होगी। ग्रामीण विकास विभाग आज नई दिल्ली में ग्रामीण विकास में एआई के उपयोग पर एक राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन करेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि ये 1 दिवसीय कार्यक्रम अत्याधुनिक तकनीकी नवाचारों को ग्रामीण भारत की जमीनी स्तर की विकासात्मक आवश्यकताओं के साथ जोड़ने के लिए एक सहयोगात्मक मंच के रूप में कार्य करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्मेनिया के प्रधानमंत्री निकोल पाशिनयान और उनकी पार्टी को हाल ही में हुए संसदीय चुनावों में जीत पर बधाई दी है। दोनों नेताओं के बीच आज टेलीफोन पर बातचीत हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम एशिया की हालिया परिस्थितियों के बीच ईरान में फंसे भारतीय नागरिकों की निकासी में सहयोग के लिए आर्मेनिया का आभार व्यक्त किया। दोनों नेताओं ने व्यापार, रक्षा, प्रौद्योगिकी और लोगों के बीच संपर्क जैसे क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत बनाने की प्रतिबद्धता दोहराई। कोलकाता में भवन ढहने की घटना के संबंध में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने भवन के परियोजना पर्यवेक्षक सहित 3 आरोपियों को हिरासत में लिया है और मामले की जांच जारी है। इस हादसे में अब

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में प्रगति की 52वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में लगभग 30,000 करोड़ रुपए के 4 प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री ने परियोजनाओं को समय पर पूरा करने और लंबित मुद्दों के शीघ्र समाधान पर बल दिया। बैठक में टीबी मुक्त भारत अभियान की भी समीक्षा की गई। श्री मोदी ने टीबी उन्मूलन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग और जागरूकता अभियानों में एनसीसी कैडेटों तथा माय भारत स्वयंसेवकों की भागीदारी बढ़ाने का सुझाव दिया। प्रधानमंत्री ने साइबर अपराध और डिजिटल धोखाधड़ी के बढ़ते मामलों पर चिंता व्यक्त करते हुए सभी एजेंसियों, बैंकों और डिजिटल प्लेटफॉर्मों के बीच बेहतर समन्वय तथा जन जागरूकता बढ़ाने के निर्देश दिए। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने चुनौतीपूर्ण वैश्विक परिदृश्य के बीच भारत दक्षिण कोरिया संबंधों को और मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया है। सोल में दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ बैठक में डॉ जयशंकर ने कहा कि वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में विश्वसनीय साझेदारों के बीच सहयोग पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गया है।
1: It is clearly our responsibility.
2: इस साझेदारी को आगे बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है। इसमें सरकार के अलग अलग विभाग और देश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलू शामिल हैं, जिनके बीच तालमेल बिठाना बहुत आवश्यक है। मैं कहूंगा कि हमें भविष्य को ध्यान में रखते हुए एक आधुनिक साझेदारी की ओर बढ़ना चाहिए।
1: रिलेशनशिप इन अ मोर डिफिकल्ट वर्ल्ड।
0: केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से ब्रिटेन की 3 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर जाएंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया कि यह यात्रा भारत और ब्रिटेन के बीच महत्वपूर्ण व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते तथा दोहरे अंशदान पर समझौते के लागू होने से पहले हो रही है। ये समझौते 15 जुलाई से लागू हो जाएंगे। यात्रा के दौरान पीयूष गोयल लंदन में ब्रिटेन के व्यापार और वाणिज्य मंत्री पीटर काइल के साथ उच्च स्तरीय द्विपक्षीय बैठक करेंगे। बैठक में व्यापार समझौते को लागू करने की तैयारियों पर चर्चा होगी। ग्रामीण विकास विभाग आज नई दिल्ली में ग्रामीण विकास में एआई के उपयोग पर एक राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन करेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि ये 1 दिवसीय कार्यक्रम अत्याधुनिक तकनीकी नवाचारों को ग्रामीण भारत की जमीनी स्तर की विकासात्मक आवश्यकताओं के साथ जोड़ने के लिए एक सहयोगात्मक मंच के रूप में कार्य करेगा। केंद्रीय विद्यालयों के लिए 36वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता 2025-26 का पुरस्कार वितरण समारोह आज नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल इस समारोह की अध्यक्षता करेंगे। श्री मेघवाल विजेता विद्यार्थियों और विद्यालयों को पुरस्कार प्रदान करेंगे। कोलकाता में भवन ढहने की घटना के संबंध में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने भवन के परियोजना पर्यवेक्षक सहित 3 आरोपियों को हिरासत में लिया है और मामले की जांच जारी है। इस हादसे में अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई अन्य घायल हुए हैं। सेना, एनडीआरएफ, पुलिस और अग्निशमन विभाग की टीमें राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्मेनिया के प्रधानमंत्री निकोल पाशिनियान और उनकी पार्टी को हाल ही में हुए संसदीय चुनावों में जीत पर बधाई दी है। दोनों नेताओं के बीच आज टेलीफोन पर बातचीत हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम एशिया की हालिया परिस्थितियों के बीच ईरान में फंसे भारतीय नागरिकों की निकासी में सहयोग के लिए आर्मेनिया का आभार व्यक्त किया। दोनों नेताओं ने व्यापार, रक्षा, प्रौद्योगिकी और लोगों के बीच संपर्क जैसे क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत बनाने की प्रतिबद्धता दोहराई। जिम्बाब्वे की सीनेट ने एक संवैधानिक संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी है, जिसके अंतर्गत

जी आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल है। रात्रि के 3:10 हुए हैं। लीजिए अब प्रस्तुत है कार्यक्रम गजल। सबसे पहले आपको सुनवा रहे हैं जगजीत सिंह की आवाज में गजल कोई फरियाद।

जगजीत सिंह की आवाज में ये गजल आपने सुनी, और लीजिए अब पेश है शमोना राय बिस्वास की आवाज में ये गजल।

0: साथियों लीजिए आप सुनिए छाया गांगुली की आवाज में गजल नाज था खुद पर।
1: गजल गायकी का ये अंदाज अभी तक छाया हुआ है, कई नए नए फनकारों ने इस अंदाज को बरकरार रखा है, जैसे

0: दिनेश प्रभाकर की आवाज में गाई इस गजल के साथ ही आज की गजलों का कार्यक्रम यही संपन्न होता है। आकाशवाणी दिल्ली का ये AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल है। रात्रि के 4 बजने वाले हैं।
1: प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना।

अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत पर आधारित कार्यक्रम अर्चना।

आकाशवाणी दिल्ली का ये AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। 4:20 हुए हैं। लीजिए अब प्रस्तुत है कर्नाटक संगीत का कार्यक्रम नाद ब्रह्मा। इसके अंतर्गत आज आप सुनेंगे वलन वादन। कलाकार हैं TK जयराम अय्यर। संगीतकार हैं त्यागराजा। आपके साथ मृदंगम पर संगत किया है रामानंद ऐश्वरन ने और आपने प्रस्तुत किया है राग श्री रंजनी जो आदिताल में निबद्ध है। तो लीजिए प्रस्तुत है TK जयराम अय्यर का वलन पर राग श्री रंजनी।

कर्नाटक संगीत के कार्यक्रम नाद ब्रह्म में अभी आप सुन रहे थे वायलिन वादन। कलाकार थे टी के जयराम अय्यर। आपने प्रस्तुत किया राग श्री रंजनी जो आदिताल में निबद्ध था। संगीत दिया था त्यागराजा ने। आपके साथ मृदंगम पर संगत किया था रामानंद ऐश्वरन ने। आकाशवाणी दिल्ली का ये AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। आज बृहस्पतिवार है। शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की चौथी तिथि, तदनुसार 25 जून 2026 सुबह के 4:53 हुए हैं। हमारे कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

0: आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, डीआरएम 810 किलो हर्ट्स पर। लीजिए अब आपको बता दें आज प्रसारित होने वाले कुछ कार्यक्रमों की जानकारी। अब से कुछ ही देर में यानी सुबह 5:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम आओ योग करें। इसके अंतर्गत आज आप जानकारी लेंगे योग तितली अभ्यास क्रिया और दीर्घ श्वास परीक्षा का। 5:20 पर सुनिएगा देशभक्ति गीत। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम स्वर रंजनी का समय रहेगा 5:30। इसके अंतर्गत आज प्रसारित किया जाएगा उस्ताद अहमद रजा का बजाया विचित्र वीणा वादन। आप प्रस्तुत करेंगे राग अहिरी तोड़ी। सुबह 6:10 पर सुनेगा वंदना भक्ति संगीत का ये कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। 6:40 पर सुनेगा चिंतन में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के विचार। 6:45 पर रामचरितमानस से पाठ सुनेगा। आज आप सुनेंगे बालकांड का भाग 97। संस्कृत में समाचार का समय रहेगा सुबह 6:55 पर और फिर आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। सात बज के 10 मिनट पर सुनेगा संगीतिका। आज के इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे संचिता रॉय की गाई गी। साढ़े 7 सुनेगा गीतो भरी गुड मॉर्निंग। शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम स्वर गंगा आप सुन सकेंगे सुबह 8:45 पर। आज आप सुनेंगे रित्विल सान्याल का गाया राग जौनपुरी। 9:15 पर सुनिएगा उद्योग पत्रिका। आज का विषय रहेगा फार्मेसी प्रबंधन शिक्षा प्रशिक्षण और अवसर। 9:30 सुनेगा पंजाबी कार्यक्रम मिट्टी दी महक। प्रस्तुत करेंगी बलविंदर कौर। 10:10 पर सुनिएगा फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम आपकी पसंद स्वरांजलि का समय रहेगा सुबह 11:10। साथियों ये थी आज प्रसारित होने वाले कुछ कार्यक्रमों की जानकारी। सुबह के 5 वाले हैं। लीजिए अब सुनिए समाचार।
1: नमस्कार आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में प्रगति की 52वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में लगभग 30,000 करोड़ रुपए की 4 प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री मोदी ने परियोजनाओं को समय पर पूरा करने और लंबित मुद्दों के शीघ्र समाधान पर बल दिया। बैठक में टीबी मुक्त भारत अभियान की भी समीक्षा की गई। श्री मोदी ने टीबी उन्मूलन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग और जागरूकता अभियानों में एनसीसी कैडेटों तथा माय भारत स्वयंसेवकों की भागीदारी बढ़ाने का सुझाव दिया। प्रधानमंत्री ने साइबर अपराध और डिजिटल धोखाधड़ी के बढ़ते मामलों पर चिंता व्यक्त करते हुए सभी एजेंसियों, बैंकों और डिजिटल प्लेटफॉर्मों के बीच बेहतर समन्वय तथा जन जागरूकता बढ़ाने के निर्देश दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्मेनिया के प्रधानमंत्री निकोल पाशिन्यान और उनकी पार्टी को हाल ही में हुए संसदीय चुनावों में जीत पर बधाई दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम एशिया की हाल की परिस्थितियों के बीच ईरान में फंसे भारतीय नागरिकों की निकासी में सहयोग के लिए आर्मेनिया का आभार व्यक्त किया। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने चुनौतीपूर्ण वैश्विक परिदृश्य के बीच भारत दक्षिण कोरिया संबंधों को और मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया है। सोल में दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ बैठक में डॉ जयशंकर ने कहा कि वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में विश्वसनीय साझेदारों के बीच सहयोग पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गया है।
1: It is clearly our responsibility.
2: इस साझेदारी को आगे बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है। इसमें सरकार के अलग अलग विभाग और देश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलू शामिल हैं, जिनके बीच तालमेल बिठाना बहुत आवश्यक है। मैं कहूंगा कि हमें भविष्य को ध्यान में रखते हुए एक आधुनिक साझेदारी की ओर बढ़ना चाहिए।
1: रिलेशनशिप इन अ मोर डिफिकल्ट वर्ल्ड।
0: केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से ब्रिटेन की 3 दिन की आधिकारिक यात्रा पर जाएंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया कि यह यात्रा भारत और ब्रिटेन के बीच महत्वपूर्ण व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते तथा दोहरे अंशदान पर समझौते के लागू होने से पहले हो रही है। ये समझौते 15 जुलाई से लागू हो जाएंगे। यात्रा के दौरान श्री गोयल लंदन में ब्रिटेन के व्यापार और वाणिज्य मंत्री पीटर काइल के साथ उच्च स्तरीय द्विपक्षीय बैठक करेंगे। बैठक में व्यापार समझौते को लागू करने की तैयारियों पर चर्चा होगी। आज संविधान हत्या दिवस है। 25 जून 1975 को आज ही के दिन आपातकाल लागू हुआ था। इस अवसर पर आपातकाल की विभीषिका और संविधान तथा लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के महत्व को उजागर करने के लिए देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। ग्रामीण विकास विभाग आज नई दिल्ली में ग्रामीण विकास में AI के उपयोग पर एक राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन करेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि ये एक दिवसीय कार्यक्रम अत्याधुनिक तकनीकी नवाचारों को ग्रामीण भारत की जमीनी स्तर की विकास आवश्यकताओं के साथ जोड़ने के लिए एक सहयोग मंच के रूप में कार्य करेगा। केंद्रीय विद्यालयों के लिए 36वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता 2025-26 का पुरस्कार वितरण समारोह आज नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल इस समारोह की अध्यक्षता करेंगे। श्री मेघवाल विजेता विद्यार्थियों और विद्यालयों को पुरस्कार वितरित करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह कल नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। गृह मंत्रालय ने बताया कि स्वापक नियंत्रण ब्यूरो NCB द्वारा आयोजित इस बैठक में केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और मादक पदार्थों से संबंधित कानून प्रवर्तन एजेंसियों के प्रतिनिधि मादक पदार्थों की तस्करी और दुरुपयोग से निपटने के प्रयासों की समीक्षा करने के लिए एक साथ आएंगे। इस अवसर पर श्री शाह मादक पदार्थ नियंत्रण के लिए वर्ष 2026-2029 के लिए दृष्टिपत्र भी जारी करेंगे। कोलकाता में भवन ढहने की घटना के संबंध में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने भवन के परियोजना पर्यवेक्षक सहित 3 आरोपियों को हिरासत में लिया है और मामले की जांच जारी है। मौसम विभाग ने आज देश के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। पूर्वोत्तर क्षेत्र झारखंड, महाराष्ट्र, ओडिशा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, कोंकण और गोवा में तेज बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Ashish P. Abraham.

नमस्कार, मैं योगाचार्य सुनील गौतम हापुड़िया। आज बात करेंगे सबसे सरल और आवश्यक योग क्रिया की। योग में आसन भी होते हैं, क्रियाएं भी होती हैं। जहां स्थिरता आती है वहां आसन होते हैं, और जहां मूवमेंट रहता है वहां क्रिया होती है। तो आज एक ऐसी क्रिया के बारे में बात करने जा रहे हैं जो हमारे लोअर बॉडी के हिप्स के नीचे के हिस्से को, वेस्ट से नीचे के हिस्से को सक्रिय रखती है, अकड़न जकड़न से दूर रखती है। अर्थात आप सब समझ गए होंगे, हम बटरफ्लाई की बात कर रहे हैं, तितली अभ्यास की बात कर रहे हैं। तितली आसन नहीं कहा जा सकता क्योंकि इसमें मूवमेंट है। तितली वाला अभ्यास हम करने का प्रयास करेंगे। तो इसके लिए कुर्सी पर तो हम बैठ नहीं सकते, आवश्यक है एक प्लेन स्थान का चुनाव करके सीधे बैठ जाए। अपने दोनों पैरों को आगे फैलाएं, दोनों हथेलियों को जंघा के बराबर में रखें, पैरों को थोड़ा हिला लें, आगे पीछे मूव कर लें, पैरों में थोड़ी शिथिलता दूर हो जाएगी, रिलैक्स हो जाएंगे। एक दाहिने पैर को बाईं जंघा के ऊपर उठा के रखें और धीरे धीरे घुटने को पकड़ के एक दाहिने हाथ से दाहिने घुटने को पकड़ें और बाएं हाथ से पंजे को पकड़ के ऊपर नीचे हिलाएं, ऊपर नीचे करें। श्वास के साथ श्वास लेते हुए नीचे की ओर दबाएं, श्वास लेते हुए ऊपर की ओर लाएं। कम से कम 15 आवृत्ति ऊपर नीचे 15 बार उसको घुमाएं, ऊपर नीचे करें। ऊपर करते समय अपने वक्ष तक मिलाएं और नीचे ले जाते समय धरती से मिलाएं। 15 आवृत्ति के बाद वापस आ जाएं। इसी क्रिया को फिर दूसरे पैर से दोहराएं, यानी कि दाहिना पैर सीधा और बायां पांव आप उठा करके दाहिनी जंघा के ऊपर रखें, दाहिने हाथ से पैर के पंजे को पकड़ें और बाएं हाथ से घुटने के ऊपर दबाएं, प्रेशर डालें। अर्थात श्वास लेते हुए नीचे की ओर ले जाएं घुटने को और श्वास छोड़ते हुए अपने वक्ष की तरफ लाएं। इस आवृत्ति को भी कम से कम 15 बार दोहराएं। ऊपर नीचे करेंगे तो आप अनुभव करेंगे कि खुलने लगा है हमारी जंघाओं का पेल्विक हिस्सा, पेल्विक फ्लोर। फिर पैर को सीधा कर दें। अब दोनों पैर के पंजों को मिलाएं, धीरे धीरे खींचते हुए अपने पेल्विक रीजन की तरफ, जंघाओं की तरफ लाएं, पैर मोड़ दें। सुखासन जैसे अवस्था, लेकिन दोनों पैर के अग्रभाग मिले हुए और दोनों हाथों से पकड़ लें अग्रभाग को, पैर के अग्रभाग को दोनों हाथों से पकड़ लें। अपने पेल्विक फ्लोर के ज्यादा से ज्यादा एड़ियों को करीब लाएं और सामान्य श्वास के साथ अपने घुटनों को नीचे ऊपर हिलाएं, अर्थात थोड़ी देर के लिए तितली बन जाएं। अपने घुटनों को ऊपर नीचे हिलाएंगे, धीरे धीरे आपकी जंघा की मांसपेशियां स्वस्थ होती जाएंगी, पैरों की अकड़न जकड़न दूर होती जाएगी। और मैं विशेष रूप से कहना चाहूंगा अपने देश और विदेश की माता और बहनों से कि उन्हें तो यह अभ्यास रोज करना चाहिए। यह महिला जनित रोगों से मुक्ति दिलाने वाला अभ्यास है। जो महिलाओं को, मेरी माताओं बहनों को प्रॉब्लम होती है मेंसुरेशंस के दौरान, पीरियड के दौरान, और भी कोई महिलाओं के रोग हो सकते हैं, गायनी प्रॉब्लम हो सकती है, उन सब में लाभकारी अभ्यास है ये तितली का अभ्यास। तितली की क्रिया आप दोहराएं और अपने पेल्विक फ्लोर को ज्यादा से ज्यादा शक्तिशाली बनाकर पूरे जंघा को, पैरों को शक्तिशाली बनाएं और जीवन का शक्तिशाली होते हुए ही आनंद उठाएं। धन्यवाद।

नमस्कार, मैं योगाचार्य सुनील गौतम। आज बात करेंगे ध्यान की एक बहुत सरल विधि के विषय में, दीर्घ श्वास प्रेक्षा। दीर्घ यानी लंबा, श्वास माने श्वास, प्रेक्षा माने बारीकी से देखना, अर्थात लंबी गहरी श्वास लेना और बारीकी से देखना, फील करना, अनुभव करना, श्वास के आने जाने को देखना और अपना पूरा ध्यान उस पर लगा देना, यही है दीर्घ श्वास प्रेक्षा। इसमें हम लंबी गहरी श्वास लेते हैं, धीरे धीरे छोड़ते जाते हैं, लंबी गहरी श्वास भरते हैं और छोड़ते जाते हैं। अपने ऑफिस में, घर में, कार्यस्थल में, खेल के मैदान में, ग्राउंड में, कहीं भी गहरी सांस के अभ्यास को कर सकेंगे। इवन हम कभी देर तक रेड लाइट पर फंस गए, गाड़ी बंद कर दी, तनाव आ रहा है जाम में फंसे होने का, उस तनाव से मुक्ति के लिए भी हम अपनी लंबी गहरी श्वास का अभ्यास कर सकते हैं। कभी सामने वाले से कोई झगड़ा हो गया, अपने गुस्से को कैसे काबू करना है, तो भी हम अपनी लंबी गहरी श्वास का अभ्यास करके अपने गुस्से को शांत कर सकते हैं। निरंतर लंबी गहरी श्वास लेते रहने से हमारे शरीर में, हमारे मस्तिष्क में रक्त की सप्लाई सुचारू बनी रहती है। जब हम श्वास लेते हैं तो ऑक्सीजन के साथ हमारा ब्लड मूव करता है हार्ट से शरीर के अंगों के लिए, शरीर के अंगों और मस्तिष्क के लिए। और जब हम श्वास छोड़ते हैं तो शरीर के अंग प्रत्यंगों से रक्त वापस आता है हार्ट के लिए, फिल्ट्रेशन के लिए। अर्थात हम जब श्वास लेते हैं तो श्वास लेते समय हमारे हार्ट से शरीर के ऑर्गन्स के लिए ब्लड की सप्लाई होती है। जब रक्त जाता है तो होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजन एब्जॉर्ब हो जाती है शरीर के अंगों के द्वारा, ऑर्गन्स के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड पैदा हो जाती है। तो जब श्वास को छोड़ते हैं और वही श्वास छोड़ते समय आपके ऑर्गन से कार्बन डाइऑक्साइड वापस रक्त के साथ आती है हार्ट से लंग्स के द्वारा थ्रो करने के लिए। अर्थात जब ब्लड जाता है तो होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जब वापस आता है तो होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो यही दीर्घ श्वास और प्रश्वास की प्रक्रिया आपके रक्त को पूरी तरह फिल्टर करने के और आपके हार्ट को सुचारू रूप से काम करने में मदद करती है, पूरे शरीर में ऊर्जा का संचार सुचारू करती है। लंबी गहरी श्वास लेना और छोड़ना, अर्थात श्वास प्रश्वास, और इसी श्वास प्रश्वास के अभ्यास को आप सायास करते हैं, अर्थात जानबूझ के करते हैं, देखते हुए, विजुलाइज करते हुए, देखते हुए मीन मन की आंखों से देखते हुए करते हैं, फील करते हुए करते हैं, तो ध्यान हो जाता है। ध्यान की सब ग्राह्य विधि बन जाती है दीर्घ श्वास प्रेक्षा। इसमें दीर्घ श्वास प्रेक्षा के दौरान जब आप श्वास को ले रहे हैं, धीरे धीरे पेट फूलेगा, जब श्वास छोड़ते हैं धीरे धीरे पेट नीचे जाएगा, और इसी पेट के ऊपर नीचे होने को, यानी के प्रत्येक अंग प्रत्यंग में कैसा प्रभाव हो रहा है श्वास के लेने और छोड़ने का, आप उसे अनुभव करने लग जाएंगे। और यही अनुभव करना, विजुलाइज करना, देखना, फील करना, यही आपका एक ध्यान बन जाता है दीर्घ श्वास प्रेक्षा। शरीर भी स्वस्थ होता है, मन भी स्वस्थ होता है, दीर्घ श्वास के अभ्यास से बेहतरीन मेडिटेशन हो जाता है, हमें फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली फिट रखने में समर्थ। धन्यवाद।

अभी आप सुन रहे थे देशभक्ति गीत। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर।